ऐसे सेंसुअलाइज दृश्यों को फिल्म से हटाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बुची बाबू ने अपना पक्ष रखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बेदी के कुछ दृश्यों पर मिली प्रतिक्रिया को मैं गंभीरता से लेता हूँ। मैं पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगह महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाने का नहीं था। अगर फिल्म का कोई हिस्सा ऐसा लगा है तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, उनकी चिंताओं को समझता हूँ और खुले दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने उन दृश्यों को बदलने का फैसला किया है जो आपत्तिजनक लगे हैं। साउथ की फिल्मों में हीरोइन के फिगर को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड करने का चलन आज का नहीं है। दक्षिण भारत के फिल्मों का ये पुराना ट्रेंड है। फिर भी जया बच्चन से लेकर आशिकी

0: फैसला उन्होंने क्यों लिया?
1: आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जस्ट माई कैरेक्टर, व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट आई फेल्ट वेरी स्ट्रॉन्गली अबाउट व्हाट द फिल्म वाज सेइंग, हाउ मच इट मेंट टू आवर डायरेक्टर बुच्ची सर, एंड आई थिंक द politics, the social commentary, the cultural implications of what a story like this could do, all of these things resonated with me very deeply. So for those reasons alone, I wanted to be a part of this film.
0: Golden Spoon culture mein pali badi star kid ka khud ke bare mein flare up hui itni badi controversy ko lekar itna mature reaction aapko hairani mein dal sakta hai. Darasal Boni Kapoor jaise bade film nirmata और श्रीदेवी जैसी स्टार अदाकारा की दिलकश बेटी जाह्नवी की असल जिंदगी वो नहीं है जिसे पेदी के जरिए देखा और दिखाया गया। 4 जून को सिने प्रेमी सिल्वर स्क्रीन पर जब पेदी फिल्म की अच्छी अम्मा का ग्लैमरस लुक देखकर मदहोश हो रहे थे, उसी समय ये अभिनेत्री नंगे पांव 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा और 3,550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर पहुँच रही थी। अगाध श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश के मंदिर में माथा टेक कर फिल्म की सफलता का आशीर्वाद मांग रही थी।

0: 4 जून को जिस समय सिल्वर स्क्रीन पर अचियम्मा के सेंसुअल लुक्स को देखकर ऑडियंस क्रेजी हो रहे थे, उस वक्त जाह्नवी विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी में पूरी गरिमा के साथ भक्ति और अध्यात्म का कठिन रास्ता तय कर रही थी। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी में जाह्नवी की अगाध आस्था का एक छोर उनकी माँ श्रीदेवी की बेपनाह यादों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीदेवी न सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके पर बालाजी के दरबार में जाती थी, बल्कि जीवन के बिजी शेड्यूल के दौरान भी जब मौका मिलता तो उनका जाप करती थी। जाह्नवी तिरुपति बालाजी के प्रति अपनी माँ की श्रद्धा, आस्था और समर्पण से वाकिफ थी। इसीलिए 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी के मृत्यु के बाद माँ के हर जन्मदिन पर 13 अगस्त को वहाँ जाने का फैसला कर लिया।
1: आई थिंक तिरुपति से स्पेसिफिकली एक अलग जुड़ाव है। आई थिंक बचपन से मैं सुनती आई हूँ मम्मा के मुँह से कि उनका भी एक अलग कनेक्शन रहा है बालाजी के साथ। हर बार उनका नाम जापती थी, नारायण नारायण नारायण, और कहती रहती थी कि हर साल उनके बर्थडे पर जब वो काम कर रही थी तो वो तिरुपति चढ़कर जाती थी। और शादी के बाद उन्होंने बंद कर लिया था, तो उनके गुजरने के बाद मैंने ठान लिया था कि हर साल उनके बर्थडे पर मैं जाऊंगी। तो जब पहली बार गई थी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी, और बहुत शांति मिली मन में। तो उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि हर बड़े अवसर के पहले मैं तिरुपति चढ़ूंगी।
0: जाह्नवी और श्रीदेवी का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी के परंपरागत संबंधों तक सीमित नहीं है। श्रीदेवी के गुजर जाने के 8 साल बाद भी उनकी यादें, उनका स्नेह, प्यार सब जाह्नवी की जिंदगी की प्रखर धूप में छायेदार वृक्ष की सुरभित बयार की तरह सुखद एहसास करा जाता है। ये एक ऐसा अलौकिक रिश्ता है जहां एक के जाने के बाद भी दूसरे को उसके आने का इंतजार है।
1: I want to remember the good things. तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज में बात करती हूँ उनके बारे में, और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही है। मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था। आई थिंक इट मेक्स मी फील लाइक मे बी लाइक आई डोंट नो शी इज ट्रैवलिंग समवेयर एंड शी विल कम बैक।
0: कुछ तो अलौकिक है माँ बेटी के रिश्ते में। जाह्नवी के जन्म के बाद श्रीदेवी आनंद की अलौकिक अनुभूति से सराबोर हो उठी थी। उन्हें तब ये नहीं लगा था कि उनकी गोद में कोई नन्ही नई मेहमान आई है, बल्कि ये लगा था मानो सदियों पहले बिछड़ा कोई अपना ही दोबारा से लौटकर दामन से लिपट गया है। श्रीदेवी ने अपनी बेटी का जाह्नवी नाम भी किसी खास एहसास से भर कर दिया था। दरअसल जाह्नवी 1997 में रिलीज हुई जुदाई फिल्म का एक करेक्टर था, इत्तेफाक से जिसे श्रीदेवी ने नहीं बल्कि उर्मिला मातोंडकर ने निभाया था। कमाल देखिए कि जुदाई 28 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी और जाह्नवी का जन्म उसके ठीक 6 दिन बाद 6 मार्च 1997 को हुआ। आपको बता दें कि जाह्नवी गंगा नदी का एक पर्यायवाची शब्द है जो अपनी पवित्रता

0: और निर्मलता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। श्रीदेवी अपनी बेटी में गंगाजल जैसी पवित्रता और निर्मलता का भाव रखती थीं। 80 और 90 के दशक की मेगा स्टार श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जीवन में जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा, जो परेशानी उन्हें उठानी पड़ी, वो उनकी बेटियों को उठानी पड़े।
1: वो हमेशा कहती थी मुझे कि मैंने जिंदगी भर मेहनत की है 4 साल की उम्र से ताकि आप मेरे दोनों बच्चे आराम की जिंदगी जिए। ये जिंदगी वो मानती थी कि हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम सख्त किस्म के इंसान तो है नहीं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो उनका ये सपना था कि मैंने इतना कुछ किया है ज़िंदगी में और अगर मैं मेरी बेटियों को आराम की ज़िंदगी नहीं दे पा रही हूँ और वो खुद इस चीज़ में कूद रहे हैं तो मैंने किया ही क्या है लाइफ में। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं मरी जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लो, कूद जाओ इस कुएं में।
0: साफ है कि जाह्नवी का फिल्मों में करियर बनाने का फैसला माँ को पसंद नहीं था। श्रीदेवी चाहती थी कि जाह्नवी डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों की सेवा करें, लेकिन जाह्नवी ने जब अपनी मंशा साफ कर दी कि एक्टिंग के सिवा वो कुछ और कर ही नहीं सकती, तो श्रीदेवी ने अच्छा एक्टर बनने के लिए बेटी को कुछ टिप्स दिए। श्रीदेवी ने जाह्नवी को जो टिप्स दिए वो अभिनय के पेशे को गरिमा से भर देने वाला है।
1: यू नो शी ऑलवेज यूज्ड टू से कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। एंड बिकॉज द कैमरा इज वेरी स्मार्ट, आई फील लाइक इफ यू आर नॉट अ गुड पर्सन देन इट शोज, एवरीथिंग फील्स फेक। एंड शी यूज्ड टू से अगर दिल में गंदगी है या अगर यू नो इफ यू आर नॉट एबल टू लिव योर कैरेक्टर्स फीलिंग्स जेन्युइनली देन इट शोज। So that's one thing, and I think that it's ever since I was a kid, mom and dad have like drilled in my head, you need to be dedicated and be focused. So like you said, there's no substitute for hard work.
0: जाह्नवी डॉक्टर बनने की माँ की ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर पाई, लेकिन हर कसौटी पर अच्छा इंसान बनने की माँ की इच्छा पूरी करने की भरसक कोशिश आज भी करती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर या एक्ट्रेस के बीच एक हेल्दी कंपटीशन तो चलता ही रहता है, लेकिन कई बार तो अनहेल्दी भी बन जाता है। पर जाह्नवी इस अनहेल्दी कंपटीशन से कोसों दूर हैं। उनसे ये पूछिए कि आप किस एक्ट्रेस को अपनी चुनौती मानती हैं, तो वे सह अस्तित्व की बात कह के सबका मुंह बंद कर देती हैं।
1: ये चुनौतीपन क्यों हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? नहीं, ये शायद दूसरे लोगों के दिमाग में है। मुझे ऐसे लगता है कि हम सब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं और हम सब एक दूसरे के लिए खुश भी है और हो सकते हैं, और एज लॉन्ग एज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ, मुझे यू नो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, मैं एज एन ऑडियंस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए।
0: दरअसल जाह्नवी से सवाल सारा अली खान और अनन्या पांडे को लेकर पूछा गया था। जाह्नवी की मैच्योरिटी, उनकी तरबियत, मानवीय संवेदना, सोच और संस्कार आज की जेंजी या मिलेनियल्स के लिए अद्भुत प्रेरणा है। एक ऐसी लड़की जो इंडस्ट्री की अत्यंत प्रभावशाली फैमिली का हिस्सा है, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ उसे मिल सकता था, पर श्रीदेवी और बोनी कपूर की इस लखते जिगर ने पारिवारिक साये से निकलकर मेहनत और लगन से अपनी शख्सियत को गढ़ा है।
2: जाह्नवी का अपनी मां श्रीदेवी से रिश्ता अनोखा और अलौकिक है। श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जो कष्ट उन्होंने झेला है वही उनकी बेटियों को भी झेलना पड़े, लेकिन जाह्नवी ने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि वो अपनी शख्सियत को संघर्ष की भट्टी में तपकर गढ़ेंगी। इसलिए उन्होंने अपने को स्थापित करने के लिए दूसरे कलाकारों से कहीं ज्यादा मेहनत की।

0: बेदी फिल्म से अलग तरह से सुर्खियों में आई जाह्नवी कपूर का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मुख्तसर से फिल्मी करियर में उन्होंने ऑडियंस के साथ ही क्रिटिक्स को भी अपने अभिनय के दम पर गहरे प्रभावित किया है। 6 मार्च 1997 को मुंबई में पैदा हुई जाह्नवी को जन्म से ही अभिनय के संस्कार मिलने लगे थे। अभिनय की बारीकियां उन्होंने बेशक अमेरिका के लॉस एंजलिस के द ली स्टारबर्ग थिएटर एंड फिल्म्स इंस्टीट्यूट से सीखा, लेकिन उसका ककहरा उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी और पिता बोनी कपूर से होश संभालने के बाद से ही सीखना शुरू कर दिया था।
1: Actually, in my family, it's the only thing that we discussed. It's the only thing that we knew as kids. Every time we'd, you know, sit at home and have a conversation with one another, it was always about films. Or even when we'd go out to spend time together, we'd go out to watch a movie, and you know, it was always a conversation at home. Holidays were always either dad's shooting schedules or mom's shooting schedules. So it was. We've grown up in that environment.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीदेवी और बोनी कपूर जैसी इंडस्ट्री की नामवर हस्तियों की बेटी होने की वजह से जाह्नवी को सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक पाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मनीष मल्होत्रा कपूर परिवार के फैमिली फ्रेंड थे, जो इत्तेफाक से करण जौहर जैसे इंडस्ट्री के स्टालवार्ट के भी करीबी थे। मनीष जाह्नवी को बचपन से जानते थे, लिहाजा उनके भीतर के पोटेंशियल को लेकर वो अक्सर करण से चर्चा करते रहते थे। करण जौहर निर्देशक शशांक खेतान के साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें उन्हें भारतीयता से भरी हुई एक हसीन और नए चेहरे की तलाश थी। इस दौरान जाह्नवी मनीष मल्होत्रा के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस आने जाने लगी थी। इसी बीच शशांक खेतान की नजर जाह्नवी पर टिक गई और उन्होंने बिना किसी लांग लपेट के फैसला कर लिया कि धड़क के लिए जिस लड़की की तलाश थी उसके लिए जाह्नवी पूरी तरह फिट हैं। उसके बाद जाह्नवी को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया।
1: मैं जाती थी उनके ऑफिस, आई थिंक 3-4 सीन्स दिए उन्होंने मुझे, और मैं जाके रट लेती थी और फिर परफॉर्म करती थी उनके लिए।
0: धड़क साइन करने के बाद जाह्नवी को एक अज्ञात डर सताने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि सेट पर लोग यही सोच रहे होंगे कि स्टार की ढोने की वजह से ही उन्हें काम मिला है। इस डर की वजह से जाह्नवी इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो गई। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मुझे जो मिल रहा है दरअसल मैं उसके लायक नहीं हूँ। इसीलिए वो सेट पर दूसरे कलाकारों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करती थी और पूरी यूनिट के साथ काफी हम्बल भी रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी को सेट पर आने से भी रोक दिया था, ताकि कोई ये ना कहे कि अपने जमाने के स्टार माँ बेटी की कमतरी को कवर करने के लिए आई हैं।
1: मेरे लिए ऐसा था कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और इसलिए लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, अब मैं ये अपने आप करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मदद मत कीजिएगा, आप सेट पे मत आइएगा प्लीज। तो मैं उनको सेट से दूर रखती थी।
0: माँ श्रीदेवी को सेट से दूर रखकर जाह्नवी धड़क की शूटिंग के दौरान पूरी जान झोंक रही थी, ताकि प्रीमियर में माँ जब बेटी की एक्टिंग देखें तो आह्लाद से ओतप्रोत हो जाए। पर जाह्नवी की उम्मीद की कश्ती जब साहिल के करीब पहुंचने ही वाली थी, उसी वक्त अचानक आए भयानक तूफान ने सतरंगे सपनों की रानाइयों को तहस नहस कर दिया। धड़क फिल्म की रिलीज से करीब 5 महीने पहले 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथ टब में दुर्घटनावश डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई। एक झटके में जाह्नवी की जिंदगी सन्नाटे में चली गई। धड़क फिल्म के प्रमोशन का उत्साह भी नहीं बचा। उस दौरान श्रीदेवी को लेकर जाह्नवी से जब कोई सवाल पूछा जाता तो वो दर्द की कशिश में ऐसे डूब जाती कि एक गहरी खामोशी के सिवा दूसरा कोई जवाब निकल ही नहीं पाता था।
1: उनके बारे में शायद अभी ज्यादा बात करने लगी हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप, आई लाइक टॉकिंग अबाउट, आई फील लाइक आई एम रिमेम्बरिंग हर, यू नो। लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत होता था। आई थिंक जब मैं धड़क प्रमोट कर रही थी, there wasn't a lot of time that had passed. वो बहुत फ्रेश था मेरे दिमाग में सब कुछ, और मैं भाग रही थी मेरे सच्चाई से, और मैं काम को इस्तेमाल कर रही थी, सो दैट वॉज माई एस्केप। और जब भी कोई भी प्रोफेशनल सिनारियो में वो मुझे रिमाइंड करते थे कि शी इज़ नो मोर. आई थिंक मैं बिल्कुल शट, लाइक आई जस्ट कुडंट डील विद इट.
0: 20 जुलाई 2018 को रिलीज हुई धड़क में पार्थवी सिंह राठौर नाम की मध्यम वर्गीय लड़की के किरदार को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया, लेकिन जाह्नवी अब भी माँ की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी. करीब 2 साल तक जाह्नवी पर्दे पर नजर नहीं आई. 12 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में जाह्नवी धड़क की पार्थवी के उलट एक अलग ही मिजाज और अंदाज में दिखी. एयरफोर्स की पायलट गुंजन सक्सेना के वास्तविक जीवन पर बनी फिल्म में जाह्नवी ने उनकी जिंदगी की बारीकियों को इतनी जहनियत के साथ पर्दे पर उकेरा कि दर्शक और समीक्षक दोनों अभिभूत हो गए. दरअसल माँ की मौत के सदमे से उबरने की जद्दोजहद में जाह्नवी के दिलो दिमाग में ये एहसास गहरे उतर गया कि जिंदगी खुद में एक कड़ा इम्तहान है और इस इम्तहान से भागना समाधान नहीं है.
1: I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that jitna bhi mushkil ho, ye daur ko bhi guzarna hi hai. Aur jab ye daur guzrega, aap aur bhi aap you'll emerge out of it stronger. Aap aur bhi usse ubhar ke nikloge.
0: इस फलसफे को अपनाने के बाद जाह्नवी ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी. मिली, बवाल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मिस्टर एंड मिसेज माही, देवरा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों के जरिए जाह्नवी ने इंडस्ट्री में अपनी मां की कमी को भरसक पूरी करने की कोशिश की है.
2: तो बंदे में है दम में आज आपने जाह्नवी कपूर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना. अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ. तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज स्टूडियो.
3: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए. क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में.
4: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
6: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे और कुछ को देखकर आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या.
7: नृत्य में योग मुद्राएं दिखाने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इस युवती के नृत्य में सभी योग मुद्राएं शामिल है जो सनातन संस्कृति का हिस्सा रही है. यही वजह है कि यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स करके कह रहे हैं कि आज के दौर में बेटियों के लिए ऐसे गौरवशाली नृत्य सीखना जरूरी है. इस डॉग की खुशी देखिए जरा, ये स्ट्रीट डॉग है और इसे आज खाने की ट्रीट मिली है, इसीलिए ये खुशी से झूम रहा है. इतना सारा फूड आइटम एक साथ मिलने के बावजूद डॉगी ने अपना हिस्सा ही थाली से उठाया और वापस सड़क पर लौटते ही खुशी से झूमने लगा. डॉगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सब इसे देख कर उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं. अब इन किटीज को देखिए जरा। एक भला मानुस खिड़की साफ करने के काम में व्यस्त है, बिना ये जाने कि खिड़की के कांच की दूसरी तरफ दो बिल्लियों को ये सफाई खेल नजर आ रही है। सफाई करने वाला रोजाना की तरह खिड़की का कांच साफ कर रहा है और वो जैसे जैसे ब्रश खिड़की पर घुमा रहा है, दूसरी तरफ बैठी शरारती बिल्लियां ठीक वैसे ही मूवमेंट कर ब्रश को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस एक तरफा खेल को देखकर बेहद आनंद ले रहे हैं। जिंदगी छोटी बातों से ही गुलजार होती है। यूं तो अपने घर में हर स्त्री खाना बनाती है और अपने पति को गर्मा गर्म भोजन कराती है, लेकिन कम ही पति होते हैं जो इस वीडियो में दिख रहे शख्स की तरह रिश्तों की कद्र करना जानते हैं। देखिए जरा, गर्मी में एक पत्नी को गर्मा गर्म रोटियां थोड़ा सख्ती से परोसते देख खाना खाते पति का दिल पसीज जाता है और वो बीवी के लिए हाथ पंखा चलाने लगता है। यूजर्स इसे देखकर कह रहे हैं कि अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिनको रिश्तों की फिक्र होती है। सोशल मीडिया पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मौजूद प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान मंदिर का ये छुटकू बंदर बहुत पसंद किया जा रहा है। खुद ही देखिए, हनुमान मंदिर में ऊपर बैठे पुजारी इस छुटकू बंदर को पहले तो बुलाते हैं और वो उनकी ओर आ जाता है और उसे ऊपर लेने के लिए हाथ देते हैं। नन्हा छोटू बंदर उनके हाथ पर चिपक जाता है, मानो उसे भी इस मंदिर में शरण मिल गई हो।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.

इस दुनिया में बेहतरीन श्रोता अगर कोई है वो एक, और कोई पूछे कि बहुत अच्छा कोई वक्ता बताओ, VIP वाला, दुनिया का सबसे बेहतरीन वक्ता अगर कोई हुआ वो भी एक।

सुंदर कांड कहता है दुनिया का सबसे बेहतरीन वक्ता है तो वो एक ही है, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, जिनका नाम है बजरंग बली। वो दुश्मनों में मचा देते हैं खलबली, उनके सामने किसी की नहीं चली। जिनका नाम बजरंग बली, और तो और इनकी शरण में जो भी आया उसकी हर विपदा टली। इसलिए लोग इनको क्या कहते हैं, बजरंग बली। ऐसे वीर हनुमान अनंत बलवंत परम संत भगवंत हमारे प्रिय। देखो मेरे पागलो, याद रखना हनुमान जी की सबको जरूरत है। हनुमान जी का नाम पवन पुत्र है, और पवन का मतलब हवा, जिसका हवा ना मिले पति गयो। जिसको पवन ना मिले बोले का हो गया, राम नाम सत्य है। हनुमान जी भी कौन है?

कैसे श्री हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, द्वारकानुनाथ के चरणों को प्रणाम करते हैं, दादा सोमनाथ को प्रणाम करते हैं। मेरे प्रिय जनों, जिस भूमि पर बैठे हैं ये वीरों की भूमि है, संतों की भी भूमि है। यही वो भूमि है जब पाकिस्तान के शरणार्थियों को, कोई पाकिस्तान से आए हुए सिंध के हमारे हिंदू भाइयों को कोई जगह नहीं मिल रही थी, उसी का नाम है गांधी धाम। और मेरे पागलों, हमें बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है, जहां एक तरफ पातालिया हनुमान है जिनकी कोई थाह नहीं, एक तरफ समुद्र है वो भी अथाह है, उसकी भी तो कोई थाह नहीं। ऐसे पावन क्षेत्र की भूमि पर गांधीधाम, कच्छ गुजरात के अंतर्गत गांधीधाम। और मेरे प्रियजनों, ये वही गांधीधाम है जो कच्छ की आर्थिक राजधानी भी, आर्थिक राजधानी कहा जाए तो बुरा नहीं, यहां खूब धनपति विराजमान और होना भी चाहिए, भगवान की कृपा खूब होनी चाहिए। ऐसी पावन भूमि जहां भारेश्वर महादेव भी है, यही वो गांधी धाम है जहां पूर्णेश्वर मंदिर की चर्चा पूरी दुनिया में जानी जाती है, जिसका नाम ही है पूर्णेश्वर, जो पूर्ण है। ऐसी पावन धरती गांधी धाम पर यहां की रज को हम अपने मस्तक पर लगाकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे दक्षिण भाग में यहाँ के सभी संत भगवान विराजमान है, आचार्य चरण विराजमान है, सभी संतों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम स्वीकार हो गए। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करते हैं, एवं तीनों पंडालों में आज बरसात हो गई, बैठने की बड़ी असुविधा है। और हमको अभी यजमान जी बता रहे थे, बोले गुरु जी ऐसा आज तक कच्छ में हुआ ही नहीं, इन दिनों में वर्षा हो जावे। हमने कहा हमारे जैसा उपद्री आएगा तो उपद्रव तो होगा ही होगा। हाँ, हमारे जैसा उपद्री आएगा, उपद्रव तो बारिश भी हुई पर कह रहे थे थोड़ा थोड़ा बर्फ भी गिरी। अद्भुत हो गई साहब, वो भी कच्छ में। कोई नहीं, देखो कथा से मन का मैल धुलता है, जल से तन का मैल भी तो धुलता है। दोनों पवित्र आवश्यक हैं, तन भी पवित्र होना जरूरी है, मन की पवित्रता भी जरूरी। और याद रखो इंद्र, सुनो मेरे प्यारे, तुम जल वर्षा कर लोगों का तन धोओगे तो हम हनुमान जी की कथा की अमृत वर्षा करके मन धोने का काम करें। दोनों एक ही बिरादरी के हैं, चलेगा। बोलो सीतारा। तो तीनों पंडालों में जो जहां बैठे हैं, कुछ वीआईपी विराजमान है इस तरफ। अच्छा, वीआईपीओं का जीवन बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा सबसे बाद में आना है, सबसे आगे बैठना। वीआईपी बहुत अद्भुत, इन पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। और इनको नो डिस्टर्ब जोन में बैठना, इनके कारण कोई डिस्टर्ब हो इन्हें लेना देना नहीं। अच्छा, ये हंसेंगे भी खुल के नहीं, इनकी मुस्कुराहट भी इतनी वीआईपी है। और ताली तो ये बजा ही नहीं सकते, वरना इन्हें लगेगा कि हम में और इनमें क्या अंतर। हाँ, क्या नहीं, नहीं बजाना नहीं, आपको नहीं बजाने को बोला हमने बाप जी, इनकी ताली भी इतनी तेज। कुछ वीआईपी तो हमने देखे कि जैसे घर से एकदम लुगाई से लड़के, विनोद है, बुरा मत मानना, आप सब हमारा परिवार हो, विनोद की चर्चा है। तीनों पंडालों में जो जहां विराजमान, यहां आचार्य चरण, कुछ लोग आगे बैठे पीछे खड़े हुए हैं, बैठने की असुविधा है। हम आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ

0: सितारा।
1: अरे जरा जोर से तो बोलो, तमे केम छो? मजा मां? खूब सरस छे? वाह, खूब खाओ ढोकला फाफड़ा। और यहाँ क्या चलती? डबल रोटी, डबल रोटी खूब पाओ। पिंड खजूर पीठा पेड़ा धाबेली धाबेली खाओ, धाबेली धाबेली खूब पाओ, खूब पाओ, खूब पाओ। अरे भोजन और भजन खूब करो मेरे प्रिय पागलो। एक बात याद रखना, ईश्वर चित्र में नहीं, ईश्वर तो चरित्र में बसता है। परमात्मा का चित्र से कोई वास्ता नहीं है, मेरे राम का तो चरित्र से वास्ता। इसलिए तो इसका नाम, ग्रंथ का नाम राम चरित्र रखा। और याद रखना, चित्र को चमकाने पर बहुत ज्यादा फोकस मत करना, चरित्र को चमकाने पर कोशिश करना। और आप कहोगे गुरुजी आप ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर आप चित्र चमकाओगे तो वासना में फंसोगे, चरित्र चमकाओगे तो उपासना में फंसोगे। अब आपका निर्णय है, आपको क्या स्वीकार करना। मेरे प्रियजनों, हमने हनुमंत चरित्र में विचार किया है कि 5 दिन तक कच्छ की इस भूमि पर गांधीधाम में सुंदरकांड महिमा पर कथा की जाए। जितना हनुमान जी हमसे बुलवाएंगे, देखो हम पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ गवार हैं। जो हनुमान जी के गुरु का प्रसाद, संतों का दिया हुआ प्रसाद है, वो हम आपको परोसेंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज की चर्चा पर एक चौपाई हमने स्वीकार की है गुरु कृपा से। वो चौपाई बड़ी अद्भुत है, इसी चौपाई के अंतर्गत 5 दिन की कथा को कहने का प्रयत्न करेंगे। और चौपाई सब गाई है क्या?

0: जी का चरित्र इतना प्यारा है तो राम जी का चरित्र कितना प्यारा नहीं होगा? क्यों? हनुमान जी है राम जी के दास, जब दास का चरित्र इतना महान है तो स्वामी का चरित्र कितना महान नहीं होगा? मेरे प्रिय पागलों, जिन हनुमान जी की चर्चा हम करते, उनके स्वामी प्रभु श्री राम इस पृथ्वी के सबसे बड़े चरित्रवान रूप में, मनुष्य रूप में प्रकट भए, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। अच्छा, आपने कभी विचार किया रामचरितमानस का अर्थ क्या होता है? रामचरितमानस का अर्थ जानना है प्रिय श्रोताओं, तो आप इसको उल्टा पढ़ो, मानस चरित्र।
1: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल, पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर, बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर, श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: यू आर लिसनिंग अनइंटरप्टेड With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
3: Good news today.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: G7 समिट में शामिल होने फ्रांस के नीस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होटल में शानदार स्वागत, प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात। फ्रांस में भारत इनोवेट्स 2026 के प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से करेंगे उद्घाटन। समिट में भारत फ्रांस के इनोवेशन स्टार्टअप होंगे शामिल, 14 से 16 जून तक आयोजन। 3 मैचों की वनडे सीरीज में पहले वनडे पर भारत को कब्जा, अफगानिस्तान को 7 विकेटों से रौंदा, कप्तान गिल ने खेली 84 रनों की पारी। सोमवती अमावस्या को लेकर हरिद्वार में उमड़ने लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ट्रैफिक पर खास नजर। पंजाबी म्यूजिक कंपोजर करण औजला के साथ 21 जून को मंच साझा करेंगे विराट कोहली। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है प्रोग्राम, विराट ने शानदार जुगलबंदी पर लगाई मोहर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
12: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए, क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं, घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं, आपके घर

0: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है

0: संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: It feels good to be in control. No matter what, keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Right field, and it will leave.
2: From the first pitch of the season to the stretch run.
3: And that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कि घर की पॉजिटिव एनर्जी और शुभता के लिए पूजा घर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों हमें अपने घर में पूजा स्थान बनाना चाहिए? देखिए, किसी भी घर में या किसी भी व्यक्ति के अंदर दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है, शुभ ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी और अशुभ ऊर्जा निगेटिव एनर्जी। घर में शुभ ऊर्जा बनी रहे, शुभ ऊर्जा हमेशा चलती रहे, इसके लिए घर में पूजा स्थान का होना आवश्यक है। घर में अगर आप एक विशेष स्थान पर, फिक्स जगह पर पूजा स्थान बनाते हैं, वहां नियमित रूप से बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो तमाम तरह की समस्या अपने आप दूर हो जाती है। घर में पूजा घर होने से स्वास्थ्य की समस्या और मन की समस्या का निवारण, इसका इलाज जल्दी होता है। घर में पूजा घर रखा जाए और उसका ध्यान दिया जाए तो घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है और घर के लोगों में आपसी तालमेल भी बना रहता है। यानी अगर घर में पूजा स्थान होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, घर के लोगों में प्रेम रहेगा। आप घर में मंदिर बनाएं या पूजा स्थान बनाएं तो इसका फायदा तभी होगा जब इसकी स्थापना थोड़ा सोच समझकर नियमों के हिसाब से करें। सही तरीके से घर में मंदिर बनाएं, देवी देवताओं की स्थापना करें और निरंतर पूजा करके, निरंतर प्रार्थना करके मंदिर या पूजा स्थान को अपने जागृत बनाए रखें। देखिए, बहुत सारे लोग स्वयं से अपनी अकल लगाने लगते हैं कि इस स्थान पे पूजा बनाएंगे, उस स्थान पे ये रंग रखेंगे। देखिए, मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पूजा स्थान पे बैठेंगे तो उस रंग के संपर्क में रहेंगे, तो वो रंग मन पर कैसा असर डालता है ये पूजा में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो रंग और स्थान कैसा होगा? देखिए, सामान्य रूप से पूजा घर अगर संभव है तो पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में होना चाहिए, पूरब उत्तर के कोने में। अगर ईशान कोण में ऐसा नहीं कर पाते तो पूर्व दिशा थोड़ी सी भी अगर आपको मिल रही है आपके पूजा घर में तो अच्छा रहेगा। अगर फ्लैट में है तो दिशा का कोई मतलब ही नहीं है। फ्लैट में है तो सिर्फ सूर्य के प्रकाश का ध्यान रखिए कि जब सुबह दरवाजा खोलें, खिड़कियां खोलें तो सूर्य का प्रकाश आपके पूजा घर तक थोड़ा बहुत आता रहे। पूजा का स्थान एक ही फिक्स रखिएगा, नियत रखिएगा, उसको बार बार मत बदलिए कि आज इस कमरे में पूजा कर रहे हैं, कल उस कमरे में कर रहे हैं, परसों ड्राइंग एरिया में कर रहे हैं। ऐसा ना करें। जब आप एक ही जगह पर निरंतर बैठकर पूजा रेगुलर करेंगे तो वहां की तरंगें बड़ी शक्तिशाली, बड़ी फायदेमंद हो जाएंगी। पूजा स्थान का रंग अगर आप दीवारों पर करना चाहते हैं तो हल्का पीला,
हल्का नारंगी भी रख सकते हैं या पूरी तरह से सफेद रखिए, श्वेत रखिए, गाढ़े रंग के प्रयोग से बचिएगा। आजकल एक फैशन है कि लकड़ी या मार्बल का पूजा घर लोग लाते हैं और उसके ऊपर गुंबद लगा होता है। देखिए, गुंबद बड़े मंदिरों में फायदेमंद होता है, क्योंकि जब आप बड़े मंदिर में जाते हैं तो गुंबद के नीचे बैठ के मंत्र जप करते हैं तो तरंगों का लाभ होता है। अब घर में छोटा सा पूजा घर बनाया है, उस पर गुंबद लगा हो ना लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तिकोना या गुंबद वाला मंदिर लगाने के बजाय केवल पूजा की एक छोटी सी जगह बना दें घर के मंदिर में या घर के पूजा स्थान में। गुंबद का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप उसके नीचे बैठ नहीं सकेंगे। इसीलिए घर में एक चौकी या एक बॉक्स बनवा लें बढ़िया सी, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर देवी देवताओं की स्थापना करके वहीं पर इत्मीनान से बैठ करके पूजा करिएगा। देखिए, जो पूजा स्थान आप बनाते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहाँ से ऊर्जा कैसी लेनी है आपको, किस तरह की एनर्जी ग्रहण करनी है और कैसी कामनाएं पूरी करनी है। तो पहले आपको बताया कि जो गुंबद वाले मंदिर की आकृति होती है उसको रखने के बजाय पूजा का एक साफ सुथरा स्थान बनाइए और पूजा के स्थान पर देवी देवताओं की भीड़ मत लगाइए कि कहीं भी गए देवी देवता का चित्र लाए और पूजा स्थान पे लगाते चले गए, ये मत करिए। जिस देवी या देवता की मुख्य रूप से आप पूजा करते हैं उनके चित्र की या मूर्ति की स्थापना एक आसन या चौकी पर करिएगा पूजा स्थान के बीचों बीच में। बाकी देवी देवताओं की मूर्तियों को या उनके चित्र को बगल में स्थापित कर सकते हैं। अगर मूर्ति की स्थापना करनी है तो ये 12 अंगुल से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी लगभग आधा फिट। चित्र कितना भी बड़ा हो सकता है। अपने घर के पूजा स्थान पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल भरकर जरूर रखें। रोज सुबह जब पूजा करें तो पानी भरकर एक पात्र में रख दें। अगले दिन सुबह उस जल को पौधे में डाल दें और फिर से साफ पानी भर करके पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। देखिए, घर के पूजा स्थान में लोगों की मान्यता है कि माँ काली का और भगवान भैरव का चित्र या मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। ऐसा नहीं है, आप माँ काली का चित्र भी लगा सकते हैं और भगवान भैरव का चित्र भी लगा सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि घर में माँ काली या भगवान भैरव की उग्र पूजा मत करिएगा। घर के पूजा स्थान पर शनि से संबंधित कोई चित्र, शनि से संबंधित कोई मूर्ति या शनि से संबंधित कोई यंत्र, ये आपको नहीं लगाना है। शनि देव का चित्र, मूर्ति या यंत्र लगाना पूजा स्थान पर और नियमित उसका दर्शन करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। वैसे आप अपने पूजा स्थान पर बैठकर रोज शनि देव का मंत्र पढ़िए, रोज शनि चालीसा पढ़िए, अच्छा है। लेकिन शनि देव का चित्र लगाना, यंत्र लगाना उचित नहीं है।
देखिए, बहुत सारे लोग आजकल आधुनिकता के नाम पर अपने घर में पूजा स्थान नहीं बनाते, तो जिन घरों में पूजा स्थान नहीं रहता या पूजा स्थान बना तो लिया है उसमें धूल जमे जा रही है, कभी दीपक नहीं जलाते, पूजा स्थान का ध्यान नहीं रखते, वहां पर उन घरों में बीमारी बहुत होती है और उन घरों में धन की बहुत सारी बर्बादी होती है। आपके घर में पूजा स्थान आपके सामर्थ्य के अनुसार जरूर होना चाहिए और पूजा घर की नियमित साफ सफाई भी जरूर होनी चाहिए। देखिए, कोई मुकदमा बड़े लंबे समय से चल रहा है, हल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए मंदिर में जाके या घर में। इसके बाद उनके सामने बैठ करके राम नाम का 108 बार जप करिए, राम राम राम। तो श्री राम के नाम का 108 बार जप करें, ये रोज करें और हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं। 3 महीने निरंतर ये उपाय करें, मुकदमे की समस्या से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा।

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। बेदी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। वंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: G7 समिट में शामिल होने फ्रांस के नीस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होटल में शानदार स्वागत, प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात। फ्रांस में भारत इनोवेट्स 2026 का प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से करेंगे उद्घाटन। समिट में भारत फ्रांस के इनोवेशन स्टार्टअप होंगे शामिल, 14 से 16 जून तक आयोजन। 3 मैचों की वनडे सीरीज में पहले वनडे पर भारत का कब्जा, अफगानिस्तान को 7 विकेटों से रौंदा, कप्तान गिल ने खेली 84 रनों की पारी। सोमवती अमावस्या को लेकर हरिद्वार में उमड़ने लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ट्रैफिक पर खास नजर। पंजाबी म्यूजिक कंपोजर करण औजला के साथ 21 जून को मंच साझा करेंगे विराट कोहली। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है प्रोग्राम, विराट ने शानदार जुगलबंदी पर लगाई मुहर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
6: नमस्कार।
5: अच्छा, आज के कार्यक्रम की शुरुआत में एक सवाल से करती हूँ, क्या आपको पता है आपके घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा होता है? देखिये, घर का सबसे जरूरी सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है पूजा स्थान, क्योंकि यहीं से सकारात्मकता का संचार होता है, मन को शांति प्रदान होती है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कैसा होना चाहिए आपके घर का पूजा का स्थान, किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए इस दौरान, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
7: देखिए, बहुत सारे लोग आजकल आधुनिकता के नाम पर अपने घर में पूजा स्थान नहीं बनाते, तो जिन घरों में पूजा स्थान नहीं रहता या पूजा स्थान बना तो लिया है उसमें धूल जमे जा रही है, कभी दीपक नहीं जलाते, पूजा स्थान का ध्यान नहीं रखते, वहां पर उन घरों में बीमारी बहुत होती है और उन घरों में धन की बहुत सारी बर्बादी होती है। आपके घर में पूजा स्थान आपके सामर्थ्य के अनुसार जरूर होना चाहिए और पूजा घर की नियमित साफ सफाई भी जरूर होनी चाहिए।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 14 जून 2026 यानी कि दिन रविवार का पंचांग क्या है।
7: दिनांक 14 जून 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दोपहर 12:19 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के 10:13 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना बहुत आवश्यक है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
5: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि घर में पूजा स्थान कैसा होना चाहिए, लेकिन उससे पहले पंडित जी सबसे पहला सवाल जो कि किसी के भी जहन में आएगा कि घर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर वहां पर पूजा स्थान नहीं है तो घर में एक बहुत बड़ी कमी जो है वो खटकती है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है घर में पूजा स्थान होना?
7: जी, सरगम ने शुरुआत में ही बताया कि घर की पॉजिटिव एनर्जी और शुभता के लिए पूजा घर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों हमें अपने घर में पूजा स्थान बनाना चाहिए? देखिए, किसी भी घर में या किसी भी व्यक्ति के अंदर दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है, शुभ ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी और अशुभ ऊर्जा निगेटिव एनर्जी। घर में शुभ ऊर्जा बनी रहे, शुभ ऊर्जा हमेशा चलती रहे, इसके लिए घर में पूजा स्थान का होना आवश्यक है। घर में अगर आप एक विशेष स्थान पर फिक्स जगह पर पूजा स्थान बनाते हैं, वहां नियमित रूप से बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो तमाम तरह की समस्या अपने आप दूर हो जाती है। घर में पूजा घर होने से स्वास्थ्य की समस्या और मन की समस्या का निवारण, इसका इलाज जल्दी होता है। घर में पूजा घर रखा जाए और उसका ध्यान दिया जाए तो घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है और घर के लोगों में आपसी तालमेल भी बना रहता है। यानी अगर घर में पूजा स्थान होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, घर के लोगों में प्रेम रहेगा। आप घर में मंदिर बनाएं या पूजा स्थान बनाएं तो इसका फायदा तभी होगा जब इसकी स्थापना थोड़ा सोच समझकर नियमों के हिसाब से करें। सही तरीके से घर में मंदिर बनाएं, देवी देवताओं की स्थापना करें और निरंतर पूजा करके, निरंतर प्रार्थना करके मंदिर या पूजा स्थान को अपने जागृत बनाए रखें।
5: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है।
7: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की समस्या हल होगी, संतान की चिंता दूर होगी। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
5: तो पंडित जी, अगर कोई पूजा स्थान या फिर मंदिर बना रहा है तो किस रंग का प्रयोग करना चाहिए और इसे बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
7: देखिए, बहुत सारे लोग स्वयं से अपनी अकल लगाने लगते हैं कि इस स्थान पे पूजा बनाएंगे, उस स्थान पे ये रंग रखेंगे। देखिए, मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पूजा स्थान पे बैठेंगे तो उस रंग के संपर्क में रहेंगे, तो वो रंग मन पर कैसा असर डालता है ये पूजा में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो रंग और स्थान कैसा होगा, देखिए, सामान्य रूप से पूजा घर अगर संभव है तो पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में होना चाहिए, पूरब उत्तर के कोने में। अगर ईशान कोण में ऐसा नहीं कर पाते तो पूर्व दिशा थोड़ी सी भी अगर आपको मिल रही है आपके पूजा घर में तो अच्छा रहेगा। अगर फ्लैट में है तो दिशा का कोई मतलब ही नहीं है। फ्लैट में है तो सिर्फ सूर्य के प्रकाश का ध्यान रखिए कि जब सुबह दरवाजा खोलें, खिड़कियां खोलें, तो सूर्य का प्रकाश आपके पूजा घर तक थोड़ा बहुत आता रहे। पूजा का स्थान एक ही फिक्स रखिएगा, नियत रखिएगा, उसको बार बार मत बदलिए कि आज इस कमरे में पूजा कर रहे हैं, कल उस कमरे में कर रहे हैं, परसों ड्राइंग एरिया में कर रहे हैं, ऐसा ना करें। जब आप एक ही जगह पर निरंतर बैठकर पूजा रेगुलर करेंगे तो वहां की तरंगे बड़ी शक्तिशाली, बड़ी फायदेमंद हो जाएंगी। पूजा स्थान का रंग अगर आप दीवारों पर करना चाहते हैं तो हल्का पीला, हल्का नारंगी भी रख सकते हैं, या पूरी तरह से सफेद रखिए, श्वेत रखिए, गाढ़े रंग के प्रयोग से बचिएगा। आजकल एक फैशन है कि लकड़ी या मार्बल का पूजा घर लोग लाते हैं और उसके ऊपर गुंबद लगा होता है। देखिए, गुंबद बड़े मंदिरों में फायदेमंद होता है क्योंकि जब आप बड़े मंदिर में जाते हैं तो गुंबद के नीचे बैठ के मंत्र जप करते हैं तो तरंगों का लाभ होता है। अब घर में छोटा सा पूजा घर बनाया है, उस पर गुंबद लगा हो ना लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तिकोना या गुंबद वाला मंदिर लगाने के बजाय केवल पूजा की एक छोटी सी जगह बना दें घर के मंदिर में या घर के पूजा स्थान में। गुंबद का कोई महत्व नहीं है क्योंकि आप उसके नीचे बैठ नहीं सकेंगे, इसीलिए घर में एक चौकी या एक बॉक्स बनवा लें बढ़िया सी, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर देवी देवताओं की स्थापना करके वहीं पर इत्मीनान से बैठ करके पूजा करिएगा।
5: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
7: कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की चिंता हो सकती है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: तो चलिए कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपके सवाल का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
7: जी, आज का पहला प्रश्न भाग्य जी ने लिखा है हमें, इनका नाम भाग्य है, कर्नाटक से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 10 मई 2007, 4:11 शाम को, बेंगलोर कर्नाटक। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी मेडिकल की परीक्षा की नीट की तैयारी कर रही है, क्या मेरी बेटी को सफलता मिलेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए भाग्य जी, आपकी जो पुत्री है उसकी कुंडली है ही मेडिकल वाली, तो उसे मेडिकल में तो जाना ही है। इस साल भी उनके सफलता की बेहतर संभावनाएं बन रही हैं और अगर वो ठीक से परिश्रम करेंगी तो साल 2026 में उनका सिलेक्शन हो सकता है और भविष्य में मेडिकल फील्ड में इनको काफी सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। दो उपाय करने की आवश्यकता है इनके बेहतर सफलता के लिए। एक तो आप अपनी बेटी को बोलिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है हमारे दूसरे सवाल का, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, हमारी इसी ईमेल आईडी पर आप अपने प्रश्न लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
7: जी आज का दूसरा प्रश्न रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जी ने गोरखपुर से लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। 12 नवंबर 1995 का जन्म है पुत्र का, 4:45 शाम को गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा, कैसा रहेगा, क्या मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिलेगी। रामेश्वर जी, आपके पुत्र के विवाह का समय चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से साल 2027 के आरंभिक समय में इनका विवाह होगा, लेकिन एक बार कुंडली मिला लीजिएगा, वो थोड़ा जरूरी है। सरकारी नौकरी की संभावनाएं मध्यम हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में टेक्नोलॉजी की नौकरी में आपके सुपुत्र बहुत अच्छी तरक्की करेंगे ऐसा लग रहा है। एक तो इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार रोज शाम को जप करें तो काफी बेहतर होगा।
5: पूजा स्थान में देवी देवताओं की स्थापना किस प्रकार करें, किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं।
7: देखिए, जो पूजा स्थान आप बनाते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहां से ऊर्जा कैसी लेनी है आपको, किस तरह की एनर्जी ग्रहण करनी है और कैसी कामनाएं पूरी करनी है। तो पहले आपको बताया कि जो गुंबद वाले मंदिर की आकृति होती है उसको रखने के बजाय पूजा का एक साफ सुथरा स्थान बनाइए और पूजा के स्थान पर देवी देवताओं की भीड़ मत लगाइए कि कहीं भी गए देवी देवता का चित्र लाए और पूजा स्थान पे लगाते चले गए, ये मत करिए। जिस देवी या देवता की मुख्य रूप से आप पूजा करते हैं उनके चित्र की या मूर्ति की स्थापना एक आसन या चौकी पर करिएगा पूजा स्थान के बीचों बीच में। बाकी देवी देवताओं की मूर्तियों को या उनके चित्र को बगल में स्थापित कर सकते हैं। अगर मूर्ति की स्थापना करनी है तो ये 12 अंगुल से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी लगभग आधा फिट। चित्र कितना भी बड़ा हो सकता है। अपने घर के पूजा स्थान पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल भरकर जरूर रखें। रोज सुबह जब पूजा करें तो पानी भरकर एक पात्र में रख दें, अगले दिन सुबह उस जल को पौधे में डाल दें और फिर से साफ पानी भर करके पूजा स्थान पर रख दीजिएगा।
5: तो चलिए बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
7: तुला राशि, व्यर्थ की चिंता आपकी हो सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: पंडित जी कहते हैं कि मंदिर में या फिर पूजा स्थान में सिर्फ देवी देवताओं का चित्र लगा देने से या फिर प्रतिमाएं रख देने से वो जगह शुद्ध नहीं हो जाती, उसे जागृत करना पड़ता है क्योंकि वहां पे एनर्जी इसका वास होता है। ऐसे में किस तरीके से उसे जागृत किया जा सकता है उसके बारे में बताएं।
7: देखिए, घर के मंदिर को, पूजा स्थान को आप जागृत कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दोनों वेला एक ही समय पूजा उपासना का नियम बनाइएगा कि सुबह 7 बजे पूजा करते हैं, शाम को 7 बजे पूजा करते हैं, लगभग एक ही समय रखिएगा। शाम की जब आप पूजा करते हैं उसमें दीपक जरूर जलाइएगा और दीपक पूजा स्थान के मध्य में जलाइएगा। पूजा की जब शुरुआत करते हैं तो उस समय थोड़ा सा कीर्तन करिए या बोल बोल कर मंत्र पढ़िए। ऐसा करने से पूजा की पॉजिटिविटी, पूजा की सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलेगी। मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखिए, रोज सुबह मंदिर की सफाई करिए और वहां पर एक लोटे में जल भर करके जरूर रखिए। आप कोई भी पूजा करते हैं, अगर गुरु मंत्र मिला है तो पहले गुरु मंत्र पढ़िएगा और अगर गुरु मंत्र नहीं मिला है तो पहले गायत्री मंत्र का जप करिएगा। पूजा जब समाप्त हो जाए तो जल जो आपने भगवान को अर्पित किया है उसको प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप नियमित रूप से एक निश्चित समय पर सुबह शाम पूजा करें, मंत्र का जप करें, कीर्तन और आरती करें, पूजा स्थान की साफ सफाई पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से आपका पूजा स्थान जागृत होगा। और अगर पूजा स्थान आपका जागृत होगा तो आप जब भी पूजा स्थान में जाएंगे आपका मन शांत होगा और जो भी प्रार्थना करेंगे वो स्वीकार होगी।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
7: मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, करियर में तनाव हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, गुड़ का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, कोई यात्रा इस समय हो सकती है, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
7: जी, अगला प्रश्न उत्तम कुमार जी ने रांची से हमें लिखा है। 25 जून 1999 का जन्म है, 3:30 दोपहर में, रांची झारखंड। ये कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति काफी खराब है, आगे मेरा जीवन कैसा रहेगा, मेरा करियर कैसा रहेगा, मुझे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। उत्तम जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको मेडिकल जैसे क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। अगर आप मेडिकल के फील्ड में जाएं, दवाइयों का काम करें, फिजियोथेरेपी का काम करें या मेडिकल असिस्टेंस करें तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आपको अपना काम करने का प्रयास करना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2027 के बाद आपका समय बेहतर दिखाई दे रहा है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहने, रोज सुबह और रोज शाम को एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे इस वक्त हमारी जो ईमेल आईडी है वो फ्लैश हो रही है, इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
7: जी, आज का अंतिम प्रश्न अर्चना त्रिपाठी ने हमें लिखा है और अर्चना त्रिपाठी लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 जुलाई 1994, जन्म का समय दोपहर के 3:15, जन्म स्थान है लार देवरिया उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरी शादी अभी 3 साल पहले हुई है और वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें चली आ रही हैं, तो क्या मेरा ये विवाह चल सकेगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अर्चना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके इस विवाह की पहले विवाह के चल पाने की संभावना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपसी सुलह समझौते से 2027 में सेपरेशन होगा। आपकी कुंडली में दूसरे विवाह की संभावना आगे बनती है 2027 के अंत में या 2028 के आरंभ में, और दूसरा विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। आप ऐसा करिए, जल्दी इस मामले को निपटा के जीवन में आगे बढ़ पाएं, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
5: पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी, और एक ऐसा सवाल है जो कि हर किसी के जहन में आता है कि जब हम पूजा स्थान स्थापित कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो अपने घर में, तो कौन से देवी देवताओं की प्रतिमा या चित्र हमें नहीं लगाने चाहिए, इसके बारे में बताएं।
7: जी देखिए, घर के पूजा स्थान में लोगों की

0: यंत्र लगाना उचित नहीं है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिनका जन्मदिन यानी जिनका बर्थडे 14 जून को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला जो साल है वो कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 14 जून को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी और अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष बेहतर होगा।
1: और अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका, ये दुविधा रहती है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए। भगवान को भोग में सात्विक वस्तुएं अर्पित करें बेहतर होगा कि दोनों समय का भोजन बनाएं और खाने के पहले भगवान को अर्पित करें। तामसिक और राजसिक वस्तुएं अर्पित करने से परहेज करें। अगर कोई भी चीज नहीं है तो शुद्ध जल 2 पत्ते तुलसी के डालकर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं और बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार 14 जून 2026 यानी कि दिन रविवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 14 जून 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा, इससे धन की समस्या में और कर्ज की समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 14 जून रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा की स्थिति कैसी रहती है। आज की गुड लक राशि है तुला। इनकी शिक्षा में उतार चढ़ाव बना रहता है, शिक्षा में बहुत एकाग्र नहीं होते। अगर आपकी राशि तुला है और आप शिक्षा में सफलता चाहते हैं तो शनि देव की उपासना करने से आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, देखिए कोई मुकदमा बड़े लंबे समय से चल रहा है, हल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए मंदिर में जाके या घर में। इसके बाद उनके सामने बैठ करके राम नाम का 108 बार जप करिए, राम राम राम। तो श्री राम के नाम का 108 बार जप करें, ये रोज करें और हर मंगल

0: हर को गाय को गुड़ खिलाएं, 3 महीने निरंतर ये उपाय करें, मुकदमे की समस्या से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जयंती के साथ।

पंडित शैलेंद्र पांडे दें जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
2: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
3: continue to face political pressure to reach a peace deal,
2: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
4: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ।
2: Stay in the game with TuneIn. Hear non-stop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
3: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई

सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: क्या घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे।
3: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
4: पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: Good news today.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8:00 गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
10: दिल्ली में यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में चला मां यमुना स्वच्छता अभियान, यमुना के 28 घाटों पर सफाई करते नजर आए नेता। जम्मू में जम्मू हाई फाइव फाइव के मैराथन का आयोजन हुआ, नौजवानों को फिट रहने और नशे से दूर रहने का दिया गया संदेश, डांस और कार्टून प्रदर्शनी से भी दिया गया फिटनेस का संदेश। देश माह की कृष्ण चतुर्दशी पर अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सुबह से मंदिरों में लंबी कतार। वीकेंड पर पहाड़ों में बढ़ी सैलानियों की संख्या, शिमला में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, सुहाने मौसम का कर रहे हैं दीदार। रायपुर में वाटर स्पोर्ट्स का महाकुंभ, सेंट लेक में राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, देश भर के खिलाड़ी शामिल हुए। G7 बैठक के लिए फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, आज मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक, 17 जून को ट्रंप से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
10: स्वच्छ यमुना को लेकर दिल्ली सरकार ने चलाया बड़ा अभियान, 28 घाटों पर 500 संगठन और हजारों लोग करेंगे योगदान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी यमुना सफाई अभियान में लिया हिस्सा, गीता कॉलोनी के दशाश्वमेध घाट पर सफाई। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सचदेवा ने भी यमुना घाटों में साफ सफाई की, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यमुना क्लीननेस कैंपेन का हिस्सा बने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने यमुना के घाटों पर सफाई, लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। मैक्सिको सिटी में फुटबॉल विश्व कप के स्वागत में निकाली गई रंगारंग परेड, शहरवासियों के साथ कई कलाकारों ने लिया हिस्सा। शहर की ऐतिहासिक सड़क पर निकाली गई परेड, मारियाची कलाकार, प्राचीन योद्धा और विशाल डे ऑफ द डेड आकृतियां भी परेड में शामिल। परेड में पेले और डिएगो माराडोना जैसे महान फुटबॉल और खिलाड़ियों की बड़ी तस्वीरें शामिल। विश्व कप के लिए आज विदेशी पर्यटकों ने की मैक्सिको की मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ। मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा मिलकर 2026 फीफा वर्ल्ड कप की कर रहे हैं मेजबानी। दर्शकों को प्रोत्साहित करने के लिए कराए जा रहे हैं सांस्कृतिक आयोजन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लोगों पर चढ़ा फुटबॉल फीवर, पसंदीदा खिलाड़ियों और टीमों का समर्थन करने के लिए डिजिटल फलक, कटआउट और फ्लैग लगाए। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्राजील के नेमार, फ्रांस के किलियन एम्बापे जैसे दिग्गजों के कटआउट। महाराष्ट्र के जालना में किसान मेहनत और समझदारी से बदल दी उन्होंने किस्मत, खजूर की खेती से कमा रहे हैं लाखों रुपए। 2019 में गुजरात से मंगाई थी ईरान मूल के खजूर के पौधे, 3 एकड़ में कर रहे हैं खजूर की खेती। जिले और राज्य के किसानों के लिए पेश की मिसाल, कम लागत लेकिन मुनाफा ज्यादा। लंदन नॉर्टन साइकिल इवेंट में ताजा हुई 19वीं सदी की यादें, आयोजन में पैनी फर्थिंग क्लब ने बनाए 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्लब के संस्थापक ने दुनिया की सबसे बड़ी पैनी फर्थिंग साइकिल चलाकर बनाया रिकॉर्ड। भाई बहन की जोड़ी फ्लो और फिन वुडवर्ड ने सबसे छोटी पैनी फर्थिंग साइकिल चलाई। साइकिलिस्ट रॉजर टेविस ने आंखों पर पट्टी बांधकर यूनिसाइकिल पर 100 मीटर की सबसे तेज सवारी की। स्वीडन के हेनरिक हेडस्ट्रॉम ने करतब दिखाते हुए बनाया नया रिकॉर्ड। देहरादून में हुई आईएमए की 158वीं पासिंग आउट परेड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल। 515 कैडेट्स अंतिम पग पर पार करके बनाया उन्होंने सैन्य अधिकारी, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति मुर्मू को सलामी। ऐतिहासिक रही इस बार की पासिंग आउट परेड, पहली बार 9 महिला कैडेट्स भी परेड में शामिल हुई। 34 मित्र देशों के सैन्य अधिकारी हुए पास आउट, बांग्लादेश के जेफ सादत आलवी बने सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट। आईएमए पासिंग आउट परेड में जश्न और भावुक पलों की साक्षी बने परिजन, चेतवुड बिल्डिंग ड्रिल स्क्वायर में आयोजित की गई परेड। हैदराबाद के डुंडीगुल में एयरफोर्स एकेडमी की 217वें कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड हुई। राजनाथ सिंह ने ली शानदार परेड की सलामी, बढ़ाया नौजवानों का मनोबल। रक्षा मंत्री ने पास आउट होने वाले कुल 231 फ्लाइट कैडेट्स को प्रदान किया राष्ट्रपति कमीशन। समारोह के दौरान वायुसेना ने किया शक्ति प्रदर्शन, आकाश गंगा स्क्वायर हाई टीम, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले और सूर्यकिरण एरोबैटिक्स टीम ने दिखाई शानदार कलाबाजियां। सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले की टीम ने आसमान में बनाई कई शानदार फॉर्मेशन, दर्शक रोमांचित। फ्रांस और स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों की अगुवाई में भारत और फ्रांस के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता बैठक में दोनों देशों के वैश्विक साझेदारी की समीक्षा भी करेंगे दोनों नेता। नीस में आज भारत इनोवेट्स 2026 समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रों। नीस शहर में 14 से 16 जून तक चलेगा भारत इनोवेट्स 2026 समिट। नीस शहर में चलने वाली ये ट्राम पर लगाए गए हैं भारत इनोवेट्स 2026 के संदेश। भारत इनोवेट्स 2026 में 120 भारतीय इनोवेटर, 500 से ज्यादा इन्वेस्टर के साथ साथ ग्लोबल सीईओ और इंडस्ट्री लीडर शामिल होंगे। फ्रांस के नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास स्वागत, भारतवंशियों ने लगाए नारे। नीस के होटल पहुंचने पर विदेशी कलाकारों ने भारतीय परंपरागत नृत्य से सब कुछ चौंका। नीस में भारतवंशियों से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वागत से अभी दूर। आज शाम फ्रांस से स्लोवाकिया जाएंगे प्रधानमंत्री, 15 जून तक रुकेंगे, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। 1993 में स्लोवाकिया के आजाद देश बनने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा। 15 जून से नोएडा के जेवर एयरपोर्ट में शुरू होंगी उड़ाने, पर पहले साल में 50 लाख यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। साल 2026 के आखिर तक इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद। 15 जून से एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू होने से पहले पुलिस प्रशासन की तेज तैयारी। डीसीपी ने की एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों की सुविधा, ट्रैफिक प्रबंधन की पुख्ता इंतजामों का जायजा लिया। सीएसआई 2025 सर्वेक्षण में जामनगर एयरपोर्ट ने हासिल किया चौथा स्थान, 5 में से 4.96 अंक लेकर हुए आगे। उत्तर प्रदेश में टीचर्स के लिए आई गुड न्यूज, शिक्षकों को जल्द मिलेगा 5 लाख का कैशलेस इलाज। फाजिल्का पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी, बाबा भूमन शाह की पवित्र गद्दी पट्टी का मत्था। खूंटी में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ तेवड़ी मंदिर पहुंचे हेमंत सोरेन। उधम सिंह नगर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, गदरपुर में होने वाले इंटरनेशनल कायाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लिया। पवित्र आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में देखी फिल्म भारत भाग्य विधाता, कई कैबिनेट मंत्री सांसद विधायक मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देखी कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता, 26/11 के रियल हीरोज नर्सिंग स्टाफ का सम्मान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बहादुर नागरिकों और बचाव कर्मियों को किया सम्मानित, सभी ने मालवीय नगर और सैयद गुलाब चाप की दुखद घटनाओं पर लोगों की जान बचाने में असाधारण साहस का दिया परिचय। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की मौजूदगी में ई ऑटो से मसूरी की कठिन चढ़ाई वाले रास्तों पर संतोषजनक प्रदर्शन। एनटीए ने परीक्षा कर्मी योगी परीक्षा अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का किया लॉन्च। बद्रीनाथ 10,70,000 श्रद्धालुओं ने किए अब तक दर्शन, बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। भगवान विष्णु के जयघोष से गूंज रहा है पूरा धाम। गंगोत्री यमुनोत्री में भी रिकॉर्ड तोड़ पहुंच रहे हैं भक्त, आंकड़ा करीब 11.5 लाख के पार। गंगोत्री धाम में 5,88,862 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, जबकि यमुनोत्री धाम में 5,61,124 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। पर्वतीय क्षेत्रों में प्री मॉनसून की बौछारों की दस्तक के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था परंपार। 15 जून को सोमवती अमावस्या, गंगा स्नान के लिए अभी से उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हरिद्वार की सड़कों पर भारी संख्या में पहुंच रही हैं गाड़ियां, जैम जैसे हालात। सोमवती अमावस्या पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधनों के व्यापक इंतजाम। शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से स्नान संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वीकेंड पर सैलानियों से गुलजार हुए पहाड़, शिमला समेत सभी पर्यटक स्थल पर सैलानियों की भारी भीड़। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान और मॉल रोड में बड़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं पर्यटक। सैलानियों के साथ ही वाहनों में लगी लंबी कतारें, बीते 24 घंटों में शिमला में करीब 35,000 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी में भी भारी संख्या में देखने को मिल रही है। जून का आधा महीना बीत जाने के बावजूद डलहौजी में ठंड का एहसास। श्रीनगर मंडल झील में शिकारा सवारी करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के बीच पर्यटक लगातार कर रहे हैं झील का रुख, शिकारा राइड कर ले रहे हैं आनंद। वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए बारिश से ट्रैफिक जाम, हालांकि तापमान में गिरावट। हिमाचल प्रदेश की मंडी में कुल्लू हाईवे पर पर्यटकों की लंबी लंबी भीड़। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी, होटल में 80 से 85% ऑक्यूपेंसी। वीकेंड पर चारधाम यात्रियों और सैलानियों की भारी भीड़, देखिए वाहनों की लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर की पुंछ में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, पुंछ और जम्मू के बीच सड़क संपर्क बाधित। NH-144A पर गिरा पहाड़ों का मलबा, रास्ता साफ करने में जुटे प्रशासन। वाराणसी में अचानक बदल के मौसम का मिजाज, धूल भरी आंधी। देश भर में मानसून और आगे बढ़ने की उम्मीद, मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में और बारिश आंधी तूफान की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 का समापन हुआ, पंजाबी गायक जस्सी गिल ने बांधा समा। जस्सी गिल के सुपरहिट गानों पर झूमे युवा, देर रात तक चला कार्यक्रम। और जून से शुरू हुआ था शिमला समर फेस्टिवल, 5 दिन के उत्सव में कई कलाकारों ने परफॉर्म किया। समर फेस्ट में हिमाचल की पारंपरिक और सांस्कृतिक धरोहरों का शानदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के संभल में इस्कॉन की सेवाओं का शुभारंभ हुआ, कृष्ण भक्तों का लगा जमावड़ा। सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम किया ऐलान, जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी। डीआरडीओ को एक और उपलब्धि, हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण हुआ। दिल्ली में बिजली हुई महंगी, 1% से 3.5% तक बढ़े दाम, DERC ने मासिक का PPAC चार्ज खुद मंजूर। 500 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वालों पर बढ़ेगा बिल, 200-400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर छाए भट्ट कैंप की हॉरर मूवी हॉन्टेड 3। इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा को क्रिटिक्स से मिल रहा अच्छा रिस्पांस, ओपनिंग डे पर 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई। भारतीय सिनेमा के लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर RD बर्मन की बायोपिक की शूटिंग साल के अंत तक हो जाएगी शुरू, निर्देशक नीरज पांडे करेंगे डायरेक्ट। धमाल 4 का ट्रेलर रिलीज, 10 जुलाई को पर्दे पर रिलीज होगी फिल्म। OTT पर सनी देओल और अक्षय खन्ना होंगे आमने सामने, 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी इक्का।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो
10: भाई। अब देखते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
11: पानी की असली कीमत क्या होती है, इसका एहसास अक्सर जरूरत के वक्त ही हो जाता है। इस वीडियो में एक प्यासा बंदर बड़ी समझदारी के साथ नल के पास पहुंचता है, वो पहले नल को चलाता है और फिर गिरते पानी से अपनी प्यास बुझाता है। ये नज़ारा सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश भी देता है कि जल हर जीवन के लिए कितना जरूरी है। इंसान हो या जानवर, जीवन की डोर पानी से ही जुड़ी है। पिता और बेटी का रिश्ता भरोसे और प्यार से भरा होता है। इस वीडियो में एक पिता अपनी नन्ही बेटी के साथ खेलते खेलते उसे जादू दिखाने लगते हैं। चादर को ऊपर नीचे करने के दौरान वो अचानक नजरों से ओझल हो जाते हैं। अगले ही पल बेटी की मासूम आंखें उन्हें ढूंढने लगती है और वो बड़ी प्यारी आवाज में अपने पापा को बुलाने लगती है। ये भावुक और प्यारा पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है।

सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: क्या घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ।
1: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
2: परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: दिल्ली में यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में चला माँ यमुना स्वच्छता अभियान। यमुना के 28 घाटों पर सफाई करते नजर आए नेता। जम्मू में जम्मू हाई फाइव 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन हुआ। नौजवानों को फिटनेस और नशे से दूर रहने का दिया गया संदेश। डांस और कार्टून प्रदर्शनी से भी फिटनेस का संदेश। ज्येष्ठ माह की कृष्ण चतुर्दशी पर अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए सुबह से मंदिरों में लंबी कतारें। वीकेंड पर पहाड़ों में बड़ी सैलानियों की भारी भीड़। शिमला में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक सुहाने मौसम का ले रहे हैं आनंद। रायपुर में वाटर स्पोर्ट्स का महाकुंभ। सेंथ लेक में राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। देश भर के खिलाड़ी शामिल। G7 बैठक के लिए फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। आज मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक। 17 जून को ट्रंप से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अनोखी पहचान बनाई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जानवी कपूर है। जी हाँ, जानवी कपूर। बीते 4 जून को जानवी कपूर की पैदी फिल्म रिलीज हुई तो जानवी के किरदार को लेकर हंगामा मच गया। लोग फिल्म के निर्देशक बुच्ची बाबू की आलोचना करने लगे कि उन्होंने जानवी के फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाई किया है। जानवी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचता रहा लेकिन वो शांत रही। आखिरकार बुच्ची बाबू को फिल्म से उन दृश्यों को हटाना पड़ा।

0: है जो महफिल में बड़े बेपरवाह से अंदर से वो गुजरते हैं गहरी किसी राह से। इस जुमले में मौजूदा दौर की दिलकश अदाकारा जाह्नवी कपूर की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान जज्ब है। 4 जून को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई बुची बाबू की पेदी फिल्म ने पहले ही हफ्ते में बेशक 345 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया, लेकिन जबरदस्त कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को भी ट्रिगर कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर बौद्धिक गलियारों तक में चर्चा गर्म हो गई कि पेदी में जाह्नवी कपूर के किरदार को अनावश्यक रूप से सेक्सुअलाइज किया गया है, उनके फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। दरअसल पेदी में जाह्नवी कपूर ने अच्छी अम्मा का किरदार निभाया है। फिल्म के निर्देशक बूची बाबू के मुताबिक अच्छी अम्मा का किरदार खास तौर से फिल्म के हीरो रामचरण के किरदार पेदी के बदलाव को दिखाने के लिए गढ़ा गया है। कह सकते हैं कि इस तर्क की आड़ में बूची बाबू ने जाह्नवी कपूर की एक्टिंग से ज्यादा उनके फिगर को ग्लैमराइज कर दिया। जाहिर है महिला अधिकार संगठनों से लेकर नेटिजन्स तक ने सोशल मीडिया पर फिल्म के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। भारी विरोध को देखते हुए बूची बाबू को आखिरकार ऐसे सेंसुअलाइज दृश्यों को फिल्म से हटाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बूची बाबू ने अपना पक्ष रखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पेदी के कुछ दृश्यों पर मिली प्रतिक्रिया को मैं गंभीरता से लेता हूं। मैं पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगह महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाने का नहीं था। अगर फिल्म का कोई हिस्सा ऐसा लगा है तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, उनकी चिंताओं को समझता हूं और खुले दिल से माफी मांगता हूं। मैंने उन दृश्यों को बदलने का फैसला किया है जो आपत्तिजनक लगे हैं। साउथ की फिल्मों में हीरोइन के फिगर को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड करने का चलन आज का नहीं है। दक्षिण भारत के फिल्मों का ये पुराना ट्रेंड है। फिर भी जया बच्चन से लेकर आशिकी फेम अनु अग्रवाल, करीना कपूर और नेशनल अवार्ड विनर नित्या मेनन तक ने जाह्नवी कपूर को सेक्सुअलाइज करने का किसी न किसी रूप में कड़ा विरोध किया। पर कमाल तो यह है कि जिस अभिनेत्री के किरदार को लेकर इतना ज्यादा बच क्रिएट हुआ, उसने पूरे मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बताया कि इस फिल्म को करने का फैसला उन्होंने क्यों लिया।
1: I think apart from just my character, when I heard the script, I felt very strongly about what the film was saying.

चढ़कर तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर पहुंच रही थी। अगाध श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश के मंदिर में माथा टेककर फिल्म की सफलता का आशीर्वाद मांग रही थी।

0: 4 जून को जिस समय सिल्वर स्क्रीन पर अच्छियम्मा के सेंसुअल लुक्स को देखकर ऑडियंस क्रेजी हो रहे थे, उस वक्त जाह्नवी विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी में पूरी गरिमा के साथ भक्ति और अध्यात्म का कठिन रास्ता तय कर रही थी। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी में जाह्नवी की अगाध आस्था का एक छोर उनकी माँ श्रीदेवी की बेपनाह यादों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीदेवी न सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके पर बालाजी के दरबार में जाती थी, बल्कि जीवन के बिजी शेड्यूल के दौरान भी जब मौका मिलता तो उनका जाप करती थी। जाह्नवी तिरुपति बालाजी के प्रति अपनी माँ की श्रद्धा, आस्था और समर्पण से वाकिफ थी। इसीलिए 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी के मृत्यु के बाद माँ के हर जन्मदिन पर 13 अगस्त को वहाँ जाने का फैसला कर लिया।
1: आई थिंक तिरुपति से स्पेसिफिकली एक अलग जुड़ाव है। आई थिंक बचपन से मैं सुनती आई हूँ मम्मा के मुँह से कि उनका भी एक अलग कनेक्शन रहा है बालाजी के साथ। हर बार उनका नाम जाती थी, नारायण नारायण नारायण, और कहती रहती थी कि हर साल उनके बर्थडे पर जब वो काम कर रही थी तो वो तिरुपति चढ़कर जाती थी। और शादी के बाद उन्होंने बंद कर लिया था, तो उनके गुजरने के बाद मैंने ठान लिया था कि हर साल उनके बर्थडे पर मैं जाऊंगी। तो जब पहली बार गई थी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी और बहुत शांति मिली मन में। तो उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि हर बड़े अवसर के पहले मैं तिरुपति चढ़ूंगी।
0: जाह्नवी और श्रीदेवी का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी के परंपरागत संबंधों तक सीमित नहीं है। श्रीदेवी के गुजर जाने के 8 साल बाद भी उनकी यादें, उनका स्नेह, प्यार सब जाह्नवी की जिंदगी की प्रखर धूप में छायेदार वृक्ष की सुरभित बयार की तरह सुखद एहसास करा जाता है। ये एक ऐसा अलौकिक रिश्ता है जहां एक के जाने के बाद भी दूसरे को उसके आने का इंतजार है।
1: आई वॉन्ट टू रिमेम्बर द गुड थिंग्स। तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज में बात करती हूँ उनके बारे में और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही। मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था। आई थिंक इट मेक्स मी फील लाइक मे बी लाइक आई डोंट नो शी इज ट्रैवलिंग समवेयर एंड शी विल कम बैक।
0: कुछ तो अलौकिक है माँ बेटी के रिश्ते में। जाह्नवी के जन्म के बाद श्रीदेवी आनंद की अलौकिक अनुभूति से सराबोर हो उठी थी। उन्हें तब ये नहीं लगा था कि उनकी गोद में कोई नन्ही नई मेहमान आई है, बल्कि ये लगा था मानो सदियों पहले बिछड़ा कोई अपना ही दोबारा से लौट कर दामन से लिपट गया है। श्रीदेवी ने अपनी बेटी का जाह्नवी नाम भी किसी खास एहसास से भर कर दिया था। दरअसल जाह्नवी 1997 में रिलीज हुई जुदाई फिल्म का एक करेक्टर था, इत्तेफाक से जिसे श्रीदेवी ने नहीं बल्कि उर्मिला मानतोड़कर ने निभाया था। कमाल देखिए कि जुदाई 28 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी और जाह्नवी का जन्म उसके ठीक 6 दिन बाद 6 मार्च 1997 को हुआ। आपको बता दें कि जाह्नवी गंगा नदी का एक पर्यायवाची शब्द है जो अपनी पवित्रता और निर्मलता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीदेवी अपनी बेटी में गंगाजल जैसी पवित्रता और निर्मलता का भाव रखती थी। 80 और 90 के दशक की मेगा स्टार श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जीवन में जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा, जो परेशानी उन्हें उठानी पड़ी, वो उनकी बेटियों को उठानी पड़े।
1: वो हमेशा कहती थी मुझे कि मैंने जिंदगी भर मेहनत की है 4 साल की उम्र से ताकि आप मेरे दोनों बच्चे आराम की जिंदगी जिए। ये जिंदगी वो मानती थी कि हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम सख्त किस्म के इंसान तो है नहीं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो उनका ये सपना था कि मैंने इतना कुछ किया ज़िंदगी में और अगर मैं मेरी बेटियों को आराम की ज़िंदगी नहीं दे पा रही और वो खुद इस चीज़ में कूद रहे हैं तो मैंने किया ही क्या है लाइफ में। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं मरी जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लो, कूद जाओ इस कुएं में।
0: साफ है कि जाह्नवी का फिल्मों में

0: करियर बनाने का फैसला माँ को पसंद नहीं था। श्रीदेवी चाहती थी कि जाह्नवी डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों की सेवा करें, लेकिन जाह्नवी ने जब अपनी मंशा साफ कर दी कि एक्टिंग के सिवा वो कुछ और कर ही नहीं सकती, तो श्रीदेवी ने अच्छा एक्टर बनने के लिए बेटी को कुछ टिप्स दिए। श्रीदेवी ने जाह्नवी को जो टिप्स दिए वो अभिनय के पेशे को गरिमा से भर देने वाला है।
1: You know, she always used to say कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। And because the cameras are smart, I feel like if you're not a good person, then it shows, everything feels fake. And she used to say, अगर दिल में गंदगी है या अगर you know, if you're not able to live your character's feelings genuinely, then it shows. So that's one thing, and I think that it's ever since I was a kid, mom and dad have like drilled in my head, you need to be dedicated and be focused. So like you said, there's no substitute for hard work.
0: जाह्नवी डॉक्टर बनने की माँ की ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर पाई, लेकिन हर कसौटी पर अच्छा इंसान बनने की माँ की इच्छा पूरी करने की भरसक कोशिश आज भी करती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर या एक्ट्रेस के बीच एक हेल्दी कंपटीशन तो चलता ही रहता है, लेकिन कई बार तो अनहेल्दी भी बन जाता है। पर जाह्नवी इस अनहेल्दी कंपटीशन से कोसों दूर हैं। उनसे ये पूछिए कि आप किस एक्ट्रेस को अपनी चुनौती मानती हैं, तो वे सह अस्तित्व की बात कह के सबका मुंह बंद कर देती हैं।
1: ये चुनौतीपन क्यों, क्योंकि हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? नहीं, ये शायद दूसरे लोगों के दिमाग में है। मुझे ऐसे लगता है कि हम सब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं, और हम सब एक दूसरे के लिए खुश भी है और हो सकते हैं, और एज लॉन्ग एज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ, मुझे यू नो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, मैं एज एन ऑडियंस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए।
0: दरअसल जाह्नवी से सवाल सारा अली खान और अनन्या पांडे को लेकर पूछा गया था। जाह्नवी की मैच्योरिटी, उनकी तरबियत, मानवीय संवेदना, सोच और संस्कार आज की जेंजी या मिलेनियल्स के लिए अद्भुत प्रेरणा है। एक ऐसी लड़की जो इंडस्ट्री की अत्यंत प्रभावशाली फैमिली का हिस्सा है, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ उसे मिल सकता था, पर श्रीदेवी और बोनी कपूर की इस लखते जिगर ने पारिवारिक साये से निकलकर मेहनत और लगन से अपनी शख्सियत को गढ़ा है।
2: जाह्नवी का अपनी मां श्रीदेवी से रिश्ता अनोखा और अलौकिक है। श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जो कष्ट उन्होंने झेला है वही उनकी बेटियों को भी झेलना पड़े, लेकिन जाह्नवी ने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि वो अपनी शख्सियत को संघर्ष की भट्टी में तपकर गढ़ेंगी। इसलिए उन्होंने अपने को स्थापित करने के लिए दूसरे कलाकारों से कहीं ज्यादा मेहनत की।

0: बेदी फिल्म से अलग तरह से सुर्खियों में आई जाह्नवी कपूर का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मुख्तसर से फिल्मी करियर में उन्होंने ऑडियंस के साथ ही क्रिटिक्स को भी अपने अभिनय के दम पर गहरे प्रभावित किया है। 6 मार्च 1997 को मुंबई में पैदा हुई जाह्नवी को जन्म से ही अभिनय के संस्कार मिलने लगे थे। अभिनय की बारीकियां उन्होंने बेशक अमेरिका के लॉस एंजलिस के द ली स्टारबर्ग थिएटर एंड फिल्म्स इंस्टीट्यूट से सीखा, लेकिन उसका कगहरा उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी और पिता बोनी कपूर से होश संभालने के बाद से ही सीखना शुरू कर दिया था।
1: Actually, in my family, it's the only thing that we discussed. It's the only thing that we knew as kids. Every time we'd, you know, sit at home and have a conversation with one another, it was always about films. Or even when we'd go out to spend time together, we'd go out to watch a movie, and you know, it was always a conversation at home. Holidays were always either dad's shooting schedules or mom's shooting schedules. So it was. We've grown up in that environment.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीदेवी और बोनी कपूर जैसी इंडस्ट्री की नामवर हस्तियों की बेटी होने की वजह से जाह्नवी को सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक पाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मनीष मल्होत्रा कपूर परिवार के फैमिली फ्रेंड थे, जो इत्तेफाक से करण जौहर जैसे इंडस्ट्री के स्टालवार्ट के भी करीबी थे। मनीष जाह्नवी को बचपन से जानते थे, लिहाजा उनके भीतर के पोटेंशियल को लेकर वो अक्सर करण से चर्चा करते रहते थे। करण जौहर निर्देशक शशांक खेतान के साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें उन्हें भारतीयता से भरी हुई एक हसीन और नए चेहरे की तलाश थी। इस दौरान जाह्नवी मनीष मल्होत्रा के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस आने जाने लगी थी। इसी बीच शशांक खेतान की नजर जाह्नवी पर टिक गई और उन्होंने बिना किसी लांग लपेट के फैसला कर लिया कि धड़क के लिए जिस लड़की की तलाश थी उसके लिए जाह्नवी पूरी तरह फिट हैं। उसके बाद जाह्नवी को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया।
1: मैं जाती थी उनके ऑफिस, आई थिंक 3-4 सीन्स दिए उन्होंने मुझे, और मैं जाके रट लेती थी और फिर परफॉर्म करती थी उनके लिए।
0: धड़क साइन करने के बाद जाह्नवी को एक अज्ञात डर सताने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि सेट पर लोग यही सोच रहे होंगे कि स्टार किड होने की वजह से ही उन्हें काम मिला है। इस डर की वजह से जाह्नवी इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो गईं। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मुझे जो मिल रहा है दरअसल मैं उसके लायक नहीं हूँ। इसीलिए वो सेट पर दूसरे कलाकारों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करती थी और पूरी यूनिट के साथ काफी हम्बल भी रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी को सेट पर आने से भी रोक दिया था, ताकि कोई ये ना कहे कि अपने जमाने के स्टार माँ बेटी की कमतरी को कवर करने के लिए आई हैं।
1: मेरे लिए ऐसा था कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और इसलिए लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, अब मैं ये अपने आप करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मदद मत कीजिएगा, आप सेट पे मत आइएगा प्लीज। तो मैं उनको सेट से दूर रखती थी।
0: माँ श्रीदेवी को सेट से दूर रखकर जाह्नवी धड़क की शूटिंग के दौरान पूरी जान झोंक रही थी, ताकि प्रीमियर में माँ जब बेटी की एक्टिंग देखे तो आह्लाद से ओत प्रोत हो जाए। पर जाह्नवी की उम्मीद की कश्ती जब साहिल के करीब पहुँचने ही वाली थी, उसी वक्त अचानक आए भयानक तूफान ने सतरंगे सपनों की रानाइयों को तहस नहस कर दिया। धड़क फिल्म की रिलीज से करीब 5 महीने पहले 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथ टब में दुर्घटनावश डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई। एक झटके में जाह्नवी की जिंदगी सन्नाटे में चली गई। धड़क फिल्म के प्रमोशन का उत्साह भी नहीं बचा। उस दौरान श्रीदेवी को लेकर जाह्नवी से जब कोई सवाल पूछा जाता तो वो दर्द की कशिश में ऐसे डूब जाती कि एक गहरी खामोशी के सिवा दूसरा कोई जवाब निकल ही नहीं पाता था।
1: उनके बारे में शायद अभी ज्यादा बात करने लगी हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप आई लाइक टॉकिंग अबाउट, आई फील लाइक आई एम रिमेम्बरिंग हर, यू नो। लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत होता था। आई थिंक जब मैं धड़क प्रमोट कर रही थी there wasn't a lot of time that had passed. वो बहुत फ्रेश था मेरे दिमाग में सब कुछ, और मैं भाग रही थी मेरे सच्चाई से और मैं काम को इस्तेमाल कर रही थी, सो दैट वॉज माई एस्केप। और जब भी कोई भी प्रोफेशनल सिनारियो में वो मुझे रिमाइंड करते थे कि शी इज़ नो मोर. आई थिंक मैं बिल्कुल शट, लाइक आई जस्ट कुडंट डील विद इट.
0: 20 जुलाई 2018 को रिलीज हुई धड़क में पार्थवी सिंह राठौर नाम की मध्यम वर्गीय लड़की के किरदार को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया, लेकिन जाह्नवी अब भी मां की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी. करीब 2 साल तक जाह्नवी पर्दे पर नजर नहीं आई. 12 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में जाह्नवी धड़क की पार्थवी के उलट एक अलग ही मिजाज और अंदाज में दिखी. एयरफोर्स की पायलट गुंजन सक्सेना के वास्तविक जीवन पर बनी फिल्म में जाह्नवी ने उनकी जिंदगी की बारीकियों को इतनी जहनियत के साथ पर्दे पर उकेरा कि दर्शक और समीक्षक दोनों अभिभूत हो गए. दरअसल मां की मौत के सदमे से उबरने की जद्दोजहद में जाह्नवी के दिलो दिमाग में ये एहसास गहरे उतर गया कि जिंदगी खुद में एक कड़ा इम्तहान है और इस इम्तहान से भागना समाधान नहीं है.
1: I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that jitna bhi mushkil ho, ye daur ko bhi guzarna hi hai. Aur jab ye daur guzrega, aap aur bhi you'll emerge out of it stronger. Aap aur bhi usse ubhar ke nikloge.
0: इस फलसफे को अपनाने के बाद जाह्नवी ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी. मिली, बवाल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मिस्टर एंड मिसेज माही, देवरा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों के जरिए जाह्नवी ने इंडस्ट्री में अपनी मां की कमी को भरसक पूरी करने की कोशिश की है.
2: तो बंदे में है दम में आज आपने जाह्नवी कपूर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना. अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ. तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे.
3: क्या घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ.
4: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
8: गुड न्यूज टुडे.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
10: दिल्ली में यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में चला मां यमुना स्वच्छता अभियान, यमुना के 28 घाटों पर सफाई करते नजर आए नेता। जम्मू में जम्मू हाई फाइव के मैराथन का आयोजन हुआ, नौजवानों को फिट रहने और नशे से दूर रहने का दिया गया संदेश, डांस और कार्टून प्रदर्शनी से भी दिया गया फिटनेस का संदेश। देश माह की कृष्ण चतुर्दशी पर अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सुबह से मंदिरों में लंबी कतारें। वीकेंड पर पहाड़ों में बढ़ी सैलानियों की संख्या, शिमला में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, सुहाने मौसम का कर रहे हैं दीदार। रायपुर में वाटर स्पोर्ट्स का महाकुंभ, सेंट लेक में राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, देश भर के खिलाड़ी शामिल हुए। G7 बैठक के लिए फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, आज मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक, 17 जून को ट्रंप से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री।

0: स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दिनांक 14 जून 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दोपहर 12:19 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के 10:13 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना बहुत आवश्यक है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। कि घर की पॉजिटिव एनर्जी और शुभता के लिए पूजा घर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों हमें अपने घर में पूजा स्थान बनाना चाहिए? देखिए, किसी भी घर में या किसी भी व्यक्ति के अंदर दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है, शुभ ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी और अशुभ ऊर्जा निगेटिव एनर्जी। घर में शुभ ऊर्जा बनी रहे, शुभ ऊर्जा हमेशा चलती रहे, इसके लिए घर में पूजा स्थान का होना आवश्यक है। घर में अगर आप एक विशेष स्थान पर, फिक्स जगह पर पूजा स्थान बनाते हैं, वहां नियमित रूप से बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो तमाम तरह की समस्या अपने आप दूर हो जाती है। घर में पूजा घर होने से स्वास्थ्य की समस्या और मन की समस्या का निवारण, इसका इलाज जल्दी होता है। घर में पूजा घर रखा जाए और उसका ध्यान दिया जाए तो घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है और घर के लोगों में आपसी तालमेल भी बना रहता है। यानी अगर घर में पूजा स्थान होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, घर के लोगों में प्रेम रहेगा। आप घर में मंदिर बनाएं या पूजा स्थान बनाएं तो इसका फायदा तभी होगा जब इसकी स्थापना थोड़ा सोच समझकर नियमों के हिसाब से करें। सही तरीके से घर में मंदिर बनाएं, देवी देवताओं की स्थापना करें और निरंतर पूजा करके, निरंतर प्रार्थना करके मंदिर या पूजा स्थान को अपने जागृत बनाए रखें। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की समस्या हल होगी, संतान की चिंता दूर होगी। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बहुत सारे लोग स्वयं से अपनी अकल लगाने लगते हैं कि इस स्थान पे पूजा बनाएंगे, उस स्थान पे ये रंग रखेंगे। देखिए, मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पूजा स्थान पे बैठेंगे तो उस रंग के संपर्क में रहेंगे, तो वो रंग मन पर कैसा असर डालता है ये पूजा में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो रंग और स्थान कैसा होगा, देखिए, सामान्य रूप से पूजा घर अगर संभव है तो पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में होना चाहिए, पूरब उत्तर के कोने में। अगर ईशान कोण में ऐसा नहीं कर पाते तो पूर्व दिशा थोड़ी सी भी अगर आपको मिल रही है आपके पूजा घर में तो अच्छा रहेगा। अगर फ्लैट में है तो दिशा का कोई मतलब ही नहीं है। फ्लैट में है तो सिर्फ सूर्य के प्रकाश का ध्यान रखिए कि जब सुबह दरवाजा खोलें, खिड़कियां खोलें, तो सूर्य का प्रकाश आपके पूजा घर तक थोड़ा बहुत आता रहे। पूजा का स्थान एक ही फिक्स रखिएगा, नियत रखिएगा, उसको बार बार मत बदलिए कि आज इस कमरे में पूजा कर रहे हैं, कल उस कमरे में कर रहे हैं, परसों ड्राइंग एरिया में कर रहे हैं। ऐसा ना करें। जब आप एक ही जगह पर निरंतर बैठकर पूजा रेगुलर करेंगे तो वहां की तरंगे बड़ी शक्तिशाली, बड़ी फायदेमंद हो जाएंगी। पूजा स्थान का रंग अगर आप दीवारों पर करना चाहते हैं तो हल्का पीला, हल्का नारंगी भी रख सकते हैं, या पूरी तरह से सफेद रखिए, श्वेत रखिए, गाढ़े रंग के प्रयोग से बचिएगा। आजकल एक फैशन है कि लकड़ी या मार्बल का पूजा घर लोग लाते हैं और उसके ऊपर गुंबद लगा होता है। देखिए, गुंबद बड़े मंदिरों में फायदेमंद होता है क्योंकि जब आप बड़े मंदिर में जाते हैं तो गुंबद के नीचे बैठ के मंत्र जप करते हैं तो तरंगों का लाभ होता है। अब घर में छोटा सा पूजा घर बनाया है, उस पर गुंबद लगा हो ना लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तिकोना या गुंबद वाला मंदिर लगाने के बजाय केवल पूजा की एक छोटी सी जगह बना दें, घर के मंदिर में या घर के पूजा स्थान में गुंबद का कोई महत्व नहीं है क्योंकि आप उसके नीचे बैठ नहीं सकेंगे। इसीलिए घर में एक चौकी या एक बॉक्स बनवा लें बढ़िया सी, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर देवी देवताओं की स्थापना करके वहीं पर इत्मीनान से बैठ करके पूजा करिएगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की चिंता हो सकती है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता आपकी हो सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, जो पूजा स्थान आप बनाते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहां से ऊर्जा कैसी लेनी है आपको, किस तरह की एनर्जी ग्रहण करनी है और कैसी कामनाएं पूरी करनी है। तो पहले आपको बताया कि जो गुंबद वाले मंदिर की आकृति होती है उसको रखने के बजाय पूजा का एक साफ सुथरा स्थान बनाइए और पूजा के स्थान पर देवी देवताओं की भीड़ मत लगाइए कि कहीं भी गए देवी देवता का चित्र लाए और पूजा स्थान पे लगाते चले गए, ये मत करिए। जिस देवी या देवता की मुख्य रूप से आप पूजा करते हैं उनके चित्र की या मूर्ति की स्थापना एक आसन या चौकी पर करिएगा, पूजा स्थान के बीचों बीच में। बाकी देवी देवताओं की मूर्तियों को या उनके चित्र को बगल में स्थापित कर सकते हैं। अगर मूर्ति की स्थापना करनी है तो ये 12 अंगुल से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी लगभग आधा फिट। चित्र कितना भी बड़ा हो सकता है। अपने घर के पूजा स्थान पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल भरकर जरूर रखें। रोज सुबह जब पूजा करें तो पानी भरकर एक पात्र में रख दें, अगले दिन सुबह उस जल को पौधे में डाल दें और फिर से साफ पानी भर करके पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, करियर में तनाव हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। गुड़ का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, कोई यात्रा इस समय हो सकती है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, घर के पूजा स्थान में लोगों की मान्यता है कि मां काली का और भगवान भैरव का चित्र या मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। ऐसा नहीं है, आप मां काली का चित्र भी लगा सकते हैं और भगवान भैरव का चित्र भी लगा सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि घर में मां काली या भगवान भैरव की उग्र पूजा मत करिएगा। घर के पूजा स्थान पर शनि से संबंधित कोई चित्र, शनि से संबंधित कोई मूर्ति या शनि से संबंधित कोई यंत्र, ये आपको नहीं लगाना है। शनि देव का चित्र, मूर्ति या यंत्र लगाना पूजा स्थान पर और नियमित उसका दर्शन करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। वैसे आप अपने पूजा स्थान पर बैठकर रोज शनि देव का मंत्र पढ़िए, रोज शनि चालीसा पढ़िए, अच्छा है, लेकिन शनि देव का चित्र लगाना, यंत्र लगाना उचित नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग आजकल आधुनिकता के नाम पर अपने घर में पूजा स्थान नहीं बनाते। तो जिन घरों में पूजा स्थान नहीं रहता या पूजा स्थान बना तो लिया है, उसमें धूल जमे जा रही है, कभी दीपक नहीं जलाते, पूजा स्थान का ध्यान नहीं रखते, वहां पर उन घरों में बीमारी बहुत होती है और उन घरों में धन की बहुत सारी बर्बादी होती है। आपके घर में पूजा स्थान आपके सामर्थ्य के अनुसार जरूर होना चाहिए और पूजा घर की नियमित साफ सफाई भी जरूर होनी चाहिए। देखिए, कोई मुकदमा बड़े लंबे समय से चल रहा है, हल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए मंदिर में जाके या घर में। इसके बाद उनके सामने बैठ करके राम नाम का 108 बार जप करिए, राम राम राम। तो श्री राम के नाम का 108 बार जप करें, ये रोज करें और हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं। 3 महीने निरंतर ये उपाय करें, मुकदमे की समस्या से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा।
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What you got for me, Jack?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
10: इस दुनिया में कोई हमसे पूछे कि बेहतरीन श्रोता कौन है,

दुनिया में बेहतरीन श्रोता अगर कोई है वो एक, और कोई पूछे कि बहुत अच्छा कोई वक्ता बताओ, VIP वाला, दुनिया का सबसे बेहतरीन वक्ता अगर कोई हुआ वो भी एक।

सुंदर कांड कहता है दुनिया का सबसे बेहतरीन वक्ता है तो वो एक ही है, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, जिनका नाम है बजरंग बली। वो दुश्मनों में मचा देते हैं खलबली, उनके सामने किसी की नहीं चली। जिनका नाम बजरंग बली, और तो और इनकी शरण में जो भी आया उसकी हर विपदा टली। इसलिए लोग इनको क्या कहते हैं, बजरंग बली। ऐसे वीर हनुमान, अनंत बलवंत परम संत भगवंत, हमारे प्रिय। देखो मेरे पागलो, याद रखना हनुमान जी की सबको जरूरत है। हनुमान जी का नाम पवन पुत्र है, हर पवन का मतलब हवा, जिसका हवा ना मिले पति गयो। जिसको पवन ना मिले बोले का हो गया, राम नाम सत्य है। हनुमान जी भी कौन, अंजनी पुत्र गाओ।

ऐसे श्री हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, द्वारकानुनाथ के चरणों को प्रणाम करते हैं, दादा सोमनाथ को प्रणाम करते हैं। मेरे प्रिय जनों, जिस भूमि पर बैठे हैं, ये वीरों की भूमि है, संतों की भी भूमि है, यही वो भूमि है जब पाकिस्तान के शरणार्थियों को कोई, पाकिस्तान से आए हुए सिंध के हमारे हिंदू भाइयों को कोई जगह नहीं मिल रही थी, उसी का नाम है गांधी धाम। और मेरे पागलो, हमें बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है, जहां एक तरफ पातालिया हनुमान है जिनकी कोई थाह नहीं, एक तरफ समुद्र है वो भी अथाह है, उसकी भी तो कोई थाह नहीं। ऐसे पावन क्षेत्र की भूमि पर गांधीधाम, कच्छ गुजरात के अंतर्गत गांधीधाम, और मेरे प्रियजनों ये वही गांधीधाम है जो कच्छ की आर्थिक राजधानी थी। आर्थिक राजधानी कहा जाए तो बुरा नहीं, यहां खूब धनपति विराजमान और होना भी चाहिए, भगवान की कृपा खूब होनी चाहिए। ऐसी पावन भूमि जहां भारेश्वर महादेव भी है, यही वो गांधीधाम है जहां पूर्णेश्वर मंदिर की चर्चा पूरी दुनिया में जानी जाती है, जिसका नाम ही है पूर्णेश्वर, जो पूर्ण है। ऐसी पावन धरती गांधीधाम पर यहां की रज को हम अपने मस्तक पर लगाकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे दक्षिण भाग में यहाँ के सभी संत भगवान विराजमान है, आचार्य चरण विराजमान है, सभी संतों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम स्वीकार हो गए। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करते हैं, एवं तीनों पंडालों में आज बरसात हो गई, बैठने की बड़ी असुविधा है। और हमको अभी यजमान जी बता रहे थे, बोले गुरु जी ऐसा आज तक कच्छ में हुआ ही नहीं, इन दिनों में वर्षा हो जावे। हमने कहा हमारे जैसा उपद्री आएगा तो उपद्रव तो होगा ही होगा। हमारे जैसा उपद्री आएगा उपद्रव तो, बारिश भी हुई पर कह रहे थे थोड़ा थोड़ा बर्फ भी गिरी, अद्भुत हो गई साहब, वो भी कच्छ में। कोई नहीं, देखो कथा से मन का मैल धुलता है, जल से तन का मैल भी तो धुलता है, दोनों पवित्र आवश्यक हैं, तन भी पवित्र होना जरूरी है, मन की पवित्रता भी जरूरी। और याद रखो इंद्र, सुनो मेरे प्यारे, तुम जल बरसा कर लोगों का तन धोओगे तो हम हनुमान जी की कथा की अमृत बरसा करके मन धोने का काम करें। दोनों एक ही बिरादरी के हैं, चलेगा, बोलो सीताराम। तो तीनों पंडालों में जो जहां बैठे हैं, कुछ वीआईपी विराजमान है इस तरफ। अच्छा, वीआईपीओं का जीवन बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा अद्भुत। सबसे बाद में आना है, सबसे आगे बैठना, वीआईपी बहुत अद्भुत, इन पर भगवान की बड़ी कृपा थी। और इनको नो डिस्टर्ब जोन में बैठना, इनके कारण कोई डिस्टर्ब हो इन्हें लेना देना नहीं। अच्छा, ये हंसेंगे भी खुल के नहीं, इनकी मुस्कुराहट भी इतनी वीआईपी, और ताली तो ये बजा ही नहीं सकते, वरना इन्हें लगेगा कि हम में और इनमें क्या अंतर। नहीं नहीं, बजाना नहीं, आपको नहीं बजाने को बोला हमने बाप जी, इनकी ताली भी इतनी तेज। कुछ वीआईपी तो हमने देखे कि जैसे घर से एकदम लुगाई से लड़के, विनोद है, बुरा मत मानना, आप सब हमारा परिवार हो, विनोद की चर्चा है। तीनों पंडालों में जो जहां विराजमान, यहां आचार्य चरण, कुछ लोग आगे बैठे पीछे खड़े हुए हैं, बैठने की असुविधा है। हम आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ

0: जीवन में होगा कमाल, किसका होगा हाल बेहाल, और कौन सी राशि के लोग होंगे माला माल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
1: यू शुडन्ट हैव टू चूज़ बिटवीन स्पीड, रिलायबिलिटी एंड वैल्यू। विथ स्पेक्ट्रम फाइबर पावर्ड इंटरनेट यू गेट ऑल थ्री फॉर जस्ट $40 अ मंथ। नो कॉन्ट्रैक्ट्स, नो कमिटमेंट। Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: पक रही होती खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
10: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
11: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवाने, इस उम्र में फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
12: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
13: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
14: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
15: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
16: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
17: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
18: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
19: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
20: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
19: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
21: You're listening to MSNBC.
19: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
22: के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
24: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
25: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
24: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
26: और दुर्भाग्य कहता है
27: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
25: अविश्वास में विश्वास बसता है,
24: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
24: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
18: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
24: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
25: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
24: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
26: और दुर्भाग्य कहता है
27: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
25: अविश्वास में विश्वास बसता है,
27: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
27: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
10: दिल्ली में यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में चला मां यमुना सच अभियान। यमुना के 28 घाटों पर सफाई करते दिखे नेता। जम्मू में जम्मू हाई फाइव 5K मैराथन का आयोजन। नौजवानों को फिट रहने और नशे से दूर रहने का दिया गया संदेश। डांस और कार्टून प्रदर्शनी से भी दिया गया फिटनेस का संदेश। वीकेंड पर पहाड़ों में बढ़ी सैलानियों की भारी भीड़। शिमला में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक सुहाने मौसम का ले रहे आनंद।

0: कैनोइंग चैंपियनशिप का आयोजन देश भर के खिलाड़ी हुए शामिल। विमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में भारत का आज पहला मैच एजबिस्टन में पाकिस्तान से महामुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। बेटियां भी लाएंगी विश्व कप। G7 बैठक के लिए फ्रांस पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। आज मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बैठक। 17 जून को ट्रंप से भी मिलेंगे पीएम।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

सुकोई 30 एमकेआई, मिग 29 फाइटर जेट, एमआई जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर, S-400 जैसा बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम, INS विक्रमादित्य जैसा विशाल एयरक्राफ्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और रूस रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। दुनिया में बहुत उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती कभी भी रुकी नहीं, कभी भी थमी नहीं। आज भी रूस भारत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है।

0: रूस ने भारत को अपना पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट ऑफर किया है। साथ ही रूस ने भारत को ये प्रस्ताव भी दिया है कि वो अपने फाइटर जेट Su-57 की टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा।
1: भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है।
0: रूस की पेशकश सिर्फ विमान बिक्री तक सीमित नहीं है। प्रस्ताव में संवेदनशील सोर्स कोड तक पहुंच, व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की जरूरतों के अनुरूप दो सीटों वाले Su-57D वेरिएंट के विकास की संभावना भी शामिल है। ये भारत को स्वदेशी हथियार, सेंसर और एवेनिक्स को बिना किसी विदेशी मंजूरी के विमान में इंटीग्रेट करने की स्वतंत्रता देता है। रक्षा क्षेत्र में इस रफ्तार का तकनीकी हस्तांतरण बेहद दुर्लभ माना जाता है।

0: देखा जाए तो समय में रशिया के साथ जो बातचीत चल रही है, जहां पर SU-57 का सोर्स कोड TOT यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करना, भारत में व्यापक प्रोडक्शन करना और देश की जरूरत के हिसाब से 2-सीटर SU-57 का ऑफर देखें तो कई तरह से अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके द्वारा आज जो भारत के अंदर ही प्रोडक्शन होगा, HAL इसमें समर्थ है कि रशिया के द्वारा ऑफर की हुई टेक्नोलॉजी को हम बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करके बना सकते हैं। दूसरी बात, ये ट्रस्टेड है, टेस्टेड है। तीसरी बात यह है कि ये आज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से और कोड ट्रांसफ़र की वजह से आज हमारा जो अपना है अस्त्र है, रुद्रम है, जो मिसाइल सिस्टम है, सर्विलेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, इसको इसके ऊपर इंटेग्रेट कर सकते हैं।
1: का रिश्ता सिर्फ रक्षा खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है, दोनों देश संयुक्त शोध और तकनीकी विकास पर भी साथ काम करते हैं और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

0: हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे।
1: भारत को रूस से Su-57 या S-500A डिफेंस खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि नए भारत ने हमेशा राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। भारत एक संप्रभु देश है, वो उन उत्पादों को चुनने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें वो अपने लिए सबसे आधुनिक और सबसे उपयुक्त मानता है।

दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह ये है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है, और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे।

भारतीय वायुसेना की पांचवी पीढ़ी के विमान की तलाश और AMCA में देरी के बीच Su-57 का प्रस्ताव भारत रूस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दे सकता है।

0: चीन ने पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट दे दिया है और चीन का ये ऑफर अब पुतिन के लिए संभावनाएं खोलता है कि वो जल्दी से जल्दी भारत को भी इसी तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दे। वैसे अभी तक S-400 रूस की तरफ से मिल चुका है और अगर Su-57 को लेकर रूस और भारत के बीच साझेदारी होती है, इस पर काम होता है, तो यकीन मानिए ये दोनों देशों के बीच में एक नया रक्षा समझौता और साथ ही साथ साझेदारी साबित होगी। अगर भारत Su-57 प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इसके कई फायदे होंगे। स्वदेशी उत्पादन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन और तकनीकी ज्ञान में इजाफा होगा, भविष्य में AMCA को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। भारत अपनी स्वदेशी क्षमता को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए हर विदेशी सौदा ऐसा होना चाहिए जो आत्मनिर्भरता को बढ़ाए न कि कम करे।
1: अगर भारत और रूस मिलकर Su-57 प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो देखा जाए तो एक जब बड़ी इंडस्ट्री खुलती है तो इससे एक पूरा सिस्टम ही बदली हो जाता है, एक नेक्स्ट गैप अप हो जाता है। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी भारत को, भारत को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक जनरेशन होगा, इंसिलर इंडस्ट्री खुल जाएंगी, साथ साथ में मैन पावर एक ट्रेन हो जाएगी इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में, सोच बदली हो जाएगी, हमारी ऑपरेशन डॉक्ट्रिन बदली हो जाएगी, एक्सपोर्ट के लिए हमको बेस मिल जाएगा और देश में बनने से एक हम कई टेक्नोलॉजी को अपने एमका के लिए या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर जॉइंट वेंचर होता है तो उसका एक बहुत फायदा होता है क्योंकि कई पश्चिमी देश इसके लिए तैयार नहीं होते।

0: रूस के Su-57 के ऑफर से सवाल उठता है कि क्या भारत आने वाले दशक में चीन के तेजी से बढ़ते एयर पावर का मुकाबला करने के लिए रूस की तरफ लौटेगा या फिर पूरी ताकत अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर लगाएगा। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान AMCA 2035 से पहले तैयार होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चीन G20 के साथ अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, पाकिस्तान लगातार उसका साथ दे रहा है, ऐसे में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की फ्लीट एक तो कम हो रही है और दूसरा चीन के मुकाबले थोड़ी कमजोर साबित होती है। बढ़ती चुनौतियों के बीच वायुसेना को एक ब्रिज गैप फाइटर की जरूरत है जो दुश्मन के स्टेल्थ विमानों, एडवांस एयर डिफेंस और आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सके। Su-57 इसी गैप को भरने का मजबूत विकल्प बन सकता है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका कॉम्बैक रेंज 3500 किलोमीटर है। करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस फाइटर जेट की सीलिंग रेंज यानी कि ऊंचाई पर जाने की क्षमता 65,000 फीट है, जो अपने साथ करीब 10,000 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। बेहतर स्टेल्थ क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस Su-57 हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। पुतिन का Su-57 का ऑफर केवल एक हथियारों की डील भर सीमित नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक संदेश भी है। पुतिन दरअसल दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि रूस और भारत आज भी रक्षा के क्षेत्र में साझेदार है और दोनों देशों की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या भारत को एक बार फिर से रूस के साथ आना चाहिए, यानी 2018 में जिसे वो पीछे छोड़ चुका है, क्या वापस उसी रास्ते पर चलना चाहिए। भारत कभी Su-57 प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका है। उस समय इसे FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता था। साल 2007 में भारत ने FGFA प्रोजेक्ट शुरू किया जो Su-57 पर आधारित था, लेकिन 2018 में भारत इससे बाहर हो गया क्योंकि स्टेल्थ और कॉस्ट में बात नहीं बन पाई। दरअसल शुरुआत में ही रूस ने सिर्फ 4 प्रोटोटाइप के लिए $6.7 बिलियन की बड़ी रकम मांगी थी। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट गारंटी के पूरे प्रोजेक्ट की लागत $40 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान था।
1: कई बार ये सवाल उठता है कि भारत 2018 में ही क्यों फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से हट गया, पीछे हट गया। तब हम करते तो आप कहीं के कहीं पहुंचे होते, पर देखा जाए तो उस समय में बहुत महंगा पड़ रहा था, रशिया जॉइंट डेवलपमेंट की कीमत मांग रहा था, तब इनका अभी प्रोटोटाइप में था और भारत का DRDO और हमारा जो साइंस कम्युनिटी है वो सोचते थे कि हम देश के अंदर ही डेवलप करें, MCA डेवलप करें। तो कई बातें थी जिसकी वजह से उस समय में इस प्रोजेक्ट को छोड़ा गया।
0: Su-57 के ऑफर के बीच रूस ने एक लंबे इंतजार के बाद भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी बैटरी डिलीवर की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डिलीवरी ऐसे समय में हुई जब रूस खुद यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है और उसे काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा ये समझा जा सकता है कि भारत और रूस में कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है।
1: भारत और रूस की दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि रूस जबकि खुद यूक्रेन के साथ जूझ रहा है और आए दिन उनके ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, एयर अटैक हो रहे हैं और उनकी काफ़ी रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने S-400 की चौथी बैटरी भारत को हैंड ओवर कर रहे हैं, साथ साथ में फिफ्थ बैटरी का भी ऑन शेड्यूल डिलीवरी का उनका प्लान है। तो दो तीन बातें कि क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक तो वो ये भी है कि यूक्रेन जो थे इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी तेज़ी से काम करती जा रही है और एक वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी बना के रखना चाहती है कि अगर वादा किया है तो डिलीवर करते हैं। साथ साथ में भारत के साथ एक बिजनेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक संबंध है, दोस्ताना संबंध है, क्योंकि भारत ने भी रूस के साथ खड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि भारत को रूस की जरूरत है, रूस को भी भारत की उतनी ज़रूरत है, क्योंकि जब भारत ने S-400 की डील की थी तब अमेरिका ने कहा था हम काट सा लगा देंगे, पर भारत ने फिर भी S-400 खरीदा और जो देखा गया कितना कामयाब साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में।
0: भारत और रूस के रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं और आंकड़ों के नजरिए से देखें तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में रूस की भूमिका सबसे बड़ी रही है। हालांकि कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा खरीद का डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन आज भी भारतीय सेनाओं के हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का ही है। भारत पारंपरिक रूप से हथियारों के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी तरह रूस पर निर्भर रहा है। भारत की तीनों सेनाएं जल थल नभ, तीनों में 60-70% हथियार रूसी निर्मित ही है। भारतीय सेना में वो कौन कौन से हथियार हैं जो रूस से लिए गए हैं, ये आपको बताते हैं। वायुसेना के बेड़े में शामिल Su-30 MKI और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी रूस से ही आयात किए गए हैं। एयर डिफेंस के लिए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, वहीं Aegis को भी सेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य मूल रूप से एक रूसी एडमिरल गोर्शकोव पोत है जिसे रिफर्बिश किया गया था। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म और T-72 अजय रूसी तकनीक पर ही आधारित है। आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो BM-21 ग्रैंड और BM-30 स्मर्श भी रूस से ही लिया गया है। अब भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता का नहीं है, बल्कि ये संयुक्त अनुसंधान और सह उत्पादन में बदल चुका है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और AK-203 राइफल्स इसके उदाहरण हैं। दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, दशक तक गुजर गए, दुनिया में बहुत कुछ बदला, बहुत सारी उथल पुथल हुई, कोई दोस्त बना, कोई दुश्मन बना, लेकिन एक दोस्ती जो अटूट है, जो कभी नहीं टूटी, वो थी भारत और रूस की दोस्ती। इतने दशकों बाद भी ना तो इस दोस्ती को किसी की नजर लगी और ना ही इस दोस्ती का भरोसा टूटा, यानी रूस ने भारत पर और भारत ने रूस पर आज भी भरोसा किया है। बीते 7 दशक में भले ही वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या फिर भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के दौर में और मजबूत हुआ। भारत और रूस के बीच हाल ही में एक अहम सैन्य समझौता लागू हुआ जिसे रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट कहा जाता है। ये समझौता फरवरी 2025 में साइन किया गया था और जनवरी 2026 में प्रभावी हो चुका है। रिलॉस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी, यानी रूस के सैन्य बंदरगाहों, एयरबेस और सुविधाओं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना कर सकेगी। ये इस्तेमाल सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। रिलॉस समझौते के तहत जंग या किसी अन्य सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि देश एक दूसरे की सेनाओं को जरूरत पड़ने पर ईंधन, सामान, मरम्मत जैसी मदद करेंगे। वहीं पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब है कि शांतिपूर्ण समय में देश की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करेंगी। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है।
1: देखा जाए तो भारत ने रूस के साथ जो रिलॉस साइन किया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके तहत रशिया भारत में और भारत रशिया की बेसिस पर तकरीबन 3,000 सैनिक, 5 युद्ध पोत और 10 एयरक्राफ्ट तक रख सकते हैं, जहाँ पर उनके रख रखाव और उनको तेल, पानी, राशन, इस तरह की चीज़ें प्रदान की जा सकती हैं जो एक्साइज के लिए, रखी के लिए और आपसी सद्भाव के लिए एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। देखिए, दोनों को फ़ायदा है इसमें कि क्योंकि भारत को उत्तरी समुद्री रास्ते, आर्कटिक रीजन, उस इलाकों में पहुँच मिल जाएगी, रशिया को हिंद महासागर और भारत के अरब सागर में बेसिस मिलेंगी जहाँ से वो अपना देखभाल कर सकते हैं, उनके शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। मिग 21 से शुरू हुआ ये सफर आज अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे एडवांस हथियारों तक पहुंच चुका है। S-400 को भारत ने साल 2018 में रूस से $5.4 अरब में खरीदा था। इसकी ताकत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नजर रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर तक है। वहीं टारगेट को ट्रैक करने की बात करें तो ये एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। रूस भी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को देने के लिए इच्छुक है। यही नहीं, रूस S-500 की तकनीक को भी भारत के साथ साझा करना चाहता है। इससे S-500 को भारत में बनाकर इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करने का रास्ता आसान बन सकता है। S-500 की तकनीक के ट्रांसफर से भारत आसानी से इसके रडार, इंटरसेप्टर, मिसाइलों और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के तहत बना सकेगा। अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है तो ये S-400 प्रोजेक्ट कुशा, MRSAM आकाश नेक्स्ट जेनरेशन और मौजूदा आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर सकता है। ये नेटवर्क कम ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष तक फैले खतरों को रोकने में सक्षम है। प्रोजेक्ट कुशा पहले ही भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कवच के रूप में विकसित हो रही है। वहीं S-500 का शामिल होना भारत को चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बढ़त दिला सकता है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
3: होने जा रहा है सूर्य देव का राशि परिवर्तन, कौन सी राशि के जीवन में होगा कमाल, किसका होगा हाल बेहाल और कौन सी राशि के लोग होंगे मालामाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
4: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
5: सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे Good News Today पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में कहीं है खुशियां तो कहीं रिश्तों की उलझने। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

भारत और रूस के संबंध अब केवल हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संबंध इससे ऊपर उठ गए हैं। दोनों संयुक्त रूप से नए नए हथियारों का उत्पादन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में, फिर चाहे वो T-90 टैंक हो या फिर Su-30 फाइटर जेट्स की बात हो। हाल फिलहाल में इसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत ने लाइसेंस के तहत अपने आयन के अपग्रेडेशन का काम भी शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देश मिलकर अब हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी काम कर रहे हैं। 1960 के दशक से भारत रूस के रक्षा संबंध चले आ रहे हैं। आज भी भारत की सेना में जो हथियार, टैंक, मिसाइलें या फिर लड़ाकू विमान हैं, उनमें से करीब आधे रूस से आए हैं। बीते 6 दशक से रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस ट्रेड पार्टनर रहा है, लेकिन हाल के दिनों में आत्मनिर्भर भारत की मुहिम और मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश में मॉडर्न हथियारों का निर्माण तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से रूस के साथ वेपन एक्सपोर्ट में कमी आई है। साल 2011 से 2015 में भारत के कुल रक्षा आयात में रूस की साझेदारी 70% थी। साल 2016 से 20 में ये हिस्सेदारी घटकर 51% रह गई। साल 2021 से 2025 के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो ये घटकर 40% रह गई है। इस गिरावट के बावजूद रूस के कुल वैश्विक हथियार निर्यात का 48% हिस्सा अकेले भारत को जाता है। भारत रूस से आमतौर पर इसलिए हथियार खरीदता है क्योंकि रूस भारत को अत्याधुनिक और बेहद जरूरी हथियार जैसे सबमरीन, मिसाइल बोट 1960 के दशक से ही दे रहा है। वहीं पश्चिमी देश तब इसे भारत को देने के इच्छुक नहीं थे, वो भी तब जब हिंद महासागर दुनिया के जहाजों के लिए एक बेहद अहम समुद्री मार्ग है। इतना ही नहीं, साल 1987 में सोवियत संघ ने भारत को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइलों से लैस सबमरीन K-43 को लीज पर भी दिया था। रूस ने भारत को 3 अकुला क्लास पनडुब्बियां लीज पर दी थी। हालांकि लीज पूरी होने के बाद रूस ने इसे वापस ले लिया, लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसे रूस ने अपनी पनडुब्बी दी थी। रक्षा जानकारों का मानना है कि रूस ने भारत को जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत को मजबूत करने के लिए बड़ी मदद की। रूस ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल दी, जिसे अब बड़े पैमाने पर तीनों ही सेनाओं में शामिल किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के कई एयरबेस में जमकर तबाही मचाई। यही नहीं, रूस ने भारत को उन क्षेत्रों में तकनीक देने का ऑफर दिया है जिसे कोई भी देश देने के लिए तैयार नहीं होता। भारत और रूस दोनों मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। दोनों मिलकर ब्रह्मोस 2 पर लगातार काम कर रहे हैं। इसके बन जाने के बाद चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दरअसल ये सीधे चीन की DF-17 के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ब्रह्मोस 2 के बाद भारत के पास ब्रह्मोस के 3 वेरिएंट्स हैं। एक ब्रह्मोस जिसका इस्तेमाल हो रहा है, ब्रह्मोस NG जिसका निर्माण अभी फिलहाल चल रहा है, ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे बनाने के लिए भारत और रूस जल्द काम शुरू करने वाले हैं। सोचिए, जिस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को आज की तारीख में गिने चुने

0: लंबी दूरी तक मिसाइल को उड़ान भरने की ताकत देता है। इसके वजन को भी घटाकर करीब 1.3 टन रखा जा सकता है ताकि इसे हल्के लड़ाकू विमानों जैसे कि तेजस से भी दागा जा सके।
1: ब्रह्मोस 2 जो मिसाइल है, ये एडवांस वर्जन है ब्रह्मोस 1 का। ब्रह्मोस 1 ने अपना ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया हुआ है। उसकी जो मारक क्षमता थी, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी, वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। अब जब ब्रह्मोस 2 है, इसमें देखिए एक स्पेशल फीचर डाला गया है, वो एक इसकी जो मैक स्पीड जो है वो 6, 7 और 8 तकरीबन 8 मैक स्पीड पे जा सकते हैं, यानी सुपरसोनिक मिसाइल बनेगा। और इसकी जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है वो काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है। वो डीप जो बंकर है, जो अर्थ के अंदर जो अंडरग्राउंड बंकर है, उसमें वो डीप पेनिट्रेशन कर सकता है और उसको स्ट्राइक कर सकता है। लिहाजा ये एक एडवांस सिस्टम है। तमाम तरीके के देश जो अपना दुश्मन की एयरक्राफ्ट मिसाइल से बचने के लिए अंडरग्राउंड बंकर बनाते हैं, अंडरग्राउंड रिसर्च लैब बनाते हैं, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाते हैं, उनको ये टारगेट करने में सक्षम है।
0: भारत के साथ दशकों से रूस दमदार दोस्त बनकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। भारत और रूस की दोस्ती का एक समृद्ध इतिहास रहा है। भारत रूस दोस्ती की नींव 21 दिसंबर 1947 को पड़ी थी। तब से अब तक कई बार दुनिया में उथल पुथल मची, लेकिन इसका असर भारत और रूस के रिश्तों पर कभी नहीं पड़ा। भारत को आजादी मिले 4 महीने ही गुजरे थे, लेकिन भारत को उसका असली दोस्त तब तक नहीं मिला था। 21 दिसंबर 1947 रविवार का दिन सोवियत संघ का एक दंपत्ति अपने बच्चों के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। उनका नाम था किरिल नोविको। इन्होंने ही भारत और रूस के अटूट रिश्ते की नींव रखी। ये आजाद भारत के पहले रूसी एम्बेसडर थे। 27 मार्च 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सोवियत संघ सरकार ने एक गाय गिफ्ट की। उस वक्त सोवियत राजदूत इवान बेनेडिक्टो ने गाय की रस्सी नेहरू के हाथ में थमाई तो वो तुरंत उसे चारा खिलाने लगे। भारत किसी को गाय गिफ्ट कर दे तो ये बात समझ में आती है, लेकिन कोई और देश हमारे प्रधानमंत्री को गाय गिफ्ट करे, मतलब कि दोस्ती को गाढ़ा करने का एक भी मौका न छोड़ना। बाईस जून 1962 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के साथ सोवियत संघ खड़ा हो गया। कश्मीर मुद्दे पर तत्कालीन सोवियत संघ ने भारत का समर्थन करके पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेल दिया। दरअसल रक्षा परिषद में कश्मीर को लेकर आयरलैंड ने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन किया अमेरिका, ब्रिटेन, चिली, वेनेजुएला, फ्रांस जैसे देशों ने, जिसमें आयरलैंड भी शामिल था। ये वो दौर था जब पश्चिमी देश भारत के खिलाफ थे, और इसके पीछे सीधे तौर पर मकसद ये था कि कश्मीर को भारत से छीन कर पाकिस्तान को दे दिया जाए। और ऐसे समय में एक देश जो भारत के साथ खड़ा था, जिसने भारत का साथ निभाया, दोस्ती निभाई, वो था रूस। भारत के विकास का आधार रखने में रूस का अहम योगदान माना जाता है। देश के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए स्टील प्लांट लगाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन तब स्टील लगाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। भारत ने दोस्त रूस की ओर देखा, उसने फौरन खास मदद भेजने का ऐलान कर दिया और साल 1966 में बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी गई। साल 1971 पूर्वी पाकिस्तान, जो इस वक्त बांग्लादेश है, वहां पर लगातार बंगालियों के खिलाफ अत्याचार हो रहा था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जिसमें अमेरिका लगातार दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भारत ने ये युद्ध थोपा है। ऐसे में आधे से ज्यादा देश, जिसमें फ्रांस भी था, ब्रिटेन भी था, यूए भी था, ये तमाम देश अमेरिका का साथ दे रहे थे, लेकिन ऐसे समय में भी रूस भारत के साथ ही खड़ा रहा। 1971 युद्ध के दौरान पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने जहाज बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिए। अमेरिका का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी की ओर आ रहा था। अमेरिका चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश बन चुका है, वहां भारतीय सेना न पहुंचे, इसीलिए एयरक्राफ्ट कैरियर एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में तैनात करने का आदेश देकर उसे रवाना कर दिया गया।

0: तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी थी। उन्होंने अपनी सेना को कहा था कि भारत के बेस पर हमला किया जाए, यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान का साथ देते हुए अमेरिका भारत के खिलाफ खड़ा था। अमेरिकी सेना के पास खुली छूट थी कि वो भारत पर कभी भी हमला कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में रूस ने एक ऐसी चाल चली जिससे अमेरिका को उल्टे पैर वापस भागना पड़ा।
1: रूस ने भारत को बताया कि अमेरिका उसके साथ क्या करने वाला है। भारत ने भी जवाब में कहा कि हमारे वॉलंटियर फाइटर पायलट अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर एंटरप्राइज पर आत्मघाती हमला करने के लिए तैयार हैं। तब रूस ने खतरनाक चाल चली। सोवियत नौसेना के प्रमुख एडमिरल गोर्शकोव ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को पानी की ऊपरी सतह पर लाने के लिए कहा ताकि अमेरिकी सैटेलाइट उसकी तस्वीरें खींच सके। रूस की नौसेना की SSGN यानी क्रूज मिसाइलों से लैस इस पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी के पास समंदर में ऊपरी सतह पर लाया गया। हुआ भी वही जो रूस चाहता था। अमेरिकी सैटेलाइट ने तस्वीरें ली। सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिका ने जैसे ही देखा कि बंगाल की खाड़ी के पास ही रूस की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है, उसके होश उड़ गए। अमेरिकी नौसेना खौफ में आ गई। अगर उन्होंने भारत पर हमला किया तो रूसी पनडुब्बी उनका करियर डुबो देगी। अमेरिका रूस के साथ युद्ध नहीं चाहता था। मजबूरी में USS एंटरप्राइज को नए निर्देश दिए गए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने दिशा बदली और वो श्रीलंका चला गया। वो बंगाल की खाड़ी में नहीं जा पाया।
0: भारत ने 1975 में अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया जो कि रूस की मदद से तैयार किया गया था। फिर आया साल 1984 जब विंग कमांडर राकेश शर्मा रूसी शटल से अंतरिक्ष गए, और ये वो दौर था जब भारत का कोई पहला विंग कमांडर अंतरिक्ष में यात्रा के लिए गया था। यहाँ से भी भारत और रूस की दोस्ती और गहरी होती चली गई।
1: भारतीय सेनाओं के पास 86% हथियार रूसी मूल के हैं। जब लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई, उस वक्त काफी हद तक रूसी मूल के हथियारों पर ही भारत निर्भर था। और अब पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने S-400 से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक का इस्तेमाल कर इस भरोसे को कायम रखा। साल 2014 से लेकर अब तक भारत के करीब 55% रक्षा उपकरण रूस से ही खरीदे गए हैं। नौसेना की बात की जाए तो 41% से ज्यादा उपकरण रूसी निर्मित हैं, जबकि वायुसेना के 2/3 उपकरण रूसी मूल के हैं। वर्षों से भारत और रूस के बीच बार सेलर रिलेशनशिप, ज्वाइंट रिसर्च, डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सहयोग की नई इबादत लिखी गई है। भारत और रूस मिलकर दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण भी कर रहे हैं। वहीं रूस से अधिग्रहण लाइसेंस की मंजूरी मिलने के बाद देश में ही T-90 टैंक का अपग्रेडेशन हो रहा है।
2: हिंदुस्तान की जो डिफेंस नीति है, पहले तो हम आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो भी कंट्री अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार रहता है और जिसके जो डिफेंस के प्रोडक्शन आज की डेट में स्टेट ऑफ आर्ट है, तो हम उससे नेगोशिएशन करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के तहत हमने जर्मनी से पनडुब्बी, फ्रांस से राफेल और अमेरिका से जी के जो Tejas-2 के इंजन की डील की बातें आगे बढ़ी है। देखिए वो कहां तक मेटलाइज होती है, क्या आगे प्रोग्रेस होता है, ये देखने वाली बात है। हमने अपना जो एक्विजिशन जो डिफेंस एक्विजिशन है वो ओपन रखा है। रशियन इक्विपमेंट भी हम लेते हैं, नेटो के भी इक्विपमेंट लेते हैं जो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को मीट करता है, जो हमारे पाकिस्तान या चाइना एडवर्सरी को हर लेवल पे चेक करता है और काउंटर करने के लिए तैयार रहता है, और जो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपना GSQR खुद सेट करते हैं। फिर देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में कहां किस कंट्री पे कॉम्पिटिटिव प्राइस में अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली हम उसको प्रोक्योर करते हैं।
1: मौजूदा समय में भारत के सशस्त्र बलों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे करीब 85% हथियारों और प्लेटफॉर्म्स की उत्पत्ति रूस या फिर उसके पूर्ववर्ती राज्य सोवियत संघ में हुई।
0: मौजूदा दौर में भले ही भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती काफी गहरी हुई हो, रूस से हालांकि भारत काफी कुछ रक्षा संसाधन खरीदता है, सामान खरीदता है, लेकिन अब भारत की डील अमेरिका के साथ भी हो रही है। बावजूद इसके रूस और भारत की दोस्ती अभी भी कायम है। यानी दोनों के रिश्ते अभी भी कायम है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस भारत का सच्चा दोस्त है। भारत का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य, परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत, कई गाइडेड मिसाइलें, विध्वंसक और नया नया खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस के साथ भारत के रक्षा सहयोग को दिखाता है।
1: '91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन भारत के परंपरागत दोस्त रूस का मिजाज नहीं बदला। पिछले 76 साल में रूस को तमाम उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, लेकिन रूस ने भारत के साथ अपना साथ कभी नहीं छोड़ा और भारत ने भी रूस से सच्ची दोस्ती निभाई। इस दौरान दोनों के बीच रिश्ते लगातार मजबूत रहे। दोनों देशों में सरकारें बदली, लेकिन दोस्ती का सिलसिला कभी नहीं बदला। आज भारत और रूस की दोस्ती दुनिया के सामने मिसाल बनकर उभरी है।
0: रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: होने जा रहा है सूर्य देव का राशि परिवर्तन, कौन सी राशि के जीवन में होगा कमाल, किसका होगा हाल बेहाल और कौन सी राशि के लोग होंगे मालामाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
5: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में कहीं है खुशियां तो कहीं रिश्तों की उलझने। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
6: What instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: लड्डू आमतौर पर भगवान को भोग लगाने के लिए बनाए जाते हैं या फिर खुशी के मौके पर बांटने के लिए। हम आपको गुजरात के जामनगर में लड्डू बनाने और बांटने की एक अनोखी परंपरा से जुड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि आखिर वहां लड्डुओं के भोग से भगवान का क्या खास कनेक्शन है। देखिए रिपोर्ट।

0: एक तरफ ढेर सारे लड्डुओं को सजाने का काम जारी है तो दूसरी तरफ लड्डू बनाने की भी तैयारी है। ये तस्वीरें जामनगर की हैं। यहाँ पर इन दिनों बड़ी संख्या में महिलाएं और दूसरे लोग लड्डू बनाने में जुटे हैं। खास बात यह है कि लड्डू किसी शादी समारोह या उत्सव के लिए नहीं बनाए जा रहे, बल्कि इन्हें गाय और दूसरे पशुओं को खिलाया जाएगा। मान्यता है कि ऐसा करने से वरुण देव प्रसन्न होते हैं और मॉनसून में अच्छी वर्षा होती है, जिससे अच्छी फसल होती है और खुशहाली आती है।
1: यह सेवा कार्य पिछले 22 वर्षों से चल रहा है। इसके तहत 900 किलो गेहूं के आटे, 300 किलो तेल और 300 किलो गुड़ सहित करीब 1500 किलो सामग्री से लड्डू बनाए गए हैं।
0: यहाँ पर हर साल वर्षा ऋतु से पहले पशु सेवा के माध्यम से प्रकृति और वरुण देव के प्रति आस्था जताने के लिए पशुओं के बीच लड्डू वितरण का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कृष्णनगर युवा समूह और महिला सत्संग मंडल के 250 से 300 स्वयं सेवकों की ओर से इन लड्डुओं को जामनगर शहर सहित आसपास के गांवों में बांटा जाएगा, ताकि वरुण देव प्रसन्न हो और किसानों की किस्मत चमके। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देश में इस वक्त आम का सीजन है तो जगह जगह पर आम की बहार नजर आ रही है, चाहे बाजार हो या फिर भगवान का दरबार, हर तरफ आम ही आम दिख रहे हैं। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के वाशिम में अनोखा नजारा दिखा। यहां पर एक मंदिर में सैकड़ों किलो आम का चढ़ावा चढ़ाया गया और उसी का प्रसाद भी श्रद्धालुओं में बांटा गया। देखिए रिपोर्ट।

0: चारों तरफ आम ही आम, आमों से सजा संत गजानन महाराज का धाम। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में वासिम जिले के कारंजा लाड की ममता नगर की हैं। यहाँ पर संत गजानन महाराज मंदिर में 7.25 क्विंटल आम का दिव्य भोग अर्पित किया गया और आमों से ही उनकी प्रतिमा की शानदार सजावट की गई। एकादशी के पावन अवसर पर मंदिर में संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। इस अवसर पर भक्ति भाव से महाराज की शानदार आरती की गई और फिर प्रसाद वितरण किया गया।
1: अपने इधर महाराज को 7.25 क्विंटल का आम का अरस यानी भोग चढ़ा गया था, उसी का प्रसाद स्वरूप आज रसाई बन के सब महिलाओं को खाना दे रहे।
0: संत गजानन महाराज को चढ़ाए गए आमों का रस निकालकर 6,000 भक्तों को प्रसाद के तौर पर बांटा गया। इस अवसर पर 30 गांवों से आई संस्थान की वॉलंटियर 3,000 महिलाओं ने आमरस के साथ पूरन पोली और दूसरी डिश तैयार की।
2: हम बिरखेड़ गांव से आम महिलाएं सेवा देने को आए हैं और महाराज की कृपा से हम यहाँ आज ये जो ये सेवा मिली है ये हमारा अहोभाग्य हम समझते हैं।
3: कैसा लगा आपको सेवा
2: करके? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण हम मानेंगे।
0: खास बात ये है कि इस खास अवसर पर तमाम भक्त ही संत गजानन महाराज को अर्पित करने के लिए आम लेकर आए थे। वाशिम से जाका खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
1: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
3: You're listening to MSNBC.
1: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
13: TIT भोपाल Gen Z's gateway to unbeatable placements।
14: दिल्ली में यमुना को स्वच्छ निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में चला मां यमुना स्वच्छता अभियान। यमुना के 28 घाटों पर सफाई करते दिखे नेता। जम्मू में जम्मू 5 के मैराथन का आयोजन। नौजवानों को फिट रहने और नशे से दूर रहने का दिया गया संदेश। डांस और कार्टून प्रदर्शनी से भी दिया गया फिटनेस का संदेश। डोडो के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। निचले इलाकों में तेज बारिश। बदले मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। कारोबारी भी खुश। वीकेंड पर पहाड़ों में बढ़ी सैलानियों की भारी भीड़। शिमला में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक सुहाने मौसम का ले रहे हैं आनंद। रायपुर में वाटर स्पोर्ट्स का महाकुंभ। सेंध लेक में राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप का आयोजन। देश भर के खिलाड़ी हुए शामिल। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत का आज पहला मैच एस्बेस्टन में पाकिस्तान से। महामुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। बेटियां फिर लाएंगी विश्व कप।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे सूर्य देव के इसी राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन देश दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत्रिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत्रिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। देखिए, इस श्लोक में तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु और महेश साथ में नौ ग्रहों से कृपा करने की प्रार्थना की गई है। तो आप रोज सुबह और रोज शाम को जब पूजा करते हैं कम से कम तीन बार या नौ बार इस श्लोक को कहिएगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत्रिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अगर तीन बार सुबह और तीन बार शाम को या नौ बार सुबह और नौ बार शाम को इस श्लोक को आप पढ़ें तो सारे ग्रह शांत होंगे, ग्रहों की पीड़ा, ग्रहों की मुश्किल, सामान्य जीवन में आपको परेशान नहीं करेगी। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य देव का ये जो राशि परिवर्तन है इसकी पूरी स्थिति क्या है। देखिए, सूर्य देव अभी तक वृषभ राशि में विद्यमान है, वृष राशि में, दो नंबर की राशि में मौजूद है। अब 15 जून को दोपहर के समय में मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और मिथुन राशि सूर्य देव की अनुकूल राशि मानी जाती है, सूर्य देव के लिए अच्छी राशि कही जाती है। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अमावस्या तिथि को हो रहा है और अमावस्या तिथि पर मिथुन राशि में सूर्य के जाने का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वैसे सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश का असर वर्षा पर और मौसम पर बड़ी गहराई से पड़ता है। वर्षा के मामले में और मौसम के मामले में सूर्य का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है। ये जो परिवर्तन है सूर्य देव का, ये देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक असर डालेगा। अगले एक महीने तक सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव पूरी देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर पड़ेगा। तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन 15 जून को होने जा रहा है और लगभग 15 जून से लेकर के 14 जुलाई तक सूर्य देव मिथुन राशि में विद्यमान रहेंगे और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर अच्छा या बुरा पड़ेगा। देश दुनिया पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस समय सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है उस समय कन्या लग्न का उदय हो रहा है। अष्टम भाव में मंगल विद्यमान है, द्वादश में केतु और छठे भाव में राहु, यानी 6, 8 और 12वें स्थान में पाप ग्रह विद्यमान है। इसका परिणाम ये है कि दुनिया भर में युद्ध की स्थितियां और ज्यादा भड़केंगी। इस समय जब सूर्य मिथुन में जा रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, प्राकृतिक आपदाओं के बाढ़ आने की, भूकंप आदि आने की संभावना बनेगी। भूकंप की स्थिति और मौसम की स्थिति समस्या दिखा रही है। मौसम उल्टे सीधे तरीके से व्यवहार करेगा, कभी बारिश होगी, कभी तूफान आएगा, कभी तेज धूप निकल आएगी, तो मौसम अजीब तरह से व्यवहार करेगा और इस एक महीने में देश दुनिया में भूकंप की संभावना बन रही है। सूर्य राजनीति के शासन और सत्ता के स्वामी हैं और सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश इस समय राजनैतिक उथल पुथल मचा सकता है। राजनीति में, पॉलिटिक्स में, लोगों के पदों में बड़े सारे परिवर्तन इस समय हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन राज्यों की, देश की सत्ता में परिवर्तन दिखा रहा है। मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से इस समय को बहुत बेहतर समय नहीं कहेंगे। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक सूर्य देव के इस महापरिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि से सूर्य देव तीसरे भाव में आ जाएंगे तो मेष वालों की जो आर्थिक स्थिति है, पैसे रुपए का मामला है, वो काफी बेहतर हो जाएगा। अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो इस समय आपको वाहन का और संपत्ति का लाभ हो सकता है। इस एक महीने में अगर आप प्रयास करें, अगर आप कोशिश करें, तो रुके हुए तमाम काम इस एक महीने में आपके पूरे होंगे, इस एक महीने में आपकी मुश्किलें हल होंगी और आप प्रयास करके अपने महत्वपूर्ण काम कर ले जाएंगे। लेकिन मेष वालों को एक सावधानी रखनी है, इस एक महीने में यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा, इस एक महीने में यात्राओं के मामले में लापरवाही ना करें और यात्राओं में सावधानी बनाए रखें, क्योंकि यहां पर मेष राशि वालों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है। अब अगले एक महीने को अपने लिए लाभकारी कैसे बनाएं? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य देव से कृपा करने की प्रार्थना करें। रोज सवेरे अगर सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी कृपा मिलेगी और इस एक महीने का समय आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृषभ राशि, सूर्य देव आपके दूसरे स्थान में गोचर करेंगे तो वृषभ वालों को बता दें कि अपनी आंखों की समस्या पर ध्यान दीजिएगा। आपको आंखों में दिक्कत हो सकती है, सरदर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, पारिवारिक अशांति जैसी स्थिति इस समय बन रही है। पारिवारिक विवादों से और पारिवारिक अशांति से बचें। सेहत में आपके समस्याएं दिख रही हैं, शरीर दर्द, हड्डी दर्द, आंखों में सर दर्द की मुश्किल, आलस्य का बढ़ना, ये तमाम स्वास्थ्य की समस्याएं वृषभ वालों को इस समय हो सकती हैं। संतान को लेकर आपके मन में चिंताएं आ सकती हैं, संतान को लेकर, उसके करियर और जीवन को लेकर के थोड़े चिंतित हो सकते हैं। तो वृषभ वाले अगले एक महीने तक अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपनी संतान को लेकर के अगर सतर्क रहें तो उनके लिए बेहतर होगा। अगले एक महीने में नियमित रूप से गुड़ का दान करिएगा। निरंतर अगर आप गुड़ का दान करें या गाय को नियमित रूप से गुड़ खिलाएं तो ऐसा करने से सूर्य के राशि परिवर्तन का बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मिथुन राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन मिथुन राशि में ही होने जा रहा है, तो मिथुन वाले सबसे पहले ये जान लें कि उनके करियर में कोई बड़ा परिवर्तन इस समय हो सकता है। करियर में परिवर्तन की संभावना मिथुन वालों के लिए बन रही है। मिथुन राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अपनी हड्डियों का, कोलेस्ट्रॉल का और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में आपके पारिवारिक जीवन में बेवजह का तनाव बढ़ सकता है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। इस समय कोई ऐसा काम मत करिएगा जिसकी वजह से आपको अपयश मिले, आपकी बदनामी हो। तो गलत आचरण से, गलत कार्यों से बचने का प्रयास इस समय आपको करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करिएगा। रोज सुबह स्नान करके 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह जप करिएगा। सूर्य देव से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। कर्क राशि, द्वादश भाव में, बारहवें भाव में सूर्य देव जा रहे हैं, तो कर्क राशि वालों के महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं, महत्वपूर्ण काम बीच में बंद हो सकते हैं, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सेहत को लेकर समस्या हो सकती है, खास तौर से आंखों की समस्या और डाइजेशन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, भविष्य को लेकर तनाव हो सकता है, तो बेवजह की चिंता आपको परेशान करेगी। भविष्य को लेकर आप तनाव पालेंगे, जिसके चक्कर में आप परेशान होंगे। व्यर्थ की सोच से परेशानी रह सकती है। आंखों की समस्या का ध्यान दीजिए, सर दर्द से बचिए, सर में चोट ना लगे, इसकी सावधानी भी कर्क राशि वालों को बनानी होगी। तो कर्क राशि के लोग भविष्य को लेकर के थोड़े चिंतित होंगे और महत्वपूर्ण काम अभी कुछ समय के लिए रुकेंगे, इसीलिए इस समय शांति बनाए रखिए। काम में जल्दबाजी मत करिएगा। नियमित रूप से इस एक महीने में गुड़ का और गेहूं का दान करिएगा। अगर इस एक महीने में गुड़ और गेहूं का आप दान करें, तो सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। सिंह राशि, सूर्य देव एकादश भाव में आपके प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए पैसे रुपए की स्थिति बेहतर रहेगी। आर्थिक लाभ की संभावना आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। पैसे रुपए आपको मिलेंगे, आपके आर्थिक हालात बेहतर होंगे। संतान पक्ष को लेकर जो आपके मन में, जीवन में चिंताएं चली आ रही थीं, वो चिंताएं भी अब आपकी समाप्त होंगी और स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। मन आपका मजबूत होगा, आपकी चिंताएं आपके तनाव दूर होंगे। सिंह राशि के लोग पैसे इस समय काफी पाएंगे, लेकिन पैसा कहाँ लगाना है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, इस बात में सावधानी बनाए रखिएगा। इस समय जल्दबाजी में आकर के उल्टा सीधा पैसा निवेश मत करिएगा, वरना आपका पैसा डूब सकता है, पैसे का बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो सिंह वालों के लिए अगला एक महीना बेहतर है, लाभ से भरा हुआ है, लेकिन पैसे के इन्वेस्टमेंट में सावधानी बनाए रखेंगे। रोज सवेरे अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव से कृपा करने की प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। कन्या राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके दशम स्थान में है और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। कन्या वाले अगर कोशिश करें तो इस समय इनको करियर में सफलता मिलेगी, करियर बेहतर होगा, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे, करियर का मामला हो, पैसे या संपत्ति का मामला हो, इस समय महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। परिवार में अपने शांति बनाए रखिएगा, पारिवारिक मामलों में झगड़े लड़ाई से और क्रोध से बचिएगा, अच्छा समय है इसका ध्यान दीजिए। और अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय आपकी माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कन्या वाले इस समय अगर चाहें तो अपने रुके हुए काम निपटा सकते हैं और इस एक महीने में करियर में बड़ी सफलता पा सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए सूर्य देव नवम स्थान में जाएंगे तो तुला वालों को पहली सलाह यही है कि करियर में कोई जोखिम नहीं लेंगे, करियर में कोई बदलाव, कोई रिस्क, कोई जोखिम तुला वालों को इस समय नहीं लेना है। स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है, पेट की दिक्कत और खान पान की दिक्कत इस समय आपको हो सकती है, सतर्क रहें। खाने पीने पर और अपनी जीवनचर्या यानी अपनी रूटीन पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। अगर अपना खान पान और अपना रूटीन आप ठीक रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि खाने पीने को लेकर रूटीन को लेकर के आप बीमार पड़ सकते हैं और ज़्यादातर पेट की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। अगर खान पान में लापरवाही करेंगे तो पित्त की और पेट की गंभीर समस्या इस एक महीने में आपको परेशान कर सकती है। तुला वालों को मुख्यतः अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। इस एक महीने में सेहत उनको परेशान कर सकती है, जिसको लेकर इनको सतर्क रहना चाहिए। तुला राशि के लोग अगले एक महीने तक नियमित रूप से गुड़ का दान करें या गाय को गुड़ खिलाएं। अपने खान पान के मामले में थोड़ा परहेज, थोड़ी सावधानी बनाए रखें। वृश्चिक राशि, अष्टम भाव में सूर्य का गोचर है और ये आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। वृश्चिक वालों को करियर में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको करियर में दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। एकदम से करियर बिगड़ सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। बेवजह का क्रोध ना करें, वाणी पर कंट्रोल करें, बेवजह के झगड़े लड़ाइयों से बचें। करियर में जरा भी लापरवाही ना करें। ऑफिस में शांति रखें ताकि बेवजह की घटनाएं ना हो, आपके करियर में किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो करियर में जरा भी लापरवाही इस समय आपको नहीं करनी है, वरना नौकरी जा सकती है या व्यापार में बड़ा नुकसान हो सकता है। इस एक महीने में दुर्घटनाओं से बचिए और हड्डियों की समस्या का ध्यान रखिए। चोट चपेट ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो, हड्डियों में दिक्कत ना हो, इसका ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। वृश्चिक वालों के लिए ये समय कठिन हो सकता है, इसलिए नियमित रूप से सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा। रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। धनु राशि, सातवें स्थान में सूर्य देव आपके जा रहे हैं। और कुछ करें या ना करें, लेकिन बेवजह की चिंताएं आपकी बढ़ा सकते हैं, व्यर्थ की चिंताएं आपको हो सकती हैं। स्त्री पक्ष से, माता से, बहन से, पत्नी से, बेटी से, या कोई ऑफिस में बालिका हो, स्त्री हो, वहां से थोड़ी दिक्कत इस समय आपको हो सकती है। आपके जीवन साथी का, आपके पति या आपकी पत्नी का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति बन रही है। धन को लेकर, पैसे रुपए को लेकर एक तरफ आपके खर्चे बढ़ेंगे और दूसरी तरफ आपको पैसों की कमी, धन की कमी महसूस हो सकती है। तो धनु वालों को महिलाओं से दिक्कत आ सकती है इस समय, संबंध में, रिश्तों में, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कष्ट हो सकता है और धन का, पैसों का प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। नियमित रूप से अगर गुड़ का दान करें, गाय को गुड़ खिलाएं या किसी निर्धन व्यक्ति को नियमित रूप से गुड़ दें तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। पैसे अगर नहीं आ रहे थे, पैसे अगर कहीं फंसे हुए थे, तो इस समय पैसे आएंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी। करियर और नौकरी में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो वहां भी फायदा होगा और अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी का तनाव, दबाव, प्रेशर कम होगा। स्वास्थ्य का मामला भी आपका धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा। अगर किसी यात्रा पर जाना है, लंबी यात्रा करनी है, तो यात्राओं में सावधानी आपको बनाए रखनी चाहिए। इस समय का सही इस्तेमाल करें क्योंकि आपके लिए बड़ा अनुकूल समय है। नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। कुंभ राशि, पांचवें स्थान में सूर्य का परिवर्तन है। आप जल्दबाजी में, जोश में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। इस समय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको मुश्किल में डाल सकता है। स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। डाइजेशन, पेट को लेकर के, सरदर्द को लेकर के मुश्किलें हो सकती हैं। शरीर में शिथिलता का, आलस्य का अनुभव होगा और महत्वपूर्ण काम इस समय आपको करने में कठिनाई होगी। संतान को लेकर तनाव हो सकता है। संतान पक्ष की चिंता आपको परेशान कर सकती है। तो कुंभ राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक रूप से मजबूत रहने का प्रयास करें, बेवजह की चिंताएं ना करें। नियमित रूप से अगले एक महीने में किसी निर्धन व्यक्ति को गेहूं या आटे का अगर दान करेंगे तो सूर्य की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, स्वास्थ्य के लिए समय बहुत निगेटिव है, इसलिए मीन राशि वाले सेहत का बहुत ध्यान रखें। बेवजह के तनाव ना बढ़ाएं, बेवजह का तनाव ना पालें। इस समय आपका अचानक ट्रांसफर हो सकता है, अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए तैयार रहें। आपकी माता जी की सेहत इस समय बिगड़ सकती है, उसका ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में विवाद हो सकते हैं, समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो मुख्यतः मीन वालों के लिए कठिन समय है पारिवारिक मामलों को लेकर के और अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर के मुश्किल होगी और अचानक आपका ट्रांसफर हो सकता है, अचानक आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह जप करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से आर्द्रा का प्रवेश देखा जाता है और आर्द्रा के प्रवेश के हिसाब से आने वाले समय में वर्षा का अनुमान भी लगाया जाता है। और इस बार जो सूर्य देव का आर्द्रा प्रवेश है वो कह रहा है कि शुरुआत में बारिश कम होगी, शुरुआत में सूखे जैसी स्थिति हो सकती है, लेकिन आगे चल कर के बारिश काफी ज्यादा होगी और देश के मध्य भाग में और दक्षिणी इलाकों में जल की वजह से, वर्षा की वजह से परेशानी हो सकती है। अगर सूर्य का ये राशि परिवर्तन किसी भी व्यक्ति को अपने लिए अनुकूल नहीं लग रहा है तो नियमित रूप से गुड़ और आटे का दान करने से लाभ होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में कहीं है खुशियां तो कहीं

0: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena, ESPN Radio.
1: How they looked after game one.
2: I mean, they were frustrated.
0: The Daily.
3: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की

0: सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
1: continue to face political pressure to reach a peace deal,
0: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
2: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: WGU offers an affordable path to becoming a teacher. Our Bachelor of Arts in Elementary Education program is online, flexible, and built around a flat rate tuition model. That means you can complete as many courses as you can handle for each term without paying more, giving you more control over the costs of your education. It's a sustainable investment in a career that truly changes lives, yours and your future students. Your path to the classroom starts at WGU. Learn more at wgu.edu.
1: Soccer's biggest stage is here, and we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
2: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
3: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje Good News Today par.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
9: दिल्ली में यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में चला मां यमुना स्वच्छता अभियान। यमुना के 28 घाटों पर सफाई करते नजर आए नेता। जम्मू में जम्मू हाई फाइव 5K मैराथन का आयोजन, नौजवानों को फिट रहने और नशे से दूर रहने का संदेश। टोडो के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, निचले इलाकों में तेज बारिश, बदले मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी, कारोबारी खुश। वीकेंड पर पहाड़ों में बढ़ी सैलानियों की भारी भीड़, शिमला में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक सुहाने मौसम का ले रहे हैं इस्तीफा। रायपुर में वाटर स्पोर्ट्स का महाकुंभ, सेंथ लेक में राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप का आयोजन, देश भर के खिलाड़ी हुए शामिल। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत का आज पहला मैच, एस्बेस्टन में पाकिस्तान से होगा महामुकाबला, शाम 7 बजे लाइव, बेटियां फिर लगाएंगी विश्व कप।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
9: चारधाम की पवित्र यात्रा का आज 57वां दिन, पूरे उत्साह और विश्वास के साथ श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने का सिलसिला तेज। चारधाम यात्रा में अब तक 34 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, यात्रियों की सुरक्षा का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। कपाट खुलने के बाद से सबसे ज्यादा केदारनाथ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, अब तक 12 लाख का आंकड़ा पार। आस्था भक्ति के साथ भक्तों की बद्रीनाथ धाम पहुंचने का सिलसिला तेज, 11 लाख का आंकड़ा पार हुआ। गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु, 80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में दर्शन किए। ज्येष्ठ माह की कृष्ण चतुर्दशी पर अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए सुबह से मंदिरों में लंबी कतारें। उज्जैन में बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, आरती में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। कल देश भर में मनाया जाएगा सोमवती अमावस्या का त्यौहार, गंगा स्नान के लिए अभी से उमड़ रहे हैं हरिद्वार में श्रद्धा। सोमवती अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम। शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से स्नान संपन्न करने के लिए क्षेत्र में 6 सुपर जोन में डिवाइड किया गया। स्वच्छ यमुना को लेकर दिल्ली सरकार ने चलाया बड़ा अभियान, 28 घाटों पर 500 संगठन और हजारों लोग करेंगे योगदान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी यमुना सफाई अभियान में हिस्सा लिया, गीता कॉलोनी के दशाश्वमेध घाट पर सफाई की। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना के घाटों पर सफाई की, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। यमुना क्लीनलीनेस कैंपेन का हिस्सा बने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, घाटों को सफाई। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने यमुना के घाटों पर सफाई की और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
10: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में कहीं है खुशियां तो कहीं रिश्तों की उलझने। दोपहर एक बज बजकर 28 मिनट से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
11: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे
3: गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: Take It Easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
1: जो बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाइयों और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है, वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है। बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी, आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है, तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीज़ें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
4: दिल्ली में यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में चला माँ यमुना स्वच्छता अभियान, यमुना के 28 घाटों पर सफाई करते नजर आए नेता। डोडा के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, निचले इलाकों में तेज बारिश, बदले मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी, कारोबारी भी खुश। वीकेंड पर पहाड़ों में बढ़ी सैलानियों की संख्या, शिमला में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, सुहाने मौसम का ले रहे हैं आनंद। रायपुर में वाटर स्पोर्ट्स का महाकुंभ, सेंध लेक में राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप का आयोजन, देश भर के खिलाड़ी हुए शामिल। वेमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत का आज पहला मैच, एजबेस्टन में पाकिस्तान से महामुकाबला, शाम 7 बजे लाइव, बेटियां फिर लाएंगी विश्व कप।
5: वाडीलाल आइसक्रीम, जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट ऑन न्यूज पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और बेटिया का ये संडे स्पेशल एपिसोड। तो क्या है आप सबका संडे लंच प्लान, क्योंकि हम तो तैयार हैं आपको परोसने एंटरटेनमेंट का गर्मा गर्म डोज। आज तो है हमारे पास ट्विस्ट का मसाला, ड्रामे की करी, यानी आपके लंच टाइम में भी आ जाएगा भरपूर मनोरंजन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा ये संडे स्पेशल एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
7: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, ललित को थमाएगी अपराजिता डिवोर्स के पेपर्स।
8: खुशी तो आप मेरी ले ही चुके, ये तोहफा दे दीजिए।
9: डिवोर्स की पहली कोर्ट हियरिंग,
10: इश्क मीठा।
7: अभिमन्यु और मन्नत की सगाई, झूम कर नाचा परिवार।

कर भी नहीं मिलेंगे रूही और नाहर। मुसीबतों का शिकार होगी राध्या, बढ़ेगी घर वालों की परेशानी। लगान के 25 साल के सेलिब्रेशन में आमिर खान के साथ दिखेंगे बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार।

0: और मुलाकात करेंगे हिमांशु से, जो निभा रहे हैं पति अनाड़ी में यश का किरदार। जानेंगे उनका दिनचर्या सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: अगर आप भी हैवी संडे ब्रंच के बाद फील कर रहे हैं थोड़ा लेजी और डल, तो हमारी ये अगली कहानी तो लिटरली कर देगी आपको रिचार्ज यूं सेकंड्स में, क्योंकि यहाँ तो है अनलिमिटेड ड्रामा, यानी आपके लिए भरपूर मनोरंजन तो हम आपको नहीं करवाएंगे। और इंतजार फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।
0: अपराजिता ने मांगा डाइवोर्स।
2: तो आप मेरे लिए ही चुके,
3: डिवोर्स की पहली कोर्ट हियरिंग।
0: क्या लौट आई अपने ससुराल? माँ से मिला अल्टीमेटम।
4: तो मेरी भी तो ये कोर्ट केस वापस लेगी या इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।
0: स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में भाई, अब ललित अपनी माँ के साथ नए घर में शिफ्ट हो गया है। और देखिए तो कैसे यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए पहुँच गई है अपराजिता, जिसे देखकर उसे ये लग रहा है कि बहुत जल्द अपराजिता उसकी जिंदगी में भी लौट आएगी। लेकिन अपराजिता इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है और साफ सफाई में जुट जाती है।
5: अरे वाह, शकुनी की बहन निकली, बीबी जी खुद अपने पैर पे चल गए हमारे घर पे, वो भी झाड़ू लेके।
6: देख क्या है लल्लू, चाचा की तेल लिया, मेरी बहू आ गई है।

जैसे मैं देखे कैसे सब अपने अपने काम में लग गए, लेकिन ललित की नज़र सिर्फ और सिर्फ अपराजिता पर है। लेकिन उसके लिए भी उसे मूंग ही खानी पड़ती है, क्योंकि अपराजिता जैसे ही घर का पोछा लगा रही होती है, देखिए कैसे ललित बड़े ताव में आता है। लेकिन उसका ये एरोगेंस उसे ही भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो अपने ही पांव के बल गिर जाता है।

0: भैया मकंते जी देख रहे ना, वो काम कर ली देख रहे ना, वो बंदर की तरह यहाँ से वहां वहां से यहाँ लपक के चलना जरूरी था।
1: अपराजिता तो वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी माँ उसकी धुलाई कर देती है।

0: अरे अम्मा अम्मा क्या कर रही हो? अरे अम्मा मार क्यों रही हो?
1: अरे तुझे नहीं मार रही हूँ, मेरी किस्मत को मार रही हूँ कि तेरी जैसी जड़ बूटी को मेरे घर भेजा। उसे लाने आए थे ना, लाने आए थे ना उसे, ऐसे आए थे वो यहाँ तेरी इस कर्मी की वजह से। और तू अगेन समझा तू
2: तो वही। दूसरी ओर अपराजिता की माँ ने भी अपराजिता और ललित को एक करने का फैसला कर लिया है, जिससे इनकार कर रहे हैं अपराजिता के पिता।
3: मान लीजिए ये सब आप क्यों करती है उसके साथ? उस दिन तो एक ढाल बनकर उसके सामने खड़ी थी और आज इस दर्द की तलवार बनकर उसे काट रही।
1: हाँ आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं दर्द की तलवार बनकर काट रही हूँ, इसलिए क्योंकि आप माँ नहीं, आप मेरी नजरिए से नहीं देख रहे हैं। आप मेरी ओर आई हो, देखिए ना, आपको के साथ कोई नहीं है, आपको अकेली है। हम लोग कब तक उसके साथ रहेंगे? आप कितनी बार बताओ, आपको भाई बहन सब शादी कर लेंगे, अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाएंगे, हम लोग हैं तब तक पप्पू के साथ खड़े रहेंगे। फिर आप मेरे साथ पप्पू के साथ भी पति होना चाहिए ना, कभी बीमार पड़ गई, कभी कुछ जरूरत पड़ी, कोई मदद कर रही थी मैं वहां उसके साथ, पर होना चाहिए उसका पति होना ही चाहिए। ऐसे दर्द नहीं दे रही हूँ, आने वाले दर्द से उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ।
3: मानती है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसे
1: पहले ऐसे आपकी सारी बातें मानी।
4: उसे ऐसा लगता है कि माँ है, मतलब वो उसकी फैमिली में, अपराजिता की फैमिली में सॉफ्ट टारगेट है बेसिकली। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो ऐसे लोग होते हैं वो अपने सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं कि किसको पटाने से हमारा काम चल सकता है, तो वो टारगेट ललित को मालती लगा। और डे वन से उसकी माँ भी यही बोलती है, मतलब माँ ने ही सजेस्ट किया था कि यार तू जा उसकी माँ को टारगेट कर, क्योंकि वही है जो तेरे कब्जे में आ सकती है। तो फिर वो अपने को चप्पल से मारना, वो सब ड्रामे करना, माफ़ी मांगना, वो सब किया उसने। एंड कहीं वो कमज़ोर कड़ी उसको मालती में नज़र आई, तो उसी के ऊपर वो अपना दांव खेल रहा है बेसिकली, वो और उसकी माँ।
2: ऐसे में बहुत जल्द छोटी बहना की शादी की तैयारियां शुरू होने वाली है और घर में रखी गई है पति पत्नी के लिए पूजा, जिसमें ललित को भी बुलाया गया है। और ये देखकर अपराजिता हैरान है, तभी तो अपराजिता ने भी ललित को दे दिया है बड़ा शौक।
5: जल्दी से तैयार हो, कुंवर कलेवा की रस्म शुरू होने वाली है। ललित जी भी आ रहे हैं,
6: अपनी ललित को भी बुला।
7: और क्या बीवी जी, बड़े जवाई को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुंवर कलेवा की रस्म तो उसका हक होता है। दिल तो तुम मेरा ले चुकी हो, अब ये तोहफा भी छोड़
6: दो। उसे तो आप मुझे ले ही चुके, अब ये तोहफा भी छोड़
7: दो। डिवोर्स की पहली कोर्ट हियरिंग,
5: तो अब मेरी भी तो ये कोर्ट केस वापस लेगी या इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।
2: ऐसे में देखना होगा कि क्या अपराजिता अपनी माँ की बात मानकर ललित को डिवोर्स देने का फैसला

0: अच्छे से मत खाने के रुद्रो आकाश अपने हाथ से खुद से परोस के खाएंगे क्या? लेकिन ये तो कान नाक और गले के डॉक्टर है ना।
1: हाँ तो अब तो कुछ करना ही है तभी। ये जो स्पेशलिस्ट बनने के लिए पहले मेडिकल स्कूल पास करना है और मॉम ने की बिल्कुल आपकी बेटी की तरह।
0: हाँ हाँ मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं जानती मैं। मेरे बच्चे तो ऐसे ही बड़े हो गए, नील रुद्रो आकाश है ना।
1: तुम्हारे पास इतने पैसे है उसे देने के लिए? मैंने तो सुना है वो एक शो का बहुत चार्ज करता है, बहुत हाई डिमांड में है।
2: वो तो है, लेकिन उसने बोला है कि हम जितना पे कर सकते हैं वो उतना ही लेगा।
1: अच्छा, और रोमियो और मैं भी जाएंगे।
2: अच्छी बात है, लेकिन एक बात बता दीजिए, अचानक से ईशान तुम लोगों पर इतना मेहरबान है?
3: ऐसे में जब नौनिका की बेटी ये बताती है कि ईशान उनकी फ्रेशर्स पार्टी में परफॉर्म करने वाला है, वो भी कम पैसों में, देखिए कैसे शुरू हो जाते हैं देवरानी के ताने।
1: मैंने तो पूछा नहीं, लेकिन अब की बार जब भी वो आएगा तो मैं पूछ के बता दूंगी, बोलूंगी कि मेरी छोटी माँ जानना चाहती है। एक काम कीजिए, आप ही पूछ लीजिए।
2: हाँ हाँ उड़ा लो मजाक, अब क्या ही कर सकते, बच्चे जो देखेंगे वही तो सीखेंगे।
1: कैसी बातें कर रही है? लड़का तो अच्छा है, दिल का साफ है ना?
2: दिल का कितना साफ है पता नहीं, लेकिन उसका दिन जरूर आ गया है किसी पर।
1: हाँ वो तो होगा ही, 8 साल यहाँ कोलकाता में रहा है, यहाँ के स्कूल में स्टडी की है उसने।
2: कोलकाता के साथ तो है ही अटैचमेंट, लेकिन अब नौनिका बोधी के साथ भी अटैचमेंट है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्हीं की वजह से तुम लोगों के कॉलेज प्रेशर में भी वो आ रहे हैं।
1: थोड़ा सोच समझ के बात किया कर, सुनने में अच्छा नहीं लगा, और वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया है, शायद वो मेरा शुक्रगुजार है इसलिए।
2: बाबा बोलिए, मैंने ऐसे क्या बोल दिया?
0: बाबा तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो?
1: एक सेकेंड, अगर अटैचमेंट है भी तो उसमें गलत क्या है, होने दीजिए ना। जैसे मॉम आज आपने इतना टेस्टी खाना वेस्ट कर दिया।
0: हाय गोपाल, ये खाने वाली बात समझ में नहीं आई, तुम लोग आज मिले थे क्या उससे? पर तुमने बताया क्यों नहीं मुझे?
1: अरे कल जाने वाला था लेकिन वो आज ही जा रहा है, मैंने उसको कुछ टेस्ट प्रेस्क्राइब किए थे जिसकी रिपोर्ट्स आ गई थी, उसने कहा था कि बस जाने से पहले मैं एक बार उसका चेकअप कर, इसलिए।
2: अच्छा तो आजकल डॉक्टर जाते हैं पेशेंट के पास?
4: इस सीन में ऐसा हो गया कि नौनिका ईशान से मिलती रहती है और मुझे नहीं बताती है, तो मैं कोई और डाउट तो नहीं कर रही हूँ, जैसे श्रेया के माइंड में डाउट आ रहा है या कोई भी ऐसे सोच रहे, मीडिया उछाल रही है जो बातें, ऐसा डाउट मेरे मन में नहीं है। मेरे मन में बस ये है कि भाई जो भी है फैक्ट मुझे बताओ, और मेरा बेसिक गुस्सा तो अलग लेवल का ही है, जो मेरा बेटा शादी करके हमारे घर से अलग रह रहा है, तो उसके लिए भी मैं नौनिका को ही जिम्मेदार समझ रही हूँ। तो इस सीन में तो यही हुआ है कि हमें बगैर बताए वो उसके साथ चली गई खाना खाने, भले खाना खाया नहीं खाया लेकिन बताया नहीं है हमें घर में।

0: टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में मई रूहानी के आगे आकर खड़ी हो गई है एक मुश्किल, जहाँ एक तरफ घर में होने वाली है तेजस्वी और गुरु की शादी की रस्में, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल में आ गया है एक काफी सीरियस केस जो कि रूहानी के जानने वालों का है। ऐसे में देखिए कैसे रूहानी कश्मकश में है कि वो इस शख्स का ऑपरेशन करे या फिर घर जाकर अपने पति की शादी की रस्मों को रोके।
1: रूहानी हमारे बेटे को बचा लीजिए, देखिए आप खून

इंजीनियर का परीक्षा देने जा रहा था, बोल रहा था अच्छे नंबर से पास हो जाएगी ना तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, पर परीक्षा ही रद्द हो गई। उसका सर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, जस्ते छलांग लगा के कोई तो घबराओ मैं, पता है दुनिया में ना सबसे ताकतवर एक माँ होती है। मेरे सीने में वो लोहे का सरिया बहुत अंदर तक चला था, हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन घबराओ मत, उसे जोर से देखो मैं बच्चे को कुछ नहीं।

0: जंगल जीवी के सीरियल पति अनाड़ी में प्रेम अंजलि के कहने पर धनिया कर रही है बीमार होने की एक्टिंग, और देखिए कैसे वो अपने घर किशोरी को ले आई है जहां वो लालच में अपनी ही बेटी का घर तोड़ना चाहती है। लेकिन भाई लाला अपनी किशोरी से कैसे दूर रह सकता है, तभी तो देखिए कैसे उसके पीछे पीछे वो भी उसके घर आ गया है और बस ये चाहता है कि वो उसके साथ उसके घर लौट जाए। ऐसे में ये सब देखकर किशोरी की बहना बेहद ही ज्यादा खुश हो रही है।
1: अभी जैसे कि अभी ये ट्रैक चल रहा है कि लाला हमारे घर में आ चुका है और वो लाला हमारे घर में आके बोल रहा है कि मैं दिलवाला हूँ तो दुल्हनिया को लिए बगैर तो मैं जाऊँगा नहीं। अब वो जिद पे अड़ गया, मैं बोल रही हूँ उसे चले जाओ चले जाओ चले जाओ, बट वो जा नहीं रहा, मान नहीं रहा। तो उसने एक जुगाड़ निकाल लिया है कि मंजरी जी से ऐसे बीमार होने का नाटक करता हूँ और ऐसे करके समथिंग लाइक दैट, तो मैं वो सुन लेती हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है कि मतलब इतना केयर कर रहा है मेरे लिए जा नहीं रहा है, बीमार होने का नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है अपनी जीजी से, आज तक जिसने झूठ नहीं बोला, हमेशा मतलब मंजरी जीजी का प्यारा लाडला रहा है, और उसने मेरी वजह से ये प्राउड की बात नहीं कि झूठ बोला, लेकिन मुझे बचाने के लिए मुझे ले जाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया, जो एफर्ट डाला है उसने, तो उसकी वजह से मैं उसे थैंक यू बोलती हूँ और मतलब ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ मैं थोड़ी सी।
0: भाई इन सब के बीच किशोरी को ये पता चल गया है कि उसकी माँ नाटक कर रही है, ऐसे में वो कैसे मंजरी का पर्दाफाश करेगी ये देखना दिलचस्प होगा।
2: गोलमाल है।

0: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में भाई फिर एक बार राध्या मुश्किलों का सामना कर रही है क्योंकि हो गई है उसकी किडनैपिंग। और ये बात जैसे ही घर वालों को पता चलती है, देखिए कैसे सभी के सभी हैरान हैं। भाई उन्होंने राध्या की किडनैप्ड फुटेज देख ली है जिसके चलते उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। ऐसे में एक अनजान शख्स उनके घर में आकर उन पर रौब जमा रहा है।
1: अगर रात को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। क्या चाहिए तुम्हें बोलो, पैसे चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, जो चाहिए वो दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन रात को देखो साथ तुम्हारे क्या बिगाड़ा है, क्यों किडनैप की तुमने उसे?
2: माय गॉड, ना गुस्सा सोच के नहीं
0: दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में भयाज नाहर और रूही एक ही स्कूल में है क्योंकि इनके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन इनका आमना सामना आज भी होते होते रह गया। भाई कहानी में सालों का लीप तो आ गया है लेकिन लीप के बाद भी रूही और नाहर एक साथ आ नहीं पाए। ऐसे में रूहान की दादी मिष्टी को डांट लगा रही है क्योंकि रुचिता के चलते रूहान को चोट जो लग गई है।
3: सीन में ये हो रहा है कि नाहर दिल्ली आया है अपने बिजनेस के सिलसिले में, लेकिन रूहान जिद करता है कि कोई कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है, उसके लिए वो जिद करता है कि मुझे भी जाना है। और दादी की जिद की वजह से मुझे उन दोनों को भी लेकर आना पड़ता है डेली। और रूहान के साथ कुछ तो हादसा होता है, उसे चोट लग जाती है तो मुझे फ़ोन आता है उसके जो जहाँ पे कंपटीशन है, तो मुझे भी आना पड़ता है। और वहाँ ऐसा होता है, हिट एंड मिस दिखाया है, रूही भी वहाँ पे है और मेरी बेटी भी वहाँ पे रुचिता, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि हम शायद मिल ले एक दूसरे को, रूही और मैं आमने सामने हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और रुचिता के साथ एक सीन है, दो तीन सीन्स है एक्चुअली, एक स्ट्रांग फीलिंग हम लोग एक कनेक्शन फील होता है दोनों को, उसको भी लगता है कुछ कि इस इंसान से तो कुछ तो कनेक्शन है, मुझे भी वैसा लगता है। लेकिन रूहान को चोट उसकी वजह से लगती है ऐसा पता चलता है मुझे, तो मैं भी थोड़ा डांट देता हूँ। तो ऐसा कुछ बहुत ही फनी भी है और इंटेंस सीन भी है।
4: अब संडे की इस छुट्टी का तो मतलब ही है रिलैक्सेशन, तो आप लोग भी बैठ जाइए आराम से अपने टीवी स्क्रीन के सामने और यहाँ हम परोसेंगे आपको एंटरटेनमेंट का फुल ऑन डोज। तभी तो संभाल कर रखी है हमने आपके लिए स्पेशल स्टोरी। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, मैं नहीं बताऊंगी आपको, सीधा लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर। गेट सेट गो।

0: लगान के 25 इयर्स। आमिर खान प्रोडक्शंस का दमदार सेलिब्रेशन।
1: दोबारा मत पूछना, निकम्मा किया इस तरह।
0: जश्न में लगा सितारों का मेला। आमिर खान की फिल्म लगान और उनके प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शंस ने पूरे कर लिए हैं 25 साल। ऐसे में इस खास मौके पर रखी गई दमदार पार्टी, जहां पर दिखे बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार। भाई आमिर खान की फिल्में हमेशा ही दर्शकों का दिल छू लेती हैं और ऐसी ही फिल्मों को वो प्रोड्यूस भी करते हैं। ऐसे में फिल्म और प्रोडक्शन दोनों ही साथ में कामयाब होना ये एक फख्र की बात है। ऐसे में बीती शाम आमिर खान ने इस जश्न को अपने सभी करीबी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया, जहां आमिर खान के साथ नजर आई बहुत ही जल्द होने वाली उनकी बीवी गौरी स्प्राइट।

और इसी के साथ साथ नजर आया आमिर खान का पूरा परिवार भी। जी हाँ, यहाँ पर खास मेहमान बनकर पहुँची उनकी बेटी आयरा, जो नजर आई अपने हस्बैंड नुपुर संग, और उसी के साथ साथ दिखे उनके सबसे बड़े बेटे जुनैद खान।

इसके अलावा इस जश्न में खास मेहमान बने सलमान खान, जो नजर आए बेहद ही नेवर बिफोर वाले लुक में। जी हाँ, बदल गया है सलमान खान का अंदाज, और जरूर ये उनकी आने वाली फिल्म के लिए ही होगा। जरा देखिए तो, इस ब्लैक कलर के आउटफिट में, जैकेट और जींस में वो लग रहे हैं बेहद ही कमाल।

साथ ही नजर आई करीना कपूर भी, जो आमिर खान की काफी पुरानी दोस्त हैं और उनके साथ कई फिल्मों में नजर भी आ चुकी हैं।

0: देखा। खुल के जीने का सलीका हमसे सीखो, प्रतिभा रांटा। जूही चावला जो पहुंची अपने हस्बैंड संग।
1: आओ तुम भी ले लो मजा, वरना दूर खड़े।
0: इसके अलावा आली फजल, ऋचा चड्डा। करण देओल, राजवीर देओल। इमरान खान जो पहुंचे अपनी रूमर गर्लफ्रेंड लेखा संग। इसके अलावा शबाना आजमी, जावेद अख्तर। साक्षी तनवर,

भाई हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आमिर खान की फिल्में आपको यूं ही एंटरटेन करते रहें और इस तरीके के जश्न में सितारों का मेला लगता रहे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: तो फिर चलिए आपकी संडे की इस छुट्टी को हम बना देते हैं और भी एंटरटेनिंग। अब आप पूछेंगे कैसे? जी हाँ, लेकर चल रहे हैं हम आपको आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर, जो है सितारे से मुलाकात। अब किससे की है हमारी टीम सास बहू और बेटा ने एक खास मुलाकात? इनसे इनसे इनसे ध्यान से देखिए इन्हें। जी हाँ, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं इन्हें और ये तो कर रहे हैं आज हमारी टीम संग ढेर सारी बातें। सो गेट सेट गो।
1: के भाई का दर्शन यश की रियल दुनिया

0: के बेटे संग एक दिन सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं पति अनाड़ी में यश का किरदार निभाने वाले हिमांशु, जिनके साथ आज हम पूरा एक दिन बिताएंगे, जानेंगे उनके फिटनेस का राज, करेंगे उनके होम स्वीट होम की सैर, जाएंगे घर से सेट तक, मिलेंगे उनकी रियल फैमिली से और होगी मस्ती अनलिमिटेड, क्योंकि यहाँ डे आउट के साथ साथ डांस मस्ती भी खूब है। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत और सीधा चलते हैं हिमांशु के घर पर। वैसे हिमांशु अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं, भाई शूटिंग पर भी जाना है इसलिए जल्दी वाली एक्सरसाइज आज हिमांशु कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनका ये वर्कआउट सेशन।
1: हिमांशु हमारे साथ है और हिमांशु के दिन की शुरुआत कैसे हो रही है वो आज हम देखेंगे। और फिलहाल तो एकदम फिटनेस वाले आउटफिट्स और वर्कआउट की सेशन की तैयारी में है हिमांशु, राइट?
2: अभी जाऊंगा, बस मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा। वैसे तो मैं जिम जाता हूँ बट अभी जिम मेरी हिल डेवलपमेंट में गई है तो मुझे वॉक ही करना पड़ रहा है। थोड़ी तबीयत भी डाउन है मौसम की वजह से, सो चलो करते हैं वॉक।

0: ओके हेलो राधे राधे। सो बेसिकली मैंने क्या है, थोड़ी बेसिक एक्सरसाइज की है, थोड़ा रनिंग किया है, तब डाउन है। रनिंग करने के बाद स्ट्रेचिंग की है, योगा किया है, क्योंकि एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं ये करके बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, मेरी तबीयत पहले से भी ओके लग रही है मुझे। सो यस दैट्स इट। और मैं अभी यहीं से वॉक करता हूँ, पास मेरा घर है तो मैं मेरे घर जाऊँगा, और आप भी मेरे साथ चलिए।
1: तो भाई एक्सरसाइज का ये सेशन हुआ पूरा, अब चलते हैं हिमांशु संग उनके घर पर और करते हैं इनके आशियाने की सैर।
0: तो आप लोग मेरे साथ वॉक करते करते पहुंच चुके हैं मेरी सोसाइटी में, और यहाँ आपको हर तरफ बिल्लियाँ बिल्लियाँ दिखेंगी। ये सब मेरे दोस्त हैं, सबसे मिलता हुआ जाता हूँ और आपको मिलवाता हूँ, चलो। हेलो, से हाय, हाय बोलो।
1: वैसे तो हिमांशु मेरठ के रहने वाले हैं, लेकिन काम के चलते अब मुंबई में है इनका बसेरा, और ऐसे में देखिए कैसे मॉर्निंग में ये हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं।
0: अभी मैं बाहर से वॉक करके आया हूँ, तो सबसे पहले मैं ये चिया सीड्स पीऊँगा, मैंने रात को गला के रख दी थी, और उनके साथ ये ड्राई फ्रूट्स जो मैंने रात को गला दिए, थोड़ा भी वॉश करके लाया हूँ, इन्हें मैं खा लूँगा। वैसे तो मैं बेसिकली मथुरा से ही हूँ, तो वहाँ तो मैं सुबह सुबह हैवी खाना खाने को मिलता है, वहाँ पर हम सुबह सुबह समोसा खावे हैं, कचौड़ी खावे हैं, पर यहाँ पर थोड़ा हेल्दी रहना पड़ रहा है। हम सीख गए हैं कि हमें हेल्दी रहना ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है हेल्दी रहना, तो हेल्दी हेल्दी चीज़ें खानी पड़ती हैं। तो हमारे वहाँ पर तो हम खूब यही सब चीज़ चापे हैं, दवा के समोसा कचौड़ी पकौड़ी। तो मेरे यहाँ के मुझे जो भी देख रहे होंगे, बिनके आज माफ़ी, अब इन चीज़ें ट्राई करो, समोसे वाले मारियो मत सुबह सुबह, ठीक है।

तो बेसिकली अभी क्या लाइफ के थोड़े शेड्यूल्स चेंज हो चुके हैं। वैसे तो मैं मथुरा को बट यहाँ पे 3-4 साल दे रहा हूँ। बेसिकली मैं एक इन्फ्लुएंसर हुआ हूँ, लोग मुझे जाने काफ़ी जानते होंगे। मैं इन्फ्लुएंसिंग पे काफ़ी सारे ऐड कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, अच्छा खासा कर रहा हूँ। फिर याद हाँ इसके बाद मुझे इन्फ्लुएंसिंग के थ्रू कुछ कैमियोज भी मिले छोटे मोटे, लेकिन ये मेरा पहला शो है जिसमें मैं कंटिन्यूटी कर रहा हूँ। प्रोडक्शन वालों ने, चैनल वालों ने मुझे समझा, चांस दिया, दैट इज़ बिग थिंग फॉर मी। और अभी थोड़े शेड्यूल चेंज हो गए हैं, मुझे एक प्रॉपर टाइमिंग पे रोज शूट के लिए जाना पड़ता है, तो हेल्दी रहना पड़ता है। आपको एक एनर्जेटिक वे में अपना परफॉर्मेंस देना होता है, उसके लिए मुझे बहुत प्रिपेयरिंग पहले से करनी होती है, एक शेड्यूल तैयार करना होता है। 9 बजे की शिफ्टिंग है तो कैसे 7 बजे जग के कैसे कैसे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके खाना पैक करके निकलना है, पूजा करनी है, भगवान जी का नाम लेके आशीर्वाद लेके निकल जाना है, रोज़ थैंकफुल होना है भगवान के लिए जो जीवन दिया है, ये मैं काम कर रहा हूँ। मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। क्या होता है बेसिकली, मैं शूट कराता हूँ, जैसे ऑफ होता है मैं पहले से ही ब्रांड से डील करके रखता हूँ कि उस दिन मेरी छुट्टी है तो मैं डबल कमाई करता हूँ। तो ये मेरा स्मार्ट वर्क हो गया। तो चलिए अब जल्दी मैं फ्रेश होता हूँ, चेंज करता हूँ, फिर हम निकलते हैं सेट के लिए। तो मैं फटाफट से नहा के आता हूँ।

0: भाई झटपट से रेडी होकर अब हिमांशु कर रहे हैं तैयारी सेट पर जाने की, लेकिन उससे पहले करते हैं इनके घर की सैर, कैसे इन्होंने अपने इस घर को सजाया है।
1: तो अब मैं नहा धो के हो चुका हूँ तैयार, और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा छोटा सा घर, जो मेरा छोटा सा आशियाना है, और मैं दिखाऊंगा आपको क्या क्या करता हूँ, और करते करते हम निकलते हैं यहाँ से। तो ये मेरा छोटा सा कमरा है, इतनी जगह मिलती है इधर, इतनी पॉश एरिया में, तो अभी के लिए यही इतना ही बजट है, यहीं रहते हैं। यू कैन सी मैंने ये खुद प्रिपेयर किया है, और ये मेरी अलमीरा है, इसमें कपड़े रखे हुए काफ़ी, इसमें जो नॉर्मली पहनता हूँ ये इतना ही है। धीरे धीरे अमीर होंगे हम। इसके बाद ये अपना छोटा सा आशियाना है, ये आपने देख लिया होगा, सुबह सुबह जगते ही, मतलब मैं मेरे छोटे से घर में देखता हूँ कि इन दिस होम यू कैन लव लव वन अनदर, बी रेस्पेक्टफुल, बी हैप्पी, वेक अप स्माइलिंग, एम्बैरेस लाइफ। सो यस, ये चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं खुद के लिए कि आप खुश रहो अपने छोटे से घर। ये मेरी छोटी सी किचन है, ये भगवान जी का मंदिर है, मैं अभी पूजा करूँगा, फिर हम खाना पैक करेंगे, पहले मैं पूजा कर लेता हूँ फटाफट।

0: कई घर की सैर भी हो गई और भगवान जी की पूजा भी। अब झटपट से टिफिन पैक कर चलते हैं सेट की ओर।
1: ये मैंने पहले से खुद ही खाना प्रिपेयर करके रखा हुआ है। ये रोटी है, ये सैलेड है चने का, जो रात को चने खिलाए थे उन्हीं को सुबह बॉयल करके उसमें टमाटर प्याज डाल के, और ये थोड़ा सा सैलेड है, और ये इसमें दाल है। इसके अलावा छाछ भी है, लेकिन मेरी तबीयत खराब है, मैं छाछ इसलिए लेके नहीं जाऊँगा घर से। नहीं तो दही छाछ भी जरूरी है ताकि आंतरिक बॉडी को तरी मिल सके। दैट्स इट। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं सेट पे बैग में क्या क्या लेके जाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक टॉवल लेके जरूर जाता हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे भरोसा नहीं होता है बारिश कभी भी हो जाए। टॉवल है तो अम्ब्रेला भी जरूर होगा कमरे में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज की रोज़मर्रा में होती है, वो चार्जर और एयरपॉड्स, ये भी मुझे रख के लेके जाने होते हैं। ये हेयर स्प्रे है बालों के लिए, मेरा ड्रायर उधर ही रखा हुआ है। ये टेक्सचर पाउडर है बालों के लिए, ये इसमें थोड़ा सा मेकअप करने के लिए जो मेकअप वहाँ करना पड़ता है। तो अपने कुछ प्रोडक्ट हैं अच्छे वाले। ये कॉन्ग, नॉर्मल छोटे मोटे सामान, बिस्किट, भूख लगती है रास्ते में कभी कभी तो मन कर गया, और ये पानी की बोतल जो कि बैग बहुत इम्पोर्टेंट है रास्ते में, और ये सब अपना खाना है वो अलग, तो सारा इसी में पैक हो जाएगा। और बैग इज रेडी। सो नाउ वी आर गोइंग टू अवर सेट।

0: वहीं घर से सेट तक का ये सफर जरा लंबा है और ऐसे में रास्ते से हिमांशु ने ले लिया है गर्मा गर्म समोसा, जिसे खाकर एंजॉय करते हुए अब ये सेट तक पहुँचेंगे।
1: तो ये मैंने ले लिया है गर्म गर्म समोसा और हम टेस्ट करेंगे। अरे वाह, बहुत सही है। कम से कम ये है ना एक साल बाद खा रहा हूँ आराम से। हाँ, एक साल तो होगा और बहुत अच्छा है। बहुत टाइम से अपने घर भी नहीं गया, कहाँ खा के आया हूँ। अब हम बचा हुआ है ना गाड़ी के अंदर खाते, क्योंकि लेट भी हो रहा है और गर्म गर्म हो रहा है।

0: हिमांशु संग हम पहुंच गए हैं पति अनाड़ी के सेट पर, जहां अब हिमांशु यश के किरदार में ढलने वाले हैं।
1: तो हम पहुंच चुके हैं हमारे सेट पर और हमने देखा हुआ है यहाँ पे कैसे हिमांशु यश में बनता है, और फिर मैं यश बन के आपसे वार्तालाप करूंगा, दिखाता हूँ कि मुझे अब कौन सी ड्रेस मिलेंगे, क्या मुझे स्क्रिप्ट मिलेगी। तो चलो चलते हैं। अभी हम धीरे धीरे करके हमारी पूरी कास्ट के साथ मिलेंगे, तो पहले हम चलते हैं हमारे मेकअप रूम। मेकअप रूम में हम बनेंगे पहले यश। यश बनने के बाद हम सारे कैरेक्टर्स के साथ मिलेंगे, और मुझे पता है सबसे ज़्यादा आप एक्साइटेड होंगे लाला भैया से मिलने के लिए। मैं और मेरे बड़े भैया दोनों तैयार होते हैं। मेरे बड़े भैया जो निशांत का कैरेक्टर निभा रहे हैं, और अभी मैं फटाक से आपको यश बन के दिखाता हूँ, फिर हम मिलते हैं सबके साथ। ओके, तो ये है मेरा मेकअप रूम, और ये मेरा और निशांत भैया का है। तो अभी मैं फटाफट से चेंज कर लूंगा और यश बन जाऊंगा, फिर हम नीचे मिलते हैं आपसे।
0: तो भाई झटपट से हिमांशु ने चेंज कर लिया है, और मेकअप की शुरुआत करने से पहले आ गए हैं यश के निशांत भैया, जिनके साथ है इनकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग। तो आइए देखते हैं इन भाइयों का टशन।
1: सबसे पहले मैं निशांत भैया से आपको मिला दे। इधर आ। ये मेरे नकारात्मक भैया, लेकिन रियलिटी में सकारात्मक है बहुत ज्यादा, और इनके जो हाथ है ना वो कानून से भी ज्यादा लंबे हैं। एक बार हाथ दिखाओ अपने,
2: कुछ लंबे नहीं।
1: देखो एक बार हाथ ऐसे सीधा। मैं सेट पे जब मेरे सीन चलते हैं ना, तो ये मेरे को इस हाथ से कम 36 बार मारते होंगे। मेरे सारे क्लोजअप में आप देखते हो, लगते भी हैं बहुत सारे। हाँ जा यश जा,
2: बेसिकली सिग्नेचर हमारा।
1: हाँ
2: ऐसे करके स्टार्ट,
1: और फिर मेरा ये वाला होता है, ये यही वाला होता है मेरा। तो बस ये
2: बहुत यार, क्या होता है ना कि एक जो बड़ा भाई होता है ना, वो हमेशा रौब जमाता है घर में, और अगर उसके सामने मालूम उसका छोटा भाई है तो फिर तो बात खत्म ही हो गई।
1: लेकिन बड़ा भाई चोरी करता है।
2: अब वो क्या है कि ना, जो राइटर लिखेंगे वो करना पड़ेगा।
1: देखो कुछ भी करो निशांत भैया, लेकिन लाला भैया को परेशान मत किया करो, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत अजीज है, और आप उनको बहुत परेशान करते हो, शरारत करते हो, दैट इज वेरी बैड।
2: यार अब मुझे ना पैसे उसको परेशान करने के मिल रहे हैं।
1: हाँ मैंने डिसाइड किया है कि सब लोगों से मैं पूछूंगा मेरे लिए दो शब्द।
2: हाँ ये बात मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि जब भी हम एज एन एक्टर ना रूम शेयर करते हैं किसी के साथ ना, तो तब बहुत रेयर होता है कि ना बॉन्डिंग बनती है, और ये बहुत ही सीक्रेट है एक्टर्स का जो मैं बताऊंगा। हर किसी के साथ में, हर शो में बॉन्डिंग नहीं बनती है। तो मेरे अगर मैं पिछले 2-3 शो में देख लूँ, तो ये एक शो है जहाँ पे मुझे जो कहूँ कि जहाँ मैं रूम शेयर कर रहा हूँ है ना, और प्लस मेरा छोटा भाई है, अब तो रियल में भी है और ऑन स्क्रीन भी है, तो बढ़िया बॉन्डिंग है, बढ़िया ट्रस्ट है, और सीन वाइज वी फील गुड टू कनेक्ट विदाउट एनी प्रॉम्प्ट या वैसे कुछ। तो वो सब चीज़ें ना बहुत ही नेचुरली हो रही है। सो प्लस हाँ, एज एन एक्टर बहुत ही बढ़िया लड़का है, बढ़िया एक्टर है, मुझे भी इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कभी कभी।
1: मैं तो सीधा साधा बच्चा हूँ।
2: और अच्छाई तो मतलब क्या बताऊँ, ये हमारे कलयुग के राम है, ऐसा कहूँ तब भी चलेगा, इतने सीधे।
1: ये और माँ मिलके क्या है ना, मेरे को हमेशा नचाते हैं सीन में, ये मुझे परेशान करते हैं। तो आज मैं पहली बार थोड़ा मौका मिला है, तो मैं आपको थोड़ा नचा के परेशान कर लेता हूँ, तो मेरे स्टाइल में थोड़ा सा करेंगे, ठीक है
2: बेटा? तुम मजे लेने वाले
1: हो। कुछ आपको कुछ नहीं करना है, बस पहले बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो भगवान
2: जय श्री कृष्ण।

0: सो अब मुझे निकलना है शॉट देने के लिए। हिमांशु अब तुम कंटिन्यू करो। और बेटा आज तुमने जो मजे लिए ना मेरे, मैं याद रखूंगा। हाँ चल सिल।
1: अब बारी झटपट से रेडी होने की, यानी कि पूरी तरह से हिमांशु से यश के किरदार में ढलने की, जिसके लिए शुरू हो चुका है हिमांशु का मेकअप।
2: बेसिकली मुझे सागर जी ने बोला, पहले तरह ये सागर जी इन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें इतने मेकअप की जरूरत नहीं है। तो पहले मैं टोनर मोनर यूज करता था, फिर मैंने छोड़ दिया। तो मैं सबसे पहले ना मॉइस्चराइजर लगा लेता हूँ, फिर सनस्क्रीन लगा लेता हूँ, बाकी का उसके बाद का सागर भाई संभाल ही लेते हैं। तो मैं सागर भाई, आप मेकअप कर रहे हो, मेकअप करते करते प्लीज दो शब्द मेरे लिए कुछ बोलोगे, दो शब्द कुछ भी मेरे लिए जो आपको अच्छी लगती हो, मेरे अंदर खूबी लगती हो, बुरी भी चीज़ होना तो वो भी बोल सकते हो।
3: बुरा ऐसा कुछ नहीं है सर, में सर का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइट है, मेरे साथ बहुत ही मतलब भाई के जैसे रहते हैं।
2: यश को एसेसरीज भी दिए हैं। एक्चुअली में क्या है, यश पढ़ने वाला बच्चा है, तो उसको समय समय पर अपना समय देखना पड़ता है कि समय कौन सा चल रहा है। उसी समय के दौरान मुझे मेरा बड़का भैया निशांत भैया मुझे भगा देता है, जा पढ़ चल। काफ़ी सीन्स में आया भी है, मुझे लगा कट हो जाएगा, पर अच्छे से मुझे लताड़ा जाता था, जा चल चलिए घर में ये चीज़ हो रही, देख मत जाके पढ़ाई कर चल। मैं चला जाता हूँ पढ़ने, बाकी का टाइम लाला भैया की चिंता तो मुझे सताती है।

0: अब हिमांशु यश के किरदार में ढल चुके हैं और अभी शूटिंग शुरू होने में थोड़ा समय है। ऐसे में देखिए कैसे आज हिमांशु मिलवा रहे हैं अपनी रियल फैमिली से, जिनके साथ इनके बन गए हैं रियल वाले रिश्ते। तो आइए एक एक कर मिलते हैं इनकी मम्मी, इनकी बहन, भाई और बाकी सभी कलाकारों से, जिनके साथ हो रही है डांस मस्ती भी और ढेर सारी बातें भी।
1: तो अब मैं आपको बुलाता हूँ मेरी ऑन स्क्रीन बहन से राशि से, इधर इधर। तो जल्दी से इनको बताएं हिमांशु के बारे में कि हिमांशु कैसा है।
2: हिमांशु मेरा एक्चुअल में भाई है, बहुत स्वीट है, जैसा कैरेक्टर है वैसा ही है ये। हाँ थोड़ा सा भोला है पर बड़ा प्यारा है, जैसा ये मेरा है। अरे हम 24/7 मस्ती करते रहते हैं, जैसे सीन हमारा हो गया बस हम एक दूसरे को लुक देते हैं, क्या ऊपर चले खाए पिए एंजॉय करें, रील बनाए, बस यही करते रहते हैं हम पूरा टाइम। सीन अलग है, सीन के बाद टाइम पे तो हम हमेशा अलग ही अलग रहते हैं, मेरा सीन अलग रहता है, इसका सीन अलग रहता है, पर बिफोर जैसे सीन खत्म हो गया वी बोथ आर टुगेदर।

0: अब हम चलते हैं, रास्ते में हमें कौन कौन मिलता जाता है, तो आइए। गुनगुन इल्लू
1: ये पीछे कैमरे के पीछे दोनों हंस रहे हैं मुझे ऐसी शक्ल में देख
0: के। तो मैं मेरी
1: आइए आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कक्ष में, प्लीज पधारिए। जो फिलहाल बहुत फेस्टिव है कि आई वाज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रेडी एंड दिस मनुष्य हैज क्लियरली डिस्टर्ब्ड मी।
0: या यू डिजर्व। तो मेरे बारे में
1: मनुष्य हैज क्लियरली डिस्टर्ब्ड मी।
0: या यू डिजर्व। तो मेरे बारे में बता, कुछ अच्छी चीजें बता मेरे बारे में, कैसे हो?
1: इंटरव्यू बंद करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, कुछ कुछ है नहीं कहने के लिए, क्या कहूँ। अच्छी चीजें बाकी बता देते कुछ, एक ही आता है मुझे तो यश के बारे में। ऐसे इसे कैमरा पास आइए जरा।
0: ये ना मेरा इंस्टाग्राम हैक कर रही है।
1: अगर आपको समझ में नहीं आया तो कृपया जाइए हिमांशु के इंस्टाग्राम पेज पे, चेक करिए कि मैं किस चीज के बारे में बात कर।
0: मेरी भांजी रियलिटी में है ना नेगेटिव है, तो इसकी बातों पे ध्यान मत देना आप, मैं को बात ही नहीं करनी इससे।
1: हिमांशु इज अ वेरी वेरी नाइस गाय, बहुत ही शरीफ बच्चा है हमारे सेट का, और बहुत ध्यान देता है और हमेशा पूछता है कि गुनगुन गुनगुन, मतलब हर चीज़ के बारे में, यू नो, ही इज वेरी काम, वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स एवरीबडी। सो
0: मैं तेरे को चॉकलेट लाऊं, ठीक है?
2: देख रही है जिन्हें बाल करने, तुम कहा कर रही है, छोड़ कहा कर रही है, रुक जाइए।
1: मैं मंजरी को कंप्लेंट,
2: ऐसे बालक
1: ये अत्याचार जो मेरे पे किया है ना, मैं मंजरी को कंप्लेंट।
2: बेटा मंजरी तो मेरे हफ्ते चढ़ी ना है, तेरे गालों ने फोड़ दूंगी। देख रही है बाल कर नहीं आती, उदा मचावे लग रहे हैं, शूटिंग करवे आए
0: जे मेरी माँ है,
2: खुश खूब उन्नति कर रहे हैं। ये प्यारी सी गुनगुन हमारी, ऐसी नोक झोंक तो हमें चलती है।
0: माँ इन लोगों को बताओ मेरे बारे में कुछ के मैं कैसा
1: हूँ।
2: मेरा बच्चा ही इज द स्वीटेस्ट एंड द मोस्ट क्यूटेस्ट पर्सन ऑन द सेट, ट्रस्ट मी ऑन दैट, है ना?
0: चॉकलेट ना मिला तो
2: प्योर सोल उसके चेहरे से जो रिफ्लेक्ट होता है ना, जो जिस तरह का किरदार वो कर रहा है यश का, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ही इज एक्चुअली एज प्योर एंड एज गुड एज यश, और आई वुड से बेटर देन दैट, है ना? बहुत बहुत प्यारा बच्चा है और ये सबका मान सम्मान करता है, सबका दिल रखना जानता है, इज ऑलवेज स्माइलिंग और सीखने का बहुत इच्छुक है, एंड आई एम श्योर कि आगे जाके ये बहुत बहुत महान कलाकार बनेगा, ऐसी मेरी दुआ है एज अ मदर एज अ को एक्टर।
0: मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं मेरे को माँ के साथ उनका फेवरेट स्टेप करना है, मैंने पहले भी उनको बता दिया है, एक वो एक लाला भैया बने थे राधा, तो माँ का अलग ऑडिशन चल रहा था नच बलिए का एक कॉर्नर में, और मैं क्या रहता हूँ ना, मैं शांत रहता हूँ, मैं सबको ऑब्जर्व करता हूँ, देखता रहता हूँ दूर से कि क्या चल रहा है ये सब, क्योंकि सब महिला है हमारे सेट पे, तो मैं महिलाओं को देख,
1: हाँ,
0: तो इसका चल रहा था ये ऐसे, इसका ऐसे चल रहा था ये क्यूट, लेकिन माँ का अपर लेवल पे, आई कैन शो यू, सुनो वो राधा रानी चल रहा है।
2: अरे मेरी क्या आदत है, हाँ जी मेरी आदत क्या है कि जब भी सॉन्ग चल रहा है कोई डांस, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे, मगर मैं कॉर्नर में मटकती रहूँगी, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांसिंग।

0: अब हम लोग चलते हैं हमारी मामी से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने, क्योंकि जो है वो मेरी मामी है। तो चलिए मामी। मामी मैं आपका आशीर्वाद लेने दोबारा आ गया सबके सामने। सबको जानना था मुझे, मतलब मुझे जानना था, आप मतलब इन लोगों को बताओ मेरे बारे में कुछ।
1: ये बहुत ही सीधा है, बहुत ही शरीफ है, और इसके कंटेंट जो होते हैं वो बहुत ही प्यारे से होते हैं, वो बस ऐसे होते हैं। मैंने इससे कहा ये क्यों कहते मामी, वो क्या है ना कि आजकल ऐसे ही कुछ है, तो ये बहुत बदमाश है।
0: तो हम साथ में मिलके यही करेंगे जो मामी को मेरी रील्स में पसंद है। हाँ। कैसे मामी, एक बार ऐसे करता हूँ, कैमरा खींचा और
1: ये बहुत बदमाश है। मतलब हमारे डायरेक्टर सर ने जब ये देखा तो कहते बहुत ही बदमाश हो तुम, कैसे कंटेंट बनाते हो। मैंने कहा कौन से वाले कंटेंट, हमने देखा ही नहीं था। और जब मैंने देखा बदमाश नहीं, लेकिन देखिए क्या है कि जो ट्रेंड चल रहा था बच्चे तो वैसे ही करेंगे, पर लेकिन करता बड़ा क्यूटली है।
0: थैंक यू मामी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ।
1: एक्चुअली मैं बताऊँ, सबसे पहले जब इसका फर्स्ट डे था और मैं शूट कर रही थी, आई थिंक 31 मार्च थी हमारी, एंड इसे ऊपर से आवाज़ देनी थी कि क्या हुआ फिर चला गया, एंड ही वॉज सो स्वीटली वेरी सॉफ्टली एकदम से बोला इसने क्या हुआ फिर से चला गया। मैंने कहा ये बच्चा कितना सॉफ्ट है भाई, ऊपर खड़ा है मैं नीचे खड़ी हूँ, इसको कितनी जोर से बोलना चाहिए। लेकिन बाद में पता चला कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है ये।
0: मेरे को लगा कि नेचुरल बोलना चाहिए क्योंकि मेरा भाई तो रोज ही खोता रहता है ना। मैं क्यों इतना ओवर ड्रामेटिक करूं, मुझे पता है मेरा भाई रोज खो रहा है, उसे ढूंढने जाना है। क्या हुआ, ठीक है जाता हूँ भैया, काम आ गया एक और मामी का।
1: मेरे को गया, चलो जाता
0: हूं। चलो भैया चलो ढूंढने उसको, चलो।
1: नहीं नहीं रियली, एक्चुअली ये जो पूरी फैमिली है पति अनाड़ी की, पता नहीं ये गॉड ग्रेस होता है कि कई बार अचानक ही सब चीजें बन जाती है। इतनी प्यारी बॉन्डिंग है, सभी लोग इतने मिलनसार है, इतने कोऑपरेटिव है, एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं, एंड टचवुड थू नज़र ना लगे इन सब में से किसी को, अपने काम के प्रति बिल्कुल तैयार खड़े रहते हैं। एंड हमारी डायरेक्शन टीम जो है वो इतना सपोर्ट करती है हमें, हमारे कैरेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, कि कहीं भी हम थोड़े बहुत भी हिलते तो वो कहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं, कुछ ऐसा करिए। तो यही चीज़ें होती है जो अच्छी आप लोग के पास पहुँच रही है, आप लोगों को पसंद आ रहा है, हमारे व्यूज मिलियंस में जा रहे हैं, एंड लोग हमारे क्लिप्स डाल रहे हैं, मैं अपनी स्टोरी पे टैग कर रही हूँ, एंड रियली थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार पति अनाड़ी को देते रहिएगा प्लीज।
0: ये मेरी मंजू जी हैं, और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे मेरे बारे में कोई दो शब्द कि मैं कैसा लड़का हूँ।
2: प्यारा लड़का है ये, मुझे बेचारा मेट्रो से मुझे लाना ले जाना इसी ने सिखाया है, तो ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत प्यारा लड़का है हमारे सेट का, स्वीट बॉय।
0: अभी क्या जीजी का शॉट लगने जाएगा तो वो और ज़्यादा बात नहीं कर पाएगी।
2: जीजी कहाँ, जीजी को चेंज करने के जा रहा
0: है सर, मंजू जीजी मंजू। नहीं तो हम लोग डांस भी करते
2: हाँ, मस्ती बहुत करते हैं सेट पे, बहुत मस्ती होती है, हम लोग साथ में कॉमेडी की रील्स बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी बकवासबाजी हम लोग करते रहते हैं ऑफ स्क्रीन, तो मज़ा आता है। ये ऑन स्क्रीन भी प्यारा ही है, मंजू जीजी के साथ साथ ही लगा रहता है ये तो। हाँ पूरा पूरा
0: जीजी, सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज निकाल लिया मैंने, बता देना कौन क्या कर रहा है पकड़।
2: बहुत बढ़िया यश, काम करने का इच्छा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है।
0: बस इनको सबको निकालो, माँ बाप को, मेरी माँ बहन जो भी सब। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ लाला भैया के साथ, जिसकी मैं शुरू से बात करता हुआ आ रहा हूँ आपके साथ, तो यही है जिनके लिए मैं जी रहा हूँ इस शो में।
3: अरे वाह,
0: इनके लिए ये
3: भाई है, ये सच में भाई बनाया मेरा शो में, और रियल में भी मेरा भाई है, और ये बहुत अच्छा काम करता है, आप लोग देखेंगे इसको, एंड जब भी इसके साथ सीन होते हैं तो बहुत मजा आता है, बहुत फन होता है।
4: तो देखा आपने, कुछ ऐसी है पति अनाड़ी की ये फैमिली, जिनके साथ रियल रिश्ते जुड़ से गए हैं। भाई अब बारी शूटिंग शुरू होने की और हमारे यश को अलविदा कहने की। उम्मीद है कि हिमांशु यूं ही अपने किरदारों से दर्शकों का मनोरंजन करते रहे।
0: तो चलो ठीक है, मेरा हो चुका है सीन का टाइम, मैं सीन करने जा रहा हूँ, और आई होप आपको हिमांशु के साथ मजा आया हो। आप ऐसे हिमांशु को प्यार देते रहिए, यश को भी प्यार देते रहिए, और बस आते रहिए, हम मिलते रहेंगे, हम आपसे मिलते हैं। तो राधे राधे, सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।
4: मुंबई से नुपुर माउची के साथ।
5: तो किस तरह बिता रहे हैं मन्नत और विक्रांत अपनी संडे वाली छुट्टी? वेल, इनकी कहानी में भी आ रहा होगा कोई ना कोई नया ट्विस्ट या फिर कोई नया ड्रामा। वो भी ना हो तो होगा कोई कंफ्यूजन या फिर कोई नई सिचुएशन। कुछ ना कुछ इनकी कहानी में होता ही रहता है। और बेचारी मन्नत, उनके तो हमेशा रहती है माथे पर शिकन। खैर, हम तो यही चाहते हैं कि उनकी संडे की छुट्टी भी हो खुशियों से भरपूर। लेकर चलते हैं आपको मन्नत के सेट पर।

अभिमन्यु और मान्यता की सगाई। घर में ढेर सारी खुशियाँ आई।

कलर्स के सीरियल मन्नत में अभिमन्यु और मान्यता का रिश्ता जुड़ रहा है। आज इनकी सगाई है। भाई सीरियल में एक साल का लीप आ गया है और विक्रांत अपनी याददाश्त खो चुके हैं और अब वो बन चुके हैं अभिमन्यु। ऐसे में अभिमन्यु को प्यारा परिवार मिल गया है और सबसे ज्यादा प्यार करने वाली मिल गई है मान्यता भी। ऐसे में अभिमन्यु की नज़र पड़ती है मान्यता पर, जो अपनी सगाई के लिए साज श्रृंगार कर अभिमन्यु की ओर आ रही है और ऐसे में अभिमन्यु का दिल भी धड़क रहा है।

0: क्या गए।
1: खैर घर में खुशियां हैं तो जाहिर सी बात है नाच गाना तो बनता है, इसलिए देखिए कैसे अभिमन्यु ने नाचना शुरू कर दिया और तो और उसका साथ दे रही है मान्यता भी। इतना ही नहीं सभी घर वाले भी इनकी खुशी में शामिल होकर ताल से ताल मिला रहे हैं।

0: लुक तो देख सकते हैं आप, मैंने ऑल ब्लैक पहना हुआ है. दिस इज़ वेरी प्रिटी लहंगा, आई थिंक इट्स बनारसी. मैंने चूड़ियाँ मैचिंग कर रखी हैं और बहुत ही सिंपल इयर रिंग्स पहने हैं. आई मीन दिस इज़ इट, इट्स वेरी बेसिक मेकअप एंड आई लाइक दिस हार्टफुल आई थिंक, तो आई लव इट. ये समथिंग डिफरेंट आई एम वेयरिंग. और हाँ, लीप के बाद बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आया है, स्टोरी बहुत अलग हो गई है एंड आई होप आप लोगों को हमारी केमिस्ट्री पसंद आएगी. मैं मान्यता मन्नत में नई एंट्री आई हूँ और मैं विक्रांत का नया लव इंटरेस्ट हूँ. अब विक्रांत का नाम अभिमन्यु है क्योंकि विक्रांत की याददाश्त चली गई है. मैं बहुत ऑब्सेसिव हूँ, मुझे पहली नज़र में प्यार हो जाता है अभिमन्यु से और मुझे लगता है कि उसे भी मुझसे प्यार है क्योंकि जब वो बेहोश होता है और उसकी याददाश्त चली गई होती है, वो मान्यता मन ऐसा कुछ बोलता है, मुझे लगता है कि वो मेरा नाम ले रहा है बट एक्चुअली वो मन्नत का नाम ले रहा होता है, लेकिन मुझे नहीं पता होता. तो मुझे लगता है कि शायद भगवान का ये साइन है और भगवान ने एक लड़का मेरी ज़िंदगी में भेजा है. तो बस मुझे उसे एक तरफा प्यार हो जाता है, फिर स्टोरी आगे बढ़ती है, फिर आज हमारा रोका है और मैं बहुत खुश हूँ और अभिमन्यु भी बहुत खुश है. लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं उसको अपनी पास्ट लाइफ के फ्लैशेज आ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ तो है जो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है और मुझे कहीं ना कहीं पता है कि उसको कुछ कनेक्शन मुझसे नहीं फील हो रहा है, पर फिर भी मैं बहुत सारे ऐसे सिनेरियो क्रिएट करती हूँ जहाँ पे मैं उसे बिलीव करवाती हूँ कि हम बचपन से साथ में हैं और हम बचपन से साथ में हैं, हम हमेशा से एक दूसरे को प्यार करते हैं क्योंकि मैं उसे अपनी लाइफ में चाहती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ. तो यही सब कुछ चल रहा है अभी तो.
1: मान्यता और अभिमन्यु एक दूसरे के साथ नाच ही रहे थे कि तभी आ जाता है ट्विस्ट, इनके ऊपर उड़कर आ जाती है चुन्नी और अपनी नजरों के सामने मान्यता को देखकर अभिमन्यु यानी कि विक्रांत की यादें धुंधली सी ताजा होने लगती हैं क्योंकि कहीं न कहीं मान्यता में उसे मन्नत दिखाई जो दे रही है, हालांकि उसकी नजरों के सामने चेहरा अब भी अनजान सा है.
0: एक सिनेरियो क्रिएट होता है जहाँ पे मैं और अभिमन्यु डांस कर रहे हैं और कहीं से एक दुपट्टा आता है, वो हमारे ऊपर बहुत फिल्मी स्टाइल में गिरता है और मुझे लगता है कि शायद ये भगवान की मेहर है, बाबा की मेहर है कि वो दुपट्टा हमारे ऊपर गिरा और ये इतना रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो गया है. पर कहीं ना कहीं अभिमन्यु को वो दुपट्टा गिरने से शायद उसकी पास्ट लाइफ के जो फ्लैशेज हैं उसे वो याद आने लगते हैं और ये देख के मुझे बहुत घबराहट होती है. मुझे लगता है कि कुछ तो है जो इसको याद आ रहा है क्योंकि सडनली वो हंसते हंसते एकदम थोड़ा खो जाता है कहीं. फिर मैं उसे फ्लैशबैक से वापस लाती हूँ, मैं डांस करती हूँ और हमारा रोका सेरेमनी कंटिन्यू होता है. तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसको अपनी पास्ट लाइफ में कुछ भी याद ना आए क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस.
1: यादें तो अभी धुंधली ही रहेंगी, फिलहाल तो आज अभिमन्यु और मान्यता की सगाई हो रही है. ऐसे में मान्यता तो बहुत खुश है क्योंकि वो अभिमन्यु से जी जान से प्यार करती है, इसलिए उसने तो अभिमन्यु की उंगली में अंगूठी पहना दी. लेकिन जैसे ही बारी आई अभिमन्यु की तो देखिए कैसे उसकी नजरें फिर से उस अंगूठी पे टिक गई क्योंकि फिर से उसकी यादें ताजा जो हो रही है.
2: क्या गए

0: देखिए फ्लैशेस तो आएंगे क्योंकि मन्नत कहीं ना कहीं दुआ कर रही है और शायद उसकी दुआओं का असर है कि अभी मन्यु को अपनी पास्ट लाइफ याद आ रही है, लेकिन मेरे एंड पे मुझे नहीं पता उसकी पास्ट लाइफ। और मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान आया है जिससे इतना कनेक्शन मुझे कभी फील नहीं हुआ, और मेरे लिए वो एक ऐसा है कि मतलब एक चीज़ जो आपको मिल जाती है जब आप किसी से प्यार में होते हो, चाहे वो एक तरफा हो या दो तरफा हो, लेकिन जब आप किसी से प्यार में होते हो यू डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन, राइट? तो वो ऐसी है कि उसको बस कुछ भी हो कि वो खो ना जाए कहीं। तो वो बहुत ऑब्सेसिव है और वो बहुत प्यार करती है उससे, तो कहीं ना कहीं उसे फ्लैशेस आते हैं तो थोड़ा घबरा जाती है, बट आई थिंक सब कुछ होपफुली नॉर्मली हो जाएगा।
1: खैर अभिमन्यु ने मान्यता से सगाई तो कर ली है और तो और ऊपर वाले का आशीर्वाद भी ले लिया है उनके सामने हाथ जोड़कर, लेकिन कहानी में जल्द ही ट्विस्ट आएगा क्योंकि वहीं दूसरी ओर मन्नत भी भगवान से प्रार्थना कर रही है उसे उसके विक्रांत मिल जाए। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: याद रखना सोनी, जहाँ तू होगी वहाँ तेरा भी जरूर हो।
3: कब तक इंतजार करेंगे आप विक्रांत का?
4: जब तक सांसें चलेगी तब तक इंतजार करूंगी विक्रांत का।
5: मैम एक लीड मिली है, अमृतसर के पास एक शहर है पंचशीरपुर, वहाँ के एक आदमी का कहना है कि उन्होंने आपके हस्बैंड को देखा है।
6: तो आपके संडे लंच में आज क्या ट्रेंड कर रहा है? राजमा चावल, कढ़ी चावल, कोफ्ते या फिर बिरयानी? वेल, यहाँ पर तो ट्रेंड करी है कुछ हॉट एंड हैपनिंग खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए हमारे इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट में, जहाँ हम दिखाते हैं आपको वो तमाम खबरें जो मचा रही हैं एंटरटेनमेंट का शोर, यानी आज की ट्रेंडिंग न्यूज।
7: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टेलीविजन की शॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में बात करते हैं लॉकअप के आने वाले नए सीजन की। आपको बता दे कि भाभी जी घर पर है फेम, अंगूरी भाभी यानी कि शुभांगी यात्रे नजर आ सकती हैं लॉकअप के नए सीजन में। वैसे आपको बता दे कि लॉकअप में खबरों की माने तो नाम शामिल है सुनीता अहूजा जो कि गोविंदा की वाइफ है, शिवांगी जोशी जो कि टेलीविजन की पॉपुलर एक्ट्रेस है, और इसके अलावा योगेश रावत और आकांक्षा भी जो कि लॉकअप की कंफर्म नाम्स हैं।

एक्ट्रेस सुरभि ज्योति के घर हुई है नन्ही परी। जी हाँ, इस बात की जानकारी सुरभि ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को दी है कि उनके घर पर बेबी गर्ल आई है।

0: गर्मी में सर्दी का मजा लेते हैं। आपके परशुराम।
1: नजर डालते हैं स्टारप्लस के सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के इन बिहाइंड द सीन नज़ारों पर, जहां हो रही है शूटिंग के साथ ढेर सारी मस्ती।
2: पत्रकार
3: अभी जो मैंने इतनी भर भर के तारीफ करी ना इनकी, इन्होंने मुझे ये दिला दिया उसके में पत्रकार।
2: जिस तरह से तो लेके घूम रहा है, स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, वही लग रहा है।
4: तो क्या सही बोल रहे हैं, बहुत सही।
0: ये मेरी
3: है। इसकी स्क्रिप्ट कहाँ गई? सौरभ के पास कभी आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी, वो दूसरों की स्क्रिप्ट मांग मांग के काम चलाता है। एक्चुअली क्या है, उसकी लाइन ज्यादा होती है तो सबकी स्क्रिप्ट से पढ़ता है।
1: इन दिनों चल रही है खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 की शूटिंग। ऐसे में देखिए कैसे इनके कलाकार कर रहे हैं यहाँ पर मस्ती।

सनी देओल बहुत जल्दी करने वाले हैं अपना ओटीटी डेब्यू फिल्म इक्का से। आपको बता दे कि ये फिल्म 10 जुलाई को रिलीज होगी। एक साथ आए बिग बॉस के कलाकार यानी कि नीलम गिरी और सीशांत सिद्दीकी, पर ये दोनों एक ही सीजन में थे और कुछ इस तरीके से हुआ इन दोनों का रियूनियन।

0: नजर डालते हैं तू हीरे के इस प्रोमो पर, जहां वृंदा सबकी किस्मत बदल देती है। पर क्या उसकी अपनी किस्मत उसका साथ देगी?
1: सुबह सुबह तेरा चेहरा देख लिया, आज तो सारा माल बिक जाएगा।
2: वृंदा दीदी, आपने जो मुझे ये पेन दिया था, मैंने सारे पेपर इसी लकी पेन से लिखे, पोस्ट आ गई।
3: सबकी किस्मत बदलती वृंदा,
4: अगर तू अपने इन सुभातों से लॉटरी का टिकट छू लेगी ना, मेरे और मेरे बच्चों की किस्मत समझ जाएगी बेटा।
5: वही राजकुमार है जो हर रात मेरे सपने में आते हैं,
3: और प्यार की एक नई दास्तां।
6: Will you be mine forever?
5: Yes.
3: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में।
0: सामने आ गया है जीवन बीमा योजना का पोस्टर, जिसमें नजर आ रही है अर्शद वारसी और संजीदा।

खबरों की माने तो प्लीज ईशा नजर आएंगी रियलिटी टीवी शो में। जी हाँ, खबरों की माने तो जय हो और हेट स्टोरी 3 फेम एक्ट्रेस बानी जे के प्रोडक्शन के आने वाले नए कंपटीशन सीरीज द अलायंस इंडिया में नजर आ सकती है।

0: अखिल अखिनेनी जो नजर आने वाले हैं फिल्म लेनिन में, अब इसकी रिलीज डेट को 10 जुलाई को पुश कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले ये फिल्म 26 जून को रिलीज होने वाली थी, जिसे प्रोड्यूस अखिल के पापा नागार्जुना ही कर रहे हैं।
1: कल
2: నేను చాలు
3: యాడికమ్మి పోతుండావో

भाई फिर एक बार आप सबका दिल जीतने आ रही है टीम गुल्लक। ऐसे में हैली शाह, गीतांजलि कुलकर्णी, जमील खान और हर्ष मेयर एक साथ नजर आए।

0: मैंने जो किया गुस्से में आकर किया।
1: नजर डालते हैं पुष्पा इम्पॉसिबल के इस प्रोमो पे, जहाँ पुष्पा फंस गई है मुश्किलों में और अब देखना होगा कि आखिर वो किसका साथ निभाएगी।
0: ये शादी शादी नहीं है।
2: चलो तूने क्या चिराग, लेकिन खत्म मैं करूँगा। अगर एक भी कदम तूने आगे बढ़ाया ना चिराग, अपने आप को जला के मार दूंगी मैं। हमारी शादी की अधूरी रस्में मैं करूँगा। चिराग से शादी की मंगेतर है वो मेरा। आप तो लॉयर है ना, तो आज हम मेरे लिए लड़ेंगे, मेरी शादी के लिए, मेरे हक के लिए। मुझे इंसाफ चाहिए पुष्पा इम्पॉसिबल।
3: अब संडे तो होता ही है रिलैक्स करने के लिए, तो रिलैक्सेशन रूटीन में हंसना भी तो बनता है, क्योंकि देखिए लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, ये तो कर देते हैं हमें डी स्ट्रेस। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको आपके फेवरेट लाफ्टर शेफ्स के पास, क्योंकि यहाँ तो है आपके लिए एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट एंड फुल ऑन लाफ्टर थेरेपी। गेट सेट गो।
4: जल्दी करो भाई, भाई क्या हाल है? ये बन क्या रहा है?
5: सर ये बन रही है चकली।
6: चकली का
5: बनाएंगे बास्केट कटोरी, वो क्या वाड़की वाड़की
4: वो बनाते हैं।
5: नहीं नहीं नहीं नहीं ना,
6: जीरा क्यों डालेगा? अरे अच्छा लगेगा, बना क्या रहे हैं?
7: इसमें डलेगा ना मसाला सीजनिंग के लिए।
8: निकाय करो काका हेल्प,
4: आप थोड़ा फ्लर्ट कर लो किसी के साथ।
8: वही तो नहीं आता यार,
6: वो लोग एपिसोड में यही करते हैं, इसलिए तुम उधर से वही
4: मैं
6: यही
4: तो काम कर रहा हूं।
2: अब अपने वजह क्या जाइए ना।
4: हर रोज से निकाल दूंगा इसको मैं बाहर।
6: नहीं मैं बताऊँ कुछ, पूरा तेल भर ठीक है, तेल में इस सब को फ्राई कर, उसको निकाल।
4: मतलब बाबा वो एक बार दूसरी बार फ्राई होता है।
9: ट्रस्ट मी बोल उसको, ट्रस्ट मी।
4: नहीं नहीं नहीं
6: ट्रस्ट मी। Evaporate, trust me, पानी मत डालो, please trust me। कैसे करने वाले मुझे बता?
4: अभी नहीं बता सकता
6: मैं, बताऊ
4: अभी हमें हटना नहीं है।
6: नहीं,
4: इसको बनाने दे,
6: नहीं, नहीं।
4: मैं छोड़ रहा हूँ,
8: इसको आदत नहीं है बेचारे को, डर जाएगा वो।
4: जीत चुका हूँ मैं यहाँ पे एक बार।
6: मैं मेरी बात एक सेकंड सुन ले, बाद में एक सेकंड।
4: टीम चेंज करनी है मेरे को।
2: मैं घर में खाना बनाया कभी? आप तो दादाजी भी हैं।
4: हाँ? लेकिन आप भूल जाओ यहाँ।
2: तेजा, he is with me।
4: अच्छा ऐसे है? Oh my gosh, oh my gosh।
2: लाठी पर चिढ़ा रहे थे।
4: नीचे फेंक दूँ, नीचे फेंक दूँ। दो बहन तुम्हें करना पड़ेगा सहन।
6: चमक चिंगारी, हम लोग ने तुझे टीम में रखा है ना।
10: मानसून से हल्की
6: भारी,
10: वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी।
4: अरे वहीं काटूंगा ना, इधर क्या दे रही है पागल औरत।
2: तो तेजू के साथ हो गया, एकदम तेजू बन गया यार, मेरे को तेजू कम ही नहीं लग रही है। कैसे
10: बैठे काबीना बैक सीट।
8: तेजू यहाँ आएगी, उसकी बात बिल्कुल मत सुनना, वो ट्रस्ट मी करके सब गलत करवा दे।
6: ओ मम्मी, ओ मम्मी।
4: क्या हुआ?
6: करंट लग रहे में।
4: आप तो गैस जलाना तक नहीं जानती।
6: सॉन्ट क्यों डाल रहा है?
4: नमक चाहिए और इनको, अर्जुन भाई को। अर्जुन भाई कहते हैं नमक।
6: अर्जुन नहीं, निया को पूछ।
4: नहीं उन्होंने टेस्ट किया।
6: अरे अर्जुन को टेस्ट नहीं पता चलता है। Did you miss me?
4: अरे नहीं, I actually did।
6: यार भी छोड़ा, मैं कुछ
10: करूँ।
8: अपना वो देख।
6: अरे लेकिन ये वाला बहुत सॉफ्ट बना है
8: का
6: उनका।
8: हाँ तो सही है ना,
6: रख लो चुपचाप। बहुत सही, नहीं इनका बहुत सॉफ्ट है। हाँ यार बहुत सही है इनका।
9: अरे इनका इनका मत बोल इनको।
6: अरे हाँ तो अपन ही तो बोल रहे हैं।
9: अब ये बोल हमारा है।
11: सर एक बार हाथ डाल के देखो ना।
12: हाँ, मैं किसकी उंगली लाऊं?
4: ज्यादा मत डालना प्लीज।
7: रुक नहीं,
4: इतना डाल दे, इतना डाल
7: दे, इतने डालो भाई।
4: हाँ ये करके भाई। अरे भाई, अरे भाई,
13: इसीलिए मैं इस पर ट्रस्ट करती हूँ। अब ये खुद ही बनाएगा।
7: ये सब सामान को फ्राई करके उसमें डालना है,
11: फ्राई करना,
7: और फिर उसके ऊपर जैसी हो जाएगा फिर अपना मसाला ऊपर डाल के उसको सीजनिंग कर देना। ऐसा बनेगा आप सोच नहीं सकते हो।
4: ईशा हट जा,
9: नहीं कुछ मत कर, इसको सर पे बहनने का नहीं है,
6: सर पे
9: बहनने का नहीं है।
13: सुधीर जी, आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू।
5: इट वॉज माई आइडिया
13: बडी। एज मच एज आई लाइक यू, यू आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब।
6: ब्रो उसको कट करेंगे ना?
13: कब करेंगे?
6: अरे 14 पहले उसको मुझे 16 इंच करने
13: दो। राउंड बोल के तूने राउंड छोड़ के सारी
6: चीजें। पागल हो रहा है? तभी बोला ना उसको कट करेंगे।
13: 11 इंच कम है
6: यार, इसको चुप करा।
13: तू हगे पे पानी मत डाल अपने, खराब कर चुकी है।
6: पहले चुप हो जाए,
13: दोबारा बना ले जाए, मेहनत कर ले थोड़ी, घिसनी जाएगी,
7: घिसनी जाएगी।
6: तेरे मुंह में बेलन डाल दूंगी।
13: अरे नहीं अच्छा बन रहा ये गड़े, ये गड़े मुर्दे में लात मारे जा रही है, इसको लग रहा है जिंदा हो जाएगा। ये 11 शेर नहीं है, शेर बच्ची नहीं थी, राउंड नहीं है, 11 इंच है। और इसे लग रही है बना तो नहीं कर रही है, बना तो नहीं कर रही है, बना तो नहीं कर रही
4: है। भाई तीनों कट्ठी हो गई यार, जन्नत सिर्फ तुम्हारे लिए बड़ा है, ये पहले सिर्फ तुम्हारे लिए बड़ा है, वैसे छोटा है ये। नहीं नहीं बस बस, आप इसको ऐसे कर दो, माइंड ब्लोइंग।
13: चलो अभी दोबारा
6: ये कुछ नहीं करनी, सिर्फ मेरे कान में चिल्लाना।
9: लड़के कितने अच्छे हैं, लड़कों में शांति मजा आता है, टाइम पास, बात भी मस्ती वाली हो जाती है।
4: बस बस बस बस बस बस, मत
13: इलास्टिसिटी देखिए, इलास्टिसिटी इज जस्ट स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग।
4: ये समर्थ कर देगा मेरा, मेरा समर्थ
13: कर देगा।
3: तो कैसा रहा एंटरटेनमेंट से भरपूर हमारा ये एपिसोड? हमने आपको घर बैठे बैठे करवा दिया ना एंटरटेनमेंट की दुनिया का सफर। लेकिन क्या करें, अब तो घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त आ गया है आपको बाय बाय कहने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट, सेम टाइम सेम जगह, ओनली ऑन सास बहू और बेटियां। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज़ टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल Gen Z's gateway to unbeatable placements।
3: सोमवार से नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ान का संचालन, लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान। एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे पहली फ्लाइट का सफर। स्थापना दिवस से पहले रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया कैंची धाम। उमड़ा आस्था का सैलाब, 9 चूल्हों पर तैयार हो रहा महाप्रसाद, जयकारों से गूंजा धाम। डोडा के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, निचले इलाकों में तेज बारिश, बदले मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी, कारोबारी भी खुश। वीकेंड पर पहाड़ों में बढ़ी सैलानियों की भारी भीड़, शिमला में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, सुहाने मौसम का ले रहे हैं आनंद। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत का आज पहला मैच वेस्टर्न में पाकिस्तान से, महामुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। बेटियां फिर लाएंगी विश्व कप।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम में स्थापना दिवस से पहले उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं के जयकारों से भक्तिमय हुआ पूरा माहौल। स्थापना दिवस से पहले कैंची धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया, दिव्य और अलौकिक स्वरूप में नजर आ रहा पूरा आश्रम। कल स्थापना दिवस पर लाखों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की बनाने की युद्ध स्तर पर तैयारी, 9 बड़े चूल्हों पर मालपुए तैयार कर रहे मथुरा वृंदावन के कारीगर। कैंची धाम में अखंड रामायण का पाठ लगातार जारी, बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए लगी लंबी कतार। कल तक स्थापना दिवस को लेकर रिकॉर्ड संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी। चारधाम की पवित्र यात्रा का आज 57वां दिन, पूरे उत्साह और विश्वास के साथ श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने का सिलसिला जारी। चारधाम यात्रा में अब तक 34 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का प्रशासन रख रहा है पूरा ख्याल। कपाट खोलने के बाद से सबसे ज्यादा केदारनाथ दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालु, अब तक 12 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। आस्था और भक्ति के साथ भक्तों के बद्रीनाथ धाम पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी, 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु, 80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में दर्शन किए। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण चतुर्दशी पर अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सुबह से मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार। उज्जैन में बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, आरती में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। कल देशभर में मनाया जाएगा सोमवती अमावस्या का त्योहार, गंगा स्नान के लिए अभी से उमड़ा हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जत्था। सोमवती अमावस्या पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के किए गए व्यापक इंतजाम। शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से स्नान संपन्न कराने के लिए मेला क्षेत्र को 6 सुपर जोन, 16 जोन और 46 सेक्टर्स में किया गया विभाजित। नोएडा के लोगों को कल मिलेगी उड़ान की सौगात, जेवर एयरपोर्ट पर शुरू होंगी उड़ानें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कल लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान रवाना, 172 किसान करेंगे पहला सफर। हवाई यात्रा कर लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात करेंगे 172 किसान, परियोजना के लिए किसानों ने अपनी दी थी जमीनें। साल 2026 के आखिर तक इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद, एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाकर 7 करोड़ यात्री करने की योजना। एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू होने से पहले पुलिस प्रशासन ने तेज की तैयारी, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर। तिरुमाला मंदिर में जानवी कपूर ने पहनी हाड़ौती की शान, सोने चांदी की बनाई बुनाई वाली साड़ी बनी चर्चा का विषय। फिल्म पैदी की रिलीज से पहले जानवी कपूर ने दर्शनों के लिए तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंची थी। जानवी पारंपरिक कोटा साड़ी ने श्रद्धालुओं और फैशन प्रेमियों का खींचा ध्यान। कोटा में खास तरीके से तैयार की जाती है सोन चिरैया साड़ी, हाड़ौती की पुरानी हस्तकर्चा परंपरा से बनाई जाती है साड़ी। हाड़ौती की सांस्कृतिक विरासत अब बॉलीवुड के जरिए देश भर में एक बार फिर से चमकी, पारंपरिक रियल गोल्ड और सिल्वर जरी से की गई है तैयार। पंजाबी म्यूजिक कंपोजर करण औजला के साथ 21 जून को मंच साझा करेंगे विराट कोहली। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है प्रोग्राम। स्वच्छ यमुना को लेकर दिल्ली सरकार ने चलाया बड़ा अभियान, 28 घंटों पर 500 संगठन और हजारों लोग करेंगे योगदान। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने भी यमुना सफाई अभियान में हिस्सा लिया, गीता कॉलोनी के दशाश्वमेध घाट पर सफाई। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सचदेवा ने की यमुना के घाटों पर सफाई, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी साथ दिया। यमुना क्लीनलीनेस कैंपेन का हिस्सा बने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, घाटों पर साफ सफाई की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने यमुना के घाटों पर सफाई की, लोगों को स्वच्छता के लिए किया जागरूक। दिल्ली के यमुना घाट पर चला स्वच्छता अभियान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सफाई में हिस्सा लिया। यमुना नदी के सूर्य घाट पर पहुंचे बीजेपी नेता मनोज तिवारी, स्वच्छता अभियान के तहत किया श्रमदान। चेन्नई में खेलो इंडिया अभियान में साइकिल रैली का आयोजन, 150 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जम्मू में जम्मू हाई फाइव 5K मैराथन का आयोजन किया गया, नौजवानों को फिट रहने और नशे से दूर रहने का दिया गया संदेश। जम्मू में बौद्ध प्लाजा से शुरू हुई मैराथन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, डांस और कार्टून प्रदर्शनी से भी दिया गया फिटनेस संदेश। दिल्ली में आज भी जारी रह सकती है प्री मानसूनी बारिश की मेहरबानी, तो वहीं IMD ने जारी किया है अलर्ट। दिल्ली में बारिश और बादल के बीच लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिल रही राहत, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी दर्ज की गई कमी। यूपी बिहार राजस्थान और हरियाणा समेत 17 राज्यों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट, अगले 12 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। मॉनसून और पश्चिम विक्षोभ का देश के बड़े हिस्से पर दिख रहा असर, मौसम विभाग ने कई जगहों पर बिजली गिरने की भी जताई संभावना। उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ा मॉनसून, अगले 2-3 दिनों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों तक पहुंचने की संभावना।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर है इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/free for life to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
4: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
5: तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
9: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
9: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
13: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस विजिट SRMUP.in
14: सोमवार से नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ान का संचालन लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे पहली फ्लाइट का सफर स्थापना स्थापना दिवस से पहले रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया कैंची धाम, उमड़ा आस्था का सैलाब, नौ चूल्हों पर तैयार हो रहा महाप्रसाद, जयकारों से गूंजा धाम। डोडा के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, निचले इलाकों में तेज बारिश, बदले मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी, कारोबारी भी खुश। वीकेंड पर पहाड़ों में बढ़ी सैलानियों की भारी भीड़, शिमला में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, सुहाने मौसम का ले रहे हैं आनंद। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत का आज पहला मुकाबला एजबेस्टन में पाकिस्तान से, महामुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, बेटियां फिर लाएंगी विश्व कप।

नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे आपके आसपास कई हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं और ये तमाम पेड़ पौधे हमारे जीवन को सरल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। आज हम आपको यही बताएंगे कि कैसे पेड़ पौधों का आपकी किस्मत, धर्म और ग्रह नक्षत्रों से संबंध होता है। साथ ही बताएंगे कि कुंडली के ग्रहों को कैसे संतुलित करेंगे ये पेड़ पौधे और पौधे लगाने से कैसे संवरेगा आपका भाग्य। देखिए,

0: हरे भरे पौधे संवारेंगे आपकी किस्मत। बढ़ जाएगी कुंडली के ग्रहों की ताकत। ग्रहों को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है पौधे लगाना। पेड़ पौधों में जीवन बसता है, लेकिन कुछ पौधों में अलग किस्म की दिव्यता होती है। ये पौधे कोई साधारण पौधे नहीं हैं, इनके गुण इन्हें बेहद खास बनाते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पेड़ पौधों में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसका प्रभाव ग्रहों पर भी पड़ता है। इसलिए ज्योतिष में हर ग्रह से किसी न किसी पौधे का संबंध बताया गया है।
1: हमारे यहाँ ज्योतिष में हर नक्षत्रों के भी पौधों का रोपण का विधान है। यदि वो किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी से मिलता है कि हमारा जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, तो वो निश्चित बताएगा कि आपको यह वृक्ष लगाना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। ज्यों ज्यों वो वृक्ष आगे बढ़ेगा, त्यों त्यों उसके जो है भाग्य बढ़ते जाएंगे।
0: हर ग्रह की एक विशेष तरंग और गंध होती है। मंत्रों का जाप, रत्नों का प्रयोग और दान आदि इन्हीं तरंगों पर निर्भर होते हैं। पौधे लगाना और उनके उपासना करना भी ग्रहों के नियंत्रण का एक सरल और अचूक उपाय है। ग्रहों के इन्हीं तरंगों और रश्मियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष तरह के पौधे लगाए जाते हैं। पौधे दो तरह से लगाए जा सकते हैं, ग्रहों के अनुसार और जरूरत के अनुसार। गलत तरह से पौधे लगाने से बिना किसी कारण के समस्याएं शुरू हो सकती हैं। पौधे सकारात्मक ऊर्जा की खान होते हैं, इनमें जीवन बसता है। पौधों को लगाने के दो फायदे हैं। पहला ये कि इसे लगाने से आप एक तरह से पर्यावरण को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और दूसरा ये कि धार्मिक रूप से भी आपकी ये मदद करते हैं। अब आपको बताते हैं उस पौधे का विशेष प्रयोग जो महादेव को बेहद प्रिय है। बेल का पौधा लगाना उत्तम होगा। घर के आगे के हिस्से में जमीन में या गमले में इस पौधे को लगाएं। शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हो तो इस पौधे के नीचे करना बहुत अच्छा होगा। हर सुबह इसमें जल डालने से संपन्नता आती है। इसको लगाने से कुंडली के तमाम अशुभ योग नष्ट हो जाते हैं। विशेषकर अगर आपको चाहिए शनिदेव की कृपा, तो शनिदेव का प्रिय पौधा शमी कैसे बनाएगा आपको समृद्ध जानते हैं। किसी भी शनिवार को शाम के समय शमी का पौधा लगा

0: प्रकृति में फैली सकारात्मक ऊर्जा का कुछ हिस्सा अपने घर में ला सकते हैं। इन पौधों को लगाकर आप अपने जीवन में समृद्धि हासिल कर सकते हैं। किस ग्रह के लिए कौन सा पौधा लगाएं, आगे जानिए।
1: पौधों की हरियाली में सकारात्मक ऊर्जा भरी होती है। इनकी उपासना से जीवन ही नहीं बल्कि आपका भाग्य भी सवर सकता है। जानकारों की माने तो जिनकी कुंडली में जिस ग्रह से जुड़ी समस्या हो उसी से संबंधित पौधा लगाना चाहिए। ग्रह बाधा दूर करने के लिए कौन सा पौधा लगाना होता है सर्वोत्तम, जानिए।

0: पौधे संवारेंगे आपकी किस्मत। दूर हो जाएगी घर में धन की परेशानी। मिटेगा क्लेश, घर आएगी शांति। ग्रहों को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है पौधे लगाना, क्योंकि पौधों से जुड़ा है आपकी कुंडली का संबंध। हर इंसान की जीवनचर्या अलग होती है, इसलिए कुंडली की स्थिति भी अलग अलग ही होती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिनके कुंडली में जिस ग्रह से जुड़ी समस्या हो उसी से संबंधित पौधा लगाना चाहिए। हर ग्रह की शांति के लिए अलग अलग वृक्ष के रोपण का विधान है।
1: देखिए, हमारे ज्योतिष में भी, हमारे धर्म में भी वृक्षों का विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इस समय जो है लोग रत्न धारण करते हैं। यदि कोई रत्न धारण नहीं कर सकता है, उसके लिए वह औषधियां हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में उल्लेख है। जैसे सूर्य ग्रह किसी के अनुकूल नहीं है तो मंदार के जड़ का एक दिन पहले निमंत्रण दे करके वो जड़ ले करके विधान पूर्वक और उसका विधि विधान से प्रतिष्ठित करके यदि वो धारण करता है तो उसको जिस प्रकार हम माणिक पहनते हैं, माणिक की तरह फल हमको देता है।
0: सूर्य को बेहतर करने के लिए घर के द्वार के आसपास मदार का पौधा लगाएं। चंद्रमा को बेहतर करने के लिए घर के पीछे की ओर चंदन या बेला का पौधा लगाएं। मंगल को बेहतर करने के लिए घर के मध्य या पीछे की ओर आंवले का पौधा लगाएं। बुध को बेहतर करने के लिए घर में कहीं भी दूब लगाएं। बृहस्पति को बेहतर करने के लिए घर के पीछे केले का पौधा लगाएं। शुक्र को बेहतर करने के लिए घर के पीछे हर सिंगार का या परिजात का पौधा लगाना शुभ होगा। शनि को मजबूत करने के लिए घर के द्वार के आसपास शमी का पौधा लगाएं। राहु केतु के लिए घर के मध्य में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ होगा। वेदों में प्रकृति की उपासना को ही सर्वोपरि बताया गया है। हवन और यज्ञ को ही देव स्तुति का साधन माना गया है। इसी को आधार मानकर ज्योतिषीय गणनाएं कहती हैं कि घर के आंगन से लेकर घर की बगिया तक में बोया गया पेड़ न केवल आपके संकट दूर कर सकता है, बल्कि आपकी कुंडली के ग्रह दोषों को भी दूर कर सकता है। तो ग्रहों से संबंधित पौधों की उपासना कैसे करें ये भी समझिए। मदार में रोज जल डालें, रविवार को सुबह इस पर तिलक लगाएं। बेला या चंदन को साफ सुथरा रखें, हो सके तो इसके नीचे दीपक जलाएं। आंवले के नीचे बैठकर मंगल के मंत्रों का जाप करें। दूब की छटाई करते रहें, थोड़े से दूब रोज गणपति को चढ़ाएं। केले में रोज जल डालें, उसके नीचे बैठकर बृहस्पति के मंत्र जप करें। हर सिंगार की सफाई करते रहें, इसके फूलों को चुनकर शयन कक्ष में रखें। शमी के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे के नीचे

0: शाम को घी का दीपक जलाएं। हर पौधे को लगाने के कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं। अगर इन नियमों को ध्यान में रखकर पौधे लगाए जाएं, तो इनसे जीवन ही नहीं भाग्य भी संवर सकता है।
1: जिस नक्षत्र में आपका जन्म है या जिस राशि में आपका जन्म है, आप उस प्रबुद्ध ज्योतिषी से मिलकर के पूछ लीजिए कि किस दिन वो नक्षत्र पड़ रहा है या वो राशि किस दिन है। उसके एक दिन पूर्व उस वृक्ष को कहीं से ले आवे और एक स्थान निर्धारित कर ले। जितने समय वो नक्षत्र रहेगा उसी समय उसको वहां पर रोपण करना है। उस वृक्ष को स्थापित करके उसमें पहले शुद्ध जल से उनको स्नान कराकर वहां पर धूप दीप दे करके उस वृक्ष को कोई आम वृक्ष न समझ करके उसको साक्षात वो नक्षत्र का वृक्ष या ग्रह का वृक्ष मान करके उस देवता की आराधना करें। बस यही विधान है वृक्षों को लगाने की।
0: कभी भी घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने पौधा न लगाएं। पौधे ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय ही लगाएं। दूधधार या कांटेदार पौधे घर में न लगाएं। घर में लगे हुए पेड़ इतने बड़े न हो कि उनकी छाया घर पर पड़े। घर में बिना सुगंध के फूलों वाले पौधे न लगाएं। केले का पेड़ कभी भी घर के मुख्य द्वार पर न लगाएं। पौधों में रोज जल अर्पित करें। संबंधित दिन को उस पौधे की पूजा उपासना करना उत्तम होता है। तो घर में अपने अनुकूल पौधे लगाइए, फिर कुंडली के कमजोर ग्रह मजबूत होने लगेंगे और खुशहाल हो जाएगी आपकी जिंदगी। घर के आंगन में तुलसी का पौधा कैसे दिला सकता है श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा, आगे जानिए।
2: तो देखिए, शास्त्र कहता है, जानकार कहते हैं कि आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं दिव्य गुणों से भरपूर तुलसी की। तुलसी का बहुत ही धार्मिक महत्व है। इसको न सिर्फ पवित्र माना जाता है, बल्कि अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो तुलसी में कई गुण होते हैं। हम आपको बताते हैं तुलसी उपासना की सर्वोत्तम विधि आखिर क्या है, जिससे आपके जीवन में आ पाएगी सुख समृद्धि।

0: सनातन धर्म में तुलसी की महिमा अपरंपार मानी गई है। एक ऐसा औषधीय पौधा है तुलसी, जो घर घर में मौजूद है, और कोई भी पूजा तुलसी की मौजूदगी के बिना पूरी नहीं हो सकती।
1: तुलसी का वृक्ष लगावें, लगा करके उसमें जो है थोड़े से दूध से स्नान करा दें, उसके बाद जल से स्नान करावें, गंगा जल हो तो गंगा जल से स्नान करावें, और उसके बाद लगाने के बाद उसमें कलावा आदि जरूर बांध दें हल्का से, और वहां पर एक दीपक रख करके तुलसी जी का विष्णु रूप लक्ष्मी रूप ध्यान करते हुए उनकी प्रार्थना करें कि आज से आप मेरे घर में आप निवास करें। यदि घर में लगाते हैं, घर के बाहर लगाते हैं, तब भी उसी तरह से लक्ष्मी एवं विष्णु का आराधना करते हुए उसको जो है लगावें।
0: अगर आप भी तुलसी माता से सौभाग्य का वरदान पाना चाहते हैं, तो उन्हें सत्सम्मान अपने घर में विराजमान करवाएं। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीच में लगाना चाहिए। अपने सोने के कमरे की बालकनी में भी लगा सकते हैं तुलसी का पौधा। सुबह तुलसी के पौधे में जल डालकर उसके परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना उत्तम होता है। तुलसी के पत्ते हमेशा प्रातः काल में ही तोड़े जाने चाहिए। भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भूलकर भी भगवान गणेश और मां दुर्गा को तुलसी अर्पित न करें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। पुराने पत्तों को पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है, वहां सुख शांति और समृद्धि आती है और आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के पौधे के दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो आप भी दैवीय कृपा दिलाने वाले इन पौधों का लाभ उठाएं और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं।
2: तो चलिए, प्रभु आपकी हर प्रार्थना स्वीकार करें, इसी कामना के साथ फिलहाल हमें इजाजत दीजिएगा। देश दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए बने रहिएगा GNT के साथ।
3: Tune in Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे,
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
3: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
2: Enjoy non-stop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
4: Williams keeps it. First down. Touchdown.
2: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
5: कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
13: सोमवार से नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ान का संचालन, लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान। एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे पहली फ्लाइट का सफर। स्थापना दिवस से पहले रंग बिरंगी रोशनी जगमगाया कैंची धाम, उमड़ा आस्था का सैलाब, 9 चूल्हों पर तैयार हो रहा महाप्रसाद, जयकारों से गूंजा धाम। डोडा के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, निचले इलाकों में तेज बारिश, बदले मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी। वीकेंड पर पहाड़ों में बढ़ी सैलानियों की भारी भीड़, शिमला में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, सुहाने मौसम का ले रहे आनंद। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत का आज पहला मैच, एज वेस्टर्न में पाकिस्तान से महामुकाबला, शाम 7 बजे शुरू होगा, बेटियां फिर लाएंगी विश्व कप।

0: छोटी छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बुजुर्ग महिलाओं तक सबका उत्साह देखते ही बनता है। गानों की धुनों पर इस हॉल में कसरत कर रही बच्चियां और महिलाएं यहां पर महज अपनी अच्छी सेहत और फिटनेस को धार देने के लिए नहीं जुटी हैं, बल्कि इसके पीछे मकसद बेहद खास है।
1: इस बार गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली के बच्चे नानी के घर नहीं जा रहे, किसी वोकेशन डेस्टिनेशन पर नहीं जा रहे, बल्कि वो दिल्ली पुलिस के समर कैंप में आ रहे हैं। यहाँ पर लड़कियों को अपनी सुरक्षा वो खुद कैसे करें उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, सेल्फ डिफेंस की यहाँ ट्रेनिंग हो रही है। और इस ट्रेनिंग कैंप में ना सिर्फ छोटे स्कूल के बच्चे पहुँच रहे हैं, बल्कि कई बच्चों की मम्मियाँ भी हैं, दादियाँ भी हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इस समर कैंप में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कैसी चल रही है।
0: ये तस्वीरें दिल्ली पुलिस की ओर से चलाए जा रहे उसी सेल्फ डिफेंस समर कैंप की हैं, जहां हमारी टीम ने बच्चियों और महिलाओं को दी जा रही खास ट्रेनिंग को देखा और इसके बारे में जाना, ताकि गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को भी इसके बारे में बताया जा सके।
1: बस, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी जगह होती है जहाँ पर लड़कियों के साथ शायद सबसे ज्यादा छेड़खानी होती है। कोई आपके पीछे खड़ा यात्री कभी आपको छूने की कोशिश करता है, कभी हाथ पकड़ने की कोशिश करता है हैंडल पकड़ने के बहाने से, तो कभी कोई पीछे से कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। ऐसे में लड़कियों को उससे कैसे निपटना है, इस हिस्से में उन्हें ये सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और हम भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ इस समर कैंप तक नहीं पहुँच पाए दिल्ली पुलिस के, वो घर बैठे कैसे सीख सकते हैं कि अपना बचाव कैसे करना है।
0: यहाँ पर मौजूद तमाम लड़कियों और महिलाओं को मुश्किल हालात में खुद को बचाने और महफूज रखने के लिए शानदार ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि कभी भी चलते फिरते अगर कोई आपका हाथ पकड़ ले, आगे या पीछे से हमला करे, मेट्रो या बस में सफर के दौरान कोई गलत तरीके से छूने की कोशिश करे, या फिर कोई बाल खींचे, कपड़ा पकड़े या किसी और तरीके से परेशान करने की कोशिश करे, तो आखिर लड़कियां और महिलाएं क्या करें और कैसे अपना बचाव खुद करें, यही सिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है।
2: सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें बस में, मेट्रो में जहां भीड़ होती है वहां पे जो भी अनवांटेड लोग हैं वो चाहते हैं आपसे क्लोज होना, आपको टच करना, छूना, तो उसमें कैसे बचना है हम वो देखते हैं। हमने एक इमेजिनरी बस बना रखी है जिसमें कोई आपका हाथ छू रहा है, तो कोई मेरा हाथ टच कर रहा है ऊपर बस में, हाथ टच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस कंडीशन में स्पेस कम है हमारे पास, उस स्पेस कम में यूज़ करना, हमें अपने एल्बो को यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, हाथ को छुड़ाया, एल्बो यूज़ किया और उस एल्बो को उसके पेट में एल्बो हिट कर देंगे तो छोड़ देगा। नेक्स्ट है, अब वो आपसे और क्लोज रहा है, अब हाथ छोड़ के आपके कमर पे आ रहा है, कमर को छू रहा है, तो क्या करेंगे हम अपने लेफ्ट हैंड से इसके हाथ को होल्ड करेंगे, खींचेंगे और राइट हैंड से फिर से एल्बो उसको हेड पे हिट कर देंगे। और फिर आता है थर्ड, आपके पैरों को टच कर रहा हो, अब हाथ का यूज नहीं हो रहा है, अपने पैरों से पैर टच कर रहा है, तो क्या करेंगे हम अपने सिन, जो आपका सिन बोन है और जो आपका पैरों की ब्लेड है, इस ब्लेड से उसके सिन पे अटैक करेंगे जोर से और हट जाएंगे, ठीक है। अब होता है लास्ट, जो बहुत ही कॉमन होता है बस में, धक्के का, कोई ब्रेक मारा, ब्रेक का सहारा लेके बहुत ज़्यादा क्लोज आता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, ज़्यादा क्लोज आ गया तो हम क्या करेंगे, हम उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड से होल्ड करेंगे इसको सामने खोल के लाएंगे, स्लैप, पंच और एल्बो मार के वहां से निकल जाएंगे। तो हम कम से कम जगह में कैसे बच सकते हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, ये हम सिखाते हैं बच्चों को।
0: ये ट्रेनिंग का सबसे अहम पहलू है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाएं और लड़कियां कैसे मंचलों से अपनी सुरक्षा करें।
1: तो आप देखिए कि किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लड़कियां अपने लिए सुरक्षित बना सकती हैं, या फिर जो गलत इंटेंशन से आए हैं उन पर अटैक भी कर सकते हैं। हालांकि इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का जो पहला मकसद ये है कि आपको किसी पर हमला ना करके, जवाब ना देके आप उस सिचुएशन से कैसे बचकर बाहर निकल सकते हैं, वहां से हट सकते हैं, अपनी सुरक्षा इंश्योर करते हुए, ये इस समर कैंप का पहला मकसद है। लेकिन अगर कहीं अटैक करने की जरूरत पड़ती है तो उसकी भी छोटी मोटी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है।
0: बस, ट्रेन या मेट्रो में सफर करते हुए अगर कोई सीधे फिजिकल अटैक करे, तो ऐसे हालात में कोई लड़की या महिला क्या करे, कैसे अपना बचाव करें और किस तरह से पलटवार करें, इसकी टेक्निक भी यहाँ पर खास तौर से सिखाई जा रही है।
1: हम जो बात करें कि अगर कोई कपड़ा पकड़ ले तो पहले तो वो लड़की बिल्कुल ब्लैकआउट होगी, ये हो क्या गया है, घबरा जाएगी। निपटना कैसे सिचुएशन?
3: सर इसमें हम बेसिकली हम टेक्निक बताते हैं बच्चों को, जो उसके थ्रू अपने आप को पहले तो अपने आप को बचाएगी, देन उसको अटैक करेगी। मतलब लड़की घबराएगी नहीं उस कंडीशन में, हमने वो सारी टेक्निक हम लड़कियों को बता रखी, उस कंडीशन में लड़की पहले अपने आप को बचाएगी, उसके बाद फिर अपना अटैक करेगी सामने
1: करके। देख लेते हैं सर, आप आ जाओ।
3: जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, कोई हमारा कपड़ा पकड़ ले, सबसे पहले अपने कपड़े को होल्ड करना है, ठीक है, ताकि वो खींच ना पाए, आपके कपड़े फाड़ ना पाए। सेकेंड है फिर उसके हाथ पे ये फर्स्ट अटैक करना है, यहीं से उसके हाथ को ये टर्न करना है, ठीक है। अगर वेट ज्यादा है तो उसको पीछे की तरफ आप धकेल सकते हो, अगर वेट कम है तो आप ऐसे करके उसको नीचे डाउन कर सकते हो, ठीक है सर जी। सेकंड, अगर मैं अटैक नहीं कर रहा, अगर आपस में फ्रेंड आपस में अटैक कर लेते हैं, दूसरे कपड़े पकड़ लेते हैं, उसी कंडीशन में हमें करना क्या, अपने कपड़े को होल्ड करना है, ठीक है, हमें अटैक नहीं कर रहा एज ए फ्रेंड को, तो टर्न करना हमें, राइट लेग को स्टेप लेना, घुमा स्टेप लेना और यहीं से टर्न होकर अपने आप को ये बचाना,
4: काउंटिंग पे उसके हाथ को टर्न करना है।
3: और अगर इस कंडीशन में हमें सामने वाले को फिर से हमें अटैक करना है, अगर ज्यादा चांस है सामने वाले पे मारने के, तो हमें अपने कपड़े को होल्ड करना है, फर्स्ट से उसको एक चाटा मारना है, यहाँ पे स्लैब मारना है, फिर उसके हाथ को ये टर्न करना है, सॉरी, फिर उसके बाद किक मारना।
0: इस दौरान ये भी सिखाया जा रहा है कि अगर सामने से कोई हमला कर रहा हो या हमले की तैयारी में हो तो उससे किस तरह से निपटा जा सकता है, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि खतरे के हालात में कैसे अपना मनोबल बरकरार रखें।
3: सर इसमें हमने बच्चों का क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है, ताकि उनमें एक अंदर से एनर्जी आए, ताकि मैं अपने आप को पहले बचा सकूं। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपने आप सामने वाले से मैं आप फाइट कर सकती हूँ। हम एज अ फाइटर नहीं बना रहे उनको, ऐसी कंडीशन से बाहर निकाल रहे हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके और डरे ना उस कंडीशन से। क्या होता है, लड़कियाँ कभी कभी उस कंडीशन में डर जाती है, अब वो एकदम सह जाती है और इस कंडीशन में क्या सामने वाले को और उसकी पावर बढ़ जाती है कि मैं इसको और पर, क्योंकि वो देख लेता है अटैकर कि लड़की मेरे से परेशान हो रही है, तो मैं अब उस पर और हावी हो सकता हूँ। तो इस कंडीशन में हम लड़की को समझाया कि आप डरिए नहीं, आप अच्छे से उसका सामना करें।
0: दिल्ली पुलिस के इस कैंप में लड़कियों को आत्मरक्षा के तमाम गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी हालात में हमलावर से निपटा जा सके।
1: बाल सबसे नाजुक चीज माने जाते हैं, अगर किसी ने आपके बाल पकड़ लिए हैं तो आप उस वक्त बिल्कुल बदहवास हो जाते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम अपने बालों को छुड़ा लें, लेकिन जिसने आप पर अटैक की नीयत से आपके बाल पकड़े हैं वो इतनी आसानी से तो आपको छोड़ने वाला है नहीं। तो ऐसे में अगर अटैकर आपके बाल पकड़ लेता है तो फिर कैसे करना है, कैसे बचना है, इस एक्सरसाइज में फिलहाल ये सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर पीछे एक्सरसाइज चल रही है और सामने हम प्रीति मैम और उत्तम जी से समझने की कोशिश करते रहेंगे कि कैसे जो लोग यहाँ नहीं हैं वो सीख सकते हैं। आई मैम, बाल सबसे नाजुक सबसे कमजोर माने जाते हैं, कोई पकड़ लेता कि बस तुरंत छुड़ा लो, कैसे पॉसिबल है?
3: सर अगर कोई हमारे बाल पकड़े तो सबसे पहले क्या है, अगर कोई हमारे बाल पकड़े सबसे पहले क्या, हमें उसकी पकड़ को वहीं पकड़ना है ताकि वो हमें और दर्द ना दे पाए। तो सबसे पहले क्या है, हमें अगर कोई हमें अटैक करता है, अगर कोई हमारे बाल होल्ड कर रहा है, ठीक है, बालों को होल्ड कर, सबसे पहले हमें उसके अटैक को वहीं पे पकड़ लेना है ताकि वो हमारे बाल ना खींच पाए। वहीं से क्या है, उसकी एल्बो को ये पकड़ना है, ठीक है, उसकी ग्रिप को पकड़ लिया, एल्बो को पकड़ के राइट लेग को स्टेप बिग स्टेप लेते हुए आगे बढ़ते हुए उसके हाथ को टर्न करना है, देन आप कोई भी अटैक कर सकते हैं, आप एल्बो से अटैक दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अटैक है जो आप उसके बैक साइड में आप दे सकते हैं। जी सर,
1: यही एक तरीका है?
3: हाँ और भी तरीके हैं सर, जैसे कोई बोथ हैंड से आपको अटैक कर ले, हेयर पकड़ ले, तो करना क्या, इसके दोनों हाथ को उसकी ग्रिप पे यहीं पे पकड़ लो, उसकी ग्रिप बना लो तुरंत उसकी, फिर अपने राइट लेग को बैक लेके बिग स्टेप लेके उसके डाउन कर दो, उसका हार्ट टर्न होगा, देन वो अटैक छोड़ दो। कंडीशन अगर कोई बैक साइड से सिंगल हैंड से आपके हेयर ग्रिप कर ले, ठीक है, तो उसी कंडीशन सेम वही है, पहले उसकी पकड़ को वहीं पकड़ना है, अपने आप को इक्वल रखना है, टर्न करके करके उसके हाथ को टर्न करना है, ये देखिए उसका हाथ टर्न हो मुड़ रहा है, तो वो
1: टर्न करने के बाद उसका हाथ मोड़ना
3: मोड़ना है, दर्द होगा तो वो अपने आप छोड़ देगा। और कंडीशन है अगर बोथ हैंड से अटैक कर दे, बोथ हैंड से अगर वो अटैक करा तो देन उसी कंडीशन में वही करना है, सेम हाथ को क्रॉस करना, लॉक करना है उसके हाथों को और आप उसको डाउन करके उसके किक मार सकते हैं या उसके लोअर पार्ट पे मार सकते
1: हैं। उनके हाथों को क्रॉस कर दिया उन्होंने और क्रॉस करके लॉक किया है, उसके बाद अटैक करेंगे।
3: हाँ आप कोई भी अटैक कर सकते हैं, आप लोअर किक कर सकते हैं, आप उसके पेट में नी किक भी कर सकते हैं।
0: बच्चियां भी इस ट्रेनिंग में बताई जा रही ट्रिक्स को बखूबी सीख रही हैं। और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए आत्मविश्वास से लबरेज है।
1: अंजलि, ये समझ में आया बाल बाल?
5: यस सर।
1: कैसे करना?
5: ये है, हमने पकड़ा अपने बचाव के लिए, जैसे कि तो हम ऐसे जैसे उनने हमारे पीछे से बाल पकड़े, हम घूम के उसके मुंह पे अटैक कर सकते हैं, जिससे वो पीछे वाला कमजोर पड़ जाएगा।
1: कितने स्टेप सीख लिए आपने, कितनी टेक्निक सीखी? 1, 2, 3 कितनी?
5: 4।
1: 4 बोलोगी तो नहीं?
5: नहीं,
1: यहाँ से निकलने के बाद ही प्रैक्टिस करोगी?
5: हाँ।
0: दिलचस्प बात यह भी है कि अपने पास मौजूद मामूली और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों को कैसे अपनी रक्षा का हथियार बनाया जा सकता है, इसकी टेक्निक भी यहाँ सिखाई जा रही है।
1: छोटे बच्चे, चाहे वो स्कूल में हो या घर में हो या फिर स्कूल और घर के रास्ते में हो, उनके पास एक कलम, एक किताब, उनकी बुक्स, उनकी पेंसिल हमेशा रहती है। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो कैसे बच्चे उसी कलम किताब को अपना हथियार बना सकते हैं, फिलहाल ये यहाँ पर सिखाने की कोशिश छोटे बच्चों की जा रही है। सर क्या करते हैं इसमें?
2: सर इसमें जनरली बच्चे जो होते हैं उनके पास हमेशा बुक्स और पेन बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो कोई अनवांटेड लोग चाहे उनको पकड़ना खींचना, तो हम अपने बुक को भी एज अ वेपन यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, अपने बुक से उनके वाइटल पार्ट्स पे हिट करते हैं, जैसे वाइटल पार्ट्स कहाँ कहाँ हो गया, उसके बुक से उसके हेड पे हिट कर दिया। जो बुक है उसमें बेटा बुक देना, इस बुक को अगर इस बुक को हम ऐसे फोल्ड कर ले तो फोर्स बढ़ाता है, अगर हम ऐसे मारेंगे तो कम चोट लगेगा। उसे फोल्ड कर लिया ना ऐसे, तब ये फोर्स बढ़ गया, तो हम इससे उसके हेड पे मार सकते हैं, उसके चिन पे घुमा के उसके चिन पे हिट कर सकते हैं ऐसे। और जो इसका जो कोना होता है, इस कोने से उनके कान के पास, नेक पे, उनके रिब्स पे, सोलर प्लेक्स पे, उसके थाइस पे, इवन उसके लोअर पार्ट्स पे भी मार के हम वहाँ से भाग सकते हैं। तो बच्चों में ये चीज़ सिखाते हैं कि बच्चा सिर्फ आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है, उनको मारो और वहाँ से निकलो। अब ये पेन है सर, ये पेन हमें हमेशा होता है, अगर इस पेन को हम बाहर से इसको खोल लिया, उल्टा कर लिया और अंगूठा लगा लिया, अब ये एज अ वेपन यूज़ कर सकते हैं हम। अगर मेरी जान खतरे में है तो हम एज अ चाइल्ड, हम बच्चे, हमें चाहता कोई मारना या हमारे साथ कोई गलत चाहता करना, तो हम क्या करेंगे, इसको हिट कर सकते हैं उसके कान के पास, सोलर प्लेक्स पे, उसके शोल्डर पे, उसके थाइस पे, इवन उसके लोअर पार्ट पे भी मार के हम वहां से भाग सकते हैं।
0: अक्सर ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है जब कोई किसी का हाथ पकड़ लेता है, तो उस पकड़ से खुद को छुड़ाने और सामने वाले से बचाव करते हुए उस मुकम्मल जवाब देने के तरीके भी यहाँ बताए जा रहे हैं।
2: इसमें तरीका होता है, कोई आपका हाथ पकड़ रहा है तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपने हाथ को टर्न कर लेना है। अगर आपने हाथ टर्न कर लिया तो ऑटोमेटिक आपका हाथ निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, अब ये हाथ इसने पकड़ लिया, मैंने हाथ को टर्न नहीं किया है, अब मेरे को हाथ निकाल, रास्ता क्या, रास्ता निकालने का, देखिए हम क्या, हम ऐसे खींचते हैं, निकलता नहीं है, रास्ता यहाँ पे है, अब यहाँ से मेरा हाथ ऑलरेडी लॉक है एल्बो, अगर मैं सिर्फ अब हाथ छोड़ो फिर हाथ पकड़ो, अब क्या किया मैंने, सिर्फ हाथ को चेंज कर लिया, अब दो मेरे हाथ और ऑटोमेटिक अपने आप बाहर आएगा। मालो अब बोथ हैंड पकड़ रखा है, पकड़ लो बेटा, ले पकड़ लो, अगर बोथ हैंड्स होल्ड हो गया, बोथ हैंड होल्ड हो गया, रास्ता कहाँ, रास्ता है ऊपर ही है, नीचे छूटेगा, हम ये करते हैं, हम ऐसे खींचते हैं, छूटता नहीं है। क्या करना है हमें, हमें सिर्फ अपने हाथों को पंच टाइट बांधना है, ग्रिप लेना है, अपने आगे बढ़ते हुए अपने एल्बो को, हम चाहे तो एल्बो से इसमें फेस मार सकते हैं, और सिर्फ डाउन जाएंगे ये छूट जाएंगे, अटैक किया और वहाँ से निकल जाओ।
1: उस कंडीशन में आपने एल्बो का इस्तेमाल कर सकते हैं,
2: एल्बो का यूज़ कर, बिल्कुल सर एल्बो यूज़ करते हैं आप आगे बढ़ के, और अगर आपका बोथ हैंड होल्ड हो जाए, ऐसे भी होता है ऐसे को पकड़ ले, तो इसमें दो रास्ते हैं, या तो वो आपका हाथ बाहर खुलने नहीं देगा या आपका हाथ अंदर नहीं आना देगा। अब मानते हैं मेरा हाथ को बाहर नहीं खुलने दे रहा है, तो हाथ को मिलाएंगे और एक स्टेप पीछे ले लेंगे, आपका बॉडी वेट, आपका हाथ से आपका खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अगर वो आपके हाथों को अंदर नहीं आने दे रहा है तो क्या करेंगे हम, उस कंडीशन में आपने हाथों को घुमाएंगे, हाथ को लॉक करेंगे और एक स्टेप बैक ले लेंगे, तो भी हाथ छूट जाएगा। अब ये अगली आती है, अब अगर वो हाँ मेरे हाथों को बैक साइड से होल्ड हो रहा है, ये भी कंडीशन है, अगर ये बैक साइड से पकड़ ले तो क्या करना है, आपको अपने हील से उसके हील पे हिट किया, हाथ को मिला लिया, लेफ्ट लेग को मूव किया और बॉडी वेट को सिर्फ टर्न कर लिया, तो भी ये छूट जाएगा।
0: कैंप में भाग लेने वाली बच्चियों को भरोसा है कि यहाँ सिखाए जा रहे गुर आगे चलकर उनके लिए काफी लाभदायक साबित होंगे।
5: यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे मिडल हमने पंच मारना सीखा और ब्लॉक करना सीखा, और अभी हम हैंड ग्रिप सीख रहे हैं।
1: इससे पहले कभी ये सब पता था, घर पे किसी ने सिखाया?
5: नहीं, घर पे किसी ने सिखाया, पर हमने इससे पहले भी यहाँ पे आ रखे हैं।
6: अगर हम ट्रैवल करते हैं, हम बहुत सारी जगह ट्रैवल करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके इंटेंशन बहुत गलत होते हैं, तो अगर वो टच करने की कोशिश करते तो हमें सेल्फ डिफेंस करने आना चाहिए हर किसी को।
0: चाकू या पिस्टल से हमले के खतरे की स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित रखें, ये भी इस कैंप में बताया गया, जिसे एडवांस ट्रेनिंग कहा जाता है। हालांकि खतरनाक हथियारों से भी हमले आजकल आम हो गए हैं, तो लड़कियां और महिलाओं के लिए जानना बेहद जरूरी है कि अगर कभी इस तरह की स्थिति पैदा हो तो आत्मरक्षा कैसे करें।
2: बेसिकली नाइफ में जो होता है सर, नाइफ में अटैक जो होता है उसका वो होता है, या तो वो पेट में मारेगा, या फिर सर पे मारेगा, या फिर साइड से आएगा। तो जनरली जो कॉमन है वो पेट होता है और सर होता है। तो हम देखते हैं पेट में डिफेंस कैसे होता है। अब ये नाइफ मेरे पेट में आ रहा है,
1: इस माइक को हम एज अ टूल यूज कर रहे हैं, एज अ नाइफ
2: यूज कर रहे हैं। अब ये मेरे पेट में आ रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको? फर्स्ट काम है ब्लॉक किया हमने, दोनों हाथों से इसको ब्लॉक कर लिया, लेफ्ट हैंड से कलाई को होल्ड कर लिया, नाइफ के बेस पे ले गए और आगे बढ़ते हुए इसी नाइफ को इसी के नेक पे लगा दिया, फिर से हिट हुआ। तो हम पहला काम है हाथ को होल्ड करना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। हाथ को कलाई होल्ड किया, अपने बॉडी को नाइफ की लाइन से दूर कर लिया, दूसरे वाले में पंच हिट किया, ग्रिप लिया और यही नाइफ इसी के पेट में लेके चले गए और वहां से हम निकल जाएंगे। अब हेड पे आ रहा है, तब देखते हैं। फिर से वही चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कलाई को होल्ड करना। ये अगर मैं यहाँ पकड़ूंगा तो ये चाकू यहाँ सकता है मेरे पास, तो मैंने बिल्कुल ज्वाइंट होल्ड कर रखा है, दिस इज वन वन,
1: ताकि मूवमेंट ना हो,
2: मूवमेंट रहा हूँ, दिस इज वन वन होल्ड हो गया, टू पे आगे गए होल्ड किया और थ्री पे यही नाइफ किसी के नेक पे लेके आऊंगा। अगर कोई सिंगल
1: बंदूक लेकर आ रहा है,
2: खड़ा है सिंगल हमसे स्नैचिंग कर रहा है, कुछ चाह रहा है, कुछ मांग रहा है, अगर मल्टी पिस्टल है वहाँ तो डिफेंस नहीं है, अगर सिंगल है तो वहाँ डिफेंस है।
1: ये भी समझना है कि अगर मल्टी है, अगर एक से ज्यादा है तो वहाँ कोशिश नहीं करना,
2: कुछ नहीं करना है। अगर सिंगल है, सिंगल एक हाथ से हो रहा है, लगा रखा है सिर्फ स्नैचिंग के लिए, ठीक है, तो क्या क्या वो फोन मांग रहा है, कुछ पैसे मांग रहा है आपसे, तो क्या करेंगे हम, फोन निकाला, फोन देंगे, जैसे ही फोन देंगे उसका ध्यान फोन पे आएगा। अब इसमें एक चीज और है, अगर मैं इसने हमें अपने हाथ को यहाँ रखूँ, उसको क्या पता मैंने कहा मैंने हाथ को यहाँ क्यों रखा है, तो मैं अपने हाथों को क्लोज रखूंगा, फोन निकाला, फोन दिया, ध्यान वहां जाते ही क्या करेंगे हम, यहाँ से ये छीन लेंगे।
0: इस समर कैंप में बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं। इनमें से कुछ की उम्र 65 से 71 साल तक है। फिलहाल सेल्फ डिफेंस की दूसरी कई तरकीबों के साथ ये भी सीख रही हैं कि दुपट्टे को किस तरह से सुरक्षा कवच के समान इस्तेमाल किया जा सकता है। कैंप में भाग ले रही महिलाओं का कहना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और खुद को सुरक्षित रखने के लिए आत्मविश्वास बेहद जरूरी है।
7: अभी रुपट्टा अटैक सीख रहे हैं हम, उससे पहले हमने बस अटैक सीखा था, हेयर अटैक सीखा था, तो अब हमारा रुपट्टा अटैक है, क्योंकि हम कभी भी कहीं जा सकते हैं, हम अकेले हैं, हम किसी के ऊपर नहीं कि कोई हमें बचाएगा आके, हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं।
8: कोई भी उम्र हो सीखना चाहिए और सीखते रहते ही हैं, सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही हैं रोज। सेल्फ डिफेंस के लिए हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं और मेरी ये 40 साल से मेरी ये इच्छा थी कि मैं इस कैंप में पार्टिसिपेट करूं और आज मुझे ये मौका मिला है, मैं बहुत खुश हूँ।
9: बहुत अच्छा लग रहा है, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और सेल्फ रिस्पेक्ट मिल रहा है और सारा यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत हमें हिम्मत दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके।
10: देखा सिचुएशन भी ऐसी है, वर्ल्ड भी थोड़ा ऐसा है, पहले से प्रिपेयर होकर रहना चाहिए। और क्या है कि यहाँ पे सेल्फ डिफेंस भी है और एक तरह से एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो लाइक दैट।
11: मैं तो अकेले आती जाती हूँ ही, मगर अब ये है कि खुद को अपने आप को ये बचाव रखने का तरीका बताया गया हमको कि अगर कुछ अनहोनी होती है या कोई इमरजेंसी आती है तो हमको कैसे अपने आप को बचाना है।
0: दिल्ली पुलिस की ओर से गर्मी की छुट्टियों में 12 दिनों का ये सेल्फ डिफेंस कैंप लगाया गया है। स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन की सेल्फ डिफेंस विंग इसमें लड़कियों और महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही है।
12: हम यहाँ पे बच्चों को जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड करते हैं और उनको बोलते हैं कोई भी उनके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो वो अपनी आवाज़ उठा के अपने पेरेंट्स को, पुलिस को या अपने प्रिंसिपल को बताएं और उनको डिफरेंट अटैक्स के बारे में बताते हैं कि आपको कहाँ गुड टच बैड टच के बारे में बताते हैं कि आपको कब अपनी आवाज़ उठानी है और इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते हैं कि बच्चे जो है वो अब आज अपने आप को कर लेते हैं।
0: लड़कियों और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली पुलिस की ये पहल नई नहीं है। 2002 से अब तक करीब 30 लाख लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस पहल को 2017 और 2018 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा चुका है। 2022 में इसके लिए दिल्ली पुलिस को स्कॉट सिल्वर अवार्ड मिला। पहली बार दिल्ली पुलिस इसमें नॉमिनेट हुई थी। 2026 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसे शामिल किया गया और इसी साल इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ISO सर्टिफिकेट भी हासिल हुआ है। पुलिस का ये अभियान अब एक मिशन का रूप ले चुका है। इसमें ऐसे प्रशिक्षक भी हैं जिन्होंने इसे परवान चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके कोच हेड कांस्टेबल उत्तम कुमार श्रीवास्तव अब तक 1 लाख से ज्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। कैंप के दौरान आत्मरक्षा के गुर तो सिखाए ही जाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा मकसद महिलाओं के साथ छोटी बच्चियों को भी हर हाल में हर खतरे से निपटने के लिए तैयार रहने का मंत्र देना है।
1: ये बच्चे तमाम हैं, आप देख रहे हैं कि अलग अलग क्लासेस के हैं, छोटे बच्चे हैं अभी। ये समझते हैं कि कई बार कुछ लोग जो उनके पास आते हैं या आने की कोशिश करते हैं, उनके इंटेंशन हर बार अच्छे नहीं होते, इरादे अच्छे नहीं होते। ऐसे में कैसे उनसे निपटना है वो सब कुछ वो यहाँ सीख रहे हैं और ये वादा भी कर रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद प्रैक्टिस रुकेगी नहीं, लगातार इसकी प्रैक्टिस वो करते रहेंगे।
0: दिल्ली पुलिस का ये समा कैंप सिर्फ सेल्फ डिफेंस क्लास नहीं रहा बल्कि आत्मविश्वास की वह पाठशाला बन चुका है जहां लड़की और महिलाएं सीख रही हैं किसी भी खतरे से डरना नहीं है बल्कि जिम्मेदारी के साथ डटकर उसका सामना करना है।
1: इस समर कैंप में कम से कम उन बच्चों को तो बहुत फायदा हो रहा है जिसके जो आने वाले कल का हमारे देश का भविष्य है, लेकिन उनका कल सुरक्षित रहे ये ऐसे समर कैंप से इंश्योर होता है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
13: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
15: के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
17: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover. Interested in what's going on around the world?
2: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
1: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: गर्मी की छुट्टियों में अगर आप कहीं सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे हैं या सैर करके आ चुके हैं, तो आपके बच्चों के सामने एक बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर वक्त कैसे गुजारें। ऐसे में इस बार दिल्ली में बच्चों के लिए एक ऐसा समर कैंप लगाया गया है जिसमें बच्चों को अच्छे आचार विचार और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। संस्कार की इस पाठशाला में क्या क्या हो रहा है, ये जानकारी देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट।

0: आस्था, मर्यादा और भारतीय संस्कृति के प्रतीक भगवान राम। कण कण से उठता एक ही उद्घोष, जय श्री राम।
1: जय श्री राम।
0: सनातन धर्म में भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र, जिसका नियमित जाप मन को शांति देने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है।
1: फुल पावर इन।

तुलसीदास द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा का पहला दोहा पढ़ने का विशेष आनंद है।

0: गर्मी की छुट्टियों में आयोजित होने वाले दूसरे समर कैंप से ये समर कैंप बिल्कुल अलग है। आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक, कोडिंग, रोबोटिक्स और पब्लिक स्पीकिंग जैसी कलाओं की जगह यहाँ आने वाले बच्चों को सनातन संस्कार सिखाए जाते हैं।
1: बच्चों सीधा, आलती पालती कमर सीधी, आंखें बंद, हाथ जोड़ लो, जय श्री राम,
2: जय श्री राम,
1: जय श्री राम।
0: ये अनोखा समर कैंप है, दिल्ली के मानसरोवर गार्डन में मौजूद सनातन धर्म मंदिर में लगाया गया है, जिसका नाम संस्कार शाला दिया गया है।
3: कोई वीडियो गेम नहीं, कोई

0: क्लास में हो आप?
1: सिक्स्थ
0: में। यहाँ क्या क्या सीखा आपने?
1: मैंने यहाँ पे मंत्र सीखे और भजन सीखे, डांस सीखा और साथ में कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट। और
0: कोई मंत्र सुनाओ हमें, कौन सा मंत्र सीखा है?
1: प्रार्थना स्मरण, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दक्षिणम, समुद्र वसने देवी, पर्वताष्टन्मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम समस्तमेव, ब्रह्मा मुराली, त्रिपुरांतकारी, भानु शशि, भूमि सतो बुधश्र, गुरु शुक्रा, शनि राव केतुआ, कुरुवंतु सर्वे मम सुप्रभातम।
2: यहाँ पे हमने मंत्र सीखे कि किस तरीके हमें सुबह उठ के हर चीज़ें करनी चाहिए, जैसे हमें अपनी सुबह की शुरुआत कैसे किन मंत्रों से करनी चाहिए, स्नान के टाइम पे हमें कौन से मंत्र बोलने चाहिए, पूजा घर में जाके हमें क्या क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, किस तरीके से वो हमारे संसार में सबसे पहले गुरु होते हैं। हमने यहाँ पे राम जी की चौपाइयाँ सीखी हैं, गीता जी के श्लोक अभी हम सीख रहे हैं यहाँ पे।
3: मेरे को इस मंदिर के बारे में नहीं पता था, मेरी दोस्त ने मेरे को बताया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि
4: मैं जब भी समर कैंप में आता तो मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता, यहाँ पर मेरे को इतना अच्छा लगता है आके और इधर बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
0: क्या क्या सीखा अभी तक आपने?
4: मंत्र, डांस, श्लोक और गेम्स लिखाई, हमें हनुमान चालीसा, बहुत कुछ सिखाया हमें यहाँ पर।
5: पिछले 5 साल से बच्चों में सनातन संस्कार डालने की कोशिश हो रही है ताकि वो अपनी संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन जीने की सही कला से जुड़ पाए।
6: इसका जो श्रेय जाता है जो मंदिर के प्रधान है श्री हरगोपाल अरोड़ा जी, उनसे मेरी बात हुई 5 साल पहले कि आजकल के बच्चे पढ़ाई, गेम सब कुछ कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं संस्कार उनको नहीं मिल रहे हैं, जो मॉरल एजुकेशन हम बोलते हैं। तो हमने कहा कि कैसे बच्चों को जोड़ा जाए, मंदिर में आना, टीका लगवाना अपने आप ही बहुत बड़ी बात है और ये बच्चे पूरा 1 महीने का संस्कार समर कैंप चलता है हमारे यहाँ पे।
5: हर रोज 80 से 100 बच्चे इस समर कैंप का हिस्सा बनते हैं। हर साल 1 महीने के लिए ये समर कैंप चलाया जाता है जो कि पूरी तरह निःशुल्क है, इसके लिए बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती।
6: अराउंड 500 बच्चों को हम ट्रेन कर चुके हैं क्योंकि हर साल अराउंड 150 बच्चे आते हैं और आसपास के क्षेत्र से, मानसरोवर गार्डन, रमेश नगर क्षेत्र से आते हैं।
5: भारतीय बच्चों में सनातन संस्कार डालने की वजह उन्हें अपने जड़ों से जोड़ना है ताकि आधुनिक दुनिया में मानसिक शांति मिले और साथ ही मजबूत चरित्र का निर्माण हो।

0: मंदिर की स्थापना केवल मूर्ति पूजा के लिए नहीं है। जब तक वहाँ पर के एक अच्छे नागरिक का निर्माण नहीं किया जाता, उसको अपनी जड़ के साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक उस मंदिर का कोई फायदा ही नहीं। जो बड़े हो गए हैं, बड़ा तना मोड़ना बड़ा मुश्किल है। छोटे बच्चे जो हैं, कल को भारत का भविष्य इनके हाथ में आने वाला है। इनका अगर हम निर्माण करेंगे, फाउंडेशन निर्माण करेंगे, तो कल को एक हमारा अच्छा भारत हमारे सामने आएगा।
1: इस समर कैंप का मकसद बच्चों को संस्कार सिखाने के साथ साथ उन्हें मोबाइल से दूर रखना भी है।
2: बच्चों को वो सिखाने की कोशिश है जो अमूमन उन्हें सिखाना आसान नहीं होता, या फिर जिसमें उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट कम होता है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा इस समर कैंप का यह कि कोशिश की जा रही है कि बच्चों को उनकी छुट्टियों में फोन से दूर रखा जाए, ताकि फोन में जो कभी वो कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं होती हैं, और उनका प्रभाव भी उन पर गलत पड़ता है। तमाम कोशिशों के साथ ये समर कैंप लगातार जारी है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
3: और यह वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर देखिए फटाफट अंदाज में जीएटी एक्सप्रेस।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and

0: stay in the loop.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: पीएम मोदी का फ्रांस दौरा, नीस शहर में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात। नीस शहर में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का शुभारंभ, स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को एक मंच पर लाने का प्रयास। भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा दोनों देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत की स्टार्टअप क्रांति की तारीफ की, कहा भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप। नीस में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से की मुलाकात, होटल में एक बच्चे को भी किया दुलार। बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम में स्थापना दिवस से पहले उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं के जयकारों से भक्तिमय हुआ पूरा माहौल। स्थापना दिवस से पहले कैंची धाम में रंग बिरंगी रोशनी जगमगाया, दिव्य और अलौकिक स्वरूप में नजर आ रहा पूरा आश्रम। कल स्थापना दिवस पर लाखों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद के बीज बनाने की युद्ध स्तर पर तैयारी, 9 बड़े चूल्हों पर मालपुए तैयार कर रहे मथुरा वृंदावन के कारीगर। कैची धाम में अखंड रामायण का पाठ लगातार जारी, बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए लगी लंबी कतार। कल तक स्थापना दिवस को लेकर रिकॉर्ड संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां। चार धाम की पवित्र यात्रा का आज 57वां दिन, पूरे उत्साह और विश्वास के साथ श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने का सिलसिला जारी। चार धाम यात्रा में अब तक 34 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का प्रशासन रख रहा पूरा ख्याल। कपाट खुलने के बाद से सबसे अधिक केदारनाथ दर्शनों के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु, अब तक 12 लाख से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन। आस्था और भक्ति के साथ भक्तों के बद्रीनाथ धाम पहुंचने का सिलसिला जारी, 11 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी रिकॉर्ड संख्या पहुंच रहा श्रद्धालु, 80,000 से अधिक भक्तों ने हेमकुंड साहिब में किए दर्शन। ज्येष्ठ माह की कृष्ण चतुर्दशी पर अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सुबह से मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार। उज्जैन में बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार आरती में बड़ी संख्या में भक्तों ने लिया हिस्सा। कल देश भर में मनाया जाएगा सोमवती अमावस्या का त्यौहार, गंगा स्नान के लिए अभी से उमड़ रहे हरिद्वार में श्रद्धालु। सोमवती अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से स्थान संपन्न कराने के लिए मेला क्षेत्र को 6 सुपर जोन, 16 जोन और 46 सेक्टर्स में किया गया विभाजित। नोएडा के लोगों को कल मिलेगी उड़ान की सौगात, जेवर एयरपोर्ट पर शुरू होगी उड़ानें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कल लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान, 172 किसान करेंगे पहला सफर। हवाई यात्रा कर लखनऊ में सीएम योगी से करेंगे मुलाकात, 172 किसान, परियोजना के लिए किसानों ने दी थी अपनी जमीनें। साल 2026 के आखिर तक इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद, एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाकर 7 करोड़ यात्री करने की योजना। एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू होने से पहले पुलिस प्रशासन ने तेज की तैयारी, यात्रा और सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर। तिरुमला मंदिर में जानवी कपूर ने पहनी हड़ौती की शान, सोने चांदी की बुनाई वाली साड़ी बनी चर्चा का विषय। फिल्म पेटी की रिलीज से पहले जानवी कपूर ने दर्शन के लिए तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंची थी। जानवी पारंपरिक कोटा साड़ी ने श्रद्धालुओं और फैशन प्रेमियों का खींचा ध्यान। कोटा में खास तरीके से तैयार की जाती है सोनचरैया साड़ी, हड़ौती की पुरानी हस्तकरघा परंपरा से बनाई जाती है साड़ी। हड़ौती की सांस्कृतिक विरासत बॉलीवुड के जरिए देश भर में एक बार फिर चमकी, पारंपरिक रियल गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी से की गई तैयार। पंजाबी म्यूजिक कंपोजर करण औजला के साथ 21 जून को मंच साझा करेंगे विराट कोहली, दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है प्रोग्राम। सुरक्षा मीना को लेकर दिल्ली सरकार ने चलाया बड़ा अभियान, 28 घंटों पर 500 संगठन और हजारों लोग करेंगे योगदान। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने भी यमुना सफाई अभियान में लिया हिस्सा, गीता कॉलोनी के दशाश्वमेध घाट पर की साफ सफाई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी यमुना के घाटों पर की सफाई, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ लिया हिस्सा। यमुना क्लीननेस कैंपेन का हिस्सा बने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, घाटों पर की साफ सफाई। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने यमुना के घाटों पर साफ सफाई की, लोगों को स्वच्छता के लिए किया जागरूक। दिल्ली के यमुना घाट पर चला स्वच्छता अभियान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर साफ सफाई में लिया हिस्सा। यमुना नदी के सूर घाट पर बीजेपी पहुंचे बीजेपी के नेता मनोज तिवारी, स्वच्छता अभियान के तहत किया श्रमदान। चेन्नई में खेलो इंडिया अभियान में साइकिल रैली का आयोजन, 150 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। जम्मू में जम्मू हाई फाइव 5 के मैराथन का आयोजन, नौजवानों को फिट रहने और नशे से दूर रहने का दिया गया संदेश। जम्मू में बौद्ध प्लाजा से शुरू हुई मैराथन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा, डांस और कार्टून प्रदर्शनी से भी दिया गया फिटनेस का संदेश। दिल्ली में आज भी जारी रह सकती है प्री मानसूनी बारिश की मेहरबानी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में बारिश और बादल के बीच लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिल रही राहत, अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी दर्ज की थी कमी। यूपी बिहार राजस्थान और हरियाणा समेत 17 राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, अगले 12 घंटे में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। मानसून और पश्चिम विक्षोभ का देश के बड़े हिस्सों पर दिख रहा असर, मौसम विभाग ने कई जगहों पर बिजली गिरने की जताई संभावना। उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ा मानसून, अगले 2 से 3 दिन में उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों तक पहुंचने की संभावना। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मौसम ने बदला नजारा, खूबसूरत वादियां पर्यटकों को कर रही आकर्षित। कन्याकुमारी में जारी बारिश से तापमान में दर्ज की गिरावट, जिले के 351 तालाब पानी से हुए लबालब। कन्याकुमारी में लगातार बारिश से ताम्रपर्णी नदी हुई ओवरफ्लो, किनारे के इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत मौसम ने बदला वादियों का नजारा, प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। शिमला में वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में पर्यटकों की आने की आमद, स्थानीय कारोबारियों के खिले चेहरे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
7: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
8: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
9: Keep it on smooth jazz.
10: This is Roots Reggae
11: exclusively on TuneIn.
12: This is classic hip hop
13: exclusively on TuneIn.
7: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music and news you love anytime you want.
1: मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
14: पुतिन ने दिया सुपर किलर का ऑफर, अदृश्य योद्धा के नाम से दुश्मनों में टेरर, भारत रूस की यारी, चीन पाकिस्तान पर भारी। देखिए रणक्षेत्र रात 10:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
6: फ्रांस में पीएम मोदी ने भारत इनोवेट से 2026 का किया उद्घाटन। पीएम बोले, आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप केंद्र। राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत की नवाचार क्षमताओं को सराहा। सोमवार से नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ान का संचालन। लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान। एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे पहली फ्लाइट का सफर। स्थापना दिवस से पहले रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया कैंची धाम। उमड़ा आस्था का सैलाब, 9 चूल्हों पर तैयार हो रहा महाप्रसाद। जयकारों से गूंजा धाम। पिथौरागढ़ पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत ने पवित्र आदि कैलाश के किए दर्शन। आईटीबीपी जवानों के साथ खिंचवाई तस्वीरें, फैंस को दिया ऑटोग्राफ। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत का आज पहला मैच। एजिस वेस्टर्न में पाकिस्तान से महामुकाबला, शाम 7 बजे होगा शुरू। बेटियां फिर लाएंगी वर्ल्ड कप।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अनोखी पहचान बनाई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जानवी कपूर है। जी हाँ, जानवी कपूर। बीते 4 जून को जानवी कपूर की पैदी फिल्म रिलीज हुई तो जानवी के किरदार को लेकर हंगामा मच गया। लोग फिल्म के निर्देशक बुच्ची बाबू की आलोचना करने लगे कि उन्होंने जानवी के फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाई किया है। जानवी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचता रहा लेकिन वो शांत रही। आखिरकार बुच्ची बाबू को फिल्म से उन दृश्यों को हटाना पड़ा।

0: हैं जो महफिल में बड़े बेपरवाह से अंदर से वो गुजरते हैं गहरी किसी राह से। इस जुमले में मौजूदा दौर की दिलकश अदाकारा जाह्नवी कपूर की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान जज्ब है। 4 जून को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई बुची बाबू की पेदी फिल्म ने पहले ही हफ्ते में बेशक 345 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया, लेकिन जबरदस्त कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को भी ट्रिगर कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर बौद्धिक गलियारों तक में चर्चा गर्म हो गई कि पेदी में जाह्नवी कपूर के किरदार को अनावश्यक रूप से सेक्सुअलाइज किया गया है, उनके फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। दरअसल पेदी में जाह्नवी कपूर ने अच्छी अम्मा का किरदार निभाया है। फिल्म के निर्देशक बुची बाबू के मुताबिक अच्छी अम्मा का किरदार खास तौर से फिल्म के हीरो रामचरण के किरदार पेदी के बदलाव को दिखाने के लिए गढ़ा गया है। कह सकते हैं कि इस तर्क की आड़ में बुची बाबू ने जाह्नवी कपूर की एक्टिंग से ज्यादा उनके फिगर को ग्लैमराइज कर दिया। जाहिर है महिला अधिकार संगठनों से लेकर नेटिजन्स तक ने सोशल मीडिया पर फिल्म के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। भारी विरोध को देखते हुए बुची बाबू को आखिरकार ऐसे सेंसुअलाइज दृश्यों को फिल्म से हटाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बुची बाबू ने अपना पक्ष रखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पेदी के कुछ दृश्यों पर मिली प्रतिक्रिया को मैं गंभीरता से लेता हूं। मैं पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगह महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाने का नहीं था। अगर फिल्म का कोई हिस्सा ऐसा लगा है तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, उनकी चिंताओं को समझता हूं और खुले दिल से माफी मांगता हूं। मैंने उन दृश्यों को बदलने का फैसला किया है जो आपत्तिजनक लगे हैं। साउथ की फिल्मों में हीरोइन के फिगर को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड करने का चलन आज का नहीं है, दक्षिण भारत के फिल्मों का ये पुराना ट्रेंड है। फिर भी जया बच्चन से लेकर आशिकी फेम अनु अग्रवाल, करीना कपूर और नेशनल अवार्ड विनर नित्या मेनन तक ने जाह्नवी कपूर को सेक्सुअलाइज करने का किसी न किसी रूप में कड़ा विरोध किया। पर कमाल तो यह है कि जिस अभिनेत्री के किरदार को लेकर इतना ज्यादा बच क्रिएट हुआ, उसने पूरे मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बताया कि इस फिल्म को करने का फैसला उन्होंने क्यों लिया।
1: I think apart from just my character, when I heard the script, I felt very strongly about what the film was saying, how much it meant to our director Butchi sir, and I think the politics, the social commentary, the cultural implications of what a story like this could do, all of these things resonated with me very deeply. So for those reasons alone, I wanted to be a part of this film.
0: Golden Spoon culture mein pali badi star kid ka khud ke bare mein flare up hui itni badi controversy ko lekar itna mature reaction aapko hairani mein dal sakta hai. Darasal Boni Kapoor jaise bade film nirmata और श्रीदेवी जैसी स्टार अदाकारा की दिलकश बेटी जाह्नवी की असल जिंदगी वो नहीं है जिसे पेदी के जरिए देखा और दिखाया गया। 4 जून को सिने प्रेमी सिल्वर स्क्रीन पर जब पेदी फिल्म की अच्छी अम्मा का ग्लैमरस लुक देखकर मदहोश हो रहे थे, उसी समय ये अभिनेत्री नंगे पांव 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा और 3,550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर पहुंच रही थी। अगाध श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश के मंदिर में माथा टेक कर फिल्म की सफलता का आशीर्वाद मांग रही थी।

0: 4 जून को जिस समय सिल्वर स्क्रीन पर अचियम्मा के सेंसुअल लुक्स को देखकर ऑडियंस क्रेजी हो रहे थे, उस वक्त जाह्नवी विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी में पूरी गरिमा के साथ भक्ति और अध्यात्म का कठिन रास्ता तय कर रही थीं। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी में जाह्नवी की अगाध आस्था का एक छोर उनकी माँ श्रीदेवी की बेपनाह यादों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीदेवी न सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके पर बालाजी के दरबार में जाती थी, बल्कि जीवन के बिजी शेड्यूल के दौरान भी जब मौका मिलता तो उनका जाप करती थीं। जाह्नवी तिरुपति बालाजी के प्रति अपनी माँ की श्रद्धा आस्था और समर्पण से वाकिफ थीं। इसीलिए 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी के मृत्यु के बाद माँ के हर जन्मदिन पर 13 अगस्त को वहाँ जाने का फैसला कर लिया।
1: आई थिंक तिरुपति से स्पेसिफिकली एक अलग जुड़ाव है। आई थिंक बचपन से मैं सुनती आई हूँ मम्मा के मुँह से कि उनका भी एक अलग कनेक्शन रहा है बालाजी के साथ। हर बार उनका नाम जापती थी, नारायण नारायण नारायण, और कहती रहती थी कि हर साल उनके बर्थडे पर जब वो काम कर रही थी तो वो तिरुपति चढ़कर जाती थी। और शादी के बाद उन्होंने बंद कर लिया था, तो उनके गुजरने के बाद मैंने ठान लिया था कि हर साल उनके बर्थडे पर मैं जाऊंगी। तो जब पहली बार गई थी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी, और बहुत शांति मिली मन में। तो उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि हर बड़े अवसर के पहले मैं तिरुपति चढ़ूंगी।
0: जाह्नवी और श्रीदेवी का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी के परंपरागत संबंधों तक सीमित नहीं है। श्रीदेवी के गुजर जाने के 8 साल बाद भी उनकी यादें, उनका स्नेह, प्यार सब जाह्नवी की जिंदगी की प्रखर धूप में छायेदार वृक्ष की सुरभित बयार की तरह सुखद एहसास करा जाता है। ये एक ऐसा अलौकिक रिश्ता है जहाँ एक के जाने के बाद भी दूसरे को उसके आने का इंतजार है।
1: आई वॉन्ट टू रिमेम्बर द गुड थिंग्स। तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज में बात करती हूँ उनके बारे में, और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही है। मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था। आई थिंक इट मेक्स मी फील लाइक मे बी लाइक आई डोंट नो, शी इज ट्रैवलिंग समवेयर एंड शी विल कम बैक।
0: कुछ तो अलौकिक है माँ बेटी के रिश्ते में। जाह्नवी के जन्म के बाद श्रीदेवी आनंद की अलौकिक अनुभूति से सराबोर हो उठी थी। उन्हें तब ये नहीं लगा था कि उनकी गोद में कोई नन्ही नई मेहमान आई है, बल्कि ये लगा था मानो सदियों पहले बिछड़ा कोई अपना ही दोबारा से लौटकर दामन से लिपट गया है। श्रीदेवी ने अपनी बेटी का जाह्नवी नाम भी किसी खास एहसास से भर कर दिया था। दरअसल जाह्नवी 1997 में रिलीज हुई जुदाई फिल्म का एक करेक्टर था, इत्तेफाक से जिसे श्रीदेवी ने नहीं बल्कि उर्मिला मातोंडकर ने निभाया था। कमाल देखिए कि जुदाई 28 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी और जाह्नवी का जन्म उसके ठीक 6 दिन बाद 6 मार्च 1997 को हुआ। आपको बता दें कि जाह्नवी गंगा नदी का एक पर्यायवाची शब्द है जो अपनी पवित्रता और निर्मलता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीदेवी अपनी बेटी में गंगाजल जैसी पवित्रता और निर्मलता का भाव रखती थी। 80 और 90 के दशक की मेगा स्टार श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जीवन में जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा, जो परेशानी उन्हें उठानी पड़ी, वो उनकी बेटियों को उठानी पड़े।
1: वो हमेशा कहती थी मुझे कि मैंने जिंदगी भर मेहनत की है 4 साल की उम्र से ताकि आप मेरे दोनों बच्चे आराम की जिंदगी जिए। ये जिंदगी वो मानती थी कि हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम सख्त किस्म के इंसान तो है नहीं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो उनका ये सपना था कि मैंने इतना कुछ किया है ज़िंदगी में, और अगर मैं मेरी बेटियों को आराम की ज़िंदगी नहीं दे पा रही और वो खुद इस चीज़ में कूद रहे, तो मैंने किया है क्या लाइफ में। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं मरी जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लो, कूद जाओ इस कुएं में।
0: साफ है कि जाह्नवी का फिल्मों में करियर बनाने का फैसला माँ को पसंद नहीं था। श्रीदेवी चाहती थी कि जाह्नवी डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों की सेवा करें, लेकिन जाह्नवी ने जब अपनी मंशा साफ कर दी कि एक्टिंग के सिवा वो कुछ और कर ही नहीं सकती, तो श्रीदेवी ने अच्छा एक्टर बनने के लिए बेटी को कुछ टिप्स दिए। श्रीदेवी ने जाह्नवी को जो टिप्स दिए वो अभिनय के पेशे को गरिमा से भर देने वाला है।
1: यू नो शी ऑलवेज यूज टू से कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है. एंड बिकॉज द कैमरा इज वेरी स्मार्ट, आई फील लाइक इफ यू आर नॉट अ गुड पर्सन देन इट शोज, एवरीथिंग फील्स फेक. एंड शी यूज टू से अगर दिल में गंदगी है या अगर यू नो इफ यू आर नॉट एबल टू लिव योर कैरेक्टर्स फीलिंग्स जेन्युइनली देन इट शोज. So that's one thing, and I think that it's ever since I was a kid, mom and dad have like drilled in my head, you need to be dedicated and be focused. So like you said, there's no substitute for hard work.
0: Janvi doctor banne ki maa ki khwaish to puri nahi kar payi, lekin har kasauti par acha insaan banne ki maa ki ichha puri karne ki bharsak koshish aaj bhi karti hain. Film industry mein actor ya actress ke beech एक हेल्दी कंपटीशन तो चलता ही रहता है, लेकिन कई बार तो अनहेल्दी भी बन जाता है. पर जानवी इस अनहेल्दी कंपटीशन से कोसों दूर हैं. उनसे ये पूछिए कि आप किस एक्ट्रेस को अपनी चुनौती मानती हैं, तो वे सह अस्तित्व की बात कह के सबका मुंह बंद कर देती हैं.
1: ये चुनौतीपन क्यों, क्योंकि हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? नहीं, ये शायद दूसरे लोगों के दिमाग में है. मुझे ऐसे लगता है कि हम सब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं, और हम सब एक दूसरे के लिए खुश भी है और हो सकते हैं. और एज लॉन्ग एज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ, मुझे यू नो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, मैं एज एन ऑडियंस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए.
0: दरअसल जानवी से सवाल सारा अली खान और अनन्या पांडे को लेकर पूछा गया था. जानवी की मैच्योरिटी, उनकी तरबियत, मानवीय संवेदना, सोच और संस्कार आज की जेंजी या मिलेनियल्स के लिए अद्भुत प्रेरणा है. एक ऐसी लड़की जो इंडस्ट्री की अत्यंत प्रभावशाली फैमिली का हिस्सा है, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ उसे मिल सकता था, पर श्रीदेवी और बोनी कपूर की इस लखते जिगर ने पारिवारिक साये से निकलकर मेहनत और लगन से अपनी शख्सियत को गढ़ा है.
2: जानवी का अपनी मां श्रीदेवी से रिश्ता अनोखा और अलौकिक है. श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जो कष्ट उन्होंने झेला है वही उनकी बेटियों को भी झेलना पड़े, लेकिन जानवी ने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि वो अपनी शख्सियत को संघर्ष की भट्टी में तपकर गढ़ेंगी. इसलिए उन्होंने अपने को स्थापित करने के लिए दूसरे कलाकारों से कहीं ज्यादा मेहनत की.

0: बेदी फिल्म से अलग तरह से सुर्खियों में आई जाह्नवी कपूर का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मुख्तसर से फिल्मी करियर में उन्होंने ऑडियंस के साथ ही क्रिटिक्स को भी अपने अभिनय के दम पर गहरे प्रभावित किया है। 6 मार्च 1997 को मुंबई में पैदा हुई जाह्नवी को जन्म से ही अभिनय के संस्कार मिलने लगे थे। अभिनय की बारीकियां उन्होंने बेशक अमेरिका के लॉस एंजलिस के द ली स्टारबर्ग थिएटर एंड फिल्म्स इंस्टीट्यूट से सीखा, लेकिन उसका ककहरा उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी और पिता बोनी कपूर से होश संभालने के बाद से ही सीखना शुरू कर दिया था।
1: Actually, in my family, it's the only thing that we discussed. It's the only thing that we knew as kids. Every time we'd, you know, sit at home and have a conversation with one another, it was always about films. Or even when we'd go out to spend time together, we'd go out to watch a movie, and you know, it was always a conversation at home. Holidays were always either dad's shooting schedules or mom's shooting schedules. So it was. We've grown up in that environment.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीदेवी और बोनी कपूर जैसी इंडस्ट्री की नामवर हस्तियों की बेटी होने की वजह से जाह्नवी को सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक पाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मनीष मल्होत्रा कपूर परिवार के फैमिली फ्रेंड थे, जो इत्तेफाक से करण जौहर जैसे इंडस्ट्री के स्टालवार्ट के भी करीबी थे। मनीष जाह्नवी को बचपन से जानते थे, लिहाजा उनके भीतर के पोटेंशियल को लेकर वो अक्सर करण से चर्चा करते रहते थे। करण जौहर निर्देशक शशांक खेतान के साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें उन्हें भारतीयता से भरी हुई एक हसीन और नए चेहरे की तलाश थी। इस दौरान जाह्नवी मनीष मल्होत्रा के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस आने जाने लगी थी। इसी बीच शशांक खेतान की नजर जाह्नवी पर टिक गई और उन्होंने बिना किसी लांग लपेट के फैसला कर लिया कि धड़क के लिए जिस लड़की की तलाश थी उसके लिए जाह्नवी पूरी तरह फिट हैं। उसके बाद जाह्नवी को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया।
1: मैं जाती थी उनके ऑफिस, आई थिंक 3-4 सीन्स दिए उन्होंने मुझे, और मैं जाके रट लेती थी और फिर परफॉर्म करती थी उनके लिए।
0: धड़क साइन करने के बाद जाह्नवी को एक अज्ञात डर सताने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि सेट पर लोग यही सोच रहे होंगे कि स्टार की ढोने की वजह से ही उन्हें काम मिला है। इस डर की वजह से जाह्नवी इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो गईं। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मुझे जो मिल रहा है दरअसल मैं उसके लायक नहीं हूँ। इसीलिए वो सेट पर दूसरे कलाकारों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करती थी और पूरी यूनिट के साथ काफी हम्बल भी रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी को सेट पर आने से भी रोक दिया था, ताकि कोई ये ना कहे कि अपने जमाने के स्टार माँ बेटी की कमतरी को कवर करने के लिए आई हैं।
1: मेरे लिए ऐसा था कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और इसलिए लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, अब मैं ये अपने आप करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मदद मत कीजिएगा, आप सेट पे मत आइएगा प्लीज। तो मैं उनको सेट से दूर रखती थी।
0: माँ श्रीदेवी को सेट से दूर रखकर जाह्नवी धड़क की शूटिंग के दौरान पूरी जान झोंक रही थी, ताकि प्रीमियर में माँ जब बेटी की एक्टिंग देखे तो आह्लाद से ओत प्रोत हो जाए। पर जाह्नवी की उम्मीद की कश्ती जब साहिल के करीब पहुँचने ही वाली थी, उसी वक्त अचानक आए भयानक तूफान ने सतरंगे सपनों की रानाइयों को तहस नहस कर दिया। धड़क फिल्म की रिलीज से करीब 5 महीने पहले 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथ टब में दुर्घटनावश डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई। एक झटके में जाह्नवी की जिंदगी सन्नाटे में चली गई। धड़क फिल्म के प्रमोशन का उत्साह भी नहीं बचा। उस दौरान श्रीदेवी को लेकर जाह्नवी से जब कोई सवाल पूछा जाता तो वो दर्द की कशिश में ऐसे डूब जाती कि एक गहरी खामोशी के सिवा दूसरा कोई जवाब निकल ही नहीं पाता था।
1: उनके बारे में शायद अभी ज्यादा बात करने लगी हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप आई लाइक टॉकिंग अबाउट, आई फील लाइक आई एम रिमेम्बरिंग हर, यू नो। लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत होता था। आई थिंक जब मैं धड़क प्रमोट कर रही थी, देयर वाजंट अ लॉट ऑफ टाइम दैट हैड पास्ड, वो बहुत फ्रेश था मेरे दिमाग में सब कुछ, और मैं भाग रही थी मेरे सच्चाई से और मैं काम को इस्तेमाल कर रही थी, सो दैट वाज माय एस्केप। और जब भी कोई भी प्रोफेशनल सिनेरियो में वो मुझे रिमाइंड करते थे कि शी इज़ नो मोर. आई थिंक मैं बिल्कुल शट, लाइक आई जस्ट कुडंट डील विद इट.
0: 20 जुलाई 2018 को रिलीज हुई धड़क में पार्थवी सिंह राठौर नाम की मध्यम वर्गीय लड़की के किरदार को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया, लेकिन जाह्नवी अब भी मां की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी. करीब 2 साल तक जाह्नवी पर्दे पर नजर नहीं आई. 12 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में जाह्नवी धड़क की पार्थवी के उलट एक अलग ही मिजाज और अंदाज में दिखी. एयरफोर्स की पायलट गुंजन सक्सेना के वास्तविक जीवन पर बनी फिल्म में जाह्नवी ने उनकी जिंदगी की बारीकियों को इतनी जहनियत के साथ पर्दे पर उकेरा कि दर्शक और समीक्षक दोनों अभिभूत हो गए. दरअसल मां की मौत के सदमे से उबरने की जद्दोजहद में जाह्नवी के दिलो दिमाग में ये एहसास गहरे उतर गया कि जिंदगी खुद में एक कड़ा इम्तहान है और इस इम्तहान से भागना समाधान नहीं है.
1: I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that jitna bhi mushkil ho, ye daur ko bhi guzarna hi hai. Aur jab ye daur guzrega, aap aur bhi, aap, you'll emerge out of it stronger. Aap aur bhi usse ubhar ke nikloge.
0: इस फलसफे को अपनाने के बाद जाह्नवी ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी. मिली, बवाल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मिस्टर एंड मिसेज माही, देवरा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों के जरिए जाह्नवी ने इंडस्ट्री में अपनी मां की कमी को भरसक पूरी करने की कोशिश की है.
2: तो बंदे में आज आपने जाह्नवी कपूर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना. अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ. तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे.
3: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
4: उसके साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
11: गुड न्यूज टुडे.
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Hot mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
2: जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: पुतिन ने दिया सुपर किलर का ऑफर, अदृश्य योद्धा के नाम से दुश्मनों में टेरर, भारत रूस की यारी चीन पाकिस्तान पर भारी। देखिए रण क्षेत्र रात 10:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इनोवेट्स 2026 का किया उद्घाटन। पीएम बोले आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप केंद्र। राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत की नवाचार क्षमताओं को सराहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दिया 926 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। भगवान रामकृष्ण के कॉस्ट्यूम में पहुंचे बच्चों को किया दुलार, मस्तक पर लगाया तिलक। सोमवार से नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ान का संचालन, लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान। एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे पहली फ्लाइट का सफर। स्थापना दिवस से पहले रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया कैंची धाम, उमड़ा आस्था का सैलाब। 9 चूल्हों पर तैयार हो रहा महाप्रसाद, जयकारों से गूंजा धाम। पिथौरागढ़ पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत ने पवित्र आदि कैलाश के किए दर्शन, ITBP जवानों के साथ खिंचवाई तस्वीरें, फैंस को दिए ऑटोग्राफ। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत का आज पहला मैच, वेस्टर्न में पाकिस्तान से महामुकाबला शाम 7 शुरू होगा। बेटियां फिर लाएंगी विश्व कप।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस का दौरा, नीश शहर में पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात। नीश शहर में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का शुभारंभ, स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को एक मंच पर लाने का प्रयास। भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा दोनों देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत की स्टार्टअप क्रांति की तारीफ की, कहा भारत में 2,00,000 से ज्यादा स्टार्टअप। नीस में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की, होटल में एक बच्चे को भी किया दुलार। बाबा नीम करौली महाराज कैंची धाम स्थापना दिवस से पहले उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं के जयकारों से भक्तिमय हुआ पूरा माहौल। स्थापना दिवस से पहले कैंची धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया, दिव्य और अलौकिक स्वरूप में नजर आ रहा पूरा आश्रम। कल स्थापना दिवस पर लाखों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद बनाने की युद्ध स्तर पर तैयारी, 9 बड़े चूल्हों पर मालपुए तैयार कर रहे मथुरा वृंदावन के कारीगर। कैंची धाम में अखंड रामायण का पाठ लगातार जारी, बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए लगी लंबी कतार। कल तक स्थापना दिवस को लेकर रिकॉर्ड संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी। चारधाम की पवित्र यात्रा का आज 57वां दिन, पूरे उत्साह और विश्वास के साथ श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने का सिलसिला जारी। चारधाम यात्रा में अब तक 34 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का प्रशासन रख रहा पूरी तरह से ख्याल। कपाट खुलने के बाद से सबसे ज्यादा केदारनाथ दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालु, अब तक 12 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन।

गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु। 80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में दर्शन किए। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण चतुर्दशी पर अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सुबह से मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार। उज्जैन में बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार आरती में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। कल देश भर में मनाया जाएगा सोमवती अमावस्या का त्योहार। गंगा स्नान के लिए अभी से उमड़ा हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जत्था। सोमवती अमावस्या पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के किए गए व्यापक इंतजाम। शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से स्नान संपन्न कराने के लिए मेला क्षेत्र को 6 सुपर जोन, 16 जोन और 46 सेक्टर्स में किया गया विभाजित। नोएडा के लोगों को कल मिलेगी उड़ान की सौगात। जेवर एयरपोर्ट पर शुरू होंगी उड़ानें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कल लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान। 172 किसान करेंगे पहला सफर। हवाई यात्रा कर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे 172 किसान। परियोजना के लिए किसानों ने अपनी दी थी जमीनें।

निहाड़ो तिकी शान सोने चांदी की बुनाई वाली साड़ी बनी चर्चा का विषय। फिल्म पेडी की रिलीज से पहले जानवी कपूर ने दर्शनों के लिए तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंची थी। जानवी पारंपरिक कोटा साड़ी ने श्रद्धालुओं और फैशन प्रेमियों का खींचा ध्यान। कोटा में खास तरीके से तैयार की जाती है सोंच रही है साड़ी। हाड़ौती की पुरानी हस्तकरघा परंपरा से बनाई जाती है। हड़ौती की सांस्कृतिक विरासत अब बॉलीवुड के जरिए देश भर में एक बार फिर से चमकी। पारंपरिक रियल गोल्ड और सिल्वर की जरी से की गई तैयार। पंजाबी म्यूजिक कंपोजर करण औजला के साथ 21 जून को मंच साझा करेंगे विराट कोहली। दिल्ली के यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है प्रोग्राम। स्वच्छ यमुना को लेकर दिल्ली सरकार ने चलाया बड़ा अभियान। 28 घाटों पर 500 संगठन और हजारों लोग करेंगे योगदान। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने भी यमुना सफाई अभियान में हिस्सा लिया। गीता कॉलोनी के दशाश्वमेध घाट पर सफाई की। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सचदेवा ने भी यमुना के घाटों पर सफाई की। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने साथ दिया। यमुना क्लीनलीनेस कैंपेन का हिस्सा बने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा। घाटों पर सफाई। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने यमुना के घाटों पर सफाई की। लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। दिल्ली के यमुना घाट पर चला स्वच्छता अभियान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सफाई में हिस्सा लिया। यमुना नदी के सरयू घाट पर पहुंचे बीजेपी के नेता मनोज तिवारी। स्वच्छता अभियान के तहत किया श्रमदान। चेन्नई में खेलो इंडिया अभियान में साइकिल रैली का आयोजन। 150 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जम्मू में जम्मू हाई फाइव 5K मैराथन का आयोजन किया गया। नौजवानों को फिट रहने और नशे से दूर रहने का संदेश। जम्मू में बौद्ध प्लाजा से शुरू हुई मैराथन बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। डांस और कार्टून प्रदर्शनी से भी दिया गया फिटनेस का संदेश। मैदानों पर गर्मी के चलते पहाड़ों का रुख कर रहे हैं पर्यटक। चमोली के ट्रैकिंग रूट्स पर सैलानियों की भीड़। गुप्तकाल ट्रैक बना एडवेंचर प्रेमियों की पहली पसंद। देश भर से पहुंच रहे ट्रैकिंग के शौकीन। हिमालयी क्षेत्र से बर्फ से ढके रास्ते और प्राकृतिक नजारों का आनंद ले रहे हैं सैलानी। ताजा बर्फबारी का भी लुत्फ उठा रहे पर्यटक। माइनस तापमान में सैलानी कर रहे हैं ट्रैकिंग। बर्फ पिघलाकर कर रहे पानी की व्यवस्था। बुजुर्ग पर्यटक भी पहुंच रहे हैं माली ट्रैक। ट्रैकिंग अनुभव को बताया यादगार। दिल्ली में आज भी जारी रह सकती है प्री मानसूनी बारिश की मेहरबानी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में बारिश और बादल के बीच लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिल रही राहत। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई कमी। यूपी बिहार राजस्थान और हरियाणा समेत 17 राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। 12 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना। मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का देश के बड़े हिस्से पर दिख रहा है असर। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बिजली गिरने की भी जताई संभावना। उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ा मॉनसून। अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश झारखंड उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों तक पहुंचने की संभावना। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मौसम ने बदला नजारा। खूबसूरत वादियां पर्यटकों को कर रही आकर्षित। कन्याकुमारी में जारी बारिश तापमान में दर्ज की गई कमी। जिले के 351 तालाब पानी में हुए लबालब।
कन्याकुमारी में लगातार

0: कुम्रपणी नदी हुई ओवरफ्लो, किनारे के इलाकों में बाढ़ का खतरा। हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत मौसम ने बदला वादियों का नजारा, प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। शिमला में वीकेंड के चलते बढ़ी पर्यटकों की संख्या, स्थानीय कारोबारियों के खिले चेहरे। डोडा के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, निचले इलाकों में तेज बारिश, बदलते मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। डोडा में बादलों की चादर ओढ़े नजर आए पहाड़, दिख रहा प्रकृति का बेहद ही खूबसूरत नजारा। कांगड़ा घाटी में लगातार जारी बारिश से बदला मौसम, तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। पुंछ में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, नेशनल हाईवे 144 पर फंसी 200 से ज्यादा गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश कुल्लू में बदले मौसम के बीच बढ़ी पर्यटकों की संख्या, रास्तों पर लग रहा लंबा जाम। नैनीताल कॉर्बेट टाइगर सफारी में जीप से डरकर भागते हुए बाघ का वीडियो हुआ वायरल, चालक पर की गई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के आमों की मिठास और विशालकाय नूरजहां को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान, 2 से 5 किलो तक होता है वजन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिला उद्यमियों की शानदार पहल देखने को मिली, मसाला खेती से बढ़ा रही हैं अपनी आमदनी। रायपुर में वाटर स्पोर्ट्स का महाकुंभ, सेंध लेक में राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप का आयोजन, देश भर के खिलाड़ी हुए शामिल। केरला के कोची में नई केएसआरटीसी बस सेवा की शुरुआत, अलुवा और पोरावुर के बीच होगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, दोनों टीमों के बीच बर्मिंघम में एस्बेस्टन में होगा मैच। पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच से ही भारत करेगा महिला टी20 वर्ल्ड कप के सफर की शुरुआत, हरमनप्रीत की कप्तानी में जीतने के लिए टीम का जोश हाई। टी20 में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दबदबा, भारत ने 16 मैचों में से 13 मैच में हासिल की है जीत। टी20 वर्ल्ड कप में भी 6 बार भिड़ी हैं भारत और पाकिस्तान की टीमें, जिसमें से 4 बार टीम इंडिया ने ही मारी है बाजी। पहले आईसीसी टी20 खिताब को हासिल करना है भारतीय टीम का लक्ष्य, पिछले साल भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप को जीतकर बनी थी चैंपियन। चाइना में पहली बार 2 हेवी लिफ्ट ड्रोन ने संभाली बड़ी जिम्मेदारी, दुर्गम कार्यस्थलों तक पहुंचाया गया मटेरियल। चेंगदे शहर में ड्रोन तकनीक से बढ़ी निर्माण कार्य की रफ्तार, 650 किलोग्राम बताई गई ड्रोन की क्षमता। चाइना ने पर्यावरण संरक्षण के साथ दिया विकास का मॉडल, ड्रोन के इस्तेमाल से भारी वाहनों की जरूरत कम हुई। फीफा वर्ल्ड कप में तुर्की पर ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत, फैंस में जश्न का माहौल। ऑस्ट्रेलियन तुर्की को 2-0 से हराया, अब अमेरिका से होगी ऑस्ट्रेलिया की टक्कर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
4: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
3: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
5: धीमे धीमे पक रही होती खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: Thank you. क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: पुतिन ने दिया सुपर किलर का ऑफर। अदृश्य योद्धा के नाम से दुश्मनों में टेरर। भारत रूस की यारी, चीन पाकिस्तान पर भारी। देखिए रणक्षेत्र रात 10:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
2: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
1: More top sports.
3: And he's gonna go! There's the tying goal!
1: And everything in between.
3: This game is over!
1: Upgrade now for the premium listening experience.
4: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.

राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत की नवाचार क्षमताओं को सराहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दिया 926 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। भगवान राम कृष्ण के कॉस्ट्यूम में पहुंचे बच्चों को किया दुलार। सोमवार से नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ान का संचालन। लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान। एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे पहली फ्लाइट का सफर।

0: रहा महाप्रसाद, जयकारों से गूंजा धाम। मिथुन मास के पूजा अनुष्ठान से पहले केरला के सबरीमाला मंदिर में सोने चांदी के आभूषणों का निरीक्षण। एसआईटी ने जमा किए नमूने। जमशेदपुर की प्रयोगशाला में होगी वैज्ञानिक जांच। पिथौरागढ़ पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत ने पवित्र आदि कैलाश के दर्शन किए। आईटीबीपी जवानों के साथ खिंचवाई तस्वीरें, फैंस को दिया ऑटोग्राफ। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत का आज पहला मैच अजबेस्टन में पाकिस्तान से महामुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। बेटियां फिर लाएंगी विश्व कप।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
2: मेरे पास 8:50 के लगभग कॉल आया
3: था। पूरी बिल्डिंग में आग थी
4: तो अंदर बहुत धुआं था,
3: पूरा धुएं से काला था।
5: शीशा वीशा तोड़ा हाथ से, वो टूटी हुई खिड़कियां थी उनसे मुंह बाहर निकाल के थोड़ी देर सांस लेते।
6: जितनी जल्दी हुआ सारे को हॉस्पिटल पहुंचाया।
2: बस 8:50 के लगभग कॉल आया
3: था। पूरी बिल्डिंग में आग थी
4: तो अंदर बहुत धुआं था,
3: पूरा धुएं से काला था।
5: शीशा वीशा तोड़ा हाथ से, वो टूटी हुई खिड़कियां थी उनसे मुंह बाहर निकाल के थोड़ी देर सांस लेते।
6: जितनी जल्दी हुआ सारे को हॉस्पिटल पहुंचाया।
7: नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, मैं हूँ आपके साथ मनीषा झा। पुलिस को लेकर हम सब के मन में एक राय बनी हुई है। जब भी पुलिस कोई अच्छा काम करती है, कोई क्राइम होने से पहले उसे रोक देती है या किसी क्रिमिनल को पकड़ लेती है तो हम सबकी यही राय होती है कि ये तो पुलिस की ड्यूटी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कई बार अपनी इसी ड्यूटी और इसी फर्ज को निभाने के लिए, हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए वो आग तक में कूद पड़ते हैं। दिल्ली के होटल में लगी आग के बारे में हम सब ने देखा, पढ़ा और सुना। इस आग ने 21 लोगों की जिंदगी ले ली। लेकिन आज हम आपको दिल्ली पुलिस के उन हीरो से मिलवाएंगे जो उस वक्त अगर अपनी जान दांव पर नहीं लगाते तो आज न जाने कितनी और जाने जा चुकी होती।
8: सिंघम, राउडी, दबंग, फैंटम, आयरन मैन, सुपरमैन और न जाने क्या क्या, लोगों की जिंदगी बचाने वाली पुलिस को आप लोग इन्हीं फैंसी नामों से जानते हैं। लेकिन आज जिन चेहरों और असली हीरो को आप देख रहे हैं वो हैं दिनेश यादव, देशराज, राजवीर, करतार, प्रेमचंद। फहरिस्त लंबी है, आग का दरिया है और बचाकर लाना है। बस यही सोच हमारे रियल हीरो की थी। बस इसी सोच के साथ ये सब मालवीय नगर के होटल में लगी धधकती और दम घोटू आग में कूद जाते हैं। आज कहानी उन जिगर वाले पुलिस वालों की जो आज खुद एक जीती जागती कहानी बन चुके हैं। फरिश्ते हैं ये, भगवान ने भेजा है इन्हें। मालवीय नगर के इस होटल में जब मौत अपनी पूरी ताकत के साथ तमाम दरवाजों और खिड़कियों पर खड़ी थी, तब इन्होंने किसी तमगे के बारे में नहीं सोचा होगा। ये खुद अपनी सांसें भी लेकर इस होटल से निकलेंगे कि नहीं, आग की लपटों को ही तय करना था। लपटों से खेलकर जो चराग फर्ज जला गए, वो खाक वाले जान से बढ़कर फर्ज निभा गए। 5 कांस्टेबल, 5 हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर और आस पड़ोस के ऊपर वाले के भेजे कुछ फरिश्ते, ये ना होते तो शायद कितनी ही और जिंदगियां तबाह हुई होती। हेड कांस्टेबल दिनेश यादव 3 जून की सुबह ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी ड्यूटी अभी शुरू नहीं हुई थी, तभी उनके एक जानने वाले का फोन आता है। उसी जानकार से पहली बार उन्हें होटल में लगी आग की जानकारी मिलती है। तब सुबह के 8:50 हुए थे। दिनेश यादव वर्दी छोड़ इंसानियत पहने वहाँ से बिना वक्त गवाए फौरन आग वाली जगह के लिए भागे। अपने एक साथी को अपने बाइक के पीछे बिठाया और चप्पल में ही निकल पड़े। दिल्ली में सुबह 9 बजे ट्रैफिक का आलम आपको शायद बताने की जरूरत नहीं। दिनेश बाइक को मेट्रो के पास छोड़ पैदल ही भागे और मालवीय नगर के फ्लोरिश इन नाम के आग के उस कुएं में कूदने का रास्ता तलाशने लगे।
9: सुबह 8:50 पर कॉल आई थी कि ओझरानी में भयंकर आग है। मैं यहाँ से जब क्योंकि एक संतम मैम सिविल में था, तो सिविल में जब जाने लगा तो मेरे दूसरा साथी मिलेगा कॉन्स्टेबल अम्बल, उसको लेकर जाते तो जाम लगा हुआ था, मेट्रो पर बाइक पार्क करते हैं, आगे जा नहीं पा रहे थे, वहीं छोड़कर जब आगे जाते तो पूरी बिल्डिंग गिरी हुई थी। बिल्डिंग के दो साइड मैम वॉल है, उससे कोई एग्जिट नहीं है, फ्रंट साइड से घुस नहीं सकते थे क्योंकि पूरे में आग थी।
7: अब अंदर और बाहर की चीखों के बीच तय ये करना था कि दमकल वालों की मदद के लिए इंतजार करें या ड्यूटी निभाएं, पुलिस की नहीं इंसानियत की। अंदर से आ रही मौत की उन चीखों ने इन्हें बेचैन कर दिया, पर सवाल ये कि बचाने के लिए जाएं कहां से। लपटों ने अंदर दाखिल होने की जगह भी तो नहीं छोड़ी, मौत के कुएं में दाखिल होने के लिए भी दरवाजा तो चाहिए ही था, और वक्त मानो अपने आखिरी वक्त में हो, इसीलिए इंतजार की गुंजाइश नहीं थी। फिर होटल के पिछली तरफ अचानक उन्हें उम्मीद का एक दरवाजा नजर आया।
9: बिल्डिंग का जो वेस्ट साइड का हिस्सा है जो रास्ते की तरफ खुलता है, वहाँ गए, वहाँ चीख पुकार रहे थे लोग, ऊपर खिड़कियों में थे। कुछ स्थानीय निवासियों ने अपनी कुछ सीढ़ी वगैरह ला रखी थी लकड़ी की, और वो वहाँ थी। मैं फिर उसको लगा करके मैं सेकंड फ्लोर में जैसे एंट्री करता हूँ।
7: होटल के अंदर किसी तरह हाफते खासते वो घुस तो गए, पर धुआं इतना ज्यादा था कि साफ कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। धुएं के बीच इर्द गिर्द आग की लपटें भी अपना दायरा बढ़ाती जा रही थी। मुश्किल ये थी कि कुछ दिखे तो करे। ऐसे में उनकी आंखें बनी होटल में फंसे लोगों की चीखें। अब उन्हीं चीखों को सुनकर उनकी तरफ बढ़ने लगे।
9: सेकंड फ्लोर में एंट्री करने से पहले नीचे से देखा जी कि सेकंड फ्लोर के बाथरूम में दो लेडीजें चिल्ला रही, छोटा छेद है उसमें शीशे में। तो जैसे ही ऊपर चढ़ा तो मैम ऐसा कुछ तोड़ने का था नहीं, फिर हाथ से शीशा तोड़ना चाहा, कुछ शीशा टूटा, फिर ऊपर से किसी से कोई हथौड़ी गिर गई थी, फिर उसकी मदद से थोड़ा सा शीशा और तोड़ा, फिर एंट्री करता हूँ मैम, पूरे कमरे में आग थी, पूरी बिल्डिंग में आग थी।
7: एक वक्त तो ऐसा आया जब लोगों को बचाते बचाते खुद दिनेश आग और धुएं की चपेट में आ गए। पल को लगा कि अब वो खुद फंस चुके हैं, डर भी लगा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन हिम्मत हारने को तैयार नहीं थे। जब आप वहां पहुंचे तो लोग वहां से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे और आप वहां अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था कि जहां से लोग जान बचाकर भाग रहे हैं कि पता नहीं बचेंगे कि नहीं, वहां पर आप गए अपनी जान को दांव पर लगाकर, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? डर लग रहा था?
9: डर नहीं मैम, ये ड्यूटी कर्तव्य हमारा, इतना तो लोगों की जान बचाना, तो हम उसमें कुछ हद तक संभव भी हो पाए, और एक हमारी कोशिश थी जो कुछ लोगों को बचा पाए, लेकिन सभी को नहीं बचा पाए, ये मलाला हमारा। पूरी बिल्डिंग के चारों फ्लैट पर आग थी मैम, और सभी कमरों में आग थी टोटल उस पैटर्न थी, और जिनमें नहीं थी उसमें धुआं गिरा हुआ था। तो वो जो दो लेडीज थी, एक लगभग थी मैम 70-80 साल की, और उनकी केयरटेकर थी, वो बीमार थी, काफ़ी हेल्दी थी, 100 kg वेट के आसपास, और बाथरूम का जो वेंटिलेशन था वो कम से कम मेरी हाइट से मेरे कान से ज़्यादा था। उसको उठा करके 100 kg वजन को और आपको उसमें वेंटिलेशन पर लेकर जाना था, तो ये संभव नहीं हो पा रहा था कि उसको उठाए किस पैटर्न से, और जो वेंटिलेशन था वो बहुत सकरा सा था, मेरे जैसा हेल्थी आदमी जा भी नहीं सकता था, क्रॉस होकर जा सकता था, तो महिला को निकालने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, काफ़ी मदद की, वो कह भी रही थी सक्सेस नहीं हो पाए, तो उसने एक वर्ड कहा था, हिंदी जानती थी मैम, उसने ये वर्ड कहा कि बेटा मैं बच नहीं पाऊंगी, मेरी बेटी को आप बचा लो और आप निकल जाओ, क्योंकि उसमें आग पूरी घिर चुकी थी। जब मैं उन दोनों को रेस्क्यू कर चुका था, और फिर तब तक तो थोड़ी हिम्मत थी, जब अंदर बाथरूम में आदमी अकेला रह जाता है तो फिर घबराहट हो जाती, धुएं से उस तरह से कमजोरी आ गई थी कि मैम चला भी नहीं जा रहा था, और बाथरूम से मैं खुद बाद में जब ये वीडियो वायरल हो रखा है तब मैं देखता हूँ कि मैं कम से कम 1 मिनट या 50 सेकंड के आसपास इतने देर में बड़ी कोशिश करके खुद बड़ी मुश्किल से निकला हूँ, और मेरे निकलने के 13 सेकंड के बाद में पूरी बिल्डिंग आग का गोला थी। बाथरूम में घुसा था तब मैं निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि बाथरूम की हाइट इतनी थी, पानी की जब बाल्टी जो उसमें बाथरूम में बाल्टी होती उसको उल्टी करके उस पर चढ़कर ही निकला जा सकता था। तो मैं जब ये इंसिडेंट होने के बाद एक बार गया था, मेरे ब्लड के स्पॉट अभी भी लगे हुए हैं खिड़की पर, जो मैंने हाथ से मुक्के से तोड़े थे, 3rd नंबर की खिड़की, उस पर ब्लड के स्पॉट लगे हुए हैं। मैं अंदर जा करके देखा था तो सब कुछ जला हुआ है, लेकिन एक पल लगता रहा था कि शायद हो सकता कुछ हो जाए।
10: मेरा हेड कॉन्स्टेबल दिनेश है जो सीढ़ी से होटल के अंदर ही चला गया था, अंदर से उसने दो लेडीज को निकाला था, पहले एक बूढ़ी लेडीज थी वो चढ़ नहीं पा रही थी, उसने किसी तरह से मैनेज करके निकाला उनको बाहर, उसकी बेटी उनको छोड़ना नहीं चाह रही थी तो उसको बाहर निकाला, उनकी बेटी को बाहर निकाला, फिर ये खुद ट्रैप हो गया था अंदर, क्योंकि बाथरूम में से वो एग्जिट थी एक जो तोड़ रखी थी, उसमें धुआं घुसे जा रहा था, वहाँ जो बाद के विटनेसेज हैं जिनसे हमने पता किया, उन्होंने बताया कि वो धुआं बहुत पॉइजनस था, उसमें वो इमीडिएट एकदम चोक कर रहा था गले को और आपकी नाक को, खुद उसमें इस तरह का कोई पॉइजन सब्सटेंस था या प्लास्टिक जला था उसके कारण इस तरह का था।
7: खुद की जान दांव पर लगाकर दिनेश ने उस आग से अकेले अपने बूते 5 लोगों की जान बचाई, लेकिन फिर भी दिनेश को एक अफसोस है। अफसोस ये कि वो बाकी लोगों को नहीं बचा सके। इस हादसे को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी वो सुबह उन्हें सपने में डराती है।
11: ऐसा एक पल था, कोई मोमेंट था, कोई ऐसी तस्वीर जो दिमाग में कैप्चर हुई हो कि वो आपको अभी भी याद आती हो, या आपको उस बात को लेकर मलाल था कि काश मैं ये कर पाता, तो वो कोई ऐसी पिक्चर है उस दिन की?
9: काफ़ी लोग थे मैम जो हमने कुछ का रेस्क्यू कर पाए, कुछ का नहीं कर पाए, और फिर उनको जब आप इंजर्ड और उनकी कैजुअलिटी देखते हो तो वो एक रूह कपा देती है चीज़ें। वो इतना भीषण ऐसा कुछ मैंने कभी इंसिडेंट देखा नहीं था, उसने काफ़ी हद तक झकझोर कर रहा था, मेंटली भी मैं बहुत वो रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा नॉर्मल महसूस करते हैं।
7: ये रामपाल यादव है, इसी मालवीय नगर थाने में कांस्टेबल। रामपाल यादव की ड्यूटी 3 जून को कहीं और थी, उस वक्त वो थाने से निकलकर कहीं जा रहे थे, तभी SHO ने रामपाल को देखते ही उन्हें आग लगने की खबर बताई और कहा कि फौरन वहां पहुंच जाओ। रामपाल यादव दिनेश के साथ ही थाने से निकले और मौकाए वारदात पर पहुंचे। ठीक दिनेश की तरह रामपाल ने भी कुछ नहीं सोचा, उन्हें पता था लोग होटल के अंदर फंसे हैं, मदद की जरूरत अंदर है, तो चल के होटल के अंदर कूद पड़े।
10: तो इमीडिएटली कॉरिडोर में से हेड कांस्टेबल दिनेश था, वो उसके पास किसी पब्लिक वाले को कॉल आया था, वो भागता हुआ जा रहा था, तो उससे उसने मुझे बताया कि सर आग लग गई वहाँ पे, वही की सेम कॉल मेरे पास थी, और मैंने इमीडिएटली जो वहाँ पे कोई और स्टाफ खड़ा हुआ था हमारे ड्यूटी ऑफिसर रूम में, उसको उसके साथ बैठा के भेजा। इमीडिएटली उसके पीछे वो बाइक पे भागा, तो उसके पीछे पीछे मैं अपनी जो हमारी गाड़ी है सरकारी, उसमें मैं अपने ड्राइवर के साथ उधर के लिए चल दिया इमीडिएटली एकदम से।
12: मैं यहीं पे घूम रहा था सिविल में, तो दिनेश आ रहा था ऊपर से, उसने बताया कि आग की कॉल आ रही है, तो हम वहाँ पे बाइक, उसकी बाइक थी, बाइक लेके हम वहाँ पे पहुँचे हैं। तो जैसे हम यहाँ से जा रहे थे तो मुझे दिख रहा था धुआं से ऊपर उठ रहा था, मैं उसको बोल रहा था कि धुआं ज़्यादा है, शायद ज़्यादा आग लगी होगी। तो हम थोड़ा आगे जाते हैं मेट्रो के पास, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो रोड जाम था, हमारी बाइक भी वहाँ पर नहीं जा पाई, हमने वहीं पर बाइक को खड़ा किया और हम पैदल जाते हैं दौड़ के।
7: ये हेड कांस्टेबल प्रेमचंद है, वैसे तो इनकी ड्यूटी नेप सराय थाने में है, लेकिन यही तो इन पुलिस वालों की ड्यूटी की खूबसूरती है कि जब जहां जरूरत पड़े वहीं पहुंच जाओ। आग की खबर मिलते ही प्रेमचंद भी भागकर उसी जलती आग के पास पहुंचे। प्रेमचंद ने आग में कूदने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो कुछ अलग करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन से उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी थी बस एक ही चीज याद रखा, ये वर्दी दूसरों की सेवा के लिए है, फिर चाहे उस सेवा के दौरान जान ही क्यों ना चली जाए।
13: SHO साहब ने ग्रुप पे मैसेज छोड़ा, उसी टाइम मुंशी जी ने हमें बताया जल्दी से पहुंचो साहब के साथ, वहाँ पे आग लगी हुई है एक बिल्डिंग में मालवीय नगर। तो मैं और हरज्ञान अपनी बाइक उठा के वहाँ से भागे, लगभग हमें 10 से 12 मिनट में हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। जैसे ही हमें पहुँच चुके थे तो हमने दृश्य देखा कि आगे से आग कुछ बुझ चुकी थी, हम जैसे ही 5 ब्रिगेड वालों के साथ में अंदर घुस गए थे, अंदर इतना धुआं था कि हमारे आंखों में पूरा आंसू आ रहे थे, पूरा पसीना में पसीना हो गया था, पूरे भीग गई थी वर्दी, पूरी ब्लैक हो गई थी वर्दी।
11: अंदर गए तो क्या देखा आपने, वो मंजर बताइए, क्योंकि हमने सिर्फ सुना है।
13: 2-3-4 फ्लोरों पर, तीनों पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहा था, गैस बन रही हुई थी, अंदर इतनी हीट थी बहुत ज़्यादा, मुझे नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता, लेकिन हमारा तो कर्तव्य करना है, सेवा करनी है पब्लिक की, तो हम गए। उसके बाद वन बाई कर करके डेड बॉडी लाते रहे, एक दो जो जिनकी सांस चल रही थी उनको लाते रहे।
7: आग ऐसी चीज होती है जो सोच से भी तेजी के साथ फैलती है। इन तमाम पुलिस वालों को ये पता था कि जब तक वो कुछ सोचेंगे तब तक न जाने आग की वो बेलगाम लपटे कितनों को अपने चपेट में ले चुकी होंगी। लिहाजा इन सब की कहानी लगभग यही थी कि इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं सिवाय इसके कि बस आग में फंसे लोगों की जान बचानी।
11: आपको डर नहीं लगा सर, अंदर जो स्थिति थी, आग लगी थी, सब बच के भाग रहे थे, आपको डर लगा था?
12: मैडम डर तो लगने का हमें मौका ही नहीं मिला, जब हम देख रहे हैं लोग बचाने के लिए हमें बुला रहे हैं, हेल्प चिल्ला रहे हैं, तो उस टाइम ऐसा कुछ अब आया नहीं मन में, बस ये था कि जितना पॉसिबल हो हम लोगों को बचा लें। और जो वायर्स थी वो जैसे उनका मोम गिर रहा था, हाथ पे भी गिर गया था, सिर में भी गिर गया था उस टाइम पे, लेकिन ये था कि हमसे जितना पॉसिबल हो हम लोगों को बचाएंगे, उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।
14: साहब का मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे आता है, हम तुरंत मेयर प्रेम अपने बाइक उठाते हैं, वहाँ से भाग लेते हैं। हमने रोड पे ही बाइक छोड़ दी और पार्क के अंदर से हम तुरंत भागे और तुरंत रेस्क्यू करने के लिए लग गए हम।
7: तो उस वक्त जब आप गए तो आपने आपके दिमाग में अपना परिवार अपनी चीज़ें चल रही थी या कुछ?
14: कुछ नहीं याद मैम, उस टाइम तो यही था कि हम बचा सके लोगों को, बस उस टाइम तो यही था दिमाग में।
7: किसी बात का मलाल आपको
14: नहीं? बस यही है कि जो बेचारे वो हो गए डेड, उनको बचा नहीं पाए, हमारे स्टाफ काफ़ी मेहनत की फिर भी वो हो गए, उनके लिए हम मलाल रहेगा।
15: शुरू में हमारे जैसे दिनेश सर हैं, रामपाल जी पहले चले गए थे, इन्होंने जाके फिर वहाँ से देखे, वहाँ से इन्होंने मैसेज पास किया, तो हमारे जो एस ओ साहब हैं उन्होंने फिर मैसेज किया कि जितना भी थाने में अवेलेबल स्टाफ हो जो प्रेजेंट हो वो तुरंत वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचे। जैसे हमें मैसेज मिला हम तुरंत यहाँ से भागे।
7: रास्ते में ट्रैफिक था उसको कैसे क्लियर किया यहाँ से, जो आप लोग रास्ता बनाते गए ताकि वहाँ पर आप और बाकी स्टाफ भी समय से पहुँच सके, दमकल की गाड़ी भी सही से समय से पहुँच सके, उसके लिए आप लोगों ने कैसे उसको मैनेज किया रास्ता?
15: मैम जो पब्लिक थी पब्लिक को थोड़ा हटाया वहाँ से, जो गाड़ियाँ थी उनको डाइवर्ट की वापस रूट के, जो मेट्रो के सामने वाला रूट है वहाँ से वापस डाइवर्ट किया उनको, सभी को दूसरे रूट से उसको डाइवर्ट कर दिया था, जब वो जाके वो रास्ता बना जब फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँच पाए।
16: नीचे गद्दे पे लोग नीचे को उतार रहे थे उस टाइम, मेरे ना एम्बुलेंस आई थी ना फायर ब्रिगेड आई थी, तो जो भी इंजर्ड थे जो भी कूद रहे थे उनको जल्दी जल्दी मैंने मदन मोहन अस्पताल में एडमिट करवाया, कम से कम 6-7 लोगों को, आते आते एम्बुलेंस भी आ चुकी थी और फायर ब्रिगेड भी आ चुकी थी।
7: आप अंदर गए थे होटल के
16: अंदर? मैंने जब आग मतलब कंट्रोल हो गया तो उसके बाद हम लोग अंदर गए थे।
7: तो जाने के बाद जो आपने मंजर देखा होगा, क्योंकि कुछ लोग तो रेस्क्यू हो गए थे पर जो नहीं हो पाए थे वो अंदर जलकर या दम घुटकर उनकी मौत हो गई थी, तो वो जो मंजर था वो भयावह था, वो दिल को तकलीफ देने वाला था, वो मंजर आपने देखा था?
16: मैडम अंदर जाने के बाद तो पहले मेरा दिल ढल गया, ऐसे कंडीशन देखे, कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई सीढ़ी पर पड़ा हुआ है, कोई रूम में पड़ा हुआ है, बट लोकल स्टाफ और लोग थे सारे जल्दी जल्दी नीचे उतारे थे, जिसका सीरियस कंडीशन जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा गया नियर बाई मैक्स हॉस्पिटल में।
5: जैसे ही मैंने कॉल ये डीओ का आया तो मैंने ग्रुप में तुरंत लोकेशन और दिनेश का मैसेज देखा, मैं यहाँ से बाइक पे देशराज के साथ निकलता हूँ, तो जैसे ही हम मेट्रो पे पहुंचे वहाँ लगा हुआ था जाम, तो बाइक हम वहीं छोड़ के पैदल ही भाग लेते हैं स्पोर्ट के लिए। वहाँ जाके देखते हैं कि बिल्डिंग में आग लगी हुई और कुछ लोग ऐसे थे जो ऊपर से कूद रहे थे या मदद के लिए चिल्ला रहे थे, फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, तो वहाँ शीशा वीसा तोड़ा हाथ से, उसमें हाथ में भी एक माइनर चोट लग गई थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड ने फ्रंट का गेट तोड़ दिया था, तो मैं उनके साथ एंटर करता हूँ, तो बेसमेंट में एक आदमी अनकॉन्शियस पड़ा था, तो मुझे लगा कि ये मैं उसको कंधे पर उठा के बाहर ला के उसको एम्बुलेंस में डाल देते हैं। उसके बाद आग और तेज़ हो गई, तेज़ होने के बाद फिर मैं साइड वाली बिल्डिंग से छत के ऊपर जाता हूँ, ताकि बिल्डिंग क्या पता ऊपर से कहीं से एंटर हो सके बिल्डिंग में, क्योंकि नीचे से पॉसिबल नहीं था, आग इतनी तेज़ थी उसमें पॉसिबल था ही नहीं, लेकिन ऊपर भी बहुत ज़्यादा आग थी तो वहाँ से पॉसिबल नहीं होता, तो फिर ऊपर जो पानी की टंकियाँ वगैरह रखी होती हैं उनको हम तोड़ देते हैं, ताकि बिल्डिंग में ऊपर से और बिल्डिंग की छत पर जो टीन शेड वगैरह थी उनको तोड़ देते हैं, ताकि बिल्डिंग में पानी अंदर टंकियों का पानी गिर सके।
17: पहुँचने के बाद देखा कि चारों तरफ बिल्डिंग के चारों तरफ आग और पूरा धुआं था, तो जैसे फायर वाले अंदर घुसे हुए थे तो उनके साथ साथ हम भी इंटर कर चुके थे, तो काफ़ी दर्दनाक घटना थी ये, और देखकर काफ़ी बुरा लगा, और जितनी हमें कोशिश हमारी कोशिश हुई बचाए।
18: जब मैं वहाँ आया तो फायर ब्रिगेड बेसमेंट का शटर तोड़ रही थी, हमने तोड़ते ही जो बंदे अंदर थे 2-3 उसमें बेहोश थे और कुछ की 2-3 की उसमें डेथ हो चुकी थी, जहाँ तक देखने में जो मिला उनको हमने एम्बुलेंस में से हॉस्पिटल पहुंचवाया जल्दी से जल्दी।
7: जब ऐसे हादसे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी हादसे में कूद पड़े, ऐसे वक्त में कोऑर्डिनेशन और सही जगह सही वक्त पर सही मदद पहुंचाना भी बहुत जरूरी होता है, इसीलिए 3 जून को ये रोल मालवीय नगर थाने के SHO निभा रहे थे।
10: मीनवाइल मेरा जो फर्स्ट एक्शन था एकदम से कोऑर्डिनेशन का कि और डिपार्टमेंट से कैसे कोऑर्डिनेशन करें इमीडिएटली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम से हमने TI को फ़ोन किया अपने, जो नियर बाय जो हमारा TI साके ही, तो TI होस्कास को कि रोड का ट्रैफिक मैनेज करो क्योंकि यहाँ फायर ब्रिगेड का बहुत अर्जेंट नीड है। कंट्रोल रूम को हमने अपने बता दिया था, वायरलेस सेट पे मैसेज दे दिया था कि ये इमीडिएटली जितनी भी फायर ब्रिगेड्स वगैरह हैं आपको इमरजेंट मैसेज और करो कि वो पहुंच सकें जल्दी से जल्दी यहाँ पे। डीसीपी सर को हमने तुरंत एकदम बताया कि फायर जो है अनकंट्रोलेबल टाइप है, वायरलेस सेट पे मैसेज दे दिया था कि ये इमीडिएटली जितनी भी फायर ब्रिगेड्स वगैरह हैं आपको इमरजेंट मैसेज और करो कि वो पहुंच सकें जल्दी से जल्दी यहाँ पे। डीसीपी सर को हमने तुरंत एकदम बताया कि फायर जो है अनकंट्रोलेबल टाइप है और मुश्किल है रुकना, लोग फंसे हुए हैं अंदर, क्योंकि लोग हमें खिड़कियों में से दिख रहे थे, जो खिड़कियां तोड़ दी थी वैसे उसमें कोई एग्जिट इस तरह की नहीं थी, बट जो खिड़कियां टूटी हुई थी उसमें से लोग दिख रहे थे हमें, और उसमें मैक्सिमम हमें फॉरनर्स दिख रहे थे कि बाहर के लोग हैं, तो वो कंडीशन इमीडिएटली बता दी थी हमने। और मीनवाइल जो हमारे इलाके के MLA थे वो भी पूछ रहे थे, तो उनको भी हालात बता दिए थे कि हालात मतलब गंदे हैं, और उन्होंने भी जो हो सका अपनी तरफ से जो जिन लोगों को कह सकते थे वो आए।
7: वैसे सच तो यही है कि ये इन लोगों की ड्यूटी है, लेकिन उसी सच का एक और पहलू है, और वो जज्बा अपनी जान दांव पर लगाकर किसी और की जान बचाने का हो तो बस यहीं से इंसान फरिश्ता बन जाता है, और यही काम इन लोगों ने किया। इनके परिवार के मुखिया यानी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को भी इन सब पर नाज है, इसीलिए उन्होंने इन सभी को अपने पास बुलाकर इनकी पीठ थपथपाई और तारीफ की। सचमुच ये सब वाकई तारीफ के काबिल है। लपटों से खेलकर जो चिराग फर्ज जला गए, वो खाकी वाले जान से बढ़कर फर्ज निभा गए। कृष्ण कुमार के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली पुलिस के इन रियल हीरोज के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: मेरे पास 8:50 के लगभग कॉल आया था,
3: पूरी बिल्डिंग में आती
13: तो अंदर बहुत धुआं था,
3: पूरा धुएं से काला था,
5: शीशा वीशा तोड़ा हाथ से, वो टूटी हुई खिड़कियां थी उनसे मुंह बाहर निकाल के थोड़ी देर सांस लेते।
6: जितनी जल्दी हुआ सारे को हॉस्पिटल पहुँचाया।
19: Hey sports fans, Tune In is bringing you live games, non-stop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
20: Swing and a foul out of play off to the left.
19: Big 12 Radio.
21: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
19: Talk Sport.
22: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
19: And more. Search sports to find the stations covering your team.
1: सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
24: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
25: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
24: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
26: और दुर्भाग्य कहता है
24: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
25: अविश्वास में विश्वास बसता है,
24: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
24: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
24: खबरों को परख कर परोसना,
1: मार्केट आजकल बढ़ रही है।
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
24: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Right field, and it will...
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
2: फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इनोवेट्स 2026 का किया उद्घाटन। पीएम बोले, आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप केंद्र। राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत की नवाचार क्षमताओं को सराहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दिया 926 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। भगवान राम कृष्ण के कॉस्ट्यूम में पहुंचे बच्चों को किया दुलार, मस्तक पर लगाया तिलक। सोमवार से नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ान का संचालन। लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान। एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे पहली फ्लाइट का सफर।

0: का सैलाब, नौ चूल्हों पर तैयार हो रहा महाप्रसाद, जयकारों से गूंजा था। मिथुन मास के पूजा अनुष्ठान से पहले केरला के सबरीमाला मंदिर में सोने चांदी के आभूषणों का निरीक्षण किया गया। एसआईटी ने जमा किए नमूने, जमशेदपुर की प्रयोगशाला में होगी वैज्ञानिक जांच। पिथौरागढ़ पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत ने पवित्र आदि के इलाज के किए दर्शन, आईटीबीपी जवानों के साथ खिंचवाई तस्वीरें, फैंस को दिया ऑटोग्राफ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस का दौरा, नीस शहर में पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मुलाकात। नीस शहर में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का शुभारंभ, स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को एक मंच पर लाने का प्रयास। भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा दोनों देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत की स्टार्टअप क्रांति की तारीफ की, कहा भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप। नीस में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की, होटल में एक बच्चे को भी किया दुलार। बाबा नीम करौली महाराज के केंची धाम में स्थापना दिवस से पहले उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं के जयकारों से भक्तिमय हुआ पूरा माहौल। स्थापना दिवस से पहले केंची धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया, दिव्य और अलौकिक स्वरूप में नजर आ रहा पूरा आश्रम। कल स्थापना दिवस पर लाखों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद बनाने की युद्ध स्तर पर तैयारी, 9 बड़े चूल्हों पर मालपुए तैयार कर रहे मथुरा वृंदावन के कारीगर। केंची धाम में अखंड रामायण का पाठ लगातार जारी, बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद देने के लिए लगी लंबी कतार। कल तक स्थापना दिवस को लेकर रिकॉर्ड संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी। चारधाम की पवित्र यात्रा का आज 57वां दिन, पूरे उत्साह और विश्वास के साथ श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने का सिलसिला जारी। चारधाम यात्रा में अब तक 34 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का प्रशासन रख रहा पूरा ख्याल। कपाट खुलने के बाद सबसे ज्यादा केदारनाथ दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालु, अब तक 12 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। आस्था और भक्ति के साथ भक्तों के बद्रीनाथ धाम पहुंचने का सिलसिला जारी, 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु, 80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में दर्शन किए। ज्येष्ठ माह की कृष्ण चतुर्दशी पर अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सुबह से मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार। उज्जैन बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार आरती में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। कल देश भर में मनाया जाएगा सोमवती अमावस्या का त्योहार, गंगा स्नान के लिए अभी से उमड़ा हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब। सोमवती अमावस्या पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के किए गए पुख्ता इंतजाम। शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से स्नान संपन्न कराने के लिए मेला क्षेत्र को 6 सुपर जोन, 16 जोन और 46 सेक्टर्स में विभाजित किया। नोएडा के लोगों को कल मिलेगी उड़ान की सौगात, जेवर एयरपोर्ट पर शुरू होंगी उड़ानें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कल लखनऊ के लिए रवाना होगी पहली उड़ान, 172 किसान करेंगे पहला सफर। हवाई यात्रा कर लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात करेंगे 172 किसान, परियोजना के लिए किसानों ने अपनी जमीनें दी थी। साल 2026 के आखिर तक इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद, एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाकर 7 करोड़ यात्री करने की योजना। एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू होने से पहले पुलिस प्रशासन ने तेज की तैयारी, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर। असम के कामरूप पहुंचे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने एयरपोर्ट टर्मिनल का किया निरीक्षण। मुंबई कोस्टल रोड परियोजना का सीएम फडणवीस ने किया निरीक्षण, श्रमिकों से भी मुलाकात। केरला में महिलाओं को बड़ी सौगात, महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स कल से फ्री बस यात्रा। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहीं वीर बहादुर सिंह

अश्वमेध घाट पर सफाई की। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सचदेवा ने भी यमुना के घाटों पर सफाई की, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने साथ दिया। यमुना क्लीनलीनेस कैंपेन का हिस्सा बने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, घाटों पर साफ सफाई। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजयेंद्र गुप्ता ने यमुना के घाटों पर सफाई की, लोगों की स्वच्छता के लिए किया जागरूक। दिल्ली के यमुना घाट पर चला स्वच्छता अभियान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सफाई में हिस्सा लिया। यमुना नदी के सरयू घाट पर पहुंचे बीजेपी नेता मनोज तिवारी, स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया। चेन्नई में खेलो इंडिया अभियान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, 150 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जम्मू में जम्मू हाई फाइव 5K के मैराथन का आयोजन, नौजवानों को फिट रहने और नशे से दूर रहने का दिया गया संदेश। जम्मू में बौद्ध प्लाजा से शुरू हुई मैराथन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, डांस और कार्टून प्रदर्शनी से भी दिया गया फिटनेस संदेश। मैदानों पर गर्मी के चलते पहाड़ों का रुख कर रहे हैं पर्यटक, चमोली के ट्रैकिंग रूट्स पर सैलानियों की भीड़। गुप्तकाल ट्रैक बना एडवेंचर प्रेमियों की पहली पसंद, देश भर से पहुंच रहे ट्रैकिंग के शौकीन। हिमालय क्षेत्र में बर्फ से ढके रास्ते और प्राकृतिक नजारों का आनंद ले रहे हैं सैलानी, ताजा बर्फबारी का भी लुत्फ उठा रहे पर्यटक। माइनस तापमान में सैलानी कर रहे हैं ट्रैकिंग, बर्फ पिघलाकर कर रहे पानी की व्यवस्था। बुजुर्ग पर्यटक भी पहुंच रहे हैं हिमालय ट्रैक, ट्रैकिंग अनुभव को बताया यादगार। दिल्ली में आज भी जारी रह सकती है प्री मानसूनी बारिश की मेहरबानी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में बारिश और बादल के बीच लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिल रही राहत, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई कमी। यूपी बिहार राजस्थान और हरियाणा समेत 17 राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, अगले 12 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का देश के बड़े हिस्से पर दिख रहा असर, मौसम विभाग ने कई जगहों पर बिजली गिरने की जताई संभावना। उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ा मॉनसून, अगले 2-3 दिनों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों तक पहुंचने की संभावना। तमिलनाडु की कन्याकुमारी में मौसम ने बदला नजारा, खूबसूरत वादियां पर्यटकों को कर रही हैं आकर्षित। कन्याकुमारी में जारी बारिश से तापमान में दर्ज की गई कमी, जिले के 351 तालाब पानी से हुए लबालब। कन्याकुमारी में लगातार बारिश से ताम्रपणी नदी में हुआ ओवरफ्लो, किनारे के इलाकों में बाढ़ का खतरा। हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत मौसम ने बदला वादियों का नजारा, प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। शिमला में वीकेंड के चलते बड़ी पर्यटकों की संख्या, स्थानीय कारोबारियों के खिले चेहरे। डोडा के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, निचले इलाकों में तेज बारिश, बदलते मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। डोडा में बादलों की चादर ओढ़े नजर आए पहाड़, दिख रहा प्रकृति का बेहद ही खूबसूरत नजारा। कांगड़ा घाटी में लगातार जारी बारिश से बदला मौसम, तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। पुंछ में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, एनएच 144 पर फंसी 200 से ज्यादा गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बदलते मौसम के बीच बढ़ी पर्यटकों की संख्या, रास्तों पर लग रहा लंबा जाम। नैनीताल कॉर्बेट टाइगर सफारी में जीप से डरकर भागते हुए बाघ का वीडियो हुआ वायरल, चालक पर की गई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के आमों की मिठास और विशालकाय नूर जहां को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान, 2 से 5 किलोग्राम तक होता है वजन।

0: जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिला उद्यमियों की शानदार पहल, मसाला खेती से बढ़ा रही हैं अपनी आमदनी। रायपुर में वाटर स्पोर्ट्स का महाकुंभ, सेंध लेक में राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, देश भर के खिलाड़ी शामिल हुए। केरला के कोची में नई केएसआरटीसी बस सेवा की शुरुआत हुई, अलुवा और पोरावूर के बीच हुई डायरेक्ट कनेक्टिविटी। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, दोनों टीमों के बीच बर्मिंघम में एस्बेस्टन में होगा मैच। पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच से ही भारत करेगा महिला टी20 वर्ल्ड कप के सफर का आगाज, हरमनप्रीत की कप्तानी में जीतने के लिए टीम का जोश हाई। टी20 में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दबदबा देखने को मिला, भारत ने 16 मैचों में से 13 मैचों में हासिल की जीत। टी20 वर्ल्ड कप में भी 6 बार भिड़ी है भारत पाकिस्तान की टीमें, 4 बार टीम इंडिया ने मारी है बाजी। पहले आईसीसी टी20 खिताब को हासिल करना है भारतीय टीम का लक्ष्य, पिछले साल भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप को जीतकर बनी थी चैंपियन। चाइना में पहली बार 2 हेवी लिफ्ट ड्रोन ने संभाली बड़ी जिम्मेदारी, दुर्गम कार्यस्थलों तक पहुंचाया गया मटेरियल। चेंगदे शहर में ड्रोन तकनीक से बढ़ी निर्माण कार्य की रफ्तार, 650 किलोग्राम बताई गई ड्रोन की क्षमता। चाइना ने पर्यावरण संरक्षण के साथ दिया विकास का मॉडल, ड्रोन के इस्तेमाल से भारी वाहनों की जरूरत कम। फीफा वर्ल्ड कप में तुर्की पर ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत, फैंस में जश्न का माहौल। ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हराया, अब अमेरिका से होगी ऑस्ट्रेलिया की टक्कर। बॉस्टन में फीफा वर्ल्ड कप के स्वागत में दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल बनाई गई, फुटबॉल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। फुटबॉल की ऊंचाई 47 फीट और वजन 2200 पाउंड 2013 में बने पुराने रिकॉर्ड से बड़ी। बॉस्टन शहर के लिए गर्व का पल, बॉस्टन के लोग इस रिकॉर्ड उपलब्धि से बेहद खुश। पहले सबसे बड़ी फुटबॉल का रिकॉर्ड दोहा के नाम था, 39 फीट ऊंची फुटबॉल बनाई गई थी। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के तहत बॉस्टन में 7 मैचेस खेले जाएंगे, पहला मैच स्कॉटलैंड और हैती के बीच 13 जून को। जर्मनी के पहले वर्ल्ड कप मैच से पहले कोलोन चिड़ियाघर के हाथी तारक ने जर्मनी की जीत की भविष्यवाणी की, उसने जर्मनी वाली गेंद को चुना। 4.5 टन वजनी तारक ने गेंद को इतना दबाया कि वो धमाके के साथ फट गई, इसे जर्मनी की मजबूत जीत का संकेत माना जा रहा है। हाथी की देखभाल करने वाली इंग्रिड बॉलनर ने कहा तारक का फैसला बिल्कुल साफ था, उसके मुताबिक जर्मनी जीत के साथ शुरुआत कर सकती है। डॉर्टमुंड के ओर्गुटन वॉल्टर ने भी मैच का नतीजा बताने की कोशिश की, हालांकि उसका चुनाव तारक जितना स्पष्ट नहीं। अब सभी की नजर जर्मनी और कोराकाओ के मुकाबले पर, जर्मन फैंस जानवरों की भविष्यवाणी के साथ होने का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. Tune in has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
1: खबरें तो आराम से।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है। और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: पुतिन ने दिया सुपर किलर का ऑफर। अदृश्य योद्धा के नाम से दुश्मनों में टेरर। भारत रूस की यारी, चीन पाकिस्तान पर भारी। देखिए रण क्षेत्र रात 10:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
3: How they looked after game one.
4: I mean, they were frustrated.
2: The Daily.
5: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
2: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
6: तो समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
13: फ्रांस में पीएम मोदी ने भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन किया। पीएम बोले, आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप केंद्र। राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत की नवाचार क्षमता को सराहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दिया 926 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। भगवान राम कृष्ण के कॉस्ट्यूम में पहुंचे बच्चों को दुलार किया, मस्तक पर लगाया तिलक। सोमवार से नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ान का संचालन, लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान। एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे पहली फ्लाइट का सफर।

Segunda etapa. पिथौरागढ़ पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत ने पवित्र यादि कैलाश के दर्शन किए। आईटीबीपी जवानों के साथ खिंचवाई तस्वीरें, फैंस को दिया ऑटोग्राफ।

0: दौरा कर गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा। धीरज कुमकुम ने किया शानदार प्रदर्शन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: शुभ घड़ी आई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। चर्चा आज हम इसी को लेकर करेंगे। दरअसल शुभ घड़ी आ रही है, मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होने वाला है। हिंदू पंचांग के मुताबिक सोमवार यानी कि 15 जून को अधिक मास समाप्त हो रहा है और इसी के साथ शुभ और मांगलिक कार्यों की शुभ शुरुआत भी होने वाली है। अधिक मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। ये फिलहाल एक महीने से बंद है, लेकिन सोमवार के बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। तो देश के जाने माने ज्योतिष आचार्यों से आज हम समझेंगे अधिक मास के महत्व पर बात करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे अगले एक महीने तक शादी के कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे कार्यक्रमों के लिए कौन सी तिथि शुभ रहने वाली है, कौन सी घड़ी शुभ रहने वाली है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे सोमवती अमावस्या पर क्या महासंयोग इस बार बन रहा है, कैसे आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा पा सकते हैं, किस उपाय से आपको सुख शांति और समृद्धि का वर मिलेगा। तो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करें, हम आपको बता दें कि शुभ घड़ी आ रही है, शादी और दूसरे शुभ कार्यों का इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि सोमवार को अधिक मास का आखिरी दिन है और अधिक मास खत्म होते ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। अभी फिलहाल शादी, गृह प्रवेश, मुंडन समेत दूसरे कार्यों पर रोक है। 15 जून को सोमवती अमावस्या पर महासंयोग भी बन रहा है और इसके बाद 21 जून से 11 जुलाई तक विवाह के शुभ मुहूर्त है। अगले हफ्ते से एक महीने तक 12 शुभ मुहूर्त हैं और वो कौन कौन से हैं वो भी हम राज जी से आगे जानेंगे, यानी कि मांगलिक कार्यों के शुभ दिन आ रहे हैं। अब फिर शुरू होने वाला है शादियों का सीजन, तो क्या करना क्या नहीं करना ये भी आपको बताएंगे, शुभ तिथियां इससे जुड़ी भी आपको बताएंगे, सोमवती अमावस्या पर शुभ संयोग क्या है ये भी जानेंगे। आगे 11 जुलाई के बाद 4 महीने शादियां नहीं होंगी क्योंकि 25 जुलाई से चतुर्मास की शुरुआत भी हो रही है, तो चतुर्मास में भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। चतुर्मास से पहले जून और जुलाई में शादियों के बहुत सारे शुभ मुहूर्त हैं, तो जानिए कब कब है विवाह का शुभ मुहूर्त, ये सब कुछ आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में। वैसे अभी अधिक मास चल ही रहा है, यूं तो अधिक मास में शुभ कार्य वर्जित माना जाता है, लेकिन स्वयं भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम दिया है और इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास 3 साल में एक बार पड़ता है, सनातन संस्कृति में इसका बहुत खास महत्व बताया गया है।
1: हमारे यहाँ जो गणना है कालखंड की वो 360 दिनों की आती है और हमारे यहाँ कलाओं का बढ़ना और घटना कहते हैं। जैसे हमारा हर मास संक्रांति से सौर मास बदलता है, जब सूर्य का संक्रमण अगली राशि में परिवर्तन करता है तो अगला माह आरंभ हो जाता है। ऐसे ही हमारे जब 4 संक्रांतियां हो जाती हैं तब वो जाकर हमारा पूरा एक वर्ष पूरा होता है 360 दिन का। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि जो तिथि है वो घटती और बढ़ती भी रहती है, पूरा दिन अंग्रेजी तो 24 घंटे मानते हैं पर हमारा जो दिन होता है वो 23 घंटे कुछ मिनट का रह जाता है। तो जब प्रतिदिन वो घटते घटते घटते जो समय बचता बचता रहता है तो 4 वर्ष में जाके पुनः 1 वर्ष के समान हो जाता है। तो ये जो है ना किसी भी मास में पड़ सकता है, ये जैसे इस बार ज्येष्ठ मास में है, पड़ने वाले इस मास को मल मास या अधिक मास कहते हैं क्योंकि बढ़ गया है। सामान्यतः लोगों ने मान लिया कि ये एक कोई पाप का समय है, कोई अच्छा समय नहीं है। भगवान ने कहा कि ये सबसे सुंदर समय है, इस समय मेरी आराधना का समय है ताकि आप किसी भी लोक लोकाचार में ना उलझो, इस समय केवल मेरी भक्ति करो, अपने पितरों को मनाओ, अपने पितरों के निमित्त प्रसन्नता के कार्य करो। इसी कारण से इसको उन्होंने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास।
0: और इस बीच ये भी हम आपको बताते चले कि सोमवती अमावस्या भी आ रही है और शुभ संयोग इस दिन भी बन रहा है। अमावस्या तिथि रविवार दोपहर 12:20 से शुरू होगी और सोमवार सुबह 8:24 तक ये तिथि रहेगी और इस दौरान अमृत सिद्धि, स्वार्थ सिद्धि का योग भी बन रहा है। सोमवार के दिन अमावस्या का विशेष महत्व भी है, इसमें स्नान, दान, जप, तप का महत्व बहुत ज्यादा होता है और इस मौके पर शिव पार्वती की विशेष कृपा पाने का भी अवसर होता है। कहा यह भी जाता है कि अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है, तो सोमवती अमावस्या इस बार बेहद खास है। इसको लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं एक बार परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मैंने जैसे बताया आचार्य राज मिश्रा जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, नंदिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ वाणी आर्य जी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है, और पंडित संजय शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत राज मिश्रा जी आप ही से करेंगे, जिक्र हमने किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि कब से शुभ कार्यों की शुरुआत हो रही है, एग्जैक्ट समय और तिथि क्या बताएंगे?
2: मैं उस पर आऊंगा, लेकिन एक हनुमान जी के लिए एक चौपाई कही जाती है नवजोत जी, सकल गुण निधानम वाणा नाम धी, मतलब मैंने आधा चौपाई नहीं, आधा श्लोक है जिसको बोला है, ठीक है, सो अतुलित बलधाम हिम शैलाबधे हम, ये पूरा श्लोक है, लेकिन लास्ट में आता है सकल गुण निधानम। सो जिस प्रकार से हनुमान जी के लिए एक शब्द आता है कि वो सकल गुणों के निधान है, उसी प्रकार जब आपके चैनल पर होते हैं ना, तो ये लगता है कि मतलब इस चैनल पर आप कुछ भी देख सकते हैं, ज्वेलरी के रेट क्या है वो पता चल जाते हैं, पता चल जाता है कि मेडिकल इंडस्ट्री क्या है, प्रकृति से रिलेटेड क्या है, और अब तो मतलब मैं अगर पंडित चैनल कहूं या मंदिर चैनल कहूं तो बुरा नहीं होगा।
0: ये गुड न्यूज टुडे है जी, हर शुभ कार्य, हर शुभ खबर आपको यही देखने को मिलती
2: है। तो जो हम लोग जाते थे कि मंदिर लोग जा करके पूछा करते थे, कई बार बड़ी मुश्किल होती थी जानने में, अब आपका चैनल शादी के मुहूर्त, विवाह के, मुंडन संस्कार, सारे मुहूर्त बताता है। चलिए खैर, हम शुभ समय की शुरुआत की बात करते हैं, तो क्योंकि 15 जो जून है, 15 जून को जो अधिक मास की है वो समाप्ति हो रही है, 15 जून के बाद ज्येष्ठ का जो शुक्ल पक्ष है वो प्रारंभ हो जाएगा, और उसके बाद आप खैर अधिक मास में शुभ कार्य नहीं करने हैं ऐसा शास्त्रोक्त वर्णन नहीं है, लेकिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष इस समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइम पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो कर्क राशि के अंतर्गत एग्जॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं, ये बहुत शानदार समय है। उसके साथ एक विशेष जो संयोग बनने वाला है 29th को, जब शुक्र भी, क्षमा चाहूंगा 22nd को जब बुध भी कर्क राशि के अंतर्गत प्रवेश कर जाएंगे, शुक्र ऑलरेडी कर्क राशि के अंतर्गत होंगे, बृहस्पति वहां पर कर्क राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे, काल पुरुष के फोर्थ हाउस के अंतर्गत चार इंपॉर्टेंट प्लैनेट जिसको जीव, सरस्वती और लक्ष्मी कहा जाता है, चारों ग्रहों का जाना, ये वास्तविकता में एक शुभ काल का, एक अमृत काल का एक समय है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि आगे का समय बेहतर होगा। आप कौन कौन से शुभ मुहूर्त इस बीच के अंदर होंगे मैं आपको बता देना चाहता हूं, सारी चीजों पर बात करेंगे। 18 जून नोट कर लीजिए, इस दिन गुरु पुख योग बन रहा है, ये बहुत विरले ही मिलता है, वर्ष में कभी एक बार मिलता है, किसी भी शुभ कार्य के लिए इस दिन को सेलेक्ट किया जा सकता है। 24 जून गंगा दशहरा, गंगा जी का अवतरण धरती पर हुआ था, इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने में कोई दोष नहीं है, किया जा सकता है, उसका शुभ परिणाम प्राप्त होता है। 25 जून निर्जला एकादशी, जिसका हम सभी लोग पूरे वर्ष इंतजार करते हैं, सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी। 29 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा, सबसे सुंदर पूर्णमासी मानी जाती है, किया गया कार्य हमेशा शुभ परिणाम देता है। 15 जुलाई गुप्त नवरात्र प्रारंभ है, जिस पर भी देवी की साधना, देवी की आराधना आपके आंतरिक विकारों को नष्ट करती है और जो आप दिल से चाहते हैं वो प्रदान करने वाला होता है। 25 जुलाई चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा, इस दिन हर सैनी एकादशी भी होगी, भगवान विष्णु के सुप्त सोने का जो समय है उसको माना जाता है। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा, लेकिन इसी बीच के अंदर जब आपने शुभ तारीखों की बात की है, तो अगर मैं सर्वार्थ सिद्धि की बात करूं, जिस तारीख पर आप कोई भी कार्य, आपको कहीं पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है, सर्वार्थ सिद्धि का तात्पर्य है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। 18 जून 21 जून मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग नोट कर सकते हैं नोट कर ले, नहीं तो प्लीज रिकॉर्ड कर ले। 18, 21, 26, 28 ये जून की तारीख है जब सर्वार्थ सिद्धि योग होगा, शुभ कार्य कर सकते हैं। 3, 7, 9, 11, 13, 19, 23 और 26 ये जुलाई की डेट है जो सबसे शुभ होंगी। नौ जून,
0: ठीक है, चलिए आपके पास आऊंगी। हमारे साथ इस वक्त नंदा पांडे जी भी मौजूद हैं। नंदा जी, ये राज जी की कैलकुलेशन, आप देखिए खत्म हो रहा है अधिक मास और इसके बाद शुभ बेल आई, और हमने अपने इस कार्यक्रम का नाम भी यही रखा है कि शुभ घड़ी की शुरुआत होने वाली है। दो सवाल आपसे, कितने शुभ दिन हमें मिलने वाले हैं शुभ कार्यों के लिए, और कौन कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जो हमें इन तमाम डेट्स पर कर लेने चाहिए?
3: बहुत सुंदर उत्तम प्रश्न, वैसे तो पंडित मिश्रा जी ने काफी कुछ डिटेल्स में बताया,
0: लेकिन हर किसी की कैलकुलेशन अलग होती है नंता जी।
3: पंचांग तो एक ही होता है, पर मैं आपको फिर भी क्लैरिटी में बताऊं कि अगर डेट्स अगर विवाह की बोले जाए तो 21 जून से खुल जाएंगे, और 21 जून से आप लगा के चलिए कि 21 जून 22 जून 23 जून सारे पूरा ये जो एंड ऑफ जून तक का है, एंड देन 1 जुलाई 2 जुलाई एंड 6 जुलाई, तो यहाँ पे विवाह के मुहूर्त है, ये गृह प्रवेश के भी यहाँ पे मुहूर्त बन रहे हैं, तो आप नई शुरुआत कर सकते हैं, आप गृह निर्माण कर सकते हैं, नया वाहन आदि खरीदना है वो आप कर सकते हैं, विवाह के लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर वो चतुर्मास के बाद फिर मिड नवंबर से ही विवाह के योग बनेंगे, तो आपको अगर किसी कुछ भी नहीं शुरुआत करनी है, जैसे अगर आपको मान लीजिए कि विवाह बाद में भी होना है, आपको खरीदारी करनी है विवाह के लिए भी, वो भी आप इस समय शुरू कर सकते हैं अच्छे समय से, जो 25 जुलाई से जैसे ही देव शनि एकादशी आएगी उसके बाद तो विष्णु भगवान नेत्राओं में चले जाएंगे, तो अच्छे मंगल कार्य नहीं होते हैं, लेकिन ये समय बहुत ही पावरफुल समय है। जेठ का महीना वैसे भी एक पावरफुल महीना होता है, जहाँ पे सूर्य जो होते हैं वो मिथुन राशि में या वृषभ राशि में गोचर करते हैं, और जब सूर्य मिथुन राशि में आते हैं वैसे ही बहुत पावरफुल हो जाते हैं, एक अच्छे रेडियंस के साथ आगे बढ़ते हैं, एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़ते हैं। तो अगर आपका सूर्य वीक है तो सूर्य को जल अवश्य चढ़ाइए, सूर्य मजबूत है तो उसको और ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए अच्छे डिसीजन लीजिए, दान पुण्य करिए, बहुत बेहतर रहेगा। बुधादित्य योग अभी समय बना हुआ है जो ऑलरेडी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहा है, और मंडे ऑनवर्ड्स भी अभी रहेगा, गुरु वैसे ही उच्च के बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ है। अब आप देखिए बहुत सारे मतभेद होते हैं गुरु और शुक्र जब सानिध्य में रहते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक तरह से दैवीय कृपा होती है इस समय जब गुरु यानी कि देवताओं के गुरु और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु दोनों ही जब साथ में आते हैं, और देवताओं के गुरु के अधिपति हैं भगवान विष्णु और शुक्राचार्य के अधिष्ठात्री देवी है माता लक्ष्मी, तो आप ये सोच रही है एक तरह से लक्ष्मी नारायण योगी बना देता है। तो इस समय आप कोई भी चीज शुरू करें, इस समय कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम टू स्टार्ट। 15th ऑफ ये जो सोमवती की अमावस्या आएगी 15th ऑफ जून को, इस दिन तो आप पितृ तर्पण आदि करिए, ये तो वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, दान पुण्य करिए, अमावस्या की तिथि और वो भी अधिक मास में आने वाली अमावस्या की तिथि तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है सोमवती अमावस्या, तो ये अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं है। इस दिन जो योग भी बन रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है, इस दिन दान पुण्य अवश्य करिए, 5 मिनट का ध्यान करिए और पूरे विश्व के लिए शांति का एक मैसेज के साथ एनर्जी भेजिए। आप देखेंगे कि आपके एक सामूहिक रूप से अगर आपके गुड न्यूज चैनल के थ्रू करें, क्योंकि गुड न्यूज होती है शांति की, हम बात कर रहे हैं
0: जी,
3: तो आप सभी अगर ऐसा करेंगे आप देखेंगे अवश्य शांति बरकरार होनी शुरू हो जाएगी। गुरु और शुक्र तो वैसे ही साथ में थोड़ा कश्मकश में रहते हैं क्योंकि दोनों की ईगो रहती है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम, और 15 जून के पश्चात जैसे ही प्रतिपदा शुरू होगी एक अच्छी स्थितियों में हम जाते जाएंगे, सारे आपके घर के द्वार दरवाजे सब खुल जाते हैं, खिड़की दरवाजे, और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आनी शुरू।
0: बिल्कुल, चलिए उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए आगे आपसे मैं उपाय भी जानूंगी, कब कब क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन वाना जी इस दौरान ये जो तमाम तिथियां, हालांकि राज जी ने बताया और नंदा जी ने भी बताया, हम उस पर दोबारा नहीं जाते क्योंकि डेट्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ग्रह गोचर किस तरह का रहने वाला है, किसके लिए ज्यादा फेवरेबल है और किसे थोड़ा सा बच के चलने की जरूरत रहेगी।
4: जी थैंक यू नवजोत जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अभी जो है अधिक मास की जो समाप्ति होने वाली है और इसमें भी जो है सोमवती अमावस्या की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत ही खास जो है सोमवती अमावस्या पे भी संयोग है, और ओवरऑल अगर हम ग्रह गोचर की अभी बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति जो है वो अपनी उच्चस्थ राशि में है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, जब अभी 18 जो जून को जो है जब गुरुदेव बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे, वो समय जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस होने वाला है, वो समय होगा, क्योंकि गुरु जो है एक अबंडेंस का कारक होते हैं और हर चीज को मल्टीप्लाई करते हैं आपकी लाइफ में, तो जो भी आपको चाहिए, और स्पेशली कर्क राशि वालों के लिए ये टाइम जो है बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है। और भी अगर कुछ पर्टिकुलर राशियों की भी अगर हम बात करते हैं, करंट गोचर करंट स्टेटस की अगर हम बात करते हैं, तो बुध अभी मिथुन राशि में है, शुक्र और गुरु जो है वो कर्क राशि में है, सूर्य जो है वो अभी वृषभ राशि में है, शनि मीन राशि में है, राहु कुंभ राशि में है, और सिंह राशि में जो है केतुदेव विराजमान है। आगे जैसे जैसे अभी जो है अभी जब मिथुन संक्रांति आ जाएगी, जब सूर्यदेव का जो है राशि परिवर्तन हो जाएगा वृषभ से मिथुन में, तो आप देखेंगे कि और ज्यादा ऑस्पिशियस चीजें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बुधदेव जो है वो अभी अपने ही घर में है एंड वेन सूर्य ऑल्सो विल बी इन कंजंक्शन, तो वहां पर भी जो है आपका एक बुधादित्य योग बन जाएगा। और इसमें मैं आपको एक चीज और भी बोलूंगी कि क्योंकि अभी जो है वी स्टिल हैव टाइम फॉर अधिक मास, तो अगर आप लोगों ने पूरे अधिक मास में कुछ भी नहीं किया है तो अभी भी जो है आप विष्णु देव की आराधना और जो है विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अगर करते हैं, आखिरी के 5 दिन अधिक मास के अगर आप बहुत ज्यादा विष्णु भगवान की आराधना अगर कर लेते हैं, कुछ पीला दान कर देते हैं, कुछ साधु संतों की जो है आप अगर सेवा कर देते हैं, किसी ब्राह्मण की सेवा कर देते हैं, इसमें चावल के दान की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। आप चावल का दान जो है वो भी कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, कहीं भी आप केले के जो है वृक्ष लगवा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप गीता पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है, कुछ पुराण पढ़ते हैं वो भी शुभ है, क्योंकि आगे भी आपके पास बहुत लिमिटेड तिथियां ही हैं, जैसे अभी राजी और नंदिता जी ने ऑलरेडी डेट्स कवर कर दी, तो आगे भी जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड तिथियां हैं जहां पर जो है जो मैरिजेस के लिए भी ऑस्पिशियस हैं, तो इस टाइम को जो है ये टाइम आध्यात्मिक उन्नति का है, आध्यात्मिक क्लींजिंग का है और सोल क्लींजिंग का है। और आपकी कोई भी अगर मनोकामना नहीं पूर्ण अभी तक हुई है या आपको लग रहा है कोई ब्लॉकेज है, स्टक हो रहे हो, तो आप जितना विष्णु भगवान की इस समय पर आराधना करोगे, और जब 18 जून से गुरुदेव बृहस्पति जो है अपने ये पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे, तो आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमा का जाप करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, और हर जो है हर थर्सडे को आप केले के वृक्ष में अगर आप जल चढ़ाते हैं और बृहस्पति देव का थर्सडे फास्टिंग करते हैं, तो आप देखेंगे जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनकी भी शादियां जो है बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी, और गुरु से रिलेटेड गुरु जिन जिन चीजों का कारक है, आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज थी वो भी अब दूर हो जाएगी, और पीला रंग जो है इसमें सबसे ज्यादा आप वियर कीजिए और चंद पीले चंदन का तिलक लगाएं।
0: बिल्कुल, चलिए अब संजय शर्मा जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि अमावस्या भी है सोमवार को और इस बार की अमावस्या कहा जा रहा है कि बहुत अहम है, काफी फलदायी हो सकती है, किस तरह की शुभ घड़ी उस दिन है और क्या करना चाहिए?
5: जी, अब सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को और आचार्यगण को सबको नमस्कार। और कहा जाता है कि अमावस्या का जो दिन है वो बड़ा शुभ होता है, क्योंकि हमारे पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए ये दिन बनाया। सोमोती अमावस्या, सोमवार के दिन अगर अमावस्या बने तो चंद्रमा क्या है, अमृत तुल्य हो जाता है, और जिन शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि इस दिन सोमोती अमावस्या के दिन अगर आप खीर का तस्मयी का जो है भोग लगाएं या यज्ञ करें, पूजा करें, पाठ करें और अपने पितरों को तर्पण करें तो बड़ा शुभ रहता है। और कहते हैं कि जब आप अपने पितरों को दूसरे पितरों से मिलाना चाहते हैं तो पितृ तर्पण करते हैं, ओम पितृभ्यो स्वादिभ्यो नमः, कर पितृभ्यो देवनमः, सर पितृभ्यो देवनमः, जो भी पूर्वज हैं उन सब का ध्यान करके और अमृत तुल्य होकर के, कहते हैं आत्मा की शुद्धि बहुत जरूरी है, मन की शुद्धि बहुत जरूरी है, अमृत तत्व ग्रहण करके और उस दिन जो है भोजन ना करें और अपने पूर्वजों को जो है दक्षिण की तरफ मुख करके और तर्पण करें, उससे विशेष लाभ रहता है और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस दिन जो है अधिक मास का जो है समापन भी होने जा रहा है, क्योंकि अमावस्या के दिन अधिक मास का समापन होता है और इसमें 33 कोटि देवताओं की पूजा की जाती है। अधिक मास जो है 33 दिन के करीब लगभग होता है, क्योंकि हर साल में जो 3 साल में 3 साल और 1 दिन में जो अधिक मास जो है बनता है, और 11 दिन कहते हैं कि सौर जो वर्ष है वो 365 दिन का होता है, चंद्र जो वर्ष होता है वो 354 दिन का होता है, तो इसमें 11 दिन का जो है फर्क हो जाता है, जिस कारण से हर 3 वर्ष में जो है एक अधिक मास आता है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास भी कहते हैं। तो इस समय आप गंगा स्नान करें, पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें, अपने पूर्वजों के नाम से कुछ अन्न का दान करें, तर्पण करें और आत्मा की अवधेय की शुद्धि करें, और कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन कर्मों और पवित्र होकर के भगवान में लीन हो जाए। और जिस प्रकार से अधिक मास में अगला तिथि जो है 6वीं हो रही है उस दिन, इसलिए जो है अमावस्या की तिथि को पूर्ण समझ करके और तर्पण कर दें और दक्षिण की तरफ मुख करके तर्पण करें, और 3 अंजलि अगर आप जल दे रहे हैं तो 3 अंजलि जल कम से कम जो है अपने पूर्वजों को दें, और जो आपकी जो पहली उंगली है, प्रथम उंगली है और अंगूठा है, दोनों को दबा करके और उसके बीच से जो है जल छोड़े, और इसमें तिल का बड़ा भारी महत्व होता है, क्योंकि तिल अर्पण करने से, कुशा का प्रयोग करने से और अपने पूर्वजों को तर्पण करा करके, ब्राह्मण से तर्पण कराएं तो वो बड़ा अच्छा होता है, और भोजन जो है इत्यादि जो है अवश्य कराएं और अपने पूर्वजों का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और जैसे अमावस्या की तिथि है उस दिन आप जो है मन के अंदर
0: जी.
5: जो है चंद्रमा का ध्यान करके और भगवान का भी ध्यान करें, विष्णु जी का ध्यान करें और सबको जो है तर्पित कर दें, जिससे कि आपको शारीरिक मानसिक भौतिक सुख की प्राप्ति हो और ईश्वर में पूरी आस्था और श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रसन्न हो जाएं.
0: बिल्कुल. चलिए, अब क्योंकि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शुभ घड़ी आई, शुभ बेला की शुरुआत होने वाली है, यानी तमाम शुभ कार्य आप कर सकते हैं और वो शुभ घड़ी बस आने ही वाली है. और जब शुभ घड़ी की बात होती है तो राजमिश्रा जी, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है. हालांकि सोने का जिक्र आपने किया, सोना बहुत महंगा है आजकल, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन फिर भी चलिए वापस से शुभ तिथियों की बात. स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे पूछूं शादी के लिए कौन सी शुभ तिथियां, और अगर हम ग्रह गोचर की बात करें इस हिसाब से किसके लिए ये समय शादी के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है, और अगर किसी के लिए अच्छा नहीं भी है लेकिन फिर भी वो शादी करने जा रहे हैं तो उनको उपाय क्या करना होगा?
2: बहुत सुंदर प्रश्न है और मुझे लगता है ये एक इतना इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि मैरिज जब आप करने जाते हैं तो उसमें दो तीन प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मैरिज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है देवगुरु बृहस्पति. जब भी कोई जातक मैरिज करने जातक जातिका जाते हैं तो उस समय उनके बृहस्पति की पोजीशन क्या है, जो कि जीव कहे जाते हैं, संतान उत्पत्ति इत्यादि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. शुक्र जो कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, उनकी पोजीशन क्या है, बुध की पोजीशन क्या है, और ये तीनों प्लैनेट एक साथ जाने वाले हैं आने वाले समय में, तो इनकी परिस्थिति को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है. आज सबसे पहले आते हैं कि शादियों की डेट्स क्या क्या है, उसके बाद हम आगे चलेंगे. 25 तारीख को, क्योंकि चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा 25 जुलाई को, उससे पहले की जो डेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, जिसमें सबसे पहली डेट जो जून में पड़ने जा रही है वो 19th ऑफ जून है. ध्यान रखिएगा 19 जून विवाह का पहला डेट पड़ने जा रहा है. दूसरा डेट 20 को, फिर 22 को, फिर 23 को, फिर 24 को, फिर 26 को. जो लोग विवाह का डेट नोट करना चाहते हैं प्लीज इसको नोट कर सकते हैं. उसके बाद 27 जून, 29 जून, 1 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8, 9 और 11, ये जुलाई की डेटें होंगी. 11 तारीख तक स्पेशली अगर देखा जाए तो विवाह के सबसे सुंदर मुहूर्त है, उसके बाद के मुहूर्त नहीं होंगे विवाह के लिए अगर अच्छे देखे जाए. अब इस परिस्थिति के अंतर्गत अगर देखा जाए किस राशि वाले अगर इस बीच में विवाह करने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत शुभ है, और किस राशि वालों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं राशि मेष को लेकर के, जहां पर फोर्थ हाउस के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे होंगे, आपके राशि स्वामी आपके राशि में होंगे, यहां पर शुक्र और फिर आगे जाकर के बुध भी आ जाएंगे, बहुत फायदेमंद होगा. वृष राशि के लिए ना फायदेमंद है ना नुकसानदायक है, लेकिन जब मिथुन राशि की बात करता हूं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है. कर्क के लिए स्पेशली मैं अगर मेष और कर्क की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि सबसे सुंदर होगा, बहुत फायदेमंद होगा. लेकिन वहीं पर जब हम जाएंगे सिंह राशि को लेकर के तो मुझे लगता है कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है. जो अगर इस बीच में आपके विवाह की तारीख है तो आपको अपने गुरु की आराधना, आपको चने की दाल, आपको उड़द की दाल, उसी के साथ चावल इत्यादि दान करके तब विवाह के लिए जाना चाहिए. विवाह मंडप पर भी इसका दान किया जाए, बहुत फायदेमंद रहेगा. कन्या राशि के लिए संतान उत्पत्ति के लिए समय पर विवाह करना बहुत फायदेमंद होगा. तुला राशि के लिए दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है आपस की वो बहुत अच्छी रहेगी. वृश्चिक राशि के लिए बहुत शानदार होगा, बिकॉज 9th हाउस के अंतर्गत सुंदर योग बनेगा. राशि धनु की बात करें यहां बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति शुक्र और बुध भी अष्टम भाव में चले जाएंगे. अगर आप भी जा रहे हैं विवाह के लिए तो अपने इष्ट का कोई भी मंत्र, या अगर नहीं आता है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, रात्रि में विवाह है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जप करके विवाह प्रारंभ करना चाहिए. मकर राशि के लिए बहुत बेहतरीन है, इस समय पर विवाह होता है तो इससे शानदार और कुछ नहीं हो सकता है. राशि कुंभ के लिए थोड़ा सावधान रहना होगा, 6th हाउस के अंतर्गत सारे जो बेनिफिक प्लैनेट हैं शुक्र ग्रह वो जाकर के बैठ जाएंगे तो यहां पर सावधानी की आवश्यकता है. लेकिन राशि मीन के लिए अगर बात की जाए तो विवाह के बाद जो मैत्री है, जो प्रेम है, जो संतान सुख इत्यादि है, उसके लिए बहुत बेहतरीन होगा. तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करने की बात करूं तो मेष राशि हो गया, कर्क राशि हो गया, मीन राशि हो गया, और उसके साथ अगर मैं मकर राशि को लेकर के बात करूं तो ये राशियां सबसे लकी हैं. ध्यान रखने वाली राशियों को लेकर के मैंने बताया कि कुंभ राशि को स्पेशली ध्यान रखना होगा, धनु राशि को स्पेशली ध्यान रखना होगा, वृष राशि के लिए सम परिस्थिति रहेगी, और सिंह राशि को स्पेशली ध्यान रखना होगा. तो ये परिस्थितियां नवजोत जी रहने वाली है. मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत सुंदर विषय है कि हम लोग उन चीजों पर डिस्कस कर रहे हैं जिसका डिस्कशन शायद कहीं नहीं होता.
0: बिल्कुल नहीं, ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ठीक है अब शुभ घड़ी आ रही है तो शादी कर ले, लेकिन ये नहीं पता है कि क्या वो समय आपके लिए पर्टिकुलरली ठीक है या नहीं है, नहीं है तो आपको क्या करना है। अब यहाँ केवल शादियों की बात नहीं है, जब शुभ दिनों की शुरुआत होती है तो लोग गृह प्रवेश भी करते हैं, अच्छी खरीदारी भी करते हैं, तमाम मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी होती है। वो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, आप रहिए हमारे साथ।

0: you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: शुभ घड़ी आई, स्वागत है आपका ब्रेक की बात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो शुभ घड़ी की शुरुआत होने वाली। नंदा जी आपके पास आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले हम जब शुभ घड़ी की बात करते हैं तो विवाह का जिक्र किया था शुभ तिथियों के बारे में राज जी ने बताया, लेकिन वही बात, अब अगर हम विवाह की बात ना करें तो बहुत से ऐसे शुभ कार्य होते हैं जिनके लिए हमें इस खास तौर पे इस समय का इंतजार होता है। लोग इंतजार करते हैं इस समय का कि उस शुभ समय में ही हम तमाम कार्य करेंगे, चाहे वो बच्चों का मुंडन हो, गृह प्रवेश हो या फिर कोई और शुभ कार्य। तो इसके लिए कौन सी डेट्स अच्छी हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसी तिथियां भी बताइए कि इस पूरे समय के दौरान जब कोई एक तिथि जिस दिन हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और गृह गोचर के हिसाब से अगर वो तिथि शुभ नहीं भी है किसी के लिए तो कैसे उसको शुभ बनाया जा सकता है। नंदा जी,
1: ये बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया। देखिए, सबसे पहले तो विवाह की अगर हम बात करें तो विवाह में स्पेशली तीन हमें चीजें देखनी होती है, चंद्र बल कैसा है, सूर्य बल कैसा है और गुरु बल कैसा है। गुरु बल और चंद्र बल कन्या के लिए देखा जाता है और सूर्य बल और चंद्र बल पुरुष के लिए देखा जाता है, दूल्हे के लिए देखा जाता है। गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। गुरु क्या है, देखिये यहाँ पे 15 जुलाई से वैसे भी कंबस्ट हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, तो उस समय तो उसके पश्चात वैसे ही विवाह की डेट नहीं होनी चाहिए। गुरु अगर जैसे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि की कन्याएं अगर हैं तो इस समय विवाह का आपका योग नहीं है, क्योंकि आपका गुरु इस समय चतुर्थ में, अष्टम में या बारहवें गोचर कर रहा होगा, तो इस समय ऐसे गोचर में गुरु के विवाह नहीं होता, वो निषेध है। तो वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रख के अगर आप वैवाहिक कार्यक्रम कर रहे हैं। बाकी रही ग्रह प्रवेश, ग्रह निर्माण की बात, तो वो भी थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य इस समय मिथुन राशि में आते हैं। सूर्य जब मिथुन राशि में आते हैं तो बहुत ज्यादा ग्रह निर्माण के कार्य या फिर ग्रह प्रवेश के कार्य नहीं किए जाते हैं। तो सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे 15 जून से लेकर 15 जुलाई के मध्य में, और इस समय वैसे तो पंचांग में देखो कुछ एक तिथियां दिख रही हैं, तो वो होता है कि आप दान पुण्य करके अगर आपको वाकई में बहुत जरूरत है, जैसे 1 जुलाई, 2 जुलाई, 6 जुलाई और 24, 25 और शायद 29 जून जो है वो तिथियां दिख रही थी जो ग्रह प्रवेश के लिए उत्तम तिथियां। लेकिन इसमें भी आप पहले दान पुण्य करते हैं, अपने वेट के बराबर जो उसका 1/100 पार्ट या 1/10th पार्ट का सब तनाजा का जब आप दान कर लेते हैं उसके बाद जाकर के आपने वास्तु पुरुष का आवाहन करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसके बाद ही गृह निर्माण शुरू करना चाहिए या गृह प्रवेश करना चाहिए, बहुत जरूरी है। बाकी मुंडन कार्य आप कर सकते हैं, बहुत उत्तम समय है। कोई भी नया वाहन खरीदना है बहुत अच्छा समय है। गृह गोचर भी आपको सपोर्ट करने हैं, लेकिन जब गुरु अस्त होता है उस समय ना करें। अब आपने एक चीज पूछी कि किसी ऐसी तिथि में अगर चीजें नहीं हो रही है लेकिन कार्य करना है, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपने इष्ट का आवाहन करके पहले इष्ट के नाम से और फिर पितरों के नाम से और कुल देवता और कुल देवी के नाम से कुछ भी दान करें और दीपक जलाएं, उसके पश्चात उनसे आज्ञा मांगे और उसके बाद आप शुरू करेंगे तो उनके आशीर्वाद से वो चीजें कोई भी तिथि हो आपकी पूर्ण हो सकती है। और अभी जो है हम बात कर रहे हैं तो पुरुषोत्तम मास अमावस्या तक का रहेगा, एक बहुत अच्छे 2-3 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। इस समय में पुरुषोत्तम मास हमेशा कहते हैं विष्णु भगवान को अति प्रिय रहता है, और अभी तो वैसे भी पंचरात्रि समय चल रहा है जहाँ लोग व्रत रख करके आखिरी पूजा करते हैं। तो एक बहुत छोटा सा उपाय, अगर आप कोई भी नई चीजें शुरू करनी है तो आपने 33 तुलसियों की जो सूखी लकड़ियां होती है उसकी बाती बना के विष्णु भगवान के समक्ष अगर उसको जलाते हैं बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ये भी नहीं संभव है तो आप 33 प्रकार के किसी भी चीजों को, भोजन और कोई भी चीज हो, उसको आप दान अवश्य करिए, ये भी बहुत अच्छा रहता है, या 33 बातियों का दिया जाइए। तो इस समय विष्णु भगवान की कृपा और लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा आपको मिले, ये समय मत गवाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि पुरुषोत्तम मास जब आता है तो वैसे ही उत्तम लिखा है ना, पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का नाम उसके साथ, आपको नारायण की कृपा वैकुंठ में जाने के मोक्ष के मार्ग, अपने पितरों के लिए मोक्ष के मार्ग इस समय यहाँ पे प्रशस्त कर सकते हैं दान पुण्य करके। गर्मियां हैं, प्याऊ दान करिए, जल का दान करिए, ये सब बहुत अच्छा रहता है। ये करेंगे आपकी नेगेटिविटी वैसी हट जाएगी और आने वाले समय जो भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है बहुत अच्छे रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: और समय बहुत अनुकूल होता
0: है। चलिए वान्या जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, शुभ दिनों की शुरुआत किस तरीके से की जाए। देखिए, हम वेलकम कर रहे हैं अपने अच्छे दिनों का, शुभ शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले कैसे भगवान विष्णु की कृपा पाई जा सकती है अभी।
2: जी थैंक यू नवजोत जी, आपने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है क्योंकि अभी जो है हम उस पर्टिकुलर ऑस्पिशियस ड्यूरेशन में है, और अगर आपने पूरे अधिक मास में जो है भगवान विष्णु की आराधना किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, आपको समय नहीं मिल पाया, तो ये वो बेस्ट टाइम है। अभी जो है 15 जून तक, सोमवती अमावस्या तक जो है आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और सुबह जो है किसी पवित्र नदी में अगर आप स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। इस पूरी ड्यूरेशन में आप कुछ भी नॉन वेज नहीं खाएंगे और सिर्फ वेज पे रहिए, कुछ भी अल्कोहल जो है वो कंज्यूम नहीं करेंगे। इसमें 33 नंबर का बहुत महत्व होता है क्योंकि वो एक्सटेंशन जो होती है वो 33 डेज की होती है, तो इसमें जो है आप एक दीपक लीजिए जो 33 बातियों का जो दीपक है, आप वो दीपक जो है आप मंदिर में दान करिए, आप 33 मालपुए जो है वो दान कर सकते हैं, आप किसी ब्राह्मण को जो है वो आप जो है पीला दान जो है इस समय पर कर सकते हैं, सोमवती अमावस्या जो आ रही है उसमें आप शिव पार्वती की जो है आराधना कर सकते हैं, सफेद का दान जो है वो भी आप कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, और जो है विष्णु सहस्रनाम अगर आप रोज पढ़ सकते हैं या फिर आप सुन सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, विष्णु पुराण जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं, गीता में जो है पुरुषोत्तम मास की जो महत्ता है उसको आप जो है जल्दी उठ के, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं स्पेशली 3:33 के आसपास अगर आप उठते हैं तो वहां पर भी आपको भगवान विष्णु की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है। इस टाइम पर जो है आप सिट्रीन बियर कर सकते हैं और गुरुदेव बृहस्पति भी अभी उच्चस्त हैं तो आपको गुरु का जो है बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ये जो समय है जप का है तप का है पंचव्रत वाला समय है, ये जो आपका जो है अभी जो शुरू हुआ है 11th से 15th जून वाला ये जो टाइम है, इसमें जो है आप और भी जो है चने की दाल जो है पीला पेठा जो है वो भी आप कर सकते हैं, तुलसा मैया की परिक्रमा, ऐसा साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि जो लोग भी तुलसी माँ की परिक्रमा करते हैं उनके स्ट्रेस लेवल्स जो है बहुत ज्यादा कम रहते हैं। आप अपने पितरों के नाम का जो है कुछ दान करें, पीपल की जो है आप इस टाइम पर 7 परिक्रमा कर सकते हैं, साधु सेवा कर सकते हैं, आप इस टाइम पर अनुष्ठान जो है वो भी आप जो है कर सकते हैं, उसके बाद जो है दीपों का दान इस टाइम पर सुबह जो है आप जो केले के वृक्ष में सुबह में जल डालिए और शाम में जो है आप वहां पर दीपक जलाएं, गौ सेवा जो है इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा इस टाइम पर उत्तम है, अन्न का दान, जल का दान, और आगे अभी निर्जला एकादशी पर भी आप जल का दान कीजिए, और प्याऊ जो है वो आप लगवाएं किसी प्यासे के जानवरों के लिए, किसी बर्तन में जो है अगर आप पानी भर के अगर रोज रख देते हैं, पक्षियों के लिए कुछ अनाज जो है वो भी अगर आप रख सकते हैं, और आप अपने पितृ जो आपके पितरों को जो चीजें सबसे ज्यादा पसंद थी आप उसका दान अगर उनके नाम से करते हैं तो आपको जो है लाइफ में उनकी भी जो है ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसमें फलों का दान जो है वो भी होता है, और ये जो टाइम होता है सेल्फ क्लिंजिंग, आत्मनिरीक्षण, अपनी सोल को समझने का टाइम होता है कि एक्चुअली ऑब्जर्व करने का टाइम होता है। इस टाइम पर आप जितना मौन रहते हैं, जितना कम जो है अगर आप बोलते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। विष्णु जी के सुबह शाम अगर आप एक दिया जलाते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। कहते हैं जिन्हें भी माँ लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में चाहिए होती है तो उसका जो रूट होता है वो भगवान विष्णु से ही शुरू होता है, तो जितना आप भगवान विष्णु की इस टाइम पर आराधना करते जाएंगे, और आपको अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पा रहे हैं तो शाम को भी अगर आप गीता का पाठ जो है जब भी आपको समय मिलता है तो आप अपनी प्योर इंटेंशन से कीजिए, आपको अधिक मास का बहुत फल मिलेगा, और अपनी विश जो है जो भी आपने मांगी हुई है आप जो है इन 5 दिनों के लिए रखिए कि भगवान मैं ये 5 दिन सब कुछ करूंगा और मेरी जो विश मैनिफेस्टेशन है वो आप जरूर करें।
0: बिल्कुल, चलिए अच्छे दिनों की शुरुआत करनी है, लेकिन उससे पहले ये वही घड़ी चल रही है संजय जी जब अधिक मास में हम लोग चल रहे हैं, तो अच्छे दिनों के वेलकम के लिए क्या किया जाए, एक उपाय क्या बताएंगे आप?
3: जी देखो, सबसे ज्यादा जरूरी जो है अच्छे दिन लाने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वो आपके क्रिएटर हैं, विष्णु आपके पालन हैं, शिव संहारक हैं, तो ऐसे वक्त में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए, अगर हो सके तो लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। और पहला जो मंत्र आता है विष्णु सहस्रनाम में, ओम यश समृण मातृण जन्म संसार वंदना तो मुझे तस्मै विष्णु प्रभो विष्णु, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सबसे महा उपाय जो है मैं कहूंगा कि पूरे साल भर आप, जैसे अभी नंदिता जी ने भी बोला कि पशुओं की सेवा, गरीबों की सेवा, मैं ये कहूंगा कि सिर्फ इसी मास में करें, गऊओं को खाना इसी मास में, मैं कहूंगा पूरे साल भर जो है सेवा भाव करते रहें। और ऐसा समय जैसे अधिक मास तो हर 3 साल में आता है, परंतु पूरे सालों साल जो है आप गरीबों की मदद करें, और नर को ही नारायण का रूप माना गया है, तो दूसरे व्यक्ति की सेवा, कोई भूखा ना सोए हमारे आसपास में, हम सबकी मदद करने योग्य हैं तो उनकी मदद करें और भगवान का ध्यान भी करते रहें, स्मरण करते रहें और मंदिर या पवित्र स्थान पर जरूर जाएं और दान पुण्य अवश्य करें, जिससे कि जीवन में आत्मा की शुद्धि भी होती है, मन की शुद्धि भी होती है। कहा जाता है जब दान करते हैं तो आपके धन की शुद्धि हो जाती है।

0: बैठे अगर काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए, नाइन्थ हाउस को बृहस्पति जो रिप्रेजेंट करते हैं, टेंथ और इलेवंथ को शनि रिप्रेजेंट करते हैं, यानी भाग्य और कर्म। इस दिन धर्म करने से जो हम जीवन में कर्म चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसका रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो ये दिन मुझे सबसे शानदार लग रहा है। खैर, मैं अगर स्वास्थ्य के लिए कोई आराधना करनी है तो फटाफट मैं उसकी डेट बता रहा हूं कि कौन से दिन करना चाहिए। 18 जून, उसके साथ 17 जुलाई, 13 जुलाई, 19 जुलाई, 4 अगस्त, 8 अगस्त, 16 अगस्त, 1 सितंबर, ये डेट ऐसी होंगी। अगर स्वास्थ्य में प्रॉब्लम चल रही है इन दिनों में 108 बार महामृत्युंजय कीजिएगा, चमत्कारिक रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। साथ में अगर प्रमोशन या सफलता के लिए कोई आराधना करनी है, रवि योग प्राप्त होगा। 17 जून, 19 जून, 22 जून, 23 जून, 27 जून, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई, 20 जुलाई, 22 जुलाई, 27 जुलाई, ये डेट बहुत अच्छे होंगे। अब अगर एक उपाय की बात करता हूं, श्री रामचरितमानस उठाइएगा, बालकांड का दोहा नंबर 7 है, बहुत ही सुंदर है। एकमात्र ऐसा दोहा पूरे शास्त्र के अंदर जिसमें सबकी एक साथ वंदना की गई है, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व और बंदो किन्नर रज निचर कृपा करहुं अवसर्व। सिर्फ इस चौपाई को पढ़ लीजिएगा, आने वाला समय मंगल ही मंगल का होगा। और मैं कह सकता हूं चाहे देवता नाराज है, पितृ नाराज है, प्रेत नाराज है, तंत्र है, मंत्र है, सब दूर होगा। जी नौजवान,
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुभ दिनों की शुभ शुरुआत कैसे की जाए ये सब बताने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: वेलकम बैक टू yeah, that's a pepper thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
2: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
1: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
3: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
4: अब मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर।

0: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: और चलिए आपको दिखा दें कुछ ऐसे वीडियोस जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियो हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे, और कुछ को देखकर आप कहेंगे ऐसा भी होता है।
7: पानी की असली कीमत क्या होती है, इसका एहसास अक्सर जरूरत के वक्त ही हो जाता है। इस वीडियो में एक प्यासा बंदर बड़ी समझदारी के साथ नल के पास पहुंचता है। वो पहले नल को चलाता है और फिर गिरते पानी से अपनी प्यास बुझाता है। ये नज़ारा सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश भी देता है कि जल हर जीवन के लिए कितना जरूरी है। इंसान हो या जानवर, जीवन की डोर पानी से ही जुड़ी है। पिता और बेटी का रिश्ता भरोसे और प्यार से भरा होता है। इस वीडियो में एक पिता अपनी नन्ही बेटी के साथ खेलते खेलते उसे जादू दिखाने लगते हैं। चादर को ऊपर नीचे करने के दौरान वो अचानक नजरों से ओझल हो जाते हैं। अगले ही पल बेटी की मासूम आंखें उन्हें ढूंढने लगती है और वो बड़ी प्यारी आवाज में अपने पापा को बुलाने लगती है। ये भावुक और प्यारा पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
8: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics, Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in. For unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
5: चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे। अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: पुतिन ने दिया सुपर किलर का ऑफर। अदृश्य योद्धा के नाम से दुश्मनों में टेरर। भारत रूस की यारी, चीन पाकिस्तान पर भारी। देखिए रण क्षेत्र रात 10:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
5: फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इनोवेट्स 2026 का किया उद्घाटन। पीएम बोले, आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप केंद्र। राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत की नवाचार क्षमताओं को सराहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दिया 926 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। भगवान रामकृष्ण के कॉस्ट्यूम में पहुंचे बच्चों को किया दुलार, मस्तक पर लगाया तिलक। सोमवार से नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ान का संचालन। लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान। एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे पहली फ्लाइट का सफर। स्थापना दिवस से पहले रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया कैंचीधाम। उमड़ा आस्था का सैलाब, 9 चूल्हों पर तैयार हो रहा महाप्रसाद, जयकारों से गूंजा धाम। तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने रचा इतिहास। ओलंपिक चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा। धीरज कमकुम ने किया शानदार प्रदर्शन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
5: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करते हैं सोमवती अमावस्या की, यानी वो पावन दिन जब आप ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न कर उनसे वरदान पा सकते हैं। विवाहित महिलाओं के लिए तो इससे बड़ा दिन शायद ही हो, क्योंकि इस दिन पीपल का पेड़ उन्हें दिला सकता है अखंड सौभाग्यवती रहने का महावरदान। देखिए रिपोर्ट।

0: पार्वती अमावस्या एक ऐसा पावन संयोग जिसका इंतजार हर श्रद्धावान को बेसब्री से होता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और जब इस दिन अमावस्या का योग बनता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सोमवती अमावस्या का शुभ ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक रहेगा, जबकि गोधली मुहूर्त शाम 7:17 से शाम 7:37 तक रहेगा। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्धि, स्वास्थ्य और सभी दुखों से मुक्त होगा। और ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। सोमवती अमावस्या का ये पावन अवसर सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करने और उस पर सूत का धागा लपेटने की सदियों पुरानी परंपरा है। कहते हैं पीपल के मूल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए पीपल की पूजा से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। सिर्फ सौभाग्य ही नहीं बल्कि ये दिन पितृदोष से मुक्ति पाने का भी महायोग है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और गीता का पाठ जरूर करें। अपनी क्षमता के अनुसार तिल, अन्न और वस्त्रों का दान करने से पितर प्रसन्न होकर सुख शांति का वरदान देते हैं। इस मौके पर गंगा तटों पर भक्तों की भीड़ बड़ी तादाद में उमड़ती है। खास तौर से हरिद्वार के घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिलता है और ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर को 6 सुपर जोन, 16 जोन की भीड़ बड़ी तादाद में उमड़ती है। खास तौर से हरिद्वार के घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिलता है और ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर को 6 सुपर जोन, 16 जोन और 46 सेक्टर्स में बांटा गया है।
1: इसके सोमवती अमावस्या स्नान के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह घेरा है और स्नान को अच्छे से भली भांति कराने के लिए पूरा जो मेला क्षेत्र है इसको 6 सुपर जोन, 16 जोन और 46 सेक्टर्स में बांटा गया है। और सुपर जोन में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, जोन में जो है सीओ रैंक के अधिकारी हैं और सेक्टर में सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं। और इसमें हमारे एसएसबी, पैरामिलिट्री फोर्स, साथ में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीडीएस स्क्वाड, एटीएस और विभिन्न यूनिट जो है वो इसमें जो है हमारी लगी हुई है और पूरी तरह हम इस गियर में।
0: तो आप भी इस सोमवती अमावस्या के शुभ मुहूर्त का लाभ उठाना ना भूलें। पवित्र स्नान करें, दान करें और महादेव की भक्ति में लीन हो जाएं। हरिद्वार से मुदित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज डे।
2: एक तरफ सोमवती अमावस्या का पावन मौका है तो दूसरी तरफ 15 जून यानी सोमवार को कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। भक्तों का सैलाब नैनीताल में मौजूद इस भव्य और दिव्य धाम में उमड़ने लगा है। इस खास मौके पर कैंची धाम रंग बिरंगी रोशनी से नहा रहा है, हर ओर आस्था का संचार हो रहा है और साथ में तैयार हो रहे हैं मालपुए का विशेष प्रसाद। इस बार कैंची धाम में देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।

0: उत्तराखंड की शांत और खूबसूरत वादियों में बसा बाबा नीम करौली महाराज का भव्य और दिव्य कैंची धाम, जहां इन दिनों स्थापना दिवस की रौनक देखते ही बन रही है। 15 जून यानी सोमवार को बाबा के इस आश्रम का स्थापना दिवस है और उसकी पूर्व संध्या पर ये धाम किसी आध्यात्मिक उत्सव की तरह चमक रहा है। जैसे ही पहाड़ों पर शाम ढलती है, पूरा धाम रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो उठता है। आश्रम का ये भव्य और दिव्य स्वरूप यहाँ पहुँचने वाले हर श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर रहा है। बाबा के भक्तों के लिए स्थापना दिवस जितना अहम है, उससे कहीं ज्यादा अहम है इस मौके पर मिलने वाला विशेष प्रसाद, जिसे बनाने की तैयारी कई दिन पहले ही शुरू हो जाती है। स्थापना दिवस के इस पावन मौके पर बाबा के विश्व प्रसिद्ध महाप्रसाद की तैयारियां भी पूरे जोर शोर से चल रही हैं। स्थापना दिवस के मौके पर प्रसाद के तौर पर मालपुए बनाए जाते हैं। आश्रम में 9 बड़े बड़े चूल्हों पर ये महाप्रसाद तैयार किया जा रहा है। इस विशेष मालपुए के प्रसाद को बनाने के लिए मथुरा और वृंदावन से 45 अनुभवी कारीगरों का दल पहुंचा है, जो दिन रात एक करके लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये अमृत रूपी प्रसाद तैयार कर रहा है। उधर बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर है। पूरा क्षेत्र बाबा नीम करौली महाराज की जय के गगनभेदी जयकारों से गूंज रहा है। श्रद्धा, समर्पण और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर ये माहौल बता रहा है कि इस बार स्थापना दिवस पर श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अब इंतजार सोमवार सुबह का है, जब सूर्य की पहली किरण के साथ लाखों श्रद्धालु बाबा के दर पर शीश नवाएंगे और उस महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे, जिसकी खुशबू से इस वक्त पूरी घाटी महक रही है। लीला सिंह बिष्ट, नैनीताल, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात उस ऐतिहासिक पल की, जो बस चंद घंटे दूर है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट्स कल सुबह से शुरू होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब इंतजार उस घड़ी का है जब नोएडा एयरपोर्ट पर पहला पैसेंजर विमान उतरेगा और फिर यहां से लैंड करेगा। देखिए रिपोर्ट।

0: चकाचक एयरपोर्ट, शानदार माहौल, सारी तैयारियां पूरी है और वो घड़ी अब बहुत दूर नहीं जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश और दुनिया के मुसाफिरों से गुलजार हो जाएगा। यहाँ पर लोगों की चहल पहल दिखने लगेगी क्योंकि अब यहाँ से आम लोगों के सफर का सपना साकार होने जा रहा है। इस नए नवेले एयरपोर्ट से पैसेंजर फ्लाइट्स के परवाज भरने का टाइम अब शुरू होने जा रहा है।
1: To the Noida International Airport, and this is a big, big day for us. We look forward to the first few days and weeks of operations, and of course we look forward to many, many years of successfully operating Noida International Airport. Of course, we've been trying as much as possible to avoid them or to reduce them. We've been working for about 2 years on an operational readiness program with various levels and layers of commissioning systems, of testing them, of trialing with an increasing number of employees and passengers and airlines. And that's part of our readiness program with which we hope to avoid the most of the teething pains that typically accompany a project of this magnitude.
0: आपको बता दें कि बस चंद घंटों के बाद ही 15 जून को सुबह 8:05 पर पहली कमर्शियल फ्लाइट लखनऊ से आकर यहां लैंड करेगी। इंडिगो की पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके लिए फ्लाइट नंबर 6E2278 सुबह 7:05 पर लखनऊ से उड़ान भरेगी और ये विमान सुबह 8:05 पर नोएडा एयरपोर्ट पहुँचेगा और फिर इसके बाद इस एयरपोर्ट से सुबह 8:35 पर पहली फ्लाइट बेंगलुरु के लिए टेक ऑफ भी करेगी। वहीं फ्लाइट नंबर 6E2279 शाम 6:55 पर नोएडा से लखनऊ की उड़ान भरने वाली है। खबर है कि पहले ही दिन हैदराबाद और अमृतसर के लिए भी यहां से उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट औपचारिक रूप से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की सुविधा के लिए हाईटेक इंतजाम है, तो साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी यहां देखने को मिल रही है। जल्द ही यहां से देश के दूसरे शहरों के लिए भी फ्लाइट्स मिलने लगेंगी, इसकी पूरी उम्मीद है। शुरुआत में कुछ समय तक सिर्फ इंडिगो और आकाशा एयर ही अपनी उड़ानें यहां से संचालित करेंगी। इसके बाद यहां से एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी उड़ानें चालू होने की संभावना है। इस एयरपोर्ट से लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, अमृतसर, चंडीगढ़, जयपुर, श्रीनगर और पंतनगर सहित 16 से अधिक शहरों के लिए फ्लाइट शुरू हो सकती है।
1: We'll start with domestic operations. June 16th onwards, we'll operate domestic flights in the region to metro cities in India. And work continues on the international part of the passenger terminal. We look forward to opening the airport for international operations later this year.
0: इस बीच एयर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट ने यहां विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ की क्षमता बढ़ाने पर भी काम शुरू कर दिया है। इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को 4 चरणों में पूरा किया जाना है। इन चरणों के पूरे होने पर नोएडा एयरपोर्ट की वार्षिक पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 2031 तक 3 करोड़, 2036 तक 5 करोड़ और 2040 तक 7 करोड़ यात्रियों तक पहुँच जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 6 मार्च 2026 को DGCA की ओर से एरोड्रोम लाइसेंस दिया गया था। इसके बाद 28 अप्रैल 2026 को नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो BCAS की ओर से एरोड्रोम सिक्योरिटी प्रोग्राम को मंजूरी दी गई और फिर 7 मई 2026 को इस एयरपोर्ट से उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था। यहां पर 5 रनवे बनने का प्लान है और विस्तार के बाद इसकी सालाना क्षमता 22.5 करोड़ यात्रियों की हो सकेगी। इसके साथ ही ये दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार हो जाएगा। आपको बता दें कि पहले चरण में 1334 हेक्टेयर एरिया में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। इसमें 3900 मीटर लंबा रनवे है, साथ ही एक टर्मिनल बिल्डिंग और ATS टावर भी है। वहीं इस एयरपोर्ट पर 30 एकड़ में कार्गो हब भी बनाया गया है। इस एयरपोर्ट की क्षमता फिलहाल सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की है। हालांकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि यहां से उड़ानों का संचालन शुरू होने पर पहले ही साल में यहां से कम 50 लाख यात्रियों के सफर करने की उम्मीद है। इस नए एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा फायदा NCR से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों के लोगों को होगा, क्योंकि उन्हें विमान से सफर करने के लिए IGI एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका समय भी बचेगा और सहूलियत भी बढ़ेगी और साथ ही दिल्ली हवाई अड्डे का बोझ भी इससे घटेगा। करिश्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब आपको खबर दिखाते हैं विराट और करण की। बाल क्रिकेटर विराट कोहली और पंजाबी सिंगर म्यूजिशियन करण औजला की हो रही है, जो दिल्ली में एक मंच पर एक साथ दिखेंगे। आखिर क्या है मौका और क्यों ये दोनों साथ आ रहे हैं, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: दिग्गज भारतीय क्रिकेटर, पूर्व कप्तान और शानदार बल्लेबाज विराट कोहली को आपने अक्सर क्रिकेट के पिच पर रनों की बरसात करते हुए देखा होगा। विराट कोहली को आपने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ऐतिहासिक जीत के बाद डांस फ्लोर पर धमाल मचाते हुए भी देखा होगा। विराट को आपने कई मैचों के दौरान फैंस को उत्साहित करने के लिए मैदान पर थिरकते हुए भी देखा होगा। इतना ही नहीं, विराट को आपने कॉमेडी शो में मस्ती करते हुए और हंसाते हुए भी देखा होगा। यही नहीं, आपको समय समय पर धर्म और अध्यात्म के प्रति विराट कोहली की आस्था की तस्वीरें भी देखने को मिलती रही होंगी। लेकिन अब विराट एक नए अंदाज में सामने आ रहे हैं। आखिर क्या करने वाले हैं विराट? आखिर क्या दिखाने जा रहे हैं विराट अपने फैंस और दर्शकों के सामने? अब क्या लेकर आ रहे हैं विराट? क्या आने वाले समय में विराट किसी म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ सकते हैं? ये सब अभी सस्पेंस ही है। लेकिन विराट ने खुद इसके बारे में जो संकेत दिया है, उससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विराट के फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ गई है। दरअसल विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसको लेकर लोगों के जहन में तमाम सवाल उठने लगे हैं। इन तस्वीरों में विराट मशहूर पंजाबी पॉप स्टार करण ओजला के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में पीठ पर 1 और 8 नंबर छपी काली टी शर्ट पहने दोनों सितारे हजारों बत्तियों से जगमगाते खचाखच भरे हॉल में दर्शकों के सामने खड़े हैं। विराट ने इसके कैप्शन में लिखा है, करण का स्वागत है, मंच हमारा है, 21 जून दिल्ली। यानी ये तो साफ है कि 21 जून को दिल्ली में होने जा रहे एक कार्यक्रम में विराट और करण ओजला एक ही मंच पर साथ साथ होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 जून को दिल्ली में हाई प्रोफाइल क्रॉसओवर होने जा रहा है। इसमें स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और पंजाबी पॉप स्टार करण ओजला एक साथ नजर आएंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस दौरान अपने अपने क्षेत्र के दो बड़े नाम एक ही मंच पर एक साथ होंगे। एक तरफ रन मशीन किंग कोहली होंगे तो दूसरी तरफ गीतों के सरताज करण। दरअसल ये दोनों सितारे अगले रविवार को राजधानी में होने वाले 18 इवेंट में एक साथ नजर आएंगे। विराट कोहली इस ब्रांड की पहचान बनाने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। वहीं अब करण ओजला भी इससे जुड़ रहे हैं। 18 एक लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका फोकस फिटनेस, फैशन और आधुनिक जीवन शैली से है। करण ओजला और 18 ग्लोबल ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 21 जून को 18 ग्लोबल प्रीमियर की पुष्टि कर दी है। ऑनलाइन की गई इस जानकारी ने विराट और करण के फैंस के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है, क्योंकि तमाम प्रशंसक क्रिकेट के दिग्गज और पंजाबी हिट मेकर को एक साथ मंच पर देखने के लिए बेताब है। लोगों की दीवानगी इस हद तक जा पहुंची कि इंस्टा पर इस सिलसिले में किए गए एक पोस्ट को कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स मिल गए। अब यशोभूमि में 18 इवेंट में करण ओजला और विराट कोहली के क्रॉसओवर को लेकर फैंस को 21 जून का बेसब्री से इंतजार है, ताकि ये पता चले कि कोहली और ओजला दुनिया के सामने क्या नया लेकर आ रहे हैं। मुंबई से सना फरजीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने हाल ही में उत्तराखंड के पवित्र और आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन किए। खास बात यह है कि उनका यह दौरा पूरी तरह गोपनीय रहा, जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन और आम लोगों को भी नहीं हो सकी। ऋषभ पंत सबसे पहले पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने श्रद्धा भाव के साथ ओम पर्वत के दर्शन किए। दर्शन के बाद ऋषभ पंत व्यास घाटी के नाभी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक होम स्टे में रात गुजारी। यात्रा के दौरान उनकी कार का टायर खराब हो जाने पर गुंजी क्षेत्र में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने उनकी मदद की, जिसके बाद ऋषभ पंत ने जवानों के साथ भी समय बिताया और उनके साथ फोटोज भी क्लिक किए। तो पूरी तरह गोपनीय दौरा रहा और ऋषभ पंत ने यहाँ एक श्रद्धालु की तरह, भक्त की तरह यह दौरा रहा, जिसमें आदि कैलाश के दर्शन करने पहुंचे, वहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और वहां के करीब गांव वालों से भी उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ फोटोज भी क्लिक किए और वहां भोजन का भी यहाँ पर उन्होंने सेवन किया, लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए। तस्वीरें आप देखिए, देखिए उनकी सहजता का ये अंदाज आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जहाँ ऋषभ पंत ने आम लोगों से मुलाकात की और उन्हें फोटोग्राफ्स भी दिए। और अब खबर सैर सपाटे की करते हैं। हिमाचल की वादियों में इन दिनों सैलानियों का समंदर उमड़ रहा है। मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी तादाद में लोग हिमाचल के पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, और यही कारण है कि इन दिनों शिमला से चंबा, डलहौजी और मनाली तक हर जगह सैलानियों की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट।

0: हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली का माहौल इन दिनों बेहद मनमोहक है। शानदार हरियाली और खुशगवार मौसम के बीच यहां से होकर कलकल करती बह रही नदी के जलधारा की मधुर आवाज सैलानियों को खूब आकर्षित कर रही है। यही वजह है कि मनाली और इसके आसपास के इलाकों में इन दिनों पर्यटकों का रेला उमड़ रहा है। खासतौर से मनाली के बाजारों में और यहां सैर सपाटे की जगहों पर इन दिनों जिधर देखिए उधर ही सैलानियों की भीड़ नजर आती है। मैदानी इलाके में पड़ रही तेज गर्मी से राहत पाने के लिए लाखों पर्यटक इन दिनों कुल्लू मनाली और लाहौल घाटी का रुख कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते 14 दिनों में 3 लाख से ज्यादा पर्यटक कुल्लू मनाली पहुंचे। इसके बाद अटल टनल, रोहतांग पास, शिंकुला और बारा लाचाला जैसे पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। सैलानियों की बढ़ती तादाद से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। होटल इंडस्ट्री को लंबे समय बाद इस सीजन में बम्पर कमाई हो रही है। हालांकि ट्रैफिक के कारण थोड़ी मुश्किलें जरूर हो रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल डलहौजी का भी है। जून महीना आधा बीत जाने के बाद भी डलहौजी में ठंड का एहसास हो रहा है। मैदानी इलाकों में गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और यहां के सुंदर माहौल का लुत्फ उठा रहे हैं। डलहौजी के साथ साथ आसपास के पर्यटन स्थल खजियार और चंबा भी पर्यटकों से गुलजार है। इसके कारण यहां इन दिनों टूरिज्म के कारोबारियों को काफी फायदा हो रहा है। उत्तर भारत के तमाम इलाकों से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां डलहौजी और आसपास के इलाकों में आ रही हैं, लेकिन यहां ट्रैफिक के खास इंतजाम किए गए हैं। इसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी इन दिनों सैलानियों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। यहां के मशहूर जाखू हनुमान मंदिर और मॉल रोड सहित तमाम इलाकों में सैर सपाटे के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि इन दिनों यहां का मौसम काफी सुहाना बना हुआ है।
1: मौसम तो सर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मौसम है। ऊपर से जो छुट्टियां पड़ी हैं, ये वीकेंड लॉन्ग वीकेंड, बहुत भीड़ भी है, बहुत अच्छा मौसम है। दिल्ली की गर्मी से तो खैर बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ निजात मिली है। जाखू मंदिर आए हुए हैं दर्शन करने, बहुत भीड़ भी और बहुत अच्छे दर्शन हुए। बुलाया ऊपर वाले ने हमको, सेवा का मौका दिया, हम आए यहाँ पर।
2: रश तो बहुत है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्मूथ ट्रैफिक निकलवा रहे हैं। ट्रैफिक वाले हर जगह खड़े हुए हैं, तो ट्रैफिक स्मूथली निकल ही जाता है। मतलब हार्डली 5-10 मिनट या 15 मिनट का पेशेंस लेके अगर आप चलोगे तो आप आराम से पहुंच जाओगे। क्योंकि हर कोई, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट प्लेस पे या फिर हिल स्टेशन पे सबको आने का मन है, तो सब यहाँ पे पहुंचे हैं। और दर्शन के लिए हमें बहुत टाइम से मन था, हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं हमारे को, तो बहुत अच्छा, अमेजिंग। वेदर भी बहुत अच्छा है।
0: शिमला में अक्सर वीकेंड से पहले बारिश होने पर मौसम खुशनुमा हो जाता है। यही वजह है कि इस बार भी यहां सैलानियों की आमद में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। लॉन्ग वीकेंड पर यहां के होटलों और होमस्टे में 70-80% ऑक्यूपेंसी देखी गई, क्योंकि मैदानी इलाकों में पड़ रही चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
3: सर एज अ माई पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे तो ऑल टाइम शिमला इज वेरी बेस्ट प्लेस। अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा लगता है, तो जितने टाइम आओ ऑलवेज अच्छे लगता है घूमने में। ऐसा है, टूरिस्ट है काफी जो ये नीचे से ही यूपी वाली साइड से आते हैं, तो थोड़ा गैदरिंग ज्यादा हो जाता है, अदरवाइज शिमला इज द बेस्ट प्लेस।
0: शिमला में हाल ही में 5 दिन चले सेमिनार फेस्टिवल का भी समापन हुआ, जो सैलानियों के लिए बड़ा आकर्षण था। वहीं खूबसूरत माहौल और आनंदमय मौसम तो हमेशा पर्यटकों को सैर सपाटे के लिए यहां खींच ही लाता है। लोग अक्सर छुट्टियां बिताने के लिए शिमला आना पसंद करते हैं, जिसके कारण साल भर यहां सैलानियों की रौनक देखते ही बनती है। शिमला से विकास शर्मा, डलहौजी से विकास आनंद और मनाली से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: क्रिकेट के बाद अब फुटबॉल फीवर की बात कर लेते हैं। इन दिनों फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू हो चुका है और भारत में भी इसका क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह आलम है कि फुटबॉल खिलाड़ियों के कटआउट से पूरा शहर पटा हुआ है। मेसी से लेकर रोनाल्डो और नेमार के बड़े बड़े पोस्टर्स और कटआउट्स शहर के अलग अलग चौराहों पर लगाए गए हैं। माना जा रहा है कि मेसी और रोनाल्डो का ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। ऐसे में इनके फैंस की दीवानगी अलग ही देखने को मिल रही है। खेल के बाद अब बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत की। पिछले दिनों जानवी कपूर वेंकटेश्वर तिरुमाला मंदिर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने बैंगनी रंग की एक खास साड़ी पहनी हुई थी। मंदिर से उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद अब हर तरफ उस खास साड़ी की चर्चा हो रही है। कभी राजघरानों की शान माने जाने वाली यह साड़ी अब एक बार फिर सुर्खियों में है।

0: मन में श्रद्धा भाव, सादगी भरा अंदाज और बदन पर लिपटी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत। पिछले दिनों जब अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म बेड्डी की रिलीज से पहले भगवान वेंकटेश्वर की दर पर पहुंची, तो उनका ये रूप सोशल मीडिया पर छा गया। इस पावन मौके पर जाह्नवी ने कोटा की पारंपरिक और विश्व प्रसिद्ध सोन चिरैया साड़ी को चुना था। बैगनी रंग की इस अनुपम साड़ी की खूबसूरती हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही है। इस साड़ी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी महीन कारीगरी, जिसमें असली सोने और चांदी की जरी का इस्तेमाल किया गया है। इसके पारंपरिक फूलदार डिजाइन और हस्तकरघे की जीवंत कला का ऐसा अद्भुत संगम, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल ये साड़ी महज एक परिधान नहीं है, बल्कि राजस्थान के कोटा के बुनकरों की पीढ़ियों पुराने कौशल, उनकी मेहनत और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत दस्तावेज है। कविराज घरानों की शान माने जाने वाली कोटा की ये खास साड़ियाँ अब महिलाओं की पहली पसंद बन रही हैं। राधिका राजे गायकवाड़ से लेकर कंगना रनौत तक सोन चिरैया साड़ी की कदरदान है।
1: बहुत अच्छा लगता है जब हमारी जरी कोटा की जो पहचान है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है।
0: पिछले कुछ सालों में इस विलुप्त कला को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज कोटा की ये बुनाई राष्ट्र सीमाओं को पार कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहचान बना रही है। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे।
2: और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे महान और सबसे पवित्र माना जाता है। बृहस्पति की पवित्रता उसकी दृष्टि में छिपी होती है और बृहस्पति की दृष्टि को सर्वाधिक पवित्र क्यों मानते हैं, अलग अलग ग्रहों पर इसकी दृष्टि का प्रभाव क्या होता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति देव की दृष्टि के बारे में। बृहस्पति की दृष्टि इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? देखिए ज्योतिष में 9 ग्रहों का अध्ययन हम करते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु। राहु केतु के पास कोई दृष्टि नहीं होती, बाकी बच गए 7 ग्रह। हर ग्रह के पास, इन 7 ग्रह के पास एक ही दृष्टि होती है, 7वीं। लेकिन बृहस्पति मंगल और शनि के पास विशेष दृष्टियां भी होती हैं। बृहस्पति के पास 7वीं दृष्टि तो है ही, लेकिन उसके अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि भी बृहस्पति के पास होती है। बृहस्पति की दृष्टि यानी बृहस्पति का देखना अत्यंत शुभ है, अत्यंत शक्तिशाली है। बृहस्पति की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़े या जिस भाव पर पड़े उसको अत्यंत शुभ कर देती है। यानी अगर कुंडली में कोई अशुभ ग्रह है या कोई अशुभ योग है और बृहस्पति की दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई तो उसकी अशुभता नष्ट हो जाएगी। बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां शुभता नहीं आती, बृहस्पति का बैठना शुभ नहीं होता। लेकिन बृहस्पति जहां देख लेते हैं, जिस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है वो भाव अत्यंत शुभ हो जाता है। जिस ग्रह पर दृष्टि पड़ती है वो ग्रह भी शुभ हो जाता है। अलग अलग ग्रहों पर बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव क्या होता है इसको जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन हानि से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी,
रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जब बृहस्पति की दृष्टि अलग अलग ग्रहों पर पड़ती है तो इसका क्या असर होता है। अगर सूर्य पर दृष्टि पड़े बृहस्पति की तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा मान सम्मान मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार या राज्य की तरफ से सहायता और कृपा प्राप्त होती है। अगर बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े तो मानसिक स्थिरता मिलती है और व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अगर मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी हो जाता है, लेकिन अगर बृहस्पति मंगल को देखे और मंगल भी बृहस्पति को देख ले तो ये वैवाहिक जीवन में उन्माद और उपद्रव पैदा करता है। अगर केवल गुरु जो है मंगल को देख रहा है तो व्यक्ति को साहसी और पराक्रमी बना देता है। बुध पर अगर दृष्टि हो बृहस्पति की तो व्यक्ति काफी बुद्धिमान और काफी ज्ञानी होता है। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में और सलाहकारिता के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं, लिखने पढ़ने के काम में, बोलने में, वाणी में, प्रेजेंट करने में इनको काफी सफलता जीवन में प्राप्त होती है। बाकी ग्रहों पर बृहस्पति की दृष्टि का क्या प्रभाव है ये जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन की समस्या दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का

व्यक्ति को आध्यात्मिक उपलब्धि मिलती है। बृहस्पति अगर शनि को देखेगा तो व्यक्ति को आध्यात्मिक उपलब्धि मिलेगी। कभी कभी बृहस्पति शनि को देखे तो आदमी कानून की पढ़ाई करता है या लॉ के फील्ड में जाता है। राहु और केतु पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो इन ग्रहों के दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। ये ग्रह सामान्यतः अच्छा फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। कुंडली में कोई अशुभ योग बना हुआ है, कोई खराब कॉम्बिनेशन है और उस पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई है तो उस खराब कॉम्बिनेशन का, खराब योग का ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर कुंडली में कोई स्थान दूषित हो गया है, कोई स्थान कमजोर हो गया है और बृहस्पति की दृष्टि वहां पड़ती है तो वो स्थान, वो भाव शुभ हो जाएगा और जीवन में शुभ परिणाम प्रदान करना शुरू कर देगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें। संतान की चिंता रह सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। धन की दशा में सुधार होगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति ठीक होगी। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ होगा। सेहत में सुधार होगा। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति उस भाव को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन जिस भाव को, जिस ग्रह को देखते हैं उसको वो शुभ कर देते हैं, उसको वो बेहतर कर देते हैं। बृहस्पति की तीन दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। इसमें जो सप्तम दृष्टि है बृहस्पति की, वो उतनी ज्यादा शुभ नहीं होती। शुभ तो होती है लेकिन इसके पास उतनी ताकत नहीं होती। पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि बृहस्पति की ज्यादा शुभ होती है। बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कुंडली में मंगल दोष है और बृहस्पति मंगल को देख रहा है तो मंगल दोष भंग हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी या नवम दृष्टि पड़ेगी मंगल के ऊपर तो मंगल के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी घट जाएगी। लेकिन अगर सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो मंगल के हाल पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा।

ऑलमोस्ट मंगल उतना ही डिस्टर्ब करेगा, उतना ही परेशान करेगा। तो बृहस्पति की हालांकि तीनों दृष्टियां पवित्र हैं, लेकिन जो सप्तम दृष्टि है वो सबसे कम पवित्र है, उसके बाद पंचम दृष्टि पवित्र है, और उसके बाद नवम दृष्टि बृहस्पति की सबसे ज्यादा पवित्र है। नवम दृष्टि जिस भाव पर पड़े, जिस ग्रह पर पड़े, वहां बृहस्पति की सारी शुभता आ जाती है। तो आज हमने आपको बताया बृहस्पति की दृष्टि के बारे में और बृहस्पति की दृष्टि की शुभता के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। घर के दरवाजों को खोलते बंद करते समय तड़ाक भड़ाक की आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर घर के दरवाजों को खोलते बंद करते समय आवाज होगी जोर से, तो घर में कलह कलेश और अशांति पैदा होगी। प्रातः काल माता लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अर्पित करिए। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिए। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
8: पुतिन ने दिया सुपर किलर का ऑफर, अदृश्य योद्धा के नाम से दुश्मनों में टेरर, भारत रूस की यारी, चीन पाकिस्तान पर भारी, देखिए रण क्षेत्र रात 10:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: टीआईटी भोपाल जेन ज़ी'ज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
12: फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इनोवेट्स 2026 का किया उद्घाटन। पीएम बोले आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप केंद्र। राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत के नवाचार क्षमताओं को सराहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दिया 926 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। भगवान रामकृष्ण के कॉस्ट्यूम में पहुंचे बच्चों को किया दुलार, मस्तक पर लगाया तिलक। कल से शुरू हो रही नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान। एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे पहला सफर। मेधावी बच्चों का सहारा बने अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना। स्कॉलरशिप के जरिए उठाएंगे पढ़ाई का पूरा खर्च। विजय ने सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए छात्रों की लिस्ट जारी की। तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने रचा इतिहास। ओलंपिक चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा। धीरज कुमकुम ने किया शानदार प्रदर्शन। पांच हजार मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट फारूल चौधरी ने रचा कीर्तिमान। 15:04.26 में निकाला समय। फ्रांस में फारूल ने तोड़ा अपना ही नेशनल रिकॉर्ड।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। हिमालय की गोद में बसा अमरनाथ धाम भगवान शिव के सबसे पावन और रहस्यमयी स्थलों में से एक माना जाता है। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और दिव्यता का अद्भुत संगम है। अमरनाथ धाम की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ स्वयं प्रकृति द्वारा बनने वाला हिम शिवलिंग, जिसे श्रद्धालु बाबा बर्फानी के नाम से पूजते हैं।
1: जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हिमालय की बर्फीली चोटियां, बादलों से बातें करती पर्वत श्रृंखलाएं और समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई, यही है एक ऐसा धाम जहां हर साल प्रकृति स्वयं महादेव का स्वरूप रचती है। ये है बाबा बर्फानी का दिव्य अमरनाथ धाम, एक ऐसी पवित्र गुफा जहां बर्फ से स्वयंभू हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। एक ऐसा तीर्थ जहां पहुंचकर भक्तों को लगता है मानो साक्षात महादेव विराजमान हों। ये पवित्र गुफा करीब 150 फीट ऊंची और विशाल प्राकृतिक संरचना वाली है। हजारों साल से ये स्थान साधकों, संतों और शिव भक्तों की तपस्थली रहा है।

0: अमरनाथ धाम की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ बनने वाला दिव्य हिम शिवलिंग। हर साल प्राकृतिक रूप से गुफा के भीतर बर्फ की बूंदों के जमने से हिमलिंग का निर्माण होता है। श्रद्धालु इसे महादेव का साक्षात स्वरूप मानते हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ हिमलिंग के आकार में परिवर्तन होना भी भक्तों के लिए अद्भुत आस्था का विषय है। अमरनाथ गुफा का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है, बल्कि इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था।
1: भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए महागूढ़ पर्वत पर भगवान गणेश को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो पंचतरणी नामक स्थान पर उन्होंने अपने पांचों तत्वों को छोड़ दिया, जल अग्नि वायु पृथ्वी और आकाश को, और इनको छोड़ करके माता पार्वती के साथ अमर कथा सुनाने के लिए निर्जन स्थान पर चले गए। यह स्थान पांच नदियों का संगम है, पांच सरिताओं का संगम है। यह संदेश है, प्रभु ने यह संदेश दिया कि जब तक हम पांचों तत्वों को पृथ्वी पर नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा मिलन प्रभु से नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन के अपनी आत्मा के अमरत्व को नहीं जान सकते।
0: मान्यता है कि भगवान शिव को ये धाम इसलिए भी प्रिय है क्योंकि यही उन्होंने माता पार्वती को सृष्टि जीवन मृत्यु और अमृतत्व का रहस्य सुनाया था। तभी से यह स्थान मोक्ष मुक्ति और शिव कृपा का सर्वोच्च केंद्र माना गया है। कहा जाता है कि माता पार्वती के साथ ही अमृतत्व के रहस्य को एक तोते और दो कबूतरों ने भी सुन लिया था। इसी के बाद शुक यानी तोता बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गया, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है।
1: जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ निर्जन स्थान पर पहुंचते हैं, अमरनाथ गुफा में पहुंचते हैं और कथा सुनाना आरंभ करते हैं, तो उस दौरान उस गुफा में कबूतर का एक जोड़ा भी कथा का श्रवण कर रहा था। कथा के श्रवण करने के कारण दोनों कबूतर अमरता को प्राप्त कर लेते हैं और अमर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि आज भी कबूतर का यह जोड़ा उस अमरनाथ गुफा में निवास करता है, रहता है। और यह भी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती कबूतर के जोड़े के रूप में उस गुफा में आज भी निवास करते हैं और अपना आशीर्वाद पूरे ब्रह्मांड को प्रदान करते हैं।
0: बाबा बर्फानी को लेकर मान्यताओं की कहानियाँ अनंत हैं। कहा जाता है कि रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ खुद अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। इस साल पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक यानी कुल 57 दिनों तक चलेगी। प्रशासन, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और सुरक्षा बलों समेत कई एजेंसियां यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए व्यापक तैयारियां कर रही हैं। पंजीकरण, सुरक्षा प्रबंधन, आवास, चिकित्सा सुविधाओं और मार्गों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस समय पवित्र गुफा क्षेत्र और यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बर्फ हटाने, ट्रैक की मरम्मत, संचार सुविधाओं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए काम जारी है ताकि यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल पाएं।
2: इस समय हम मौजूद हैं यात्री निवास भवन के बाहर, जो कि जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित है। अगर हम यात्री निवास भवन की बात करें तो लगातार यहां पर साफ सफाई का काम चल रहा है, रंग रोगन का काम चल रहा है, और यहां पर कुछ अगर मरम्मत करने की आवश्यकता है कहीं तो वो कार्य भी लगातार चल रहा है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, देखिए ये यहां पर यात्री निवास भवन है, और यात्री निवास भवन के ठीक स्थान पर जहां मैं खड़ा हूं, अगर मैं इस स्थान की बात करूं, यहीं पर मेरी दाईं ओर जो ये आप ये स्थान देख रहे हैं, दरअसल ये पार्किंग स्पेस है, और यही से प्रतिदिन जब यात्रा शुरू होती है तो प्रतिदिन यहीं से सुबह सुबह जो है यात्रियों का जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। देखिए इस वर्ष की जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है वो 3 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन यात्रियों का पहला जत्था जो है तड़के 2 जुलाई को यहीं से रवाना होगा।
0: अमरनाथ यात्रा केवल भगवान शिव के आराधना का मार्ग नहीं बल्कि माँ पार्वती की श्रद्धा का पीठ भी है। अमरनाथ गुफा में मौजूद पार्वती पीठ को 51 शक्ति पीठों में से एक माना गया है। माना जाता है कि यहाँ भगवती सती का कंठ भागीरथ था। पुराणों में कहा गया है कि बाबा बर्फानी दर्शन के लिए सभी तीर्थों में श्रेष्ठ हैं। कहते हैं जिसने बाबा बर्फानी के एक बार दर्शन कर लिए उसे काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग में दर्शन से 100 गुना और निमिषारण्य में पूजा अर्चना से 1000 गुना पुण्य मिलता है। इसलिए बाबा बर्फानी की महिमा अपरंपार है।

0: अमरनाथ धाम केवल हिमलिंग के दर्शन का स्थान भर नहीं है, ये उस सत्य का प्रतीक है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। ये उस दिव्य ज्ञान का केंद्र है जिसे स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सुनाया था। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा ये धाम शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है, जहाँ पहुँचना आसान नहीं है लेकिन जो पहुँच जाता है उसके जीवन में फिर किसी भी तीर्थ की तमन्ना नहीं रह जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डे टुडे।
1: उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे हैं भगवान केदारनाथ। यहाँ आस्था युगों पुरानी है और भगवान शिव का मंदिर सदियों पुराना। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये वो भूमि है जहाँ कण कण में भगवान शंकर का वास है। ये वो धाम है जहाँ आकर भक्तों को असीम शांति और परम आनंद मिलता है। कहा जाता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन से समस्त पापों का शमन हो जाता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।

0: उत्तराखंड में हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बादलों को चीरती हुई गूंजती है आस्था की आवाज, हर हर महादेव, जय बाबा केदार। यही है महादेव का सबसे प्रिय धाम केदारनाथ। बादलों की गोद में बसा भगवान शिव का ये वो धाम है जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यहाँ आस्था के आगे हर चुनौती बौनी साबित होती है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये वो भूमि है जहाँ प्रकृति और परमात्मा का अद्भुत संगम होता है, जहाँ पहुंचकर हर श्रद्धालु अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना और एक अद्भुत शांति का अनुभव करता है।
1: उम्मीद नहीं थी इतने बढ़िया दर्शन होंगे, पर कोई चमत्कार हुआ, एकदम से चले गए अंदर और दो बार जल चढ़ा के आए।
2: अरे वाह,
1: एक बार भी दो बार।
3: जय श्री केदारनाथ।
4: एकदम अद्भुत, फर्स्ट टाइम आए हम यहाँ पे, लेकिन ऐसा पहले जब निकले हम गौरीकुंड से तो ऐसा लग रहा था कहाँ जा रहे हम, बहुत थकान महसूस ये वो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थकान ये वो सब मतलब ऐसा न्यूट्रल हो गया आदमी, और फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि एकदम स्वर्ग में आ गए हम। जय श्री केदार।
0: कहते हैं कि भगवान शिव को हिमालय अत्यंत प्रिय है, इसलिए हिमालय की इस पवित्र जगह केदारनाथ को उन्होंने अपना निवास बनाया। पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे तो शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे। वे बैल का रूप धारण कर हिमालय की ओर चले गए, लेकिन पांडवों ने उनका पीछा किया। तब महादेव ने पांडवों को बैल के कुबड़ के रूप में दर्शन दिए। यही वजह है कि केदारनाथ में शिवलिंग सामान्य गोलाकार स्वरूप में नहीं, बल्कि बैल के कुबड़ जैसी त्रिकोणीय आकृति में है।
2: बाबा केदार जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बाबा केदार जिनके बारे में कहा जाता है कि सबसे ऊंचाई, यानी कि जितने भी बाबा के ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। 11,500 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। आपको हम बता दें यहाँ पर स्कंद पुराण का भी वर्णन है और कई ऐसे हमारे वेद हैं और शास्त्र हैं जिसमें कई कथाएं इस जगह को लेकर जो है वो वर्णित है। स्कंद पुराण में कहा गया है केदारनाथ शिवलिंग सबसे फलदायी है।
0: केदारनाथ धाम के शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात जो स्वयं प्रकट हुआ हो। शिव पुराण के अनुसार मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराज जन्मेजय ने कराया था, जबकि आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया। ये धाम सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, सामने मंदाकिनी का पावन प्रवाह और बीच में पत्थरों से निर्मित ये भव्य मंदिर, ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं महादेव हिमालय के सिंहासन पर विराजमान हो।
5: ये 11वां ज्योतिर्लिंग है अपने केदार बाबा का, तो इसलिए ये 11वां ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसका महत्व है। यहाँ आने से हर सभी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बाबा का साक्षात चमत्कार है, और लोगों ने देखा भी है, 2013 में भी देखा, साक्षात चमत्कार है बाबा का।

0: त्रिगाम्बं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमी वंदना मृत्यु मोक्षर्ममतम।
1: केदारनाथ धाम की विशेषता है इसकी अनूठी परंपरा। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की वजह से मंदिर का कपाट सर्दियों में बंद कर दिया जाता है। हर साल अप्रैल या मई के महीने में कपाट खुलते हैं और अक्टूबर या नवंबर में बंद हो जाते हैं। कपाट बंद होने का मतलब ये नहीं कि केदारनाथ धाम में पूजा रुक जाती है। मान्यता है कि 6 माह तक मनुष्य बाबा केदार की पूजा करते हैं और शीतकाल में देवता स्वयं उनकी आराधना करते हैं। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो बाबा की उत्सव डोली ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचती है, जहां पूरे शीतकाल में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। फिर जब गर्मियों में कपाट खुलते हैं तो लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं।
2: ये धाम युगों युगों से लोग यहाँ कर्म फल से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि ये क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं स्वयं। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया है।
1: जो भी भक्त केदारनाथ पहुंचता है वो केवल दर्शन करके नहीं लौटता, वो अपने साथ एक विशेष अनुभूति लेकर लौटता है। श्रद्धालु बताते हैं कि धाम में पहुंचते ही उन्हें एक अद्भुत शांति, सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य शक्ति का एहसास होता है, मानो महादेव स्वयं उनके मन के सारे बोझ हर लेते हों।
2: यहाँ आप जैसे ही पहुंचते हैं एक ऐसी अनुभूति होती है, आपको लगता है कि ऐसे लोक में आप आ गए हैं जहां पर परम ब्रह्म जो है उनका एहसास होता है।
1: 11,000 फीट की ऊंचाई, हाड़ कपा देने वाली ठंड और दुर्गम पहाड़ियों का रास्ता, लेकिन जब महादेव का बुलावा आता है तो ना मौसम बाधा बनता है और ना ही थकान। अगर कुछ मायने रखता है तो सिर्फ अपने आराध्य के प्रति आस्था। केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं है, ये विश्वास है, समर्पण है, उस शक्ति का अनुभव है जो जीवन के हर संघर्ष में इंसान को आगे बढ़ाने का साहस देती है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच विराजमान बाबा केदार मानो हर भक्त को यही संदेश देते हैं कि कठिनाइयां चाहे कितने भी बड़ी क्यों ना हो, यदि विश्वास अडिग हो तो मंजिल जरूर मिलती है। कहते हैं भगवान केदारनाथ के दर्शन से समस्त पापों का शमन हो जाता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। केदारनाथ धाम से श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे।
3: अवंतिका नगरी उज्जैन सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई शहर नहीं, बल्कि समय चक्र को नियंत्रित करने वाली महाकाल की जीवंत राजधानी है। तड़के होने वाली भस्म आरती की भस्म से लेकर महाकाल लोक के आधुनिक वैभव तक ये दरबार गवाह है कि जो समय के साथ ढल जाए वो संसार है और जो समय को भी अपने वश में कर ले वही महाकाल है। आज यही आस्था उज्जैन की प्रगति और समृद्धि का नया आधार बन चुकी है।

0: सनातन संस्कृति में भगवान शिव के अनेक रूप हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन में बाबा भोलेनाथ जिस रूप में विराजते हैं वो अद्वितीय है, अलौकिक है। भगवान शिव का ये रूप है राजाधिराज महाकालेश्वर का। इन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है। मान्यता है कि सृष्टि में जब सब कुछ थमता है तब भी महाकाल का अस्तित्व रहता है। वे समय के नियंता हैं, मृत्यु के विजेता हैं और भक्तों के संकट हरता है। भारत का दिल मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन, यहाँ भक्तों के मन में पूजा के स्वर में हर सड़क हर गली हर नुक्कड़ पर दिखाई देती है शिव के प्रति अगाध आस्था। इतिहास गवाह है, समय बदला शासन बदले, लेकिन उज्जैन में अगर कुछ अडिग है तो वो है अवंतिका नगरी के राजा महाकाल का दरबार। ये मंदिर केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता बल्कि हजारों सालों की संस्कृति का भी साक्षी है। मान्यता है कि यहाँ विराजमान भगवान शिव स्वयंभू हैं और दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं। यही विशेषता महाकालेश्वर को बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग पहचान देती है।
1: दक्षिण की दिशा समृद्धि की दिशा है, दक्षिण की दिशा काल की दिशा है और काल अर्थात महाकाल यहाँ समय, यह एक तरह से यह समय का निर्धारण यहाँ से किया जाता है और दक्षिण की दिशा होने के कारण पूर्व में बाबा महाकाल की जलाधारी गई है। दक्षिण की समृद्धि की दिशा काल की दिशा कहलाती है, इसलिए इसे महाकाल कहा जाता है।
0: जहाँ भस्म से श्रृंगार होता है वही मृत्युंजय का दरबार होता है। महाकाल मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है इसकी विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती। हर दिन तड़के होने वाली इस आरती में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु शामिल होते हैं। बॉलीवुड और क्रिकेट जगत से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने उनके दरबार में हाजिरी लगाती हैं।
2: हम करीबन 5-10 साल से आ रहे हैं पैदल महाकाल दर्शन करने के। बहुत प्यारा रूप है उनका, उनके दर्शन होते ही हमारी सब थकान उतार जाती है। धूप में बारिश में सब में हम पैदल चल के आते, सब बाबा की कृपा है। बोलिए महाकाल महाराज की जय।
0: महाकाल मंदिर में हर दिन अलग अलग स्वरूप में बाबा का श्रृंगार किया जाता है। हर श्रृंगार का अपना आध्यात्मिक महत्व होता है।
1: देखिए ये अनेक प्रकार के श्रृंगार होते हैं, इस श्रृंगार की कोई सीमा नहीं है, कोई समय नहीं है। जब पुजारी श्रृंगार करने के लिए चालू करता है तो उसके मन में जो भगवान भाव दे देता है वही भाव श्रृंगार के अंदर आ जाते हैं। कभी राजा के रूप में आ जाते हैं, कभी हनुमान जी के रूप में आ जाते हैं, कभी योगी के रूप में आ जाते हैं, कभी भगवान शिव के साथ में माता पार्वती विराजमान हो जाती है। ये उस समय जो भावना आती है चंद्रमौलेश्वर के स्वरूप में जो भावना आ जाती है, जैसा प्रारंभ में प्रातः पहला हाथ बाबा पे घूम जाता है बस उसी पे बाबा का श्रृंगार चालू हो जाता है। पहले से किसी प्रकार का इसमें यह नहीं रहता है कि आज हम जाकर ये बनाएंगे या ये स्वरूप होगा बाबा का कि वो स्वरूप होगा।
0: महाकाल मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि उज्जैन की अर्थव्यवस्था की धुरी भी बन चुका है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। इन अवसरों पर लाखों भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं, जिससे मंदिर के आसपास फूलमाला, प्रसाद, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म से जुड़े हजारों लोगों की रोजी रोटी चलती है। वैसे तो महाकाल की नगरी में हर दिन उत्सव का दिन है, लेकिन सबसे खास मौका होता है जब बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। राजा के स्वरूप में महाकाल प्रजा को दर्शन देते हैं। इस पावन मौके पर सड़कों पर उत्सव का अनोखा नजारा देखने को मिलता है। महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिली है। ये देश के सबसे बड़े और अलौकिक आध्यात्मिक गलियारों में से एक है। यही वजह है कि त्योहारों और विशेष अवसरों पर शहर में कारोबार कई गुना बढ़ जाता है। काल के थपेड़ों को मात देकर आज भी अपनी भव्यता से दुनिया को चमका रहे हैं महाकाल। सिर्फ एक दरबार नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। इसलिए कहा जाता है कि काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त है महाकाल का। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे।
3: आइए आपको लेकर चलते हैं भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी, जो सिर्फ बदल नहीं रही बल्कि अपनी सदियों पुरानी आध्यात्मिक आत्मा के साथ एक नए वैभव को जी रही है। गंगा की लहरों से लेकर बाबा के गर्भगृह तक फैला काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर इस बात का गवाह है कि जब आस्था को आधुनिकता का साथ मिलता है तो प्रगति के बंद द्वार भी खुल जाते हैं।

0: जहाँ जीवन का अंत नहीं अनंत की शुरुआत होती है, जहाँ काल भी महाकाल के आगे शीश झुकाता है, वही है मोक्ष की नगरी काशी। यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर और भक्तों के दिलों में डमरू और मंत्रोच्चार की मंगल ध्वनि गूंजती है। काशी विश्वनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ विराजमान ज्योतिर्लिंग को स्वयं भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना गया है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और प्राचीन तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ श्रद्धालु 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती से विवाह के बाद जब भगवान शिव ने अपने रहने के लिए ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्थान की खोज की, तब उन्होंने काशी को चुना। एक ऐसी नगरी जो सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की चेतना है काशी। पुराणों में कहा गया है कि प्रलय के समय जब समस्त संसार नष्ट हो जाता है तब भी काशी का अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि इसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। महादेव के त्रिशूल पर टिकी वो नगरी है जिसका कायाकल्प अब काशी विश्वनाथ धाम के रूप में पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है।
1: पिछले 13 साल से पहले बाद हम आ रहे हैं।
2: उस समय में
1: बहुत फर्क है, बहुत। अंदर का जो आर्किटेक्चर है, जो अभी नया लुक है, इतना बढ़िया, एप्रिशिएबल।
2: और
1: फैसिलिटीज बढ़िया है, पानी का सुविधा है,
2: और
1: हाँ शेड है, मैट भी है।
0: अब काशी सिर्फ सावन या महाशिवरात्रि पर नहीं जागती, यहाँ हर दिन एक उत्सव है। आंकड़े गवाह हैं कि धाम के बनने के बाद हर साल भक्तों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। वीकेंड्स हो या त्योहार, लाखों की भीड़ बाबा के दर्शन के लिए खिंची चली आ रही है।
3: यह भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो काशी में काफी मात्रा में, मतलब दुगुना क्या बोले उसको, चौगुने मात्रा में यहाँ यात्री आए दिन आते हैं, रोज प्रतिदिन आने का मतलब, जैसे जिस पूर्व में जैसे 1000 यात्री, अगर 1,00,000 यात्री आते थे, तो इस समय रोज रेगुलर कम से कम 5 से 6 लाख यात्री रोज काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, और उसके बाद माँ गंगा का दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, नौका विहार भी कर रहे हैं।
0: विश्वनाथ धाम में जब आस्था का ऐसा समंदर उमड़ता है तो वो अपने साथ समृद्धि भी लाता है। भक्तों के इस रेले ने काशी के व्यापार को नए पंख दे दिए हैं। चाहे वो बनारसी साड़ी का करघा हो, मल्लाहों की नावें हो, होटल इंडस्ट्री हो, या फिर पूजा पाठ से जुड़े छोटे दुकानदार, काशी का आर्थिक ढांचा आज बाबा की कृपा से चमक रहा है। आस्था का ये नया कॉरिडोर रोजगार का भी सबसे बड़ा जरिया बन चुका है।
4: मंदिर कॉरिडोर बनने से यहाँ के दुकानदारों को बहुत सारे फायदे हुए हैं, बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं, और ये गवर्नमेंट और प्रशासन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो इतने गर्मी में रहने के बावजूद सारे श्रद्धालुओं की विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ पे मतलब कूलर लगाए गए, मैट लगाए गए, ताकि कोई भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े।
0: अक्सर आधुनिकता के पीछे अध्यात्म कहीं छिप जाता है, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम ने पूरी दुनिया के सामने तकनीक और आध्यात्मिक संतुलन का एक बेजोड़ उदाहरण पेश किया है। जो मंदिर कभी तंग गलियों से घिरा था, वो अब गंगा की लहरों से सीधे गर्भगृह तक एक भव्य कॉरिडोर के रूप में जुड़ा है। अब भक्त गंगा में स्नान कर सीधे जल लेकर बाबा का जलाभिषेक करने बिना किसी बाधा के पहुँच सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काशी क्षेत्र को आनंद कानन यानी आनंद का वन कहा जाता है, और बाबा विश्वनाथ इसके केंद्र हैं। ये शिव और शक्ति का आदि स्थान है। काशी विश्वनाथ मंदिर की महिमा का बखान शिव पुराण में भी किया गया है। मान्यता है कि श्रद्धालु अगर हर दिन सुबह उठकर केवल बाबा विश्वनाथ के नाम का स्मरण भी कर लेता है, उसके जीवन के सारे संकट वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे सूर्य के उगने से अंधकार। सदियों से अचल, समय से परे काशी विश्वनाथ धाम आज नए रूप में सजकर मुस्कुरा रहा है। ये महादेव का वो धाम है जो मुक्ति भी देता है और जीवन को प्रगति भी। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ काशी विश्वनाथ धाम आज पूरी दुनिया को अपनी दिव्यता से सराबोर कर रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: भगवान शिव के प्रमुख धामों पर हमारी इस खास पेशकश में बिक लेता ही, बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार।
6: Diehard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अनोखी पहचान बनाई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जानवी कपूर है। जी हाँ, जानवी कपूर। बीते 4 जून को जानवी कपूर की पेद्दी फिल्म रिलीज हुई तो जानवी के किरदार को लेकर हंगामा मच गया। लोग फिल्म के निर्देशक बुच्ची बाबू की आलोचना करने लगे कि उन्होंने जानवी के फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाई किया है। जानवी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचता रहा लेकिन वो शांत रही। आखिरकार बुच्ची बाबू को फिल्म से उन दृश्यों को हटाना पड़ा।

0: जो महफिल में बड़े बेपरवाह से अंदर से वो गुजरते हैं गहरी किसी राह से। इस जुमले में मौजूदा दौर की दिलकश अदाकारा जाह्नवी कपूर की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान जज है। 4 जून को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई बुची बाबू की पेदी फिल्म ने पहले ही हफ्ते में बेशक 345 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया, लेकिन जबरदस्त कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को भी ट्रिगर कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर बौद्धिक गलियारों तक में चर्चा गर्म हो गई कि पेदी में जाह्नवी कपूर के किरदार को अनावश्यक रूप से सेक्सुअलाइज किया गया है, उनके फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। दरअसल पेदी में जाह्नवी कपूर ने अच्छी अम्मा का किरदार निभाया है। फिल्म के निर्देशक बूची बाबू के मुताबिक अच्छी अम्मा का किरदार खास तौर से फिल्म के हीरो रामचरण के किरदार पेदी के बदलाव को दिखाने के लिए गढ़ा गया है। कह सकते हैं कि इस तर्क की आड़ में बूची बाबू ने जाह्नवी कपूर की एक्टिंग से ज्यादा उनके फिगर को ग्लैमराइज कर दिया। जाहिर है महिला अधिकार संगठनों से लेकर नेटिजन्स तक ने सोशल मीडिया पर फिल्म के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। भारी विरोध को देखते हुए बूची बाबू को आखिरकार ऐसे सेंसुअलाइज दृश्यों को फिल्म से हटाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बूची बाबू ने अपना पक्ष रखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पेदी के कुछ दृश्यों पर मिली प्रतिक्रिया को मैं गंभीरता से लेता हूं। मैं पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगह महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाने का नहीं था। अगर फिल्म का कोई हिस्सा ऐसा लगा है तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, उनकी चिंताओं को समझता हूँ और खुले दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने उन दृश्यों को बदलने का फैसला किया है जो आपत्तिजनक लगे हैं। साउथ की फिल्मों में हीरोइन के फिगर को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड करने का चलन आज का नहीं है, दक्षिण भारत के फिल्मों का ये पुराना ट्रेंड है। फिर भी जया बच्चन से लेकर आशिकी फेम अनु अग्रवाल, करीना कपूर और नेशनल अवार्ड विनर नित्या मेनन तक ने जाह्नवी कपूर को सेक्सुअलाइज करने का किसी न किसी रूप में कड़ा विरोध किया। पर कमाल तो यह है कि जिस अभिनेत्री के किरदार को लेकर इतना ज्यादा बच क्रिएट हुआ, उसने पूरे मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बताया कि इस फिल्म को करने का फैसला उन्होंने क्यों लिया।
1: I think apart from just my character, when I heard the script, I felt very strongly about what the film was saying, how much it meant to our director Butchi sir, and I think the politics, the social commentary, the cultural implications of what a story like this could do, all of these things resonated with me very deeply. So for those reasons alone, I wanted to be a part of this film.
0: Golden Spoon culture mein pali badi star kid ka khud ke bare mein flare up hui itni badi controversy ko lekar itna mature reaction aapko hairani mein dal sakta hai. Darasal Boni Kapoor jaise bade film nirmata और श्रीदेवी जैसी स्टार अदाकारा की दिलकश बेटी जाह्नवी की असल जिंदगी वो नहीं है जिसे पेदी के जरिए देखा और दिखाया गया। 4 जून को सिने प्रेमी सिल्वर स्क्रीन पर जब पेदी फिल्म की अच्छी अम्मा का ग्लैमरस लुक देखकर मदहोश हो रहे थे, उसी समय ये अभिनेत्री नंगे पांव 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा और 3,550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर पहुंच रही थी। अगाध श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश के मंदिर में माथा टेक कर फिल्म की सफलता का आशीर्वाद मांग रही थी।

0: 4 जून को जिस समय सिल्वर स्क्रीन पर अच्छी अम्मा के सेंसुअल लुक्स को देखकर ऑडियंस क्रेजी हो रहे थे, उस वक्त जाह्नवी विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी में पूरी गरिमा के साथ भक्ति और अध्यात्म का कठिन रास्ता तय कर रही थी। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी में जाह्नवी की अगाध आस्था का एक छोर उनकी माँ श्रीदेवी की बेपनाह यादों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीदेवी न सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके पर बालाजी के दरबार में जाती थी, बल्कि जीवन के बिजी शेड्यूल के दौरान भी जब मौका मिलता तो उनका जाप करती थी। जाह्नवी तिरुपति बालाजी के प्रति अपनी माँ की श्रद्धा आस्था और समर्पण से वाकिफ थी, इसीलिए 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी के मृत्यु के बाद माँ के हर जन्मदिन पर 13 अगस्त को वहाँ जाने का फैसला कर लिया।
1: आई थिंक तिरुपति से स्पेसिफिकली एक अलग जुड़ाव है। आई थिंक बचपन से मैं सुनती आई हूँ मम्मा के मुँह से के उनका भी एक अलग कनेक्शन रहा है बालाजी के साथ। हर बार उनका नाम जापती थी, नारायण नारायण नारायण, और कहती रहती थी कि हर साल उनके बर्थडे पर जब वो काम कर रही थी तो वो तिरुपति चढ़कर जाती थी। और शादी के बाद उन्होंने बंद कर लिया था, तो उनके गुजरने के बाद मैंने ठान लिया था कि हर साल उनके बर्थडे पर मैं जाऊंगी। तो जब पहली बार गई थी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी और बहुत शांति मिली मन में। तो उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि हर बड़े अवसर के पहले मैं तिरुपति चढ़ूंगी।
0: जाह्नवी और श्रीदेवी का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी के परंपरागत संबंधों तक सीमित नहीं है। श्रीदेवी के गुजर जाने के 8 साल बाद भी उनकी यादें, उनका स्नेह, प्यार सब जाह्नवी की जिंदगी की प्रखर धूप में छायेदार वृक्ष की सुरभित बयार की तरह सुखद एहसास करा जाता है। ये एक ऐसा अलौकिक रिश्ता है जहां एक के जाने के बाद भी दूसरे को उसके आने का इंतजार है।
1: आई वॉन्ट टू रिमेंबर द गुड थिंग्स। तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज में बात करती हूँ उनके बारे में और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही है। मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था। आई थिंक इट मेक्स मी फील लाइक मे बी लाइक आई डोंट नो शी इज ट्रैवलिंग समवेयर एंड शी विल कम बैक।
0: कुछ तो अलौकिक है माँ बेटी के रिश्ते में। जाह्नवी के जन्म के बाद श्रीदेवी आनंद की अलौकिक अनुभूति से सराबोर हो उठी थी। उन्हें तब ये नहीं लगा था कि उनकी गोद में कोई नन्ही नई मेहमान आई है, बल्कि ये लगा था मानो सदियों पहले बिछड़ा कोई अपना ही दोबारा से लौट कर दामन से लिपट गया है। श्रीदेवी ने अपनी बेटी का जाह्नवी नाम भी किसी खास एहसास से भर कर दिया था। दरअसल जाह्नवी 1997 में रिलीज हुई जुदाई फिल्म का एक करेक्टर था, इत्तेफाक से जिसे श्रीदेवी ने नहीं बल्कि उर्मिला मातोंडकर ने निभाया था। कमाल देखिए कि जुदाई 28 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी और जाह्नवी का जन्म उसके ठीक 6 दिन बाद 6 मार्च 1997 को हुआ। आपको बता दें कि जाह्नवी गंगा नदी का एक पर्यायवाची शब्द है जो अपनी पवित्रता और निर्मलता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीदेवी अपनी बेटी में गंगाजल जैसी पवित्रता और निर्मलता का भाव रखती थी। 80 और 90 के दशक की मेगा स्टार श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जीवन में जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा, जो परेशानी उन्हें उठानी पड़ी, वो उनकी बेटियों को उठानी पड़े।
1: वो हमेशा कहती थी मुझे कि मैंने जिंदगी भर मेहनत की है 4 साल की उम्र से ताकि आप मेरे दोनों बच्चे आराम की जिंदगी जिए। ये जिंदगी वो मानती थी कि हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम सख्त किस्म के इंसान तो है नहीं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो उनका ये सपना था कि मैंने इतना कुछ किया है ज़िंदगी में और अगर मैं मेरी बेटियों को आराम की ज़िंदगी नहीं दे पा रही और वो खुद इस चीज़ में कूद रहे हैं तो मैंने किया है क्या है लाइफ में। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर

0: And I think that it's ever since I was a kid, mom and dad have like drilled in my head, you need to be dedicated and be focused. So like you said, there's no substitute for hard work.
1: जानवी डॉक्टर बनने की माँ की ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर पाई, लेकिन हर कसौटी पर अच्छा इंसान बनने की माँ की इच्छा पूरी करने की भरसक कोशिश आज भी करती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर या एक्ट्रेस के बीच एक हेल्दी कंपटीशन तो चलता ही रहता है, लेकिन कई बार तो अनहेल्दी भी बन जाता है। पर जानवी इस अनहेल्दी कंपटीशन से कोसों दूर हैं। उनसे ये पूछिए कि आप किस एक्ट्रेस को अपनी चुनौती मानती हैं, तो वे सह अस्तित्व की बात कह के सबका मुंह बंद कर देती हैं।
0: ये चुनौतीपन क्यों, क्योंकि हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? नहीं, ये शायद दूसरे लोगों के दिमाग में है। मुझे ऐसे लगता है कि हम सब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं, और हम सब एक दूसरे के लिए खुश भी है और हो सकते हैं, और एज लॉन्ग एज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ, मुझे यू नो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, मैं एज एन ऑडियंस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए।
1: दरअसल जानवी से सवाल सारा अली खान और अनन्या पांडे को लेकर पूछा गया था। जानवी की मैच्योरिटी, उनकी तरबियत, मानवीय संवेदना, सोच और संस्कार आज की जेंजी या मिलेनियल्स के लिए अद्भुत प्रेरणा है। एक ऐसी लड़की जो इंडस्ट्री की अत्यंत प्रभावशाली फैमिली का हिस्सा है, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ उसे मिल सकता था, पर श्रीदेवी और बोनी कपूर की इस लखते जिगर ने पारिवारिक साये से निकलकर मेहनत और लगन से अपनी शख्सियत को गढ़ा है।
2: जानवी का अपनी मां श्रीदेवी से रिश्ता अनोखा और अलौकिक है। श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जो कष्ट उन्होंने झेला है वही उनकी बेटियों को भी झेलना पड़े, लेकिन जानवी ने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि वो अपनी शख्सियत को संघर्ष की भट्टी में तपकर गढ़ेंगी। इसलिए उन्होंने अपने को स्थापित करने के लिए दूसरे कलाकारों से कहीं ज्यादा मेहनत की।

0: बेदी फिल्म से अलग तरह से सुर्खियों में आई जाह्नवी कपूर का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मुख्तसर से फिल्मी करियर में उन्होंने ऑडियंस के साथ ही क्रिटिक्स को भी अपने अभिनय के दम पर गहरे प्रभावित किया है। 6 मार्च 1997 को मुंबई में पैदा हुई जाह्नवी को जन्म से ही अभिनय के संस्कार मिलने लगे थे। अभिनय की बारीकियां उन्होंने बेशक अमेरिका के लॉस एंजलिस के द ली स्टारबर्ग थिएटर एंड फिल्म्स इंस्टीट्यूट से सीखा, लेकिन उसका ककहरा उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी और पिता बोनी कपूर से होश संभालने के बाद से ही सीखना शुरू कर दिया था।
1: Actually, in my family, it's the only thing that we discussed. It's the only thing that we knew as kids. Every time we'd, you know, sit at home and have a conversation with one another, it was always about films. Or even when we'd go out to spend time together, we'd go out to watch a movie, and you know, it was always a conversation at home. Holidays were always either dad's shooting schedules or mom's shooting schedules. So it was, we've grown up in that environment.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीदेवी और बोनी कपूर जैसी इंडस्ट्री की नामवर हस्तियों की बेटी होने की वजह से जाह्नवी को सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक पाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मनीष मल्होत्रा कपूर परिवार के फैमिली फ्रेंड थे, जो इत्तेफाक से करण जौहर जैसे इंडस्ट्री के स्टालवार्ड के भी करीबी थे। मनीष जाह्नवी को बचपन से जानते थे, लिहाजा उनके भीतर के पोटेंशियल को लेकर वो अक्सर करण से चर्चा करते रहते थे। करण जौहर निर्देशक शशांक खेतान के साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें उन्हें भारतीयता से भरी हुई एक हसीन और नए चेहरे की तलाश थी। इस दौरान जाह्नवी मनीष मल्होत्रा के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस आने जाने लगी थी। इसी बीच शशांक खेतान की नजर जाह्नवी पर टिक गई और उन्होंने बिना किसी लांग लपेट के फैसला कर लिया कि धड़क के लिए जिस लड़की की तलाश थी उसके लिए जाह्नवी पूरी तरह फिट हैं। उसके बाद जाह्नवी को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया।
1: मैं जाती थी उनके ऑफिस, आई थिंक 3-4 सीन्स दिए उन्होंने मुझे, और मैं जाके रट लेती थी और फिर परफॉर्म करती थी उनके लिए।
0: धड़क साइन करने के बाद जाह्नवी को एक अज्ञात डर सताने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि सेट पर लोग यही सोच रहे होंगे कि स्टार की ढोने की वजह से ही उन्हें काम मिला है। इस डर की वजह से जाह्नवी इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो गईं। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है

0: जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मुझे जो मिल रहा है दरअसल मैं उसके लायक नहीं हूँ। इसीलिए वो सेट पर दूसरे कलाकारों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करती थी और पूरी यूनिट के साथ काफी हम्बल भी रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी को सेट पर आने से भी रोक दिया था ताकि कोई ये ना कहे कि अपने जमाने के स्टार माँ बेटी की कमतरी को कवर करने के लिए आई हैं।
1: मेरे लिए ऐसा था कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और इसलिए लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, अब मैं ये अपने आप करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मदद मत कीजिएगा, आप सेट पे मत आइएगा प्लीज। तो मैं उनको सेट से दूर रखती थी।
0: माँ श्रीदेवी को सेट से दूर रखकर जानवी धड़क की शूटिंग के दौरान पूरी जान झोंक रही थी ताकि प्रीमियर में माँ जब बेटी की एक्टिंग देखें तो आह्लाद से ओतप्रोत हो जाए। पर जानवी की उम्मीद की कश्ती जब साहिल के करीब पहुंचने ही वाली थी उसी वक्त अचानक आए भयानक तूफान ने सतरंगे सपनों की रानाइयों को तहस नहस कर दिया। धड़क फिल्म की रिलीज से करीब 5 महीने पहले 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथ टब में दुर्घटनावश डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई। एक झटके में जानवी की जिंदगी सन्नाटे में चली गई। धड़क फिल्म के प्रमोशन का उत्साह भी नहीं बचा। उस दौरान श्रीदेवी को लेकर जानवी से जब कोई सवाल पूछा जाता तो दर्द की कशिश में ऐसे डूब जाती कि एक गहरी खामोशी के सिवा दूसरा कोई जवाब निकल ही नहीं पाता था।
1: उनके बारे में शायद अभी ज्यादा बात करने लगी हूँ बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप आई लाइक टॉकिंग अबाउट, आई फील लाइक आई एम रिमेम्बरिंग हर, यू नो। लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत होता था। आई थिंक जब मैं धड़क प्रमोट कर रही थी there wasn't a lot of time that had passed. वो बहुत फ्रेश था मेरे दिमाग में सब कुछ और मैं भाग रही थी मेरे सच्चाई से और मैं काम को इस्तेमाल कर रही थी, सो दैट वॉज माई एस्केप। और जब भी कोई भी प्रोफेशनल सिनारियो में वो मुझे रिमाइंड करते थे कि शी इज़ नो मोर, आई थिंक मैं बिल्कुल शट, लाइक आई जस्ट कुडंट डील विद इट।
0: 20 जुलाई 2018 को रिलीज हुई धड़क में पार्थवी सिंह राठौर नाम की मध्यम वर्गीय लड़की के किरदार को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया, लेकिन जानवी अब भी मां की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी। करीब 2 साल तक जानवी पर्दे पर नजर नहीं आई। 12 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में जानवी धड़क की पार्थवी के उलट एक अलग ही मिजाज और अंदाज में दिखी। एयरफोर्स की पायलट गुंजन सक्सेना के वास्तविक जीवन पर बनी फिल्म में जानवी ने उनकी जिंदगी की बारीकियों को इतनी जहनियत के साथ पर्दे पर उकेरा कि दर्शक और समीक्षक दोनों अभिभूत हो गए। दरअसल मां की मौत के सदमे से उबरने की जद्दोजहद में जानवी के दिलो दिमाग में ये एहसास गहरे उतर गया कि जिंदगी खुद में एक कड़ा इम्तहान है और इस इम्तहान से भागना समाधान नहीं है।
2: I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that jitna bhi mushkil ho, ye daur ko bhi guzarna hi hai. Aur jab ye daur guzrega, aap aur bhi you'll emerge out of it stronger. Aap aur bhi usse ubhar ke nikloge.
0: इस फलसफे को अपनाने के बाद जानवी ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी। मिली, बवाल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मिस्टर एंड मिसेज माही, देवरा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों के जरिए जानवी ने इंडस्ट्री में अपनी मां की कमी को भरसक पूरी करने की कोशिश की है।
3: तो बंदे में है दम में आज आपने जानवी कपूर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज स्टूडियो।
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases and more, That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: No.
6: Oh, no.
7: Welcome to Get Real.
5: I got something to say.
7: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
6: Oh, my God.
5: It's got to be deliciously desperate.
8: Why do these girls forgive him?
9: Well, she has a soft spot for troubled men.
5: Boo, bloody.
7: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
6: Love runs deeper than we know.
7: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
10: खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
14: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
13: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
12: गुड न्यूज टुडे
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
14: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
13: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
12: गुड न्यूज टुडे
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.

0: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
9: टीआईटी भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
10: कल बाबा नीम प्योरी महाराज के कैची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा महाप्रसाद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो रही कमर्शियल फ्लाइट, कल लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान। एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे सफर। एक 180 मेधावी बच्चों का सहारा बने अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, स्कॉलरशिप के जरिए उठाएंगे पढ़ाई का पूरा खर्च। विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की छात्रों की लिस्ट। भारतीय सेना ने ड्रेस रेगुलेशन में किया बड़ा बदलाव, यूनिफॉर्म से हटाए अंग्रेजी दौर के कई निशान, परेड के दौरान तलवार लेकर चलना भी अनिवार्य नहीं। तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने रचा इतिहास, ओलंपिक चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा, धीरज कुमकुम ने किया शानदार प्रदर्शन। पांच 5,000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने रचा कीर्तिमान, 15:04.26 का निकाला समय, फ्रांस में पारुल ने तोड़ा अपना ही नेशनल रिकॉर्ड। फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इनोवेट्स 2026 का किया उद्घाटन, पीएम बोले आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप केंद्र, राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत की नवाचार क्षमताओं को सराहा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

सुकोई 30 MKI, मैग 29 फाइटर जेट, MI जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर, S-400 जैसा बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम, INS विक्रमादित्य जैसा विशाल एयरक्राफ्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और रूस रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। दुनिया में बहुत उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती कभी भी रुकी नहीं, कभी भी थमी नहीं। आज भी रूस भारत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है।

0: रूस ने भारत को अपना पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट ऑफर किया है। साथ ही रूस ने भारत को ये प्रस्ताव भी दिया है कि वो अपने फाइटर जेट Su-57 की टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा।
1: भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है।
0: रूस की पेशकश सिर्फ विमान बिक्री तक सीमित नहीं है। प्रस्ताव में संवेदनशील सोर्स कोड तक पहुंच, व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की जरूरतों के अनुरूप दो सीटों वाले Su-57D वेरिएंट के विकास की संभावना भी शामिल है। ये भारत को स्वदेशी हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स को बिना किसी विदेशी मंजूरी के विमान में इंटीग्रेट करने की स्वतंत्रता देता है। रक्षा क्षेत्र में इस रफ्तार का तकनीकी हस्तांतरण बेहद दुर्लभ माना जाता है।

0: देखा जाए तो समय में रशिया के साथ जो बातचीत चल रही है, जहां पर SU-57 का सोर्स कोड TOT यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना, भारत में ही व्यापक प्रोडक्शन करना और देश की जरूरत के हिसाब से 2-सीटर SU-57 का ऑफर देखें तो कई तरह से अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके द्वारा आज जो भारत के अंदर ही प्रोडक्शन होगा, HAL इसमें समर्थ है कि रशिया के द्वारा ऑफर की हुई टेक्नोलॉजी को हम बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करके बना सकते हैं। दूसरी बात, ये ट्रस्टेड है, टेस्टेड है। तीसरी बात यह है कि ये आज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से और कोड ट्रांसफ़र की वजह से आज हमारा जो अपना है अस्त्र है, रुद्रम है, जो मिसाइल सिस्टम है, सर्विलेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, इसको इसके ऊपर इंटेग्रेट कर सकते हैं।
1: भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ रक्षा खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है। दोनों देश संयुक्त शोध और तकनीकी विकास पर भी साथ काम करते हैं और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

0: हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे।
1: भारत को रूस से Su-57 या S-500 एयर डिफेंस खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि नए भारत ने हमेशा राष्ट्र हितों से प्रेरित होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। भारत एक संप्रभु देश है, वो उन उत्पादों को चुनने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें वो अपने लिए सबसे आधुनिक और सबसे उपयुक्त मानता है।

दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह यह है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है, और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे।

भारतीय वायुसेना की पांचवी पीढ़ी के विमान की तलाश और AMCA में देरी के बीच Su-57 का प्रस्ताव भारत रूस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दे सकता है।

0: चीन ने पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट दे दिया है और चीन का ये ऑफर अब पुतिन के लिए संभावनाएं खोलता है कि वो जल्दी से जल्दी भारत को भी इसी तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दे। वैसे अभी तक S-400 रूस की तरफ से मिल चुका है और अगर Su-57 को लेकर रूस और भारत के बीच साझेदारी होती है, इस पर काम होता है, तो यकीन मानिए ये दोनों देशों के बीच में एक नया रक्षा समझौता और साथ ही साथ साझेदारी साबित होगी। अगर भारत Su-57 प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इसके कई फायदे होंगे। स्वदेशी उत्पादन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन और तकनीकी ज्ञान में इजाफा होगा, भविष्य में AMCA को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। भारत अपनी स्वदेशी क्षमता को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए हर विदेशी सौदा ऐसा होना चाहिए जो आत्मनिर्भरता को बढ़ाए न कि कम करे।
1: अगर भारत और रूस मिलकर Su-57 प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो देखा जाए तो एक जब बड़ी इंडस्ट्री खुलती है तो इससे एक पूरा सिस्टम ही बदली हो जाता है, एक नेक्स्ट गैप अप हो जाता है। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी भारत को, भारत को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक जनरेशन होगा, इंसिलर इंडस्ट्री खुल जाएंगी, साथ साथ में मैन पावर एक ट्रेन हो जाएगी इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में, सोच बदली हो जाएगी हमारी, ऑपरेशन डॉक्ट्रिन बदली हो जाएगी, एक्सपोर्ट के लिए हमको बेस मिल जाएगा और देश में बनने से एक हम कई टेक्नोलॉजी को अपने एमका के लिए या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर जॉइंट वेंचर होता है तो उसका एक बहुत फायदा होता है क्योंकि कई पश्चिमी देश इसके लिए तैयार नहीं होते।

0: रूस के Su-57 के ऑफर से सवाल उठता है कि क्या भारत आने वाले दशक में चीन के तेजी से बढ़ते एयर पावर का मुकाबला करने के लिए रूस की तरफ लौटेगा या फिर पूरी ताकत अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर लगाएगा। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान AMC 2035 से पहले तैयार होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चीन G20 के साथ अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, पाकिस्तान लगातार उसका साथ दे रहा है, ऐसे में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की फ्लीट एक तो कम हो रही है और दूसरा चीन के मुकाबले थोड़ी कमजोर साबित होती है। बढ़ती चुनौतियों के बीच वायुसेना को एक ब्रिज गैप फाइटर की जरूरत है जो दुश्मन के स्टेल्थ विमानों, एडवांस एयर डिफेंस और आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सके। Su-57 इसी गैप को भरने का मजबूत विकल्प बन सकता है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका कॉम्बैट रेंज 3500 किलोमीटर है। करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस फाइटर जेट की सीलिंग रेंज यानी कि ऊंचाई पर जाने की क्षमता 65,000 फीट है, जो अपने साथ करीब 10,000 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। बेहतर स्टेल्थ क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस Su-57 हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। पुतिन का Su-57 का ऑफर केवल एक हथियारों की डील भर सीमित नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक संदेश भी है। पुतिन दरअसल दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि रूस और भारत आज भी रक्षा के क्षेत्र में साझेदार है और दोनों देशों की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या भारत को एक बार फिर से रूस के साथ आना चाहिए, यानी 2018 में जिसे वो पीछे छोड़ चुका है, क्या वापस उसी रास्ते पर चलना चाहिए। भारत कभी Su-57 प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका है। उस समय इसे FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता था। साल 2007 में भारत ने FGFA प्रोजेक्ट शुरू किया जो Su-57 पर आधारित था, लेकिन 2018 में भारत इससे बाहर हो गया क्योंकि स्टेल्थ और कॉस्ट में बात नहीं बन पाई। दरअसल शुरुआत में ही रूस ने सिर्फ 4 प्रोटोटाइप के लिए $6.7 बिलियन की बड़ी रकम मांगी थी। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट गारंटी के पूरे प्रोजेक्ट की लागत $40 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान था।
1: कई बार ये सवाल उठता है कि भारत 2018 में ही क्यों फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से हट गया, पीछे हट गया। तब हम करते तो आप कहीं के कहीं पहुंचे होते, पर देखा जाए तो उस समय में बहुत महंगा पड़ रहा था, रशिया जॉइंट डेवलपमेंट की कीमत मांग रहा था, तब इनका अभी प्रोटोटाइप में था और भारत का DRDO और हमारा जो साइंस कम्युनिटी है वो सोचते थे कि हम देश के अंदर ही डेवलप करें, एमका डेवलप करें, तो कई बातें थी जिसकी वजह से उस समय में इस प्रोजेक्ट को छोड़ा गया।
0: Su-57 के ऑफर के बीच रूस ने एक लंबे इंतजार के बाद भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी बैटरी डिलीवर की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डिलीवरी ऐसे समय में हुई जब रूस खुद यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है और उसे काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा ये समझा जा सकता है कि भारत और रूस में कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है।
1: भारत और रूस की दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि रूस जबकि खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में जूझ रहा है और आए दिन उनके ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, एयर अटैक हो रहे हैं और उनकी काफ़ी रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने S-400 की चौथी बैटरी भारत को हैंड ओवर कर रहे हैं। साथ साथ में फिफ्थ बैटरी का भी ऑन शेड्यूल डिलीवरी का उनका प्लान है। तो दो तीन बातें कि क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक तो वो ये भी है कि यूक्रेन जो थे इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी तेज़ी से काम करती जा रही है और एक वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी बना के रखना चाहती है कि अगर वादा किया है तो डिलीवर करते हैं। साथ साथ में भारत के साथ एक बिजनेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक संबंध है, दोस्ताना संबंध है, क्योंकि भारत ने भी रूस के साथ खड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि भारत को रूस की ज़रूरत है, रूस को भी भारत की उतनी ज़रूरत है, क्योंकि जब भारत ने S-400 की डील की थी तब अमेरिका ने कहा था हम काटसा लगा देंगे, पर भारत ने फिर भी S-400 खरीदा और जो देखा कि कितना कामयाब साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में।
0: भारत और रूस की रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं और आंकड़ों के नजरिए से देखें तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में रूस की भूमिका सबसे बड़ी रही है। हालांकि कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा खरीद का डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन आज भी भारतीय सेनाओं के हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का ही है।
2: भारत पारंपरिक रूप से हथियारों के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी तरह रूस पर निर्भर रहा है। भारत की तीनों सेनाएं जल थल नभ, तीनों में 60-70% हथियार रूसी निर्मित ही है।
0: भारतीय सेना में वो कौन कौन से हथियार हैं जो रूस से लिए गए हैं, ये आपको बताते हैं। वायुसेना के बेड़े में शामिल Su-30 MKI और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी रूस से ही आयात किए गए हैं। एयर डिफेंस के लिए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, वहीं Igla-S को भी सेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य मूल रूप से एक रूसी एडमिरल गोर्शकोव पोत है जिसे रिफर्बिश किया गया था। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म और T-72 अजय रूसी तकनीक पर ही आधारित है। आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो BM-21 ग्रैंड और BM-30 स्मर्श भी रूस से ही लिया गया है। अब भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता का नहीं है, बल्कि ये संयुक्त अनुसंधान और सह उत्पादन में बदल चुका है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और AK-203 राइफल्स इसके उदाहरण हैं।
2: दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, दशक तक गुजर गए, दुनिया में बहुत कुछ बदला, बहुत सारी उथल पुथल हुई, कोई दोस्त बना, कोई दुश्मन बना, लेकिन एक दोस्ती जो अटूट है, जो कभी नहीं टूटी, वो थी भारत और रूस की दोस्ती। इतने दशकों बाद भी न तो इस दोस्ती को किसी की नजर लगी और न ही इस दोस्ती का भरोसा टूटा, यानी रूस ने भारत पर और भारत ने रूस पर आज भी भरोसा किया है।
0: बीते 7 दशक में भले ही वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या फिर भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के दौर में और मजबूत हुआ। भारत और रूस के बीच हाल ही में एक अहम सैन्य समझौता लागू हुआ जिसे रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट कहा जाता है। ये समझौता फरवरी 2025 में साइन किया गया था और जनवरी 2026 में प्रभावी हो चुका है। रिलॉस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी, यानी रूस के सैन्य बंदरगाहों, एयरबेस और सुविधाओं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना कर सकेगी। ये इस्तेमाल सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। रिलॉस समझौते के तहत जंग या किसी अन्य सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि देश एक दूसरे की सेनाओं को जरूरत पड़ने पर ईंधन, सामान, मरम्मत जैसी मदद करेंगे। वहीं पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब है कि शांतिपूर्ण समय में देश की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करेंगी। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है।
1: देखा जाए तो भारत ने रूस के साथ जो रिलॉस साइन किया, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके तहत रशिया भारत में और भारत रशिया की बेसिस पर तकरीबन 3,000 सैनिक, 5 युद्ध पोत और 10 एयरक्राफ्ट तक रख सकते हैं, जहाँ पर उनकी रख रखाव और उनको तेल, पानी, राशन, इस तरह की चीज़ें प्रदान की जा सकती हैं, जो एक्सरसाइज के लिए, रखी के लिए और आपसी सद्भाव के लिए एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। देखिए, दोनों को फ़ायदा है इसमें कि क्योंकि भारत को उत्तरी समुद्री रास्ते, आर्कटिक रीजन, उस इलाकों में पहुँच मिल जाएगी, रशिया को हिंद महासागर और भारत के अरब सागर में बेसिस मिलेंगी जहाँ से वो अपना देखभाल कर सकते हैं, उनके शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी।
2: रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। मिग 21 से शुरू हुआ ये सफर आज अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे एडवांस हथियारों तक पहुंच चुका है। S-400 को भारत ने साल 2018 में रूस से $5.4 अरब में खरीदा था। इसकी ताकत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नजर रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर तक है। वहीं टारगेट को ट्रैक करने की बात करें तो ये एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। रूस भी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को देने के लिए इच्छुक है। यही नहीं, रूस S-500 की तकनीक को भी भारत के साथ साझा करना चाहता है। इससे S-500 को भारत में बनाकर इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करने का रास्ता आसान बन सकता है। S-500 की तकनीक के ट्रांसफर से भारत आसानी से इसके रडार, इंटरसेप्टर, मिसाइलों और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के तहत बना सकेगा। अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है तो ये S-400 प्रोजेक्ट कुशा, MRSAM आकाश नेक्स्ट जेनरेशन और मौजूदा आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर सकता है। ये नेटवर्क कम ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष तक फैले खतरों को रोकने में सक्षम है। प्रोजेक्ट कुशा पहले ही भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कवच के रूप में विकसित हो रही है। वहीं S-500 का शामिल होना भारत को चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बढ़त दिला सकता है। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
9: अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: कल बाबा नीम करौली महाराज के कैची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा महाप्रसाद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो रही कमर्शियल फ्लाइट कल लखनऊ के लिए होगी रवाना, एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे सफर। 180 मेधावी बच्चों का सहारा बने अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, स्कॉलरशिप के जरिए उठाएंगे पढ़ाई का पूरा खर्च, विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की छात्रों की लिस्ट। भारतीय सेना ने ड्रेस रेगुलेशन में किया बड़ा बदलाव, यूनिफॉर्म से हटाए अंग्रेजी दौर के कई निशान, परेड के दौरान तलवार लेकर चलना भी अनिवार्य नहीं। तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने रचा इतिहास, ओलंपिक चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा, धीरज कुमकुम ने किया शानदार प्रदर्शन। 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने रचा कीर्तिमान, 15 मिनट और 4.26 सेकंड का निकाला समय, फ्रांस में पारुल ने तोड़ा अपना ही नेशनल रिकॉर्ड। फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इनोवेट्स 2026 का किया उद्घाटन, बोले पीएम आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप केंद्र, राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत की नवाचार क्षमताओं को सराहा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: नोएडा के लोगों को कल मिलेगी उड़ान की सौगात, जेवर एयरपोर्ट पर शुरू होगी उड़ाने। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कल लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान, 172 किसान करेंगे पहला सफर। हवाई यात्रा कर लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात करेंगे 172 किसान, परियोजना के लिए किसानों ने दी थी अपनी जमीनें। साल 2026 के आखिर तक इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद, एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाकर 7 करोड़ यात्री करने की योजना। एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू होने से पहले पुलिस प्रशासन ने तेज की तैयारी, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर। बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम में स्थापना दिवस से पहले उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं के जयकारों से भक्तिमय हुआ पूरा माहौल। स्थापना दिवस से पहले कैंची धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया, दिव्य और अलौकिक स्वरूप में नजर आया पूरा आश्रम। कल स्थापना दिवस पर लाखों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद के बनाने की तैयारी शुरू, 9 बड़े चूल्हों पर मालपुए तैयार कर रहे मथुरा वृंदावन के कारीगर। कैची धाम में अखंड रामायण का पाठ लगातार जारी, बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए लगी लंबी कतार। कल तक स्थापना दिवस को लेकर रिकॉर्ड संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी। चार धाम की पवित्र यात्रा का आज 57वां दिन, पूरे उत्साह और विश्वास के साथ श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने का सिलसिला जारी। चार धाम यात्रा में अब तक 34 लाख से अधिक भक्त कर चुके दर्शन, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का प्रशासन रख रहा है पूरा ख्याल। कपाट खुलने के बाद से सबसे अधिक केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु, अब तक 12 लाख से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन। आस्था भक्ति के साथ भक्तों के बद्रीनाथ धाम पहुंचने का सिलसिला जारी, 11 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु, 80,000 से अधिक भक्तों ने हेमकुंड साहिब में किए दर्शन। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर अयोध्या में उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सुबह से मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार। उज्जैन में महाकाल का भव्य श्रृंगार, आरती में बड़ी संख्या में भक्तों ने लिया हिस्सा। कल देश भर में मनाया जाएगा सोमवती अमावस्या का त्यौहार, गंगा स्नान के लिए अभी से उमड़ रहा है हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़। सोमवती अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए किया गया इंतजाम। शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से स्नान संपन्न कराने के लिए नीलमेला क्षेत्र को 6 सुपर जोन और 16 जोन 46 सेक्टर्स में किया गया विभाजित। तिरुमला मंदिर में जाह्नवी कपूर ने पहनी हड़ौती की शान, सोने चांदी की बुनाई वाली साड़ी बनी चर्चा का विषय। फिल्म पेटी की रिलीज से पहले जाह्नवी कपूर ने दर्शन के लिए तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंची थी जाह्नवी, पारंपरिक कोटा साड़ी ने श्रद्धालुओं और फैशन प्रेमियों का खींचा ध्यान। कोटा में खास तरीके से तैयार की जाती है सोनचरिया साड़ी, हड़ौती की पुरानी हस्तकरघा परंपरा से बनाई जाती है साड़ी। हड़ौती की सांस्कृतिक विरासत अब बॉलीवुड के जरिए देश भर में एक बार फिर से चमकी, पारंपरिक रियल गोल्ड और सिल्वर जरी से की गई तैयार। पंजाबी म्यूजिक कंपोजर करण औजला के साथ 21 जून को मंच साझा करेंगे विराट कोहली, दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है प्रोग्राम। नीस में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते। भारत फ्रांस के बीच रक्षा, तकनीक, एआई, सेमीकंडक्टर समेत कई अहम मुद्दों पर समझौता, स्पेस टेक्नोलॉजी, निवेश और रणनीतिक सहयोग पर भी जोर। राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को नीस के वास स्थित विला कैरिलॉस का कराया दीदार, फ्रांस के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर में से एक। नीस शहर में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का शुभारंभ, स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को एक मंच पर लाने का प्रयास। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां, पीएम रॉबर्ट फिको से होगी अहम मुलाकात। तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने रचा इतिहास, ओलंपिक चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा, धीरज कुमकुम ने किया शानदार प्रदर्शन। 18 जून से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 दिवसीय एमपी दौरा, ग्वालियर से हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे गुंजर नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जाएंगे राष्ट्रपति, विधि विधान से करेंगे पूजा अर्चना। आगरा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण, समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत। भारतीय सेना ने जारी किए नए यूनिफॉर्म, करीब 10 साल बाद बड़ा रिवीजन। शादी के बाद विजय रश्मिका ने किया नेक काम, सरकारी स्कूल के 180 होनहार छात्रों का उठाएंगे पढ़ाई का खर्च। विजय रश्मिका स्कॉलरशिप के जरिए उठाएंगे पढ़ाई का पूरा खर्च, विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की छात्रों की लिस्ट। 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने रचा कीर्तिमान, 15:04.26 में निकाला समय फ्रांस में, पारुल ने तोड़ा अपना ही नेशनल रिकॉर्ड। दिल्ली में सामान्य से नीचे तापमान, लोगों को गर्मी से मिली हल्की राहत। दिल्ली में कल दोपहर और शाम के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, हल्की बारिश और तेज हवा की जताई संभावना। मैदानों पर गर्मी के चलते पहाड़ों का रुक कर रहे पर्यटक, चमोली के ट्रैकिंग रूट्स पर सैलानियों की भारी भीड़। गुप्तखाल ट्रैक बना एडवेंचर प्रेमियों की पहली पसंद, देश भर से पहुंच रहे ट्रैकिंग के शौकीन। हिमालय क्षेत्र में बर्फ से ढके रास्ते और प्राकृतिक नजारों का आनंद ले रहे सैलानी, ताजा बर्फबारी का भी लुत्फ उठा रहे पर्यटक। माइनस तापमान में सैलानी कर रहे ट्रैकिंग, बर्फ पिघला कर रहे पानी की व्यवस्था। बुजुर्ग पर्यटक भी पहुंच रहे हिमालय ट्रैक, ट्रैकिंग अनुभव को बताया यादगार। डोडा के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, निचले इलाकों में तेज बारिश, बदले मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी। डोडा में बादलों की चादर ओढ़े नजर आए पहाड़, दिख रहा प्रकृति का बेहद ही खूबसूरत नजारा। कांगला घाटी में लगातार जारी बारिश से बदला मौसम, तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। पुंछ में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, NH 144 पर फंसी 200 से अधिक गाड़ियां, मशीनों से हटाए गए बोल्डर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बदले मौसम के बीच बढ़ी पर्यटकों की संख्या, रास्तों पर लग रहा लंबा जाम। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मौसम ने बदला नजारा, खूबसूरत वादियां पर्यटकों को कर रही आकर्षित। कन्याकुमारी में जारी बारिश से तापमान में दर्ज की गई कमी, जिले के 351 तालाब पानी से हुए लबालब। कन्याकुमारी में लगातार बारिश से ताम्रपर्णी नदी हुई ओवरफ्लो, किनारे के इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत मौसम ने बदला वादियों का नजारा, प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। शिमला में वीकेंड के चलते बड़े पर्यटकों की संख्या, स्थानीय कारोबारियों के खिले चेहरे। असम के कामरूप पहुंचे सीएम हिमंता बिस्वा सरमा, नाइट एयरपोर्ट टर्मिनल का किया निरीक्षण। मुंबई कोस्टल रोड परियोजना का सीएम फडणवीस ने किया निरीक्षण, श्रमिकों से की मुलाकात। केरल में महिलाओं को बड़ी सौगात, महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को कल से फ्री बस यात्रा। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीएम योगी ने नन्हे बच्चों से की मुलाकात, बच्चों को लगाया तिलक। स्वच्छ यमुना को लेकर दिल्ली सरकार ने चलाया बड़ा अभियान, 28 घाटों पर 500 संगठन और हजारों लोग करेंगे योगदान। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने भी यमुना सफाई अभियान में लिया हिस्सा, गीता कॉलोनी के दशाश्वमेध घाट पर की साफ सफाई। दिल्ली बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने भी यमुना के घाटों पर की सफाई, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी दिया साथ। यमुना क्लीननेस कैंपेन का हिस्सा बने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, घाटों पर की सफाई। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने यमुना के घाटों पर की सफाई, लोगों को स्वच्छता के लिए किया जागरूक। दिल्ली के यमुना घाट पर चला स्वच्छता अभियान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सफाई में लिया हिस्सा। यमुना नदी के सूर घाट पहुंचे बीजेपी नेता मनोज तिवारी, स्वच्छता अभियान के तहत किया श्रमदान।

जम्मू में जम्मू हाई फाइव फाइव के मैराथन का आयोजन, नौजवानों को फिट रहने और नशे से दूर रहने का दिया गया संदेश। जम्मू में बौद्ध प्लाजा से शुरू हुई मैराथन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा, डांस और कार्टून प्रदर्शनी से भी दिया गया फिटनेस का संदेश। नैनीताल कॉर्बेट टाइगर सफारी में जीप से लड़कर भागते बाघ का वीडियो हुआ वायरल, चालक पर की गई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के आमों की मिठास और विशालकाय नूरजहां को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान, 2 से 5 किलोग्राम तक होता है वजन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिला उद्यमियों की शानदार पहल, मसाला खेती से बढ़ा रही अपनी आमदनी। रायपुर में वाटर स्पोर्ट्स का महाकुंभ, सिंध लेक में राष्ट्रीय काइकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप का आयोजन, देश भर के खिलाड़ी हुए शामिल। केरल के कोची में नई केएसआरटीसी बस सेवा की शुरुआत, तलुवा और परावुर के बीच होगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी। तुर्की के इजमिर में बैले शो में बिल्ली की एंट्री, दर्शकों के बीच लूटी महफिल। रोमियो और जूलियट के शो के दौरान मंच पर आई बिल्ली, इमोशनल सीन के दौरान हंसने लगे दर्शक। चीन दक्षिण एशिया एक्सपो में दिखा ड्रोन टेक्नोलॉजी का दम, कृषि से लेकर लॉजिस्टिक्स और आपदा प्रबंधन के लिए तैयार ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन। एक्सपो में एक खास ड्रोन की प्रदर्शनी, महज 52 सेकंड में अपनी बैटरी और सेंसर बदलने की क्षमता। नया स्मार्ट ड्रोन जरूरत के मुताबिक बदल सकता है सेंसर। प्रदर्शनी में जंगलों में आग की रोकथाम और आपातकालीन बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले ड्रोन भी मौजूद। चीन के जिलिन प्रांत में चांगचुन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपो में अनोखा लाइट बैंड शो, अनोखा म्यूजिक बैंड बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। एक्सपो में रोशनी से बजा संगीत, बिना पारंपरिक वाद्य यंत्रों के शानदार परफॉर्मेंस। रोबोट कंडक्टर बना शो का हिस्सा, हाथों से रोशनी रोकते ही बनती रही धुनें। ह्यूस्टन में फीफा वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक शुरुआत, पहली बार मिला मेजबानी का मौका। लंदन में ब्रिटेन जापान की अहम बैठक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने किया जापान के प्रधानमंत्री सानी ताकायुची का स्वागत। चीन में पहली बार 2 हैवीलिफ्ट ड्रोन ने संभाली बड़ी जिम्मेदारी, दुर्गम कार्यस्थलों तक पहुंचाया गया मटेरियल। चेंगदे शहर में ड्रोन तकनीक से बढ़ी निर्माण कार्य की रफ्तार, 650 किलोग्राम बताई गई ड्रोन की क्षमता। चीन ने पर्यावरण संरक्षण के साथ दिया गया विकास का मॉडल, ड्रोन के इस्तेमाल से भारी वाहनों की जरूरत हुई कम। फीफा वर्ल्ड कप में तुर्की पर ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत, फैंस में जश्न का माहौल। ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हराया, अब अमेरिका से होगी ऑस्ट्रेलिया की टक्कर। लंदन नॉकटर्न साइकिल इवेंट में ताजा हुई 19वीं सदी की यादें, आयोजन में पेनी फर्थिंग क्लब ने बनाए 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्लब के संस्थापक ने दुनिया की सबसे बड़ी पेनी फर्थिंग साइकिल चलाकर बनाया रिकॉर्ड, पैडल तक पहुंचने के लिए पैरों में लगाया गया विशेष कृत्रिम एक्सटेंशन। भाई बहन की जोड़ी फ्लो और फिन वुडवर्ड ने सबसे छोटी पेनी फर्थिंग साइकिल चलाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, दर्शकों ने भी जमकर बढ़ाया उनका उत्साह। साइकिलिस्ट रोजा डेविस ने आंखों पर पट्टी बांधकर यूनिसाइकिल पर 100 मीटर की सबसे तेज सवारी का बनाया रिकॉर्ड, उनकी अनोखी कला से सभी को हुआ हैरान। स्वीडन के हेनरिक एस्टॉब ने करतब दिखाते हुए बनाए नए रिकॉर्ड, जुगलबंदी करते हुए पैनी फर्थिंग पर 100 मीटर की सबसे तेज सवारी की पूरी। अंटार्कटिक प्रायद्वीप में सर्दियों के दौरान तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, 26 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। अंटार्कटिक प्रायद्वीप में 1998 के 13.3 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड टूटा, 15.4 डिग्री ने बनाया नया रिकॉर्ड। अर्जेंटीना के एस्पेरांजा बेस पर जून में तापमान ने सब कुछ आंका दिया, यह सामान्य से 21 डिग्री ज्यादा, विशेषज्ञों के मुताबिक यह जलवायु परिवर्तन का बड़ा संकेत। पोलैंड में शुरू हुई नई अनहल रेल सेवा, धीमी रफ्तार में खूबसूरत प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठाते चलते हैं यात्री। पोलैंड की अनहर्ड रेल सेवा से लोगों को हो रहा 80 के दशक की यात्रा का एहसास, छोटे छोटे स्टेशनों और दर्शनीय मार्गों से

0: होकर गुजरती है ट्रेन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: खबरें, खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने हाल ही में उत्तराखंड के पवित्र और आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन किए। खास बात यह है कि उनका यह दौरा पूरी तरह गोपनीय रहा, जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन और आम लोगों को भी नहीं हो सकी। ऋषभ पंत सबसे पहले पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने श्रद्धा भाव के साथ ओम पर्वत के दर्शन किए। दर्शन के बाद ऋषभ पंत व्यास घाटी के नाबी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक होम स्टे में रात गुजारी। यात्रा के दौरान उनकी कार का टायर खराब हो जाने पर गुंजी क्षेत्र में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने उनकी मदद की, जिसके बाद ऋषभ पंत ने जवानों के साथ भी समय बिताया और उनके साथ फोटोज भी क्लिक किए। तो पूरी तरह गोपनीय दौरा रहा और ऋषभ पंत ने यहाँ एक श्रद्धालु की तरह, भक्त की तरह यह दौरा रहा, जिसमें आदि कैलाश के दर्शन करने पहुंचे, वहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और वहां के करीब गांव वालों से भी उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ फोटोज भी क्लिक किए और वहां भोजन का भी यहां पर उन्होंने सेवन किया, लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए। तस्वीरें आप देखिए उनकी सहजता का ये अंदाज आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जहां ऋषभ पंत ने आम लोगों से मुलाकात की और उन्हें फोटोग्राफ्स भी दिए। खेल के बाद अब बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत की। पिछले दिनों जानवी कपूर वेंकटेश्वर तिरुमाला मंदिर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने बैंगनी रंग की एक खास साड़ी पहनी हुई थी। मंदिर से उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद अब हर तरफ उस खास साड़ी की चर्चा हो रही है। कभी राजघरानों की शान माने जाने वाली यह साड़ी अब एक बार फिर सुर्खियों में है।

0: मन में श्रद्धा भाव, सादगी भरा अंदाज और बदन पर लिपटी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत। पिछले दिनों जब अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म बेड्डी की रिलीज से पहले भगवान वेंकटेश्वर की दर पर पहुंची, तो उनका ये रूप सोशल मीडिया पर छा गया। इस पावन मौके पर जाह्नवी ने कोटा की पारंपरिक और विश्व प्रसिद्ध सोन चिरैया साड़ी को चुना था। बैगनी रंग की इस अनुपम साड़ी की खूबसूरती हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही है। इस साड़ी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी महीन कारीगरी, जिसमें असली सोने और चांदी की जरी का इस्तेमाल किया गया है। इसके पारंपरिक फूलदार डिजाइन और हस्तकरघे की जीवंत कला का ऐसा अद्भुत संगम जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल ये साड़ी महज एक परिधान नहीं है, बल्कि राजस्थान की कोटा के बुनकरों की पीढ़ियों पुराने कौशल, उनकी मेहनत और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत दस्तावेज है। कभी राज घरानों की शान माने जाने वाली कोटा की ये खास साड़ियाँ अब महिलाओं की पहली पसंद बन रही हैं। राधिका राजे गायकवाड़ से लेकर कंगना रनौत तक सोन चिरैया साड़ी की कदरदान है।
1: बहुत अच्छा लगता है जब हमारी जरी कोटा की जो पहचान है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है।
0: पिछले कुछ सालों में इस विलुप्त कला को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज कोटा की ये बुनाई राष्ट्र सीमाओं को पार कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहचान बना रही है। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: No ticket, no line, just Showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
2: Good news today is really good. It's in this, it's not a mad dog. Oh, chilla chilli. At least, people get to hear the news easily. Mad dog. इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
7: कल बाबा नीम करौरी महाराज के कैची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा महाप्रसाद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो रही कमर्शियल फ्लाइट, कल लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान। एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे सफर। 180 मेधावी बच्चों का सहारा बने अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, स्कॉलरशिप के जरिए उठाएंगे पढ़ाई का पूरा खर्च। विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की छात्रों की लिस्ट। भारतीय सेना ने ड्रेस रेगुलेशन में किया बड़ा बदलाव, यूनिफॉर्म से हटाए अंग्रेजी दौर के कई निशान, परेड के दौरान तलवार लेकर चलना भी अनिवार्य नहीं। महिला T20 वर्ल्ड कप के लीग मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को दी पटखनी, एक तरफा मैच में 64 रन से जीती टीम इंडिया। स्मृति मंदाना ने जड़ा अर्धशतक, दीप्ति शर्मा ने झटके 5 विकेट। तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने रचा इतिहास, ओलंपिक चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा, धीरज कुमकुम ने किया शानदार प्रदर्शन। 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने रचा कीर्तिमान, 15 मिनट और 4.26 सेकंड का निकाला समय, फ्रांस में पारुल ने तोड़ा अपना ही नेशनल रिकॉर्ड।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्यों बार बार हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और हम लगातार कोशिश करते हैं, कभी अपनी किस्मत को दोष देते हैं तो कभी अपनी कुंडली को दोष देते हैं। इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा और जानेंगे कि ऐसा आखिर होता क्यों है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर संतान को लेकर किसी भी तरह की समस्या होती हो, उसके करियर को, उसके स्वास्थ्य को, उसके स्वभाव को लेकर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती हो, तो हर बृहस्पतिवार को भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। अगर हर बृहस्पतिवार को भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करें तो संतान की उन्नति अवश्य होगी।
0: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि जब हम कोई काम करते हैं, खासकर कि कोई ऐसा काम जिसके बिगड़ने के पीछे हमें कोई वजह नहीं पता चलती लेकिन वो काम बिगड़ जाता है, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या होती है, वो पंडित जी से जानेंगे।
1: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। काम 99 तक पहुंच जाता है लेकिन 100 नहीं होता, काम बिगड़ जाता है। आखिर किसी काम के बिगड़ने की वजह क्या होती है, पहले ये जानते हैं। देखिए, ऐसा आपने बहुत बार अपने जीवन में देखा होगा कि कभी कभी बिना कारण के सारे किए हुए काम, बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं। कुछ काम बिगड़ने के पीछे अपने कर्म होते हैं, अपनी गलतियां होती हैं, और कुछ काम के बिगड़ने के पीछे दूसरों के कर्म होते हैं, दूसरों का प्रभाव होता है। ये तमाम बातें ग्रहों को देखकर आप जान सकते हैं कि बिना कारण के किस कारण से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं। अगर आपकी खुद की गलतियों से, खुद के कर्मों से काम बिगड़ रहे हैं तो उसका निवारण और समाधान सरल होता है। लेकिन अगर कोई दूसरा आपके काम बिगाड़ रहा है, अपनी भावना से, अपनी प्रार्थना से, अपने प्रयास से, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। तो मुख्यतः दो तरीके से काम बिगड़ते हैं, अपनी गलती से, अपने खराब कर्मों से, और दूसरे के प्रभाव से, दूसरे के प्रयास से भी काम बिगड़ जाते हैं।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है, धन हानि से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए अब जानते हैं कि अपने किन कर्मों के कारण काम बिगड़ने लगते हैं, हमारे वो कौन से कर्म होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता लेकिन उसी वजह से हमारे काम लगातार बिगड़ते हैं।
1: देखिए, आपके अपने बहुत सारे कर्म होते हैं, आपको लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कर्म आपके भाग्य को ब्लॉक कर देते हैं, आपके काम बिगाड़ने लगते हैं, आपके काम चौपट करने लगते हैं। कौन से कर्म हैं? अगर आप अपने माता पिता का या अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं तो पक्की तौर से जानिए कि आगे चलकर हर काम में रुकावट आएगी, हर काम होते होते रह जाएगा। बिना किसी उचित कारण के अगर आप एबॉर्शन करवाते हैं, अपना, अगर आप महिला हैं स्वयं का करवाती हैं, या आप पुरुष हैं अपनी पत्नी का करवाते हैं, बिना किसी उचित कारण के भ्रूण हत्या करवाते हैं, महापाप है ये, इसके गंभीर परिणाम जीवन में भुगतने होंगे। और याद रखिए, इसकी वजह से जीवन में संतान को लेकर हमेशा कष्ट भोगना पड़ेगा और साथ ही साथ आपके हर काम में रुकावट आएगी। अगर आप किसी व्यक्ति का अधिकार छीन लेते हैं, कोई व्यक्ति आपकी सेवा करता है, नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह 10,000 होनी चाहिए, आप उसको 500 रुपए देते हैं, 2,000 देते हैं, 4,000 देते हैं, उसका अधिकार छीनते हैं या उसको उसका सही हक नहीं देते हैं, तो याद रखिए, परमात्मा आपका हक, आपका भाग्य उतना % काट लेगा और आपके हर बने बनाए काम में रुकावट आएगी, हर काम रुकने लगेगा। केवल निजी स्वार्थ के लिए आप हरे पेड़ कटवाते हैं, आपके घर का शो खराब हो रहा है, आप हरे पेड़ कटवाएंगे, परिणाम बहुत ही गंभीर हैं। परिवार में विशेष बीमारियां पैदा होंगी, संतान को लेकर कष्ट होगा, अपमृत्यु की स्थिति बनेगी। बिना किसी सही वजह के हरे पेड़ मत कटवाइए, बहुत ही भयंकर है इसकी सजा। या आप नदियों को दूषित करते हैं, देखिए हर नदी पवित्र है, ऐसा नहीं है कि गंगा पवित्र है, यमुना पवित्र है, बाकी नदियां पवित्र नहीं है, हर नदी पवित्र है, इसलिए नदियों को दूषित करेंगे, आपके हर काम में अज्ञात बाधा आएगी। अगर आप जानबूझकर दूसरों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं, आप ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरों को मानसिक कष्ट मिलता है, तो पक्की तौर पर आप ये जान लीजिए कि आपके हर काम में रुकावट आएगी और उतना ही मानसिक कष्ट आपको झेलना पड़ेगा।
0: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि कई बार ऐसा होता है कि हम काम करते हैं और बिगड़ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे दूसरों का हाथ होता है। जी हाँ, दूसरों के कर्मों की वजह से हमारे काम बिगड़ते हैं, तो उसकी वजह क्या है ये हम जानेंगे।
1: देखिए, बहुत बार क्या होता है कि आपके कर्म तो ठीक हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है, आपसे जलता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसका प्रयास करता है, आपको नुकसान हो इसके लिए पूजा और प्रार्थना भी करता है। तो दूसरों के किन कामों से अपने काम बिगड़ते हैं? जब दूसरे आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने लगे, आपकी अपनी एनर्जी कमजोर है और दूसरे की निगेटिव एनर्जी आएगी तो आप बीमार पड़ेंगे। जिसको आप मोटी बोलचाल की भाषा में कहते हैं नजर लग जाना, आपकी अंदर की शक्ति कमजोर होगी और दूसरा आपको नजर लगाएगा या आपकी चीजों को देख के मन में नकारात्मक भाव लाएगा तो आपके काम रुकेंगे। जब दूसरे लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग करें, वैसे तो देखिए माता बगला मुखी के मंत्र जपना इतना आसान नहीं है, उसकी बड़ी टेक्निक है, लेकिन फिर भी कोई आपके लिए जप रहा है कि ओम बगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जेवाम कीलय बुद्धि विनाशय, ये करते हैं ना लोग कि भैया नुकसान हो ही जाए, तो अगर कोई आपके लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग करे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कम होगी तो भी आपके काम रुकेंगे, आपको नुकसान होगा। जब दूसरे लोग आपके साथ रहकर गलत काम करें, भले ही आप गलत काम ना करें, आप तो मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते लेकिन दूसरे को पैसे देते हैं कि मांस खाओ मदिरा पियो, दूसरे को अपने साथ घुमाते हैं, वो गलत हरकत करता है, गलत आचरण करता है, उसके संस्कार आपको भी भुगतने पड़ेंगे। संगति से गुण उपजे, संगति से गुण जाए, वो संस्कार आपको भुगतने पड़ेंगे, आपके काम में बाधा आएगी। देखिए, आपकी कोई जिम्मेदारी है बहुत बड़ी माता पिता के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने ऑफिस के प्रति, और आप वो जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, आप बेईमानी करते हैं, कोई और निभाता है, तो तैयार हो जाइए, जो आपकी किस्मत का हिस्सा है वो ले जाएगा और आपके हर काम में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। आपकी जिम्मेदारी कोई निभाने लगेगा, जो काम आपको करना चाहिए वो दूसरा करने लगेगा, तो आप पक्का जानिए आपकी किस्मत से उतना हिस्सा कटेगा और आप जब अपने महत्वपूर्ण काम करने जाएंगे वो काम आपके नहीं बनेंगे। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, दुष्ट व्यक्ति है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचाने का प्रयास करता है, अगर ऐसा करते हैं, आप खराब आदमी की सहायता करते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता। उसके नकारात्मक वाइब्रेशन, उसकी नकारात्मक तरंगे आपके काम को बिगाड़ देती हैं और आपके काम होते होते रह जाते हैं।
0: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का।
1: कर्क राशि, करियर में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब पंडित जी द्वारा दिए जाने का, तो पंडित जी से ही जानते हैं। पंडित जी, आज का पहला सवाल आप किसका ले रहे हैं?
1: जी, आज का पहला प्रश्न हरिनाथ जी ने हमें लिखा है, अयोध्या धाम से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 अक्टूबर 1970। जन्म का समय सुबह के 8:30। जन्म का स्थान है अयोध्या। हरिनाथ जी कह रहे हैं कि संपत्ति को लेकर एक मुकदमा काफी समय से चल रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि ये मुकदमा कब तक हल होगा और भविष्य में सफलता कब तक मिल पाएगी। हरिनाथ जी, आपका जो मुकदमा है वो आपके परिवार में ही चल रहा है, आपके अपने भाई बहनों के साथ, तो मुझे लगता है कि जून के बाद आप इस मामले को आपसी सुलह समझौते से सुलझाने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से ये मामला जून के बाद इसी साल में सुलझ जाएगा। और जो आप मकान बनवाना चाहते हैं, अगले साल आप मकान भी बनवा सकेंगे। तो थोड़ा सा कम या ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपसी सुलह समझौते से सुलझाइए तो अच्छा रहेगा। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें, सुबह शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं।
1: जी, अगला प्रश्न शिप्रा जी ने हमें लिखा है और शिप्रा जी ग्रेटर नोएडा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जनवरी 1983। जन्म का समय दोपहर में 2:24। जन्म स्थान है शामली, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरे स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें बनी रहती हैं और तमाम दवाइयां करने पर भी कोई बहुत लाभ नहीं हो पाता है। थोड़े दिन मैं ठीक रहती हूँ फिर बीमार पड़ जाती हूँ, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? शिप्रा जी, आपकी कुंडली में ज्यादातर दिक्कतें आपके हड्डियों की हैं, नसों की हैं। कोल्ड कफ की प्रॉब्लम आपको जल्दी होती है, वो भी एक समस्या है आपके लिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको अभी, जब तक ये साल खत्म नहीं हो जाता है, दिसंबर 2026 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। 2027 के शुरुआत के साथ आपकी स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6-8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहने, रोज शाम को माता दुर्गा की पूजा करें और देवी कवच का रोज शाम को पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा।
0: तो अभी हमने बात की, इससे पहले अगर दूसरे के कर्म जो हैं वो आपके काम में बाधा डाल रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करें। अगर खुद के कर्मों की वजह से आपका बना बनाया काम बिगड़ रहा है तो उसके लिए क्या उपाय करें, आइए जानते हैं।
1: अगर आपके खुद के कर्म ऐसे हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया कि कौन कौन से कर्म हैं, अगर आपके खुद के कर्म गड़बड़ हैं जिसकी वजह से आपका बना बनाया काम बिगड़ रहा है तो क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा और अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिएगा, ऐसा रोज सुबह अवश्य करें। घर में और घर के बाहर पार्क में, सड़क के किनारे, अपनी बालकनी में, मैदान में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए और उनकी देखभाल करिएगा। नियमित रूप से प्रातः काल अगर संभव हो तो सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाइएगा और रोज सुबह एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। गजेंद्र मोक्ष पढ़ने से और ईमानदारी से रहने से पापों का प्रायश्चित होता है। महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार अगर आप अफोर्ड कर सकें तो किसी निर्धन व्यक्ति को भर पेट भोजन कराइए। भविष्य में किसी को भी जानबूझकर पीड़ा मत पहुंचाइए। देखिए, अनजाने में गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जानबूझकर ऐसा काम करें कि किसी को कष्ट पहुंचे, किसी को पीड़ा पहुंचे, तो वो बहुत बड़ा पाप है। एक श्लोक आता है ना, अष्टाद्वश पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परमीडनम्। यानी 18 पुराण में वेदव्यास जी ने दो ही बातें कही हैं कि दूसरे का उपकार करना पुण्य है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है।
0: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
1: तुला राशि, धन की समस्या आपकी दूर होती दिख रही है। करियर में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। परिवार में विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनुराशि, चोट चपेट से बचाव करें। संतान की चिंता रह सकती है। महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: तो चलिए जानते हैं, अगर दूसरों के कर्मों के कारण आपके काम बिगड़ रहे हो तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए?
1: देखिए, आपको पहले बताया कि दूसरों के कर्मों से, दूसरों के प्रभाव से भी आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। अगर दूसरों की वजह से काम बिगड़ रहे हैं तो क्या करेंगे? अपने घर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दोनों तरफ सिंदूर से स्वस्तिक बनाइएगा। घर के मुख्य द्वार पर या तो अशोक का वृक्ष लगाइए बड़े गमले में या जमीन में, या अशोक के पत्तों का वंदन वार लगाइए। इसको हर हफ्ते बदलते रहिए। रोज शाम को घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान पर दीपक जरूर जलाएं। अगर ऐसा लगता है आपको कि किसी ने आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का या मंत्र का प्रयोग किया है तो ऐसी स्थिति में आपको एक मंत्र बताते हैं। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। इस मंत्र का रोज सुबह, या और अच्छा होगा कि रोज शाम को 108 बार जप करें। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का या नकारात्मक मंत्र शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मंत्र जप करते समय गुग्गल की धूप बत्ती अगर आप जलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का। तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल।
1: मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, धन की दशा में सुधार होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: स्वास्थ्य में सुधार होगा, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का तीसरा सवाल उनको कहां से आया है और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न प्रभास ने हमें लिखा है और प्रभास हमें मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। इनकी जन्म की तारीख है 27 नवंबर 2002, जन्म का समय सुबह के 8:55, जन्म स्थान है अहमदाबाद। प्रभास कह रहे हैं कि मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली है, आगे मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता हूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए बेहतर होगा। प्रभास आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, अगर आप MBA करते हैं तो MBA करना, मैनेजमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो अभी मुझे लगता है उसका उचित समय नहीं है, आप नौकरी करने के लिए 2028 के बाद विदेश जाइएगा, अभी भारत में ही किसी अच्छे संस्थान से MBA की पढ़ाई कर लें। अभी जल्दबाजी में आप एकदम से व्यापार में घुस जाएं, एकदम से नौकरी करने लगें, ऐसा उचित नहीं होगा, अभी आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं आज का अंतिम और चौथा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं।
0: अगला प्रश्न रीतिका ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं, इनकी जन्म की तारीख है 7 जुलाई 2008, जन्म का समय दोपहर में 2:55, जन्म स्थान है रांची, में लिखती हैं कोलकाता से। ये कह रही हैं कि मैं अभी इंटरमीडिएट में हूँ और इसके बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहती हूँ, क्या ये दिशा मेरे लिए ठीक रहेगी या मुझे किसी और दिशा में जाना चाहिए। रितिका आपकी कुंडली के हिसाब से मैं आपको CA करने की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने की कोई सलाह नहीं दूंगा, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करिए और गवर्नमेंट जॉब में जाइए, या 12वीं के बाद BBA MBA करके मैनेजमेंट में अपना करियर बनाइए, अच्छा रहेगा, 10 साल भी अगर परिश्रम करेंगी तो कोई जरूरी नहीं है कि आप CA बन पाएं, इसलिए इस ट्रैक पर जाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। एक पीला पुखराज, वजन में 6-7 रत्ती, सोने या पीतल के लॉकेट में, पीले धागे में, अपने गले में बृहस्पति वार को प्रातः धारण कर लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, रुका हुआ धन मिलेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रह का दान कर सकता है? देखिए, आपको जीवन में उसी ग्रह की वस्तुओं का दान करना अच्छा रहेगा जो ग्रह जीवन में समस्या दे रहा हो। जो ग्रह कुंडली का शुभ ग्रह हो, जो आपके लिए फायदेमंद हो, उस ग्रह से संबंधित वस्तु का दान नहीं करना चाहिए।
1: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के शुभ पहर को जानने का, तो चलिए जानते हैं।
0: शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। आपकी धन संबंधी समस्या में सुधार होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए सप्ताह के कौन से दिन अच्छे होते हैं और कौन से दिन अशुभ होते हैं। आज की गुडलक राशि है धनु। इनके लिए रविवार और मंगलवार का दिन अनुकूल होता है। इनको शुक्रवार को महत्वपूर्ण काम करने से बचना चाहिए।
1: और गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आप बहुत अच्छे काम करते हैं, आप दूसरों की सहायता करते हैं, ऑफिस में मेहनत से काम करते हैं, लेकिन किए गए अच्छे कार्यों का यश आपको नहीं मिलता, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जितना सुबह हो सके जल अर्पित करिए। इसके बाद सूर्य देव के सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और जब पाठ कर लें उसके बाद लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर और अपने कंठ पर लगाएं। रोज अगर नियमित रूप से आप ऐसा करें तो आपके अच्छे कार्यों का यश प्रतिष्ठा आपको जरूर प्राप्त होगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: teaching, and learning is evolving. That evolution is powered by those who know how to merge technology with effective instruction. A master's degree in education technology and instructional design at WGU equips you with the skills you need to turn innovative thinking into real-world impact, so you can shape learning in academic or corporate settings. Learn more at wgu.edu.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़

सुकोई 30 MKI, मैग 29 फाइटर जेट, MI जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर, S-400 जैसा बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम, INS विक्रमादित्य जैसा विशाल एयरक्राफ्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और रूस रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। दुनिया में बहुत उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती कभी भी रुकी नहीं, कभी भी थमी नहीं। आज भी रूस भारत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है।

0: रूस ने भारत को अपना पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट ऑफर किया है। साथ ही रूस ने भारत को ये प्रस्ताव भी दिया है कि वो अपने फाइटर जेट Su-57 की टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा।
1: भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है।
0: रूस की पेशकश सिर्फ विमान बिक्री तक सीमित नहीं है। प्रस्ताव में संवेदनशील सोर्स कोड तक पहुंच, व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की जरूरतों के अनुरूप दो सीटों वाले Su-57D वेरिएंट के विकास की संभावना भी शामिल है। ये भारत को स्वदेशी हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स को बिना किसी विदेशी मंजूरी के विमान में इंटीग्रेट करने की स्वतंत्रता देता है। रक्षा क्षेत्र में इस रफ्तार का तकनीकी हस्तांतरण बेहद दुर्लभ माना जाता है।

0: देखा जाए तो समय में रशिया के साथ जो बातचीत चल रही है, जहां पर SU-57 का सोर्स कोड TOT यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना, भारत में ही व्यापक प्रोडक्शन करना और देश की जरूरत के हिसाब से 2-सीटर SU-57 का ऑफर देखे तो कई तरह से अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके द्वारा आज जो भारत के अंदर ही प्रोडक्शन होगा, HAL इसमें समर्थ है कि रशिया के द्वारा ऑफर की हुई टेक्नोलॉजी को हम बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करके बना सकते हैं। दूसरी बात ये ट्रस्टेड है, टेस्टेड है। तीसरी बात यह है कि ये आज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से और लाइस कोड ट्रांसफ़र की वजह से आज हमारा जो अपना है अस्त्र है, रुद्रम है, जो मिसाइल सिस्टम है, सर्विलेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, इसको इसके ऊपर इंटेग्रेट कर सकते हैं।
1: भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ रक्षा खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है। दोनों देश संयुक्त शोध और तकनीकी विकास पर भी साथ काम करते हैं और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

0: हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे।
1: भारत को रूस से Su-57 या S-500 एयर डिफेंस खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि नए भारत ने हमेशा राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। भारत एक संप्रभु देश है, वो उन उत्पादों को चुनने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें वो अपने लिए सबसे आधुनिक और सबसे उपयुक्त मानता है।

दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह ये है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है, और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे।

भारतीय वायुसेना की पांचवी पीढ़ी के विमान की तलाश और AMCA में देरी के बीच Su-57 का प्रस्ताव भारत रूस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दे सकता है।

0: चीन ने पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट दे दिया है और चीन का ये ऑफर अब पुतिन के लिए संभावनाएं खोलता है कि वो जल्दी से जल्दी भारत को भी इसी तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दे। वैसे अभी तक S-400 रूस की तरफ से मिल चुका है और अगर Su-57 को लेकर रूस और भारत के बीच साझेदारी होती है, इस पर काम होता है, तो यकीन मानिए ये दोनों देशों के बीच में एक नया रक्षा समझौता और साथ ही साथ साझेदारी साबित होगी। अगर भारत Su-57 प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इसके कई फायदे होंगे। स्वदेशी उत्पादन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन और तकनीकी ज्ञान में इजाफा होगा, भविष्य में AMCA को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। भारत अपनी स्वदेशी क्षमता को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए हर विदेशी सौदा ऐसा होना चाहिए जो आत्मनिर्भरता को बढ़ाए न कि कम करे।
1: अगर भारत और रूस मिलकर Su-57 प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो देखा जाए तो एक जब बड़ी इंडस्ट्री खुलती है तो इससे एक पूरा सिस्टम ही बदली हो जाता है, एक नेक्स्ट गैप अप हो जाता है। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी भारत को, भारत को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक जनरेशन होगा, इंसिलरी इंडस्ट्री खुल जाएंगी, साथ साथ में मैन पावर एक ट्रेन हो जाएगी इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में, सोच बदली हो जाएगी, हमारी ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन बदली हो जाएगी, एक्सपोर्ट के लिए हमको बेस मिल जाएगा और देश में बनने से एक हम कई टेक्नोलॉजी को अपने एमका के लिए या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर जॉइंट वेंचर होता है तो उसका एक बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि कई पश्चिमी देश इसके लिए तैयार नहीं होते।

0: रूस के Su-57 के ऑफर से सवाल उठता है कि क्या भारत आने वाले दशक में चीन के तेजी से बढ़ते एयर पावर का मुकाबला करने के लिए रूस की तरफ लौटेगा या फिर पूरी ताकत अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर लगाएगा। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान AMCA 2035 से पहले तैयार होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चीन G20 के साथ अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, पाकिस्तान लगातार उसका साथ दे रहा है, ऐसे में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की फ्लीट एक तो कम हो रही है और दूसरा चीन के मुकाबले थोड़ी कमजोर साबित होती है। बढ़ती चुनौतियों के बीच वायुसेना को एक ब्रिज गैप फाइटर की जरूरत है जो दुश्मन के स्टेल्थ विमानों, एडवांस एयर डिफेंस और आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सके। Su-57 इसी गैप को भरने का मजबूत विकल्प बन सकता है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका कॉम्बैट रेंज 3500 किलोमीटर है। करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस फाइटर जेट की सीलिंग रेंज यानी कि ऊंचाई पर जाने की क्षमता 65,000 फीट है, जो अपने साथ करीब 10,000 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। बेहतर स्टेल्थ क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस Su-57 हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। पुतिन का Su-57 का ऑफर केवल एक हथियारों की डील भर सीमित नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक संदेश भी है। पुतिन दरअसल दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि रूस और भारत आज भी रक्षा के क्षेत्र में साझेदार है और दोनों देशों की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या भारत को एक बार फिर से रूस के साथ आना चाहिए, यानी 2018 में जिसे वो पीछे छोड़ चुका है, क्या वापस उसी रास्ते पर चलना चाहिए। भारत कभी Su-57 प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका है। उस समय इसे FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता था। साल 2007 में भारत ने FGFA प्रोजेक्ट शुरू किया जो Su-57 पर आधारित था, लेकिन 2018 में भारत इससे बाहर हो गया क्योंकि स्टेल्थ और कॉस्ट में बात नहीं बन पाई। दरअसल शुरुआत में ही रूस ने सिर्फ 4 प्रोटोटाइप के लिए $6.7 बिलियन की बड़ी रकम मांगी थी। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट गारंटी के पूरे प्रोजेक्ट की लागत $40 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान था।
1: कई बार ये सवाल उठता है कि भारत 2018 में ही क्यों फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से हट गया, पीछे हट गया। तब हम करते तो आप कहीं के कहीं पहुंचे होते, पर देखा जाए तो उस समय में बहुत महंगा पड़ रहा था, रशिया जॉइंट डेवलपमेंट की कीमत मांग रहा था, तब इनका अभी प्रोटोटाइप में था और भारत का DRDO और हमारा जो साइंस कम्युनिटी है वो सोचते थे कि हम देश के अंदर ही डेवलप करें, एमका डेवलप करें। तो कई बातें थी जिसकी वजह से उस समय में इस प्रोजेक्ट को छोड़ा गया।
0: Su-57 के ऑफर के बीच रूस ने एक लंबे इंतजार के बाद भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी बैटरी डिलीवर की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डिलीवरी ऐसे समय में हुई जब रूस खुद यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है और उसे काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा ये समझा जा सकता है कि भारत और रूस में कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है।
1: भारत और रूस की दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि रूस जबकि खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में जूझ रहा है और आए दिन उनके ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, एयर अटैक हो रहे हैं और उनकी काफ़ी रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने S-400 की चौथी बैटरी भारत को हैंड ओवर कर रहे हैं। साथ साथ में फिफ्थ बैटरी का भी ऑन शेड्यूल डिलीवरी का उनका प्लान है। तो दो तीन बातें कि क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक तो वो ये भी है कि यूक्रेन जो थे इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी तेज़ी से काम करती जा रही है और एक वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी बना के रखना चाहती है कि अगर वादा किया है तो डिलीवर करते हैं। साथ साथ में भारत के साथ एक बिजनेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक संबंध है, दोस्ताना संबंध है, क्योंकि भारत ने भी रूस के साथ खड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि भारत को रूस की जरूरत है, रूस को भी भारत की उतनी ज़रूरत है, क्योंकि जब भारत ने S-400 की डील की थी तब अमेरिका ने कहा था हम काटसा लगा देंगे, पर भारत ने फिर भी S-400 खरीदा और जो देखा कि कितना कामयाब साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में।
0: भारत और रूस के रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं और आंकड़ों के नजरिए से देखें तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में रूस की भूमिका सबसे बड़ी रही है। हालांकि कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा खरीद का डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन आज भी भारतीय सेनाओं के हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का ही है। भारत पारंपरिक रूप से हथियारों के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी तरह रूस पर निर्भर रहा है। भारत की तीनों सेनाएं जल थल नभ, तीनों में 60-70% हथियार रूसी निर्मित ही है। भारतीय सेना में वो कौन कौन से हथियार हैं जो रूस से लिए गए हैं, ये आपको बताते हैं। वायुसेना के बेड़े में शामिल Su-30 MKI और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी रूस से ही आयात किए गए हैं। एयर डिफेंस के लिए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, वहीं Aegis को भी सेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य मूल रूप से एक रूसी एडमिरल गोर्शकोव पोत है जिसे रिफर्बिश किया गया था। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म और T-72 अजय रूसी तकनीक पर ही आधारित है। आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो BM-21 ग्रैंड और BM-30 स्मर्श भी रूस से ही लिया गया है। अब भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता का नहीं है, बल्कि ये संयुक्त अनुसंधान और सह उत्पादन में बदल चुका है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और AK-203 राइफल्स इसके उदाहरण हैं। दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, दशक तक गुजर गए, दुनिया में बहुत कुछ बदला, बहुत सारी उथल पुथल हुई, कोई दोस्त बना, कोई दुश्मन बना, लेकिन एक दोस्ती जो अटूट है, जो कभी नहीं टूटी, वो थी भारत और रूस की दोस्ती। इतने दशकों बाद भी न तो इस दोस्ती को किसी की नजर लगी और न ही इस दोस्ती का भरोसा टूटा, यानी रूस ने भारत पर और भारत ने रूस पर आज भी भरोसा किया है। बीते 7 दशक में भले ही वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या फिर भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के दौर में और मजबूत हुआ। भारत और रूस के बीच हाल ही में एक अहम सैन्य समझौता लागू हुआ जिसे रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट कहा जाता है। ये समझौता फरवरी 2025 में साइन किया गया था और जनवरी 2026 में प्रभावी हो चुका है। रिलॉस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी, यानी रूस के सैन्य बंदरगाहों, एयरबेस और सुविधाओं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना कर सकेगी। ये इस्तेमाल सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। रिलॉस समझौते के तहत जंग या किसी अन्य सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि देश एक दूसरे की सेनाओं को जरूरत पड़ने पर ईंधन, सामान, मरम्मत जैसी मदद करेंगे। वहीं पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब है कि शांतिपूर्ण समय में देश की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करेंगी। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है।
1: देखा जाए तो भारत ने रूस के साथ जो रिलॉस साइन किया, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके तहत रशिया भारत में और भारत रशिया की बेसिस पर तकरीबन 3,000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 एयरक्राफ्ट तक रख सकते हैं, जहाँ पर उनकी रख रखाव और उनको तेल, पानी, राशन, इस तरह की चीज़ें प्रदान की जा सकती हैं, जो एक्सरसाइज के लिए, रखी के लिए और आपसी सद्भाव के लिए एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। देखिए, दोनों को फ़ायदा है इसमें कि क्योंकि भारत को उत्तरी समुद्री रास्ते, आर्कटिक रीजन, उस इलाकों में पहुँच मिल जाएगी, रशिया को हिंद महासागर और भारत के अरब सागर में बेसिस मिलेंगी जहाँ से वो अपना देखभाल कर सकते हैं, उनके शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। मिग 21 से शुरू हुआ ये सफर आज अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे एडवांस हथियारों तक पहुंच चुका है। S-400 को भारत ने साल 2018 में रूस से $5.4 अरब में खरीदा था। इसकी ताकत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नजर रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर तक है। वहीं टारगेट को ट्रैक करने की बात करें तो ये एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। रूस भी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को देने के लिए इच्छुक है। यही नहीं, रूस S-500 की तकनीक को भी भारत के साथ साझा करना चाहता है। इससे S-500 को भारत में बनाकर इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करने का रास्ता आसान बन सकता है। S-500 की तकनीक के ट्रांसफर से भारत आसानी से इसके रडार, इंटरसेप्टर, मिसाइलों और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के तहत बना सकेगा। अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है तो ये S-400 प्रोजेक्ट कुशा, MRSAM आकाश नेक्स्ट जेनरेशन और मौजूदा आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर सकता है। ये नेटवर्क कम ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष तक फैले खतरों को रोकने में सक्षम है। प्रोजेक्ट कुशा पहले ही भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कवच के रूप में विकसित हो रही है। वहीं S-500 का शामिल होना भारत को चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बढ़त दिला सकता है। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
6: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने हाल ही में उत्तराखंड के पवित्र और आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन किए। खास बात यह है कि उनका यह दौरा पूरी तरह गोपनीय रहा, जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन और आम लोगों को भी नहीं हो सकी। ऋषभ पंत सबसे पहले पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने श्रद्धा भाव के साथ ओम पर्वत के दर्शन किए। दर्शन के बाद ऋषभ पंत व्यास घाटी के नाभी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक होमस्टे में रात गुजारी। यात्रा के दौरान उनकी कार का टायर खराब हो जाने पर गुंजी क्षेत्र में तैनात ITBP के जवानों ने उनकी मदद की, जिसके बाद ऋषभ पंत ने जवानों के साथ भी समय बिताया और उनके साथ फोटोज भी क्लिक किए। तो पूरी तरह गोपनीय दौरा रहा और ऋषभ पंत ने यहाँ एक श्रद्धालु की तरह भक्त की तरह यह दौरा रहा, जिसमें आदि कैलाश के दर्शन करने पहुंचे, वहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और वहां के करीब गांव वालों से भी उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ फोटोज भी क्लिक किए और वहां भोजन का भी यहां पर उन्होंने सेवन किया, लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए। तस्वीरें आप देखिए उनकी सहजता का यह अंदाज आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जहां ऋषभ पंत ने आम लोगों से मुलाकात की और उन्हें फोटोग्राफ्स भी दिए। खेल के बाद अब बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत की। पिछले दिनों जानवी कपूर वेंकटेश्वर तिरुमाला मंदिर पहुंची थी, इस दौरान उन्होंने बैंगनी रंग की एक खास साड़ी पहनी हुई थी। मंदिर से उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद अब हर तरफ उस खास साड़ी की चर्चा हो रही है। कभी राजघरानों की शान माने जाने वाली यह साड़ी अब एक बार फिर सुर्खियों में है।

0: मन में श्रद्धा भाव, सादगी भरा अंदाज और बदन पर लिपटी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत। पिछले दिनों जब अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म बेड्डी की रिलीज से पहले भगवान वेंकटेश्वर की दर पर पहुंची, तो उनका यह रूप सोशल मीडिया पर छा गया। इस पावन मौके पर जाह्नवी ने कोटा की पारंपरिक और विश्व प्रसिद्ध सोन चिरैया साड़ी को चुना था। बैगनी रंग की इस अनुपम साड़ी की खूबसूरती हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही है। इस साड़ी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी महीन कारीगरी, जिसमें असली सोने और चांदी की जरी का इस्तेमाल किया गया है। इसके पारंपरिक फूलदार डिजाइन और हस्तकरघे की जीवंत कला का ऐसा अद्भुत संगम जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल ये साड़ी महज एक परिधान नहीं है, बल्कि राजस्थान के कोटा के बुनकरों की पीढ़ियों पुराने कौशल, उनकी मेहनत और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत दस्तावेज है। कविराज घरानों की शान माने जाने वाली कोटा की ये खास साड़ियाँ अब महिलाओं की पहली पसंद बन रही हैं। राधिका राजे गायकवाड़ से लेकर कंगना रनौत तक सोन चिरैया साड़ी की कदरदान है।
1: बहुत अच्छा लगता है जब हमारी जरी कोटा की जो पहचान है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है।
0: पिछले कुछ सालों में इस विलुप्त कला को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज कोटा की ये बुनाई राष्ट्र सीमाओं को पार कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहचान बना रही है। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
4: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: आज बाबा नीब करौड़ी महाराज के कैची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा महाप्रसाद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो रही कमर्शियल फ्लाइट आज लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान, एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे सफर। 180 मेधावी बच्चों का सहारा बने अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, स्कॉलरशिप के जरिए उठाएंगे पढ़ाई का पूरा खर्च, विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की छात्रों की लिस्ट। भारतीय सेना ने ड्रेस रेगुलेशन में किया बड़ा बदलाव, यूनिफॉर्म से हटाए अंग्रेजी दौर के कई निशान, परेड के दौरान तलवार लेकर चलना भी अनिवार्य नहीं। तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने अर्चा इतिहास, ओलंपिक चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा, धीरज कुमकुम ने किया शानदार प्रदर्शन। 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने रचा कीर्तिमान, 15 मिनट और 4.26 सेकंड का निकाला समय, फ्रांस में पारुल ने तोड़ा अपना ही नेशनल रिकॉर्ड। फ्रांस में पीएम मोदी ने भारत इनोवेट्स 2026 का किया उद्घाटन, बोले पीएम आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप केंद्र, राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत की नवाचार क्षमताओं को सराहा।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अनोखी पहचान बनाई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जानवी कपूर है। जी हाँ, जानवी कपूर। बीते 4 जून को जानवी कपूर की पेद्दी फिल्म रिलीज हुई तो जानवी के किरदार को लेकर हंगामा मच गया। लोग फिल्म के निर्देशक बुच्ची बाबू की आलोचना करने लगे कि उन्होंने जानवी के फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाई किया है। जानवी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचता रहा लेकिन वो शांत रही। आखिरकार बुच्ची बाबू को फिल्म से उन दृश्यों को हटाना पड़ा।

0: देखते हैं जो महफिल में बड़े बेपरवाह से अंदर से वो गुजरते हैं गहरी किसी राह से। इस जुमले में मौजूदा दौर की दिलकश अदाकारा जाह्नवी कपूर की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान जज है। 4 जून को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई बुची बाबू की पेदी फिल्म ने पहले ही हफ्ते में बेशक 345 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया, लेकिन जबरदस्त कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को भी ट्रिगर कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर बौद्धिक गलियारों तक में चर्चा गर्म हो गई कि पेदी में जाह्नवी कपूर के किरदार को अनावश्यक रूप से सेक्सुअलाइज किया गया है, उनके फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। दरअसल पेदी में जाह्नवी कपूर ने अच्छी अम्मा का किरदार निभाया है। फिल्म के निर्देशक बूची बाबू के मुताबिक अच्छी अम्मा का किरदार खास तौर से फिल्म के हीरो रामचरण के किरदार पेदी के बदलाव को दिखाने के लिए गढ़ा गया है। कह सकते हैं कि इस तर्क की आड़ में बूची बाबू ने जाह्नवी कपूर की एक्टिंग से ज्यादा उनके फिगर को ग्लैमराइज कर दिया। जाहिर है महिला अधिकार संगठनों से लेकर नेटिजन्स तक ने सोशल मीडिया पर फिल्म के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। भारी विरोध को देखते हुए बूची बाबू को आखिरकार ऐसे सेंसुअलाइज दृश्यों को फिल्म से हटाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बूची बाबू ने अपना पक्ष रखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पेदी के कुछ दृश्यों पर मिली प्रतिक्रिया को मैं गंभीरता से लेता हूँ। मैं पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगह महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाने का नहीं था। अगर फिल्म का कोई हिस्सा ऐसा लगा है तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, उनकी चिंताओं को समझता हूँ और खुले दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने उन दृश्यों को बदलने का फैसला किया है जो आपत्तिजनक लगे हैं। साउथ की फिल्मों में हीरोइन के फिगर को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड करने का चलन आज का नहीं है। दक्षिण भारत के फिल्मों का ये पुराना ट्रेंड है। फिर भी जया बच्चन से लेकर आशिकी फेम अनु अग्रवाल, करीना कपूर और नेशनल अवार्ड विनर नित्या मेनन तक ने जाह्नवी कपूर को सेक्सुअलाइज करने का किसी न किसी रूप में कड़ा विरोध किया। पर कमाल तो यह है कि जिस अभिनेत्री के किरदार को लेकर इतना ज्यादा बच क्रिएट हुआ, उसने पूरे मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बताया कि इस फिल्म को करने का फैसला उन्होंने क्यों लिया।
1: आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जस्ट माय कैरेक्टर, व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट व्हाट द फिल्म वाज सेइंग, हाउ मच इट मेंट टू आवर डायरेक्टर बुच्ची सर, एंड आई थिंक द politics, the social commentary, the cultural implications of what a story like this could do, all of these things resonated with me very deeply. So for those reasons alone, I wanted to be a part of this film.
0: Golden Spoon culture mein pali badi star kid ka khud ke bare mein flare up hui itni badi controversy ko lekar itna mature reaction aapko hairani mein dal sakta hai.
1: Deeply. So for those reasons alone, I wanted to be a part of this film.
0: गोल्डन स्पून कल्चर में पली बढ़ी स्टार किड का खुद के बारे में फ्लेयर अप हुई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी को लेकर इतना मैच्योर रिएक्शन आपको हैरानी में डाल सकता है। दरअसल बोनी कपूर जैसे बड़े फिल्म निर्माता और श्रीदेवी जैसी स्टार अदाकारा की दिलकश बेटी जाह्नवी की असल जिंदगी वो नहीं है जिसे पेदी के जरिए देखा और दिखाया गया। 4 जून को सिने प्रेमी सिल्वर स्क्रीन पर जब पेदी फिल्म की अच्छी अम्मा का ग्लैमरस लुक देखकर मदहोश हो रहे थे, उसी समय ये अभिनेत्री नंगे पांव 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा और 3,550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर पहुंच रही थी। अगाध श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश के मंदिर में माथा टेक कर फिल्म की सफलता का आशीर्वाद मांग रही थी।

0: 4 जून को जिस समय सिल्वर स्क्रीन पर अचियम्मा के सेंसुअल लुक्स को देखकर ऑडियंस क्रेजी हो रहे थे, उस वक्त जाह्नवी विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी में पूरी गरिमा के साथ भक्ति और अध्यात्म का कठिन रास्ता तय कर रही थीं। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी में जाह्नवी की अगाध आस्था का एक छोर उनकी माँ श्रीदेवी की बेपनाह यादों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीदेवी न सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके पर बालाजी के दरबार में जाती थी, बल्कि जीवन के बिजी शेड्यूल के दौरान भी जब मौका मिलता तो उनका जाप करती थी। जाह्नवी तिरुपति बालाजी के प्रति अपनी माँ की श्रद्धा आस्था और समर्पण से वाकिफ थी। इसीलिए 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी के मृत्यु के बाद माँ के हर जन्मदिन पर 13 अगस्त को वहाँ जाने का फैसला कर लिया।
1: आई थिंक तिरुपति से स्पेसिफिकली एक अलग जुड़ाव है। आई थिंक बचपन से मैं सुनती आई हूँ मम्मा के मुँह से के उनका भी एक अलग कनेक्शन रहा है बालाजी के साथ। हर बार उनका नाम जापती थी, नारायण नारायण नारायण, और कहती रहती थी कि हर साल उनके बर्थडे पर जब वो काम कर रही थी तो वो तिरुपति चढ़कर जाती थी। और शादी के बाद उन्होंने बंद कर लिया था, तो उनके गुजरने के बाद मैंने ठान लिया था कि हर साल उनके बर्थडे पर मैं जाऊंगी। तो जब पहली बार गई थी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी और बहुत शांति मिली मन में। तो उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि हर बड़े अवसर के पहले मैं तिरुपति चढ़ूंगी।
0: जाह्नवी और श्रीदेवी का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी के परंपरागत संबंधों तक सीमित नहीं है। श्रीदेवी के गुजर जाने के 8 साल बाद भी उनकी यादें, उनका स्नेह, प्यार सब जाह्नवी की जिंदगी की प्रखर धूप में छायेदार वृक्ष की सुरभित बयार की तरह सुखद एहसास करा जाता है। ये एक ऐसा अलौकिक रिश्ता है जहाँ एक के जाने के बाद भी दूसरे को उसके आने का इंतजार है।
1: I want to remember the good things. तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज में बात करती हूँ उनके बारे में और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही। मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था। I think it makes me feel like maybe like I don't know, she's traveling somewhere and she'll come back.
0: कुछ तो अलौकिक है माँ बेटी के रिश्ते में। जाह्नवी के जन्म के बाद श्रीदेवी आनंद की अलौकिक अनुभूति से सराबोर हो उठी थी। उन्हें तब ये नहीं लगा था कि उनकी गोद में कोई नन्ही नई मेहमान आई है, बल्कि ये लगा था मानो सदियों पहले बिछड़ा कोई अपना ही दोबारा से लौटकर दामन से लिपट गया है। श्रीदेवी ने अपनी बेटी का जाह्नवी नाम भी किसी खास एहसास से भर कर दिया था। दरअसल जाह्नवी 1997 में रिलीज हुई जुदाई फिल्म का एक करेक्टर था, इत्तेफाक से जिसे श्रीदेवी ने नहीं बल्कि उर्मिला मातोंडकर ने निभाया था। कमाल देखिए कि जुदाई 28 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी और जाह्नवी का जन्म उसके ठीक 6 दिन बाद 6 मार्च 1997 को हुआ। आपको बता दें कि जाह्नवी गंगा नदी का एक पर्यायवाची शब्द है जो अपनी पवित्रता और निर्मलता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीदेवी अपनी बेटी में गंगाजल जैसी पवित्रता और निर्मलता का भाव रखती थी। 80 और 90 के दशक की मेगा स्टार श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जीवन में जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा, जो परेशानी उन्हें उठानी पड़ी, वो उनकी बेटियों को उठानी पड़े।
1: वो हमेशा कहती थी मुझे कि मैंने जिंदगी भर मेहनत किया 4 साल की उम्र से ताकि आप मेरे दोनों बच्चे आराम की जिंदगी जिए। ये जिंदगी वो मानती थी कि हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम सख्त किस्म के इंसान तो है नहीं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो उनका ये सपना था कि मैंने इतना कुछ किया है ज़िंदगी में और अगर मैं मेरी बेटियों को आराम की ज़िंदगी नहीं दे पा रही और वो खुद इस चीज़ में कूद रहे हैं तो मैंने किया है क्या लाइफ में। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं मरी जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लो, कूद जाओ इस कुएं में।
0: साफ है कि जाह्नवी का फिल्मों में करियर बनाने का फैसला माँ को पसंद नहीं था। श्रीदेवी चाहती थी कि जाह्नवी डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों की सेवा करें, लेकिन जाह्नवी ने जब अपनी मंशा साफ कर दी कि एक्टिंग के सिवा वो कुछ और कर ही नहीं सकती, तो श्रीदेवी ने अच्छा एक्टर बनने के लिए बेटी को कुछ टिप्स दिए। श्रीदेवी ने जाह्नवी को जो टिप्स दिए वो अभिनय के पेशे को गरिमा से भर देने वाला है।
1: यू नो शी ऑलवेज यूज टू से कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है. एंड बिकॉज द कैमरा इज़ वेरी स्मार्ट, आई फील लाइक इफ़ यू आर नॉट अ गुड पर्सन देन इट शोज, एवरी थिंग फील्स फेक. एंड शी यूज टू से अगर दिल में गंदगी है या अगर यू नो इफ़ यू आर नॉट एबल टू लिव योर कैरेक्टर्स फीलिंग्स जेन्युइनली देन इट शोज. So that's one thing, and I think that it's ever since I was a kid, mom and dad have like drilled in my head, you need to be dedicated and be focused. So like you said, there's no substitute for hard work.
0: Janvi doctor banne ki maa ki khwaish to puri nahi kar payi, lekin har kasauti par acha insaan banne ki maa ki ichha puri karne ki bharsak koshish aaj bhi karti hain. Film industry mein actor ya actress ke beech एक हेल्दी कंपटीशन तो चलता ही रहता है, लेकिन कई बार तो अनहेल्दी भी बन जाता है. पर जानवी इस अनहेल्दी कंपटीशन से कोसों दूर हैं. उनसे ये पूछिए कि आप किस एक्ट्रेस को अपनी चुनौती मानती हैं, तो वे सह अस्तित्व की बात कह के सबका मुंह बंद कर देती हैं.
1: ये चुनौतीपन क्यों, क्योंकि हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? नहीं, ये शायद दूसरे लोगों के दिमाग में है. मुझे ऐसा लगता है कि हम सब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं और हम सब एक दूसरे के लिए खुश भी है और हो सकते हैं. और एज लॉन्ग एज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ, मुझे यू नो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, मैं एज एन ऑडियंस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए.
0: दरअसल जानवी से सवाल सारा अली खान और अनन्या पांडे को लेकर पूछा गया था. जानवी की मैच्योरिटी, उनकी तरबियत, मानवीय संवेदना, सोच और संस्कार आज की जेंजी या मिलेनियल्स के लिए अद्भुत प्रेरणा है. एक ऐसी लड़की जो इंडस्ट्री की अत्यंत प्रभावशाली फैमिली का हिस्सा है, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ उसे मिल सकता था, पर श्रीदेवी और बोनी कपूर की इस लखते जिगर ने पारिवारिक साये से निकलकर मेहनत और लगन से अपनी शख्सियत को गढ़ा है.
2: जानवी का अपनी मां श्रीदेवी से रिश्ता अनोखा और अलौकिक है. श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जो कष्ट उन्होंने झेला है वही उनकी बेटियों को भी झेलना पड़े, लेकिन जानवी ने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि वो अपनी शख्सियत को संघर्ष की भट्टी में तपकर गढ़ेंगी. इसलिए उन्होंने अपने को स्थापित करने के लिए दूसरे कलाकारों से कहीं ज्यादा मेहनत की.

0: ने के दम पर गहरे प्रभावित किया है। 6 मार्च 1997 को मुंबई में पैदा हुई जाह्नवी को जन्म से ही अभिनय के संस्कार मिलने लगे थे। अभिनय की बारीकियां उन्होंने बेशक अमेरिका के लॉस एंजलिस के द ली स्टारबर्ग थिएटर एंड फिल्म्स इंस्टीट्यूट से सीखा, लेकिन उसका ककहरा उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी और पिता बोनी कपूर से होश संभालने के बाद से ही सीखना शुरू कर दिया था।
1: Actually, in my family, it's the only thing that we discussed. It's the only thing that we knew as kids. Every time we'd, you know, sit at home and have a conversation with one another, it was always about films. Or even when we'd go out to spend time together, we'd go out to watch a movie, and you know, it was always a conversation at home. Holidays were always either dad's shooting schedules or mom's shooting schedules. So it was, we've grown up in that environment.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीदेवी और बोनी कपूर जैसी इंडस्ट्री की नामवर हस्तियों की बेटी होने की वजह से जाह्नवी को सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक पाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मनीष मल्होत्रा कपूर परिवार के फैमिली फ्रेंड थे, जो इत्तेफाक से करण जौहर जैसे इंडस्ट्री के स्टालवार्ड के भी करीबी थे। मनीष जाह्नवी को बचपन से जानते थे, लिहाजा उनके भीतर के पोटेंशियल को लेकर वो अक्सर करण से चर्चा करते रहते थे। करण जौहर निर्देशक शशांक खेतान के साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें उन्हें भारतीयता से भरी हुई एक हसीन और नए चेहरे की तलाश थी। इस दौरान जाह्नवी मनीष मल्होत्रा के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस आने जाने लगी थी। इसी बीच शशांक खेतान की नजर जाह्नवी पर टिक गई और उन्होंने बिना किसी लांग लपेट के फैसला कर लिया कि धड़क के लिए जिस लड़की की तलाश थी उसके लिए जाह्नवी पूरी तरह फिट हैं। उसके बाद जाह्नवी को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया।
1: मैं जाती थी उनके ऑफिस, आई थिंक 3-4 सीन्स दिए उन्होंने मुझे, और मैं जाके रट लेती थी और फिर परफॉर्म करती थी उनके लिए।
0: धड़क साइन करने के बाद जाह्नवी को एक अज्ञात डर सताने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि सेट पर लोग यही सोच रहे होंगे कि स्टार किड होने की वजह से ही उन्हें काम मिला है। इस डर की वजह से जाह्नवी इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो गईं। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मुझे जो मिल रहा है दरअसल मैं उसके लायक नहीं हूँ। इसीलिए वो सेट पर दूसरे कलाकारों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करती थी और पूरी यूनिट के साथ काफी हम्बल भी रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी को सेट पर आने से भी रोक दिया था, ताकि कोई ये ना कहे कि अपने जमाने के स्टार माँ बेटी की कमतरी को कवर करने के लिए आई हैं।
1: मेरे लिए ऐसा था कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और इसलिए लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, अब मैं ये अपने आप करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मदद मत कीजिएगा, आप सेट पे मत आइएगा प्लीज। तो मैं उनको सेट से दूर रखती थी।
0: माँ श्रीदेवी को सेट से दूर रखकर जाह्नवी धड़क की शूटिंग के दौरान पूरी जान झोंक रही थी, ताकि प्रीमियर में माँ जब बेटी की एक्टिंग देखें तो आह्लाद से ओत प्रोत हो जाए। पर जाह्नवी की उम्मीद की कश्ती जब साहिल के करीब पहुंचने ही वाली थी, उसी वक्त अचानक आए भयानक तूफान ने सतरंगे सपनों की रानाइयों को तहस नहस कर दिया। धड़क फिल्म की रिलीज से करीब 5 महीने पहले 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथ टब में दुर्घटनावश डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई। एक झटके में जाह्नवी की जिंदगी सन्नाटे में चली गई। धड़क फिल्म के प्रमोशन का उत्साह भी नहीं बचा। उस दौरान श्रीदेवी को लेकर जाह्नवी से जब कोई सवाल पूछा जाता तो वो दर्द की कशिश में ऐसे डूब जाती कि एक गहरी खामोशी के सिवा दूसरा कोई जवाब निकल ही नहीं पाता था।
1: उनके बारे में शायद अभी ज्यादा बात करने लगी हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप, आई लाइक टॉकिंग अबाउट, आई फील लाइक आई एम रिमेम्बरिंग हर, यू नो। लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत होता था। आई थिंक जब मैं धड़क प्रमोट कर रही थी, There wasn't a lot of time that had passed. Mm-hmm. वो बहुत fresh था मेरे दिमाग में सब कुछ, और मैं भाग रही थी मेरे सच्चाई से, और मैं काम को इस्तेमाल कर रही थी, so that was my escape. और जब भी कोई भी professional scenario में वो मुझे remind करते थे कि she's no more, I think मैं बिल्कुल shut, I just couldn't deal with it.
0: 20 जुलाई 2018 को रिलीज हुई धड़क में पार्थवी सिंह राठौर

0: नाम की मध्यम वर्गीय लड़की के किरदार को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया, लेकिन जाह्नवी अब भी माँ की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी। करीब 2 साल तक जाह्नवी पर्दे पर नजर नहीं आई। 12 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में जाह्नवी धड़क की पार्थिवी के उलट एक अलग ही मिजाज और अंदाज में दिखी। एयरफोर्स की पायलट गुंजन सक्सेना के वास्तविक जीवन पर बनी फिल्म में जाह्नवी ने उनकी जिंदगी की बारीकियों को इतनी जहनियत के साथ पर्दे पर उकेरा कि दर्शक और समीक्षक दोनों अभिभूत हो गए। दरअसल माँ की मौत के सदमे से उबरने की जद्दोजहद में जाह्नवी के दिलो दिमाग में ये एहसास गहरे उतर गया कि जिंदगी खुद में एक कड़ा इम्तहान है और इस इम्तहान से भागना समाधान नहीं है।
1: I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that jitna bhi mushkil ho, ye daur ko bhi guzarna hi hai. Aur jab ye daur guzrega, aap aur bhi you'll emerge out of it stronger. Aap aur bhi usse ubhar ke nikloge.
0: इस फलसफे को अपनाने के बाद जाह्नवी ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी। मिली, बवाल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मिस्टर एंड मिसेज माही, देवरा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों के जरिए जाह्नवी ने इंडस्ट्री में अपनी मां की कमी को भरसक पूरी करने की कोशिश की है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने जाह्नवी कपूर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ स्टूडियो।

0: पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम, और क्या है इसका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Today's jazz brings the movement forward. Modern voices, contemporary sound, and players shaping what jazz sounds like now. From Herbie Hancock to Pat Metheny, Esperanza Spalding, and more. Feel the jazzy energy with Deep Roots. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Jazz to start listening now.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: और अब आपको खबर दिखाते हैं विराट और करण की। बाल क्रिकेटर विराट कोहली और पंजाबी सिंगर म्यूजिशियन करण औजला की हो रही है, जो दिल्ली में एक मंच पर एक साथ दिखेंगे। आखिर क्या है मौका और क्यों ये दोनों साथ आ रहे हैं, जाने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: दिग्गज भारतीय क्रिकेटर, पूर्व कप्तान और शानदार बल्लेबाज विराट कोहली को आपने अक्सर क्रिकेट के पिच पर रनों की बरसात करते हुए देखा होगा। विराट कोहली को आपने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ऐतिहासिक जीत के बाद डांस फ्लोर पर धमाल मचाते हुए भी देखा होगा। विराट को आपने कई मैचों के दौरान फैंस को उत्साहित करने के लिए मैदान पर थिरकते हुए भी देखा होगा। इतना ही नहीं, विराट को आपने कॉमेडी शो में मस्ती करते हुए और हंसाते हुए भी देखा होगा। यही नहीं, आपको समय समय पर धर्म और अध्यात्म के प्रति विराट कोहली की आस्था की तस्वीरें भी देखने को मिलती रही होंगी। लेकिन अब विराट एक नए अंदाज में सामने आ रहे हैं। आखिर क्या करने वाले हैं विराट, आखिर क्या दिखाने जा रहे हैं विराट अपने फैंस और दर्शकों के सामने? अब क्या लेकर आ रहे हैं विराट? क्या आने वाले समय में विराट किसी म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ सकते हैं? ये सब अभी सस्पेंस ही है। लेकिन विराट ने खुद इसके बारे में जो संकेत दिया है, उससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विराट के फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ गई है। दरअसल विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसको लेकर लोगों के जहन में तमाम सवाल उठने लगे हैं। इन तस्वीरों में विराट मशहूर पंजाबी पॉप स्टार करण ओजला के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में पीठ पर 1 और 8 नंबर छपी काली टी शर्ट पहने दोनों सितारे हजारों बत्तियों से जगमगाते खचाखच भरे हॉल में दर्शकों के सामने खड़े हैं। विराट ने इसके कैप्शन में लिखा है, करण का स्वागत है, मंच हमारा है, 21 जून दिल्ली। यानी ये तो साफ है कि 21 जून को दिल्ली में होने जा रहे एक कार्यक्रम में विराट और करण ओजला एक ही मंच पर साथ साथ होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 जून को दिल्ली में हाई प्रोफाइल क्रॉसओवर होने जा रहा है। इसमें स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और पंजाबी पॉप स्टार करण ओजला एक साथ नजर आएंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस दौरान अपने अपने क्षेत्र के दो बड़े नाम एक ही मंच पर एक साथ होंगे। एक तरफ रन मशीन किंग कोहली होंगे तो दूसरी तरफ गीतों के सरताज करण। दरअसल ये दोनों सितारे अगले रविवार को राजधानी में होने वाले 1-8 इवेंट में एक साथ नजर आएंगे। विराट कोहली इस ब्रांड की पहचान बनाने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। वही अब करण ओजला भी इससे जुड़ रहे हैं। 1-8 एक लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका फोकस फिटनेस, फैशन और आधुनिक जीवन शैली से है। करण ओजला और 1-8 ग्लोबल ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 21 जून को 1-8 ग्लोबल प्रीमियर की पुष्टि कर दी है। ऑनलाइन की गई इस जानकारी ने विराट और करण के फैंस के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है, क्योंकि तमाम प्रशंसक क्रिकेट के दिग्गज और पंजाबी हिट मेकर को एक साथ मंच पर देखने के लिए बेताब है। लोगों की दीवानगी इस हद तक जा पहुंची कि इंस्टा पर इस सिलसिले में किए गए एक पोस्ट को कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स मिल गए। अब यशोभूमि में 1-8 इवेंट में करण ओजला और विराट कोहली के क्रॉसओवर को लेकर फैंस को 21 जून का बेसब्री से इंतजार है, ताकि ये पता चले कि कोहली और ओजला दुनिया के सामने क्या नया लेकर आ रहे हैं। मुंबई से सना फरजीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
3: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
4: सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
5: आज बाबा नीब करौली महाराज के कैची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा महाप्रसाद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो रही कमर्शियल फ्लाइट आज लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान, एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे सफर। 180 मेधावी बच्चों का सहारा बने अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, स्कॉलरशिप के जरिए उठाएंगे पढ़ाई का पूरा खर्च, विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की छात्रों की लिस्ट। भारतीय सेना ने ड्रेस रेगुलेशन में किया बड़ा बदलाव, यूनिफॉर्म से हटाए अंग्रेजी दौर के कई निशान, परेड के दौरान तलवार लेकर चलना भी अनिवार्य नहीं। तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने अर्चा इतिहास, ओलंपिक चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा, धीरज कुमकुम ने किया शानदार प्रदर्शन। 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने रचा कीर्तिमान, 15:04.26 का निकाला समय, फ्रांस में पारुल ने तोड़ा अपना ही नेशनल रिकॉर्ड। फ्रांस में पीएम मोदी ने भारत इनोवेट्स 2026 का किया उद्घाटन, बोले पीएम आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप केंद्र, राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत की नवाचार क्षमताओं को सराहा।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

सुकोई 30 MKI, मैग 29 फाइटर जेट, MI जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर, S-400 जैसा बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम, INS विक्रमादित्य जैसा विशाल एयरक्राफ्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और रूस रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। दुनिया में बहुत उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती कभी भी रुकी नहीं, कभी भी थमी नहीं। आज भी रूस भारत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है।

0: रूस ने भारत को अपना पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट ऑफर किया है। साथ ही रूस ने भारत को ये प्रस्ताव भी दिया है कि वो अपने फाइटर जेट Su-57 की टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा।
1: भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है।
0: रूस की पेशकश सिर्फ विमान बिक्री तक सीमित नहीं है। प्रस्ताव में संवेदनशील सोर्स कोड तक पहुंच, व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की जरूरतों के अनुरूप दो सीटों वाले Su-57D वेरिएंट के विकास की संभावना भी शामिल है। ये भारत को स्वदेशी हथियार, सेंसर और एवेनिक्स को बिना किसी विदेशी मंजूरी के विमान में इंटीग्रेट करने की स्वतंत्रता देता है। रक्षा क्षेत्र में इस रफ्तार का तकनीकी हस्तांतरण बेहद दुर्लभ माना जाता है।

0: देखा जाए तो समय में रशिया के साथ जो बातचीत चल रही है, जहां पर SU-57 का सोर्स कोड TOT यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करना, भारत में ही व्यापक प्रोडक्शन करना और देश की जरूरत के हिसाब से 2-सीटर SU-57 का ऑफर देखे तो कई तरह से अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके द्वारा आज जो भारत के अंदर ही प्रोडक्शन होगा, HAL इसमें समर्थ है कि रशिया के द्वारा ऑफर की हुई टेक्नोलॉजी को हम बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करके बना सकते हैं। दूसरी बात ये ट्रस्टेड है, टेस्टेड है। तीसरी बात यह है कि ये आज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से और कोड ट्रांसफ़र की वजह से आज हमारा जो अपना है अस्त्र है, रुद्रम है, जो मिसाइल सिस्टम है, सर्विलेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, इसको इसके ऊपर इंटेग्रेट कर सकते हैं।
1: भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ रक्षा खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है। दोनों देश संयुक्त शोध और तकनीकी विकास पर भी साथ काम करते हैं और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

0: हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे।
1: भारत को रूस से Su-57 या S-500 एयर डिफेंस खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि नए भारत ने हमेशा राष्ट्र हितों से प्रेरित होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। भारत एक संप्रभु देश है, वो उन उत्पादों को चुनने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें वो अपने लिए सबसे आधुनिक और सबसे उपयुक्त मानता है।

दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह ये है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है, और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे।

भारतीय वायुसेना की पांचवी पीढ़ी के विमान की तलाश और एएमसीए में देरी के बीच Su-57 का प्रस्ताव भारत रूस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दे सकता है। भारतीय वायुसेना की पांचवी पीढ़ी के विमान की तलाश और एएमसीए में देरी के बीच Su-57 का प्रस्ताव भारत रूस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दे सकता है।

0: चीन ने पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट दे दिया है और चीन का ये ऑफर अब पुतिन के लिए संभावनाएं खोलता है कि वो जल्दी से जल्दी भारत को भी इसी तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दे। वैसे अभी तक S-400 रूस की तरफ से मिल चुका है और अगर Su-57 को लेकर रूस और भारत के बीच साझेदारी होती है, इस पर काम होता है, तो यकीन मानिए ये दोनों देशों के बीच में एक नया रक्षा समझौता और साथ ही साथ साझेदारी साबित होगी। अगर भारत Su-57 प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इसके कई फायदे होंगे। स्वदेशी उत्पादन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन और तकनीकी ज्ञान में इजाफा होगा, भविष्य में AMCA को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। भारत अपनी स्वदेशी क्षमता को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए हर विदेशी सौदा ऐसा होना चाहिए जो आत्मनिर्भरता को बढ़ाए न कि कम करे।
1: अगर भारत और रूस मिलकर Su-57 प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो देखा जाए तो एक जब बड़ी इंडस्ट्री खुलती है तो इससे एक पूरा सिस्टम ही बदली हो जाता है, एक नेक्स्ट गैप अप हो जाता है। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी भारत को, भारत को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक जनरेशन होगा, इंसिलर इंडस्ट्री खुल जाएंगी, साथ साथ में मैन पावर एक ट्रेन हो जाएगी, इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में सोच बदली हो जाएगी, हमारी ऑपरेशन डॉक्ट्रिन बदली हो जाएगी, एक्सपोर्ट के लिए हमको बेस मिल जाएगा और देश में बनने से एक हम कई टेक्नोलॉजी को अपने एमका के लिए या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर जॉइंट वेंचर होता है तो उसका एक बहुत फायदा होता है क्योंकि कई पश्चिमी देश इसके लिए तैयार नहीं होते हैं।

0: रूस के Su-57 के ऑफर से सवाल उठता है कि क्या भारत आने वाले दशक में चीन के तेजी से बढ़ते एयर पावर का मुकाबला करने के लिए रूस की तरफ लौटेगा या फिर पूरी ताकत अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर लगाएगा।
1: भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान AMC 2035 से पहले तैयार होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चीन G20 के साथ अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, पाकिस्तान लगातार उसका साथ दे रहा है, ऐसे में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की फ्लीट एक तो कम हो रही है और दूसरा चीन के मुकाबले थोड़ी कमजोर साबित होती है।
0: बढ़ती चुनौतियों के बीच वायुसेना को एक ब्रिज गैप फाइटर की जरूरत है जो दुश्मन के स्टेल्थ विमानों, एडवांस एयर डिफेंस और आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सके। Su-57 इसी गैप को भरने का मजबूत विकल्प बन सकता है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका कॉम्बैक रेंज 3500 किलोमीटर है। करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस फाइटर जेट की सीलिंग रेंज यानी कि ऊंचाई पर जाने की क्षमता 65,000 फीट है, जो अपने साथ करीब 10,000 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। बेहतर स्टेल्थ क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस Su-57 हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है।
1: पुतिन का Su-57 का ऑफर केवल एक हथियारों की डील भर सीमित नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक संदेश भी है। पुतिन दरअसल दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि रूस और भारत आज भी रक्षा के क्षेत्र में साझेदार है और दोनों देशों की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या भारत को एक बार फिर से रूस के साथ आना चाहिए, यानी 2018 में जिसे वो पीछे छोड़ चुका है, क्या वापस उसी रास्ते पर चलना चाहिए।
0: भारत कभी Su-57 प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका है, उस समय इसे FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता था। साल 2007 में भारत ने FGFA प्रोजेक्ट शुरू किया जो Su-57 पर आधारित था, लेकिन 2018 में भारत इससे बाहर हो गया क्योंकि स्टेल्थ और कॉस्ट में बात नहीं बन पाई। दरअसल शुरुआत में ही रूस ने सिर्फ 4 प्रोटोटाइप के लिए $6.7 बिलियन की बड़ी रकम मांगी थी। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट गारंटी के पूरे प्रोजेक्ट की लागत $40 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान था।
2: कई बार ये सवाल उठता है कि भारत 2018 में ही क्यों फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से हट गया, पीछे हट गया। तब हम करते तो आप कहीं के कहीं पहुंचे होते, पर देखा जाए तो उस समय में बहुत महंगा पड़ रहा था, रशिया जॉइंट डेवलपमेंट की कीमत मांग रहा था, तब इनका अभी प्रोटोटाइप में था और भारत का DRDO और हमारा जो साइंस कम्युनिटी है वो सोचते थे कि हम देश के अंदर ही डेवलप करें, MCA डेवलप करें, तो कई बातें थी जिसकी वजह से उस समय में इस प्रोजेक्ट को छोड़ा गया।
0: Su-57 के ऑफर के बीच रूस ने एक लंबे इंतजार के बाद भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी बैटरी डिलीवर की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डिलीवरी ऐसे समय में हुई जब रूस खुद यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है और उसे काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा ये समझा जा सकता है कि भारत और रूस में कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है।
2: भारत और रूस की दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि रूस जबकि खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में जूझ रहा है और आए दिन उनके ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, एयर अटैक हो रहे हैं और उनकी काफ़ी रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने S-400 की चौथी बैटरी भारत को हैंड ओवर कर रहे हैं, साथ साथ में फिफ्थ बैटरी का भी ऑन शेड्यूल डिलीवरी का उनका प्लान है। तो दो तीन बातें कि क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक तो वो ये भी है कि यूक्रेन जो थे इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी तेज़ी से काम करती जा रही है और एक वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी बना के रखना चाहती है कि अगर वादा किया है तो डिलीवर करते हैं। साथ साथ में भारत के साथ एक बिजनेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक संबंध है, दोस्ताना संबंध है, क्योंकि भारत ने भी रूस के साथ खड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि भारत को रूस की जरूरत है, रूस को भी भारत की उतनी ज़रूरत है, क्योंकि जब भारत ने S-400 की डील की थी तब अमेरिका ने कहा था हम काट सा लगा देंगे, पर भारत ने फिर भी S-400 खरीदा और जो देखा कि कितना कामयाब साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में।
0: भारत और रूस के रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं और आंकड़ों के नजरिए से देखें तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में रूस की भूमिका सबसे बड़ी रही है। हालांकि कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा खरीद का डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन आज भी भारतीय सेनाओं के हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का ही है। भारत पारंपरिक रूप से हथियारों के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी तरह रूस पर निर्भर रहा है। भारत की तीनों सेनाएं जल थल नभ, तीनों में 60-70% हथियार रूसी निर्मित ही है। भारतीय सेना में वो कौन कौन से हथियार हैं जो रूस से लिए गए हैं, ये आपको बताते हैं। वायुसेना के बेड़े में शामिल Su-30 MKI और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी रूस से ही आयात किए गए हैं। एयर डिफेंस के लिए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, वहीं इग्ला-S को भी सेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य मूल रूप से एक रूसी एडमिरल गोर्शकोव पोत है जिसे रिफर्बिश किया गया था। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक T-90 भीष्म और T-72 अजय रूसी तकनीक पर ही आधारित है। आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो BM-21 ग्रैंड और BM-30 स्मर्श भी रूस से ही लिया गया है। अब भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता का नहीं है, बल्कि ये संयुक्त अनुसंधान और सह उत्पादन में बदल चुका है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और AK-203 राइफल्स इसके उदाहरण हैं। दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, दशक तक गुजर गए, दुनिया में बहुत कुछ बदला, बहुत सारी उथल पुथल हुई, कोई दोस्त बना, कोई दुश्मन बना, लेकिन एक दोस्ती जो अटूट है, जो कभी नहीं टूटी, वो थी भारत और रूस की दोस्ती। इतने दशकों बाद भी ना तो इस दोस्ती को किसी की नजर लगी और ना ही इस दोस्ती का भरोसा टूटा, यानी रूस ने भारत पर और भारत ने रूस पर आज भी भरोसा किया है। 7 दशक में भले ही वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या फिर भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के दौर में और मजबूत हुआ। भारत और रूस के बीच हाल ही में एक अहम सैन्य समझौता लागू हुआ जिसे रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट कहा जाता है। ये समझौता फरवरी 2025 में साइन किया गया था और जनवरी 2026 में प्रभावी हो चुका है। रिलॉस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी, यानी रूस के सैन्य बंदरगाहों, एयरबेस और सुविधाओं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना कर सकेगी। ये इस्तेमाल सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। रिलॉस समझौते के तहत जंग या किसी अन्य सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि देश एक दूसरे की सेनाओं को जरूरत पड़ने पर ईंधन, सामान, मरम्मत जैसी मदद करेंगे। वहीं पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब है कि शांतिपूर्ण समय में देश की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करेंगी। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है।
2: देखा जाए तो भारत ने रूस के साथ जो रिलॉस साइन किया, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके तहत रशिया भारत में और भारत रशिया की बेसिस पर तकरीबन 3,000 सैनिक, 5 युद्ध पोत और 10 एयरक्राफ्ट तक रख सकते हैं, जहां पर उनके रख रखाव और उनको तेल, पानी, राशन, इस तरह की चीज़ें प्रदान की जा सकती हैं जो एक्साइज के लिए, रखी के लिए और आपसी सद्भाव के लिए एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। देखिए, दोनों को फ़ायदा है इसमें कि क्योंकि भारत को उत्तरी समुद्री रास्ते, आर्कटिक रीजन, उस इलाकों में पहुँच मिल जाएगी, रशिया को हिंद महासागर और भारत के अरब सागर में बेसिस मिलेंगी जहाँ से वो अपना देखभाल कर सकते हैं, उनके शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। मिग 21 से शुरू हुआ ये सफर आज अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे एडवांस हथियारों तक पहुंच चुका है। S-400 को भारत ने साल 2018 में रूस से $5.4 अरब में खरीदा था। इसकी ताकत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नजर रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर तक है। वहीं टारगेट को ट्रैक करने की बात करें तो ये एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। रूस भी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को देने के लिए इच्छुक है। यही नहीं, रूस S-500 की तकनीक को भी भारत के साथ साझा करना चाहता है। इससे S-500 को भारत में बनाकर इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करने का रास्ता आसान बन सकता है। S-500 की तकनीक के ट्रांसफर से भारत आसानी से इसके रडार, इंटरसेप्टर, मिसाइलों और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के तहत बना सकेगा। अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है तो ये S-400 प्रोजेक्ट कुशा, MRSAM आकाश नेक्स्ट जेनरेशन और मौजूदा आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर सकता है। ये नेटवर्क कम ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष तक फैले खतरों को रोकने में सक्षम है। प्रोजेक्ट कुशा पहले ही भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कवच के रूप में विकसित हो रही है। वहीं S-500 का शामिल होना भारत को चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बढ़त दिला सकता है। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक Today, man.
5: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: Good news today is really good. In this case, there are no news of the news and the news.
6: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने हाल ही में उत्तराखंड के पवित्र और आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन किए। खास बात यह है कि उनका यह दौरा पूरी तरह गोपनीय रहा, जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन और आम लोगों को भी नहीं हो सकी। ऋषभ पंत सबसे पहले पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने श्रद्धा भाव के साथ ओम पर्वत के दर्शन किए। दर्शन के बाद ऋषभ पंत व्यास घाटी के नाभि गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक होम स्टे में रात गुजारी। यात्रा के दौरान उनकी कार का टायर खराब हो जाने पर गुंजी क्षेत्र में तैनात ITBP के जवानों ने उनकी मदद की, जिसके बाद ऋषभ पंत ने जवानों के साथ भी समय बिताया और उनके साथ फोटोज भी क्लिक किए। तो पूरी तरह गोपनीय दौरा रहा और ऋषभ पंत ने यहाँ एक श्रद्धालु की तरह भक्त की तरह यह दौरा रहा, जिसमें आदि कैलाश के दर्शन करने पहुंचे, वहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और वहां के करीब गांव वालों से भी उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ फोटोज भी क्लिक किए और वहां भोजन का भी यहां पर उन्होंने सेवन किया, लोगों को फोटोग्राफ भी दिए। तस्वीरें आप देखिए उनकी सहजता का यह अंदाज आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जहां ऋषभ पंत ने आम लोगों से मुलाकात की और उन्हें फोटोग्राफ्स भी दिए। खेल के बाद अब बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत की। पिछले दिनों जानवी कपूर वेंकटेश्वर तिरुमाला मंदिर पहुंची थी, इस दौरान उन्होंने बैंगनी रंग की एक खास साड़ी पहनी हुई थी। मंदिर से उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद अब हर तरफ उस खास साड़ी की चर्चा हो रही है। कभी राजघरानों की शान माने जाने वाली यह साड़ी अब एक बार फिर सुर्खियों में है।

0: मन में श्रद्धा भाव, सादगी भरा अंदाज और बदन पर लिपटी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत। पिछले दिनों जब अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म बेड्डी की रिलीज से पहले भगवान वेंकटेश्वर की दर पर पहुंची, तो उनका यह रूप सोशल मीडिया पर छा गया। इस पावन मौके पर जाह्नवी ने कोटा की पारंपरिक और विश्व प्रसिद्ध सोन चिरैया साड़ी को चुना था। बैगनी रंग की इस अनुपम साड़ी की खूबसूरती हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही है। इस साड़ी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी महीन कारीगरी, जिसमें असली सोने और चांदी की जरी का इस्तेमाल किया गया है। इसके पारंपरिक फूलदार डिजाइन और हस्तकरघे की जीवंत कला का ऐसा अद्भुत संगम, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल ये साड़ी महज एक परिधान नहीं है, बल्कि राजस्थान की कोटा के बुनकरों की पीढ़ियों पुराने कौशल, उनकी मेहनत और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत दस्तावेज है। कभी राज घरानों की शान माने जाने वाली कोटा की ये खास साड़ियाँ अब महिलाओं की पहली पसंद बन रही हैं। राधिका राजे गायकवाड़ से लेकर कंगना रनौत तक सोन चिरैया साड़ी की कदरदान है।
1: बहुत अच्छा लगता है जो हमारी जरी कोटा की जो पहचान है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है।
0: पिछले कुछ सालों में इस विलुप्त कला को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज कोटा की ये बुनाई राष्ट्र सीमाओं को पार कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहचान बना रही है। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
4: You know, the breaking news is, this started long before he even announced for president. It was
3: to live sports action.
5: To the near side corner, to wrap around, he scores!
3: And your favorite music.
6: You and I stargazing.
3: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
7: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: आज बाबा नीब करौड़ी महाराज के कैची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा महाप्रसाद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो रही कमर्शियल फ्लाइट आज लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान, एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे सफर। 180 मेधावी बच्चों का सहारा बने अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, स्कॉलरशिप के जरिए उठाएंगे पढ़ाई का पूरा खर्च, विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की छात्रों की लिस्ट। भारतीय सेना ने ड्रेस रेगुलेशन में किया बड़ा बदलाव, यूनिफॉर्म से हटाए अंग्रेजी दौर के कई निशान, परेड के दौरान तलवार लेकर चलना भी अनिवार्य नहीं। तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने अर्चा इतिहास, ओलंपिक चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा, धीरज कुमकुम ने किया शानदार प्रदर्शन। 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने रचा कीर्तिमान, 15 मिनट और 4.26 सेकंड का निकाला समय, फ्रांस में पारुल ने तोड़ा अपना ही नेशनल रिकॉर्ड। फ्रांस में पीएम मोदी ने भारत इनोवेट्स 2026 का किया उद्घाटन, बोले पीएम आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप केंद्र, राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत की नवाचार क्षमताओं को सराहा।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अनोखी पहचान बनाई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जानवी कपूर है। जी हाँ, जानवी कपूर। बीते 4 जून को जानवी कपूर की पेद्दी फिल्म रिलीज हुई तो जानवी के किरदार को लेकर हंगामा मच गया। लोग फिल्म के निर्देशक बुच्ची बाबू की आलोचना करने लगे कि उन्होंने जानवी के फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाई किया है। जानवी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचता रहा लेकिन वो शांत रही। आखिरकार बुच्ची बाबू को फिल्म से उन दृश्यों को हटाना पड़ा।

0: दिखते हैं जो महफिल में बड़े बेपरवाह से, अंदर से वो गुजरते हैं गहरी किसी राह से। इस जुमले में मौजूदा दौर की दिलकश अदाकारा जाह्नवी कपूर की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान जज्ब है। 4 जून को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई बुची बाबू की पेदी फिल्म ने पहले ही हफ्ते में बेशक 345 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया, लेकिन जबरदस्त कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को भी ट्रिगर कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर बौद्धिक गलियारों तक में चर्चा गर्म हो गई कि पेदी में जाह्नवी कपूर के किरदार को अनावश्यक रूप से सेक्सुअलाइज किया गया है, उनके फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। दरअसल पेदी में जाह्नवी कपूर ने अच्छी अम्मा का किरदार निभाया है। फिल्म के निर्देशक बूची बाबू के मुताबिक अच्छी अम्मा का किरदार खास तौर से फिल्म के हीरो रामचरण के किरदार पेदी के बदलाव को दिखाने के लिए गढ़ा गया है। कह सकते हैं कि इस तर्क की आड़ में बूची बाबू ने जाह्नवी कपूर की एक्टिंग से ज्यादा उनके फिगर को ग्लैमराइज कर दिया। जाहिर है महिला अधिकार संगठनों से लेकर नेटिजन्स तक ने सोशल मीडिया पर फिल्म के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। भारी विरोध को देखते हुए बूची बाबू को आखिरकार ऐसे सेंसुअलाइज दृश्यों को फिल्म से हटाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बूची बाबू ने अपना पक्ष रखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पेदी के कुछ दृश्यों पर मिली प्रतिक्रिया को मैं गंभीरता से लेता हूं। मैं पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगह महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाने का नहीं था। अगर फिल्म का कोई हिस्सा ऐसा लगा है तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, उनकी चिंताओं को समझता हूं और खुले दिल से माफी मांगता हूं। मैंने उन दृश्यों को बदलने का फैसला किया है जो आपत्तिजनक लगे हैं। साउथ की फिल्मों में हीरोइन के फिगर को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड करने का चलन आज का नहीं है, दक्षिण भारत के फिल्मों का ये पुराना ट्रेंड है। फिर भी जया बच्चन से लेकर आशिकी फेम अनु अग्रवाल, करीना कपूर और नेशनल अवार्ड विनर नित्या मेनन तक ने जाह्नवी कपूर को सेक्सुअलाइज करने का किसी न किसी रूप में कड़ा विरोध किया। पर कमाल तो यह है कि जिस अभिनेत्री के किरदार को लेकर इतना ज्यादा बच क्रिएट हुआ, उसने पूरे मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बताया कि इस फिल्म को करने का फैसला उन्होंने क्यों लिया।
1: आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जस्ट माई कैरेक्टर, व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट, आई फेल्ट वेरी स्ट्रॉन्गली अबाउट व्हाट द फिल्म वाज सेइंग, हाउ मच इट मेंट टू आवर डायरेक्टर बुच्ची सर, एंड आई थिंक द politics, the social commentary, the cultural implications of what a story like this could do, all of these things resonated with me very deeply. So for those reasons alone, I wanted to be a part of this film.
0: Golden Spoon culture mein pali badi star kid ka khud ke bare mein flare up hui itni badi controversy ko lekar itna mature reaction aapko hairani mein dal sakta hai. Darasal Boni Kapoor jaise bade film nirmata और श्रीदेवी जैसी स्टार अदाकारा की दिलकश बेटी जाह्नवी की असल जिंदगी वो नहीं है जिसे पेदी के जरिए देखा और दिखाया गया। 4 जून को सिने प्रेमी सिल्वर स्क्रीन पर जब पेदी फिल्म की अच्छी अम्मा का ग्लैमरस लुक देखकर मदहोश हो रहे थे, उसी समय ये अभिनेत्री नंगे पांव 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा और 3,550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर पहुंच रही थी। अगाध श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश के मंदिर में माथा टेक कर फिल्म की सफलता का आशीर्वाद मांग रही थीं।

0: 4 जून को जिस समय सिल्वर स्क्रीन पर अचियम्मा के सेंसुअल लुक्स को देखकर ऑडियंस क्रेजी हो रहे थे, उस वक्त जाह्नवी विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी में पूरी गरिमा के साथ भक्ति और अध्यात्म का कठिन रास्ता तय कर रही थी। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी में जाह्नवी की अगाध आस्था का एक छोर उनकी माँ श्रीदेवी की बेपनाह यादों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीदेवी न सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके पर बालाजी के दरबार में जाती थी, बल्कि जीवन के बिजी शेड्यूल के दौरान भी जब मौका मिलता तो उनका जाप करती थी। जाह्नवी तिरुपति बालाजी के प्रति अपनी माँ की श्रद्धा, आस्था और समर्पण से वाकिफ थी। इसीलिए 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी के मृत्यु के बाद माँ के हर जन्मदिन पर 13 अगस्त को वहाँ जाने का फैसला कर लिया।
1: आई थिंक तिरुपति से स्पेसिफिकली एक अलग जुड़ाव है। आई थिंक बचपन से मैं सुनती आई हूँ मम्मा के मुँह से कि उनका भी एक अलग कनेक्शन रहा है बालाजी के साथ। हर बार उनका नाम जापती थी, नारायण नारायण नारायण, और कहती रहती थी कि हर साल उनके बर्थडे पर जब वो काम कर रही थी तो वो तिरुपति चढ़कर जाती थी। और शादी के बाद उन्होंने बंद कर लिया था, तो उनके गुजरने के बाद मैंने ठान लिया था कि हर साल उनके बर्थडे पर मैं जाऊंगी। तो जब पहली बार गई थी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी और बहुत शांति मिली मन में। तो उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि हर बड़े अवसर के पहले मैं तिरुपति चढ़ूंगी।
0: जाह्नवी और श्रीदेवी का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी के परंपरागत संबंधों तक सीमित नहीं है। श्रीदेवी के गुजर जाने के 8 साल बाद भी उनकी यादें, उनका स्नेह, प्यार सब जाह्नवी की जिंदगी की प्रखर धूप में छायेदार वृक्ष की सुरभित बयार की तरह सुखद एहसास करा जाता है। ये एक ऐसा अलौकिक रिश्ता है जहां एक के जाने के बाद भी दूसरे को उसके आने का इंतजार है।
1: I want to remember the good things. तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज में बात करती हूँ उनके बारे में और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही। मम्मा कहता
0: है जहाँ एक के जाने के बाद भी दूसरे को उसके आने का इंतजार है।
1: I want to remember the good things. तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज में बात करती हूँ उनके बारे में और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही। मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था। आई थिंक इट मेक्स मी फील लाइक
0: कुछ तो अलौकिक है माँ बेटी के रिश्ते में। जाह्नवी के जन्म के बाद श्रीदेवी आनंद की अलौकिक अनुभूति से सराबोर हो उठी थी। उन्हें तब ये नहीं लगा था कि उनकी गोद में कोई नन्ही नई मेहमान आई है, बल्कि ये लगा था मानो सदियों पहले बिछड़ा कोई अपना ही दोबारा से लौट कर दामन से लिपट गया है। श्रीदेवी ने अपनी बेटी का जाह्नवी नाम भी किसी खास एहसास से भर कर दिया था। दरअसल जाह्नवी 1997 में रिलीज हुई जुदाई फिल्म का एक करेक्टर था, इत्तेफाक से जिसे श्रीदेवी ने नहीं बल्कि उर्मिला मानतोड़कर ने निभाया था। कमाल देखिए कि जुदाई 28 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी और जाह्नवी का जन्म उसके ठीक 6 दिन बाद 6 मार्च 1997 को हुआ। आपको बता दें कि जाह्नवी गंगा नदी का एक पर्यायवाची शब्द है जो अपनी पवित्रता और निर्मलता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीदेवी अपनी बेटी में गंगाजल जैसी पवित्रता और निर्मलता का भाव रखती थी। 80 और 90 के दशक की मेगा स्टार श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जीवन में जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा, जो परेशानी उन्हें उठानी पड़ी, वो उनकी बेटियों को उठानी पड़े।
1: वो हमेशा कहती थी मुझे कि मैंने जिंदगी भर मेहनत की है 4 साल की उम्र से ताकि आप मेरे दोनों बच्चे आराम की जिंदगी जिए। ये जिंदगी वो मानती थी कि हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम सख्त किस्म के इंसान तो है नहीं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो उनका ये सपना था कि मैंने इतना कुछ किया जिंदगी में और अगर मैं मेरी बेटियों को आराम की जिंदगी नहीं दे पा रही और वो खुद इस चीज में कूद रहे हैं तो मैंने किया ही क्या है लाइफ में। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं मरी जाऊंगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लो, कूद जाओ इस कुएं में।
0: साफ है कि जाह्नवी का फिल्मों में करियर बनाने का फैसला माँ को पसंद नहीं था। श्रीदेवी चाहती थी कि जाह्नवी डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों की सेवा करें, लेकिन जाह्नवी ने जब अपनी मंशा साफ कर दी कि एक्टिंग के सिवा वो कुछ और कर ही नहीं सकती, तो श्रीदेवी ने अच्छा एक्टर बनने के लिए बेटी को कुछ टिप्स दिए। श्रीदेवी ने जाह्नवी को जो टिप्स दिए वो अभिनय के पेशे को गरिमा से भर देने वाला है।
1: You know, she always used to say कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। एंड बिकॉज द कैमराज आर स्मार्ट, आई फील लाइक इफ यू आर नॉट अ गुड पर्सन देन इट शोज, एवरीथिंग फील्स फेक। एंड शी यूज्ड टू से अगर दिल में गंदगी है या अगर यू नो इफ यू आर नॉट एबल टू लिव योर कैरेक्टर्स फीलिंग्स जेन्युइनली देन इट शोज। So that's one thing, and I think that it's ever since I was a kid, mom and dad have like drilled in my head, you need to be dedicated and be focused. So like you said, there's no substitute for hard work.
0: जाह्नवी डॉक्टर बनने की माँ की ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर पाई, लेकिन हर कसौटी पर अच्छा इंसान बनने की माँ की इच्छा पूरी करने की भरसक कोशिश आज भी करती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर या एक्ट्रेस के बीच एक हेल्दी कंपटीशन तो चलता ही रहता है, लेकिन कई बार तो अनहेल्दी भी बन जाता है। पर जाह्नवी इस अनहेल्दी कंपटीशन से कोसों दूर हैं। उनसे ये पूछिए कि आप किस एक्ट्रेस को अपनी चुनौती मानती हैं, तो वे सह अस्तित्व की बात कह के सबका मुंह बंद कर देती हैं।
1: ये चुनौतीपन क्यों, क्योंकि हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? नहीं, ये शायद दूसरे लोगों के दिमाग में है। मुझे ऐसे लगता है कि हम सब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं, और हम सब एक दूसरे के लिए खुश भी है और हो सकते हैं, और एज लॉन्ग एज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ, मुझे यू नो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, मैं एज एन ऑडियंस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए।
0: दरअसल जाह्नवी से सवाल सारा अली खान और अनन्या पांडे को लेकर पूछा गया था। जाह्नवी की मैच्योरिटी, उनकी तरबियत, मानवीय संवेदना, सोच और संस्कार आज की जेंजी या मिलेनियल्स के लिए अद्भुत प्रेरणा है। एक ऐसी लड़की जो इंडस्ट्री की अत्यंत प्रभावशाली फैमिली का हिस्सा है, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ उसे मिल सकता था, पर श्रीदेवी और बोनी कपूर की इस लखते जिगर ने पारिवारिक साये से निकलकर मेहनत और लगन से अपनी शख्सियत को गढ़ा है।
2: जाह्नवी का अपनी मां श्रीदेवी से रिश्ता अनोखा और अलौकिक है। श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जो कष्ट उन्होंने झेला है वही उनकी बेटियों को भी झेलना पड़े, लेकिन जाह्नवी ने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि वो अपनी शख्सियत को संघर्ष की भट्टी में तपकर गढ़ेंगी। इसलिए उन्होंने अपने को स्थापित करने के लिए दूसरे कलाकारों से कहीं ज्यादा मेहनत की।

बेदी फिल्म से अलग तरह से सुर्खियों में आई जाह्नवी कपूर का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मुख्तसर से फिल्मी करियर में उन्होंने ऑडियंस के साथ ही क्रिटिक्स को भी अपने अभिनय के दम पर गहरे प्रभावित किया है। 6 मार्च 1997 को मुंबई में पैदा हुई जाह्नवी को जन्म से ही अभिनय के

0: either dad's shooting schedules or mom's shooting schedules. So it was, we've grown up in that environment.
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीदेवी और बोनी कपूर जैसी इंडस्ट्री की नामवर हस्तियों की बेटी होने की वजह से जाह्नवी को सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक पाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मनीष मल्होत्रा कपूर परिवार के फैमिली फ्रेंड थे, जो इत्तेफाक से करण जौहर जैसे इंडस्ट्री के स्टालवार्ट के भी करीबी थे। मनीष जाह्नवी को बचपन से जानते थे, लिहाजा उनके भीतर के पोटेंशियल को लेकर वो अक्सर करण से चर्चा करते रहते थे। करण जौहर निर्देशक शशांक खेतान के साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें उन्हें भारतीयता से भरी हुई एक हसीन और नए चेहरे की तलाश थी। इस दौरान जाह्नवी मनीष मल्होत्रा के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस आने जाने लगी थी। इसी बीच शशांक खेतान की नजर जाह्नवी पर टिक गई और उन्होंने बिना किसी लांग लपेट के फैसला कर लिया कि धड़क के लिए जिस लड़की की तलाश थी उसके लिए जाह्नवी पूरी तरह फिट हैं। उसके बाद जाह्नवी को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया।
0: मैं जाती थी उनके ऑफिस, आई थिंक 3-4 सीन्स दिए उन्होंने मुझे और मैं जाके रट लेती थी और फिर परफॉर्म करती थी उनके लिए।
1: धड़क साइन करने के बाद जाह्नवी को एक अज्ञात डर सताने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि सेट पर लोग यही सोच रहे होंगे कि स्टार किड होने की वजह से ही उन्हें काम मिला है। इस डर की वजह से जाह्नवी इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो गई। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मुझे जो मिल रहा है दरअसल मैं उसके लायक नहीं हूँ। इसीलिए वो सेट पर दूसरे कलाकारों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करती थी और पूरी यूनिट के साथ काफी हम्बल भी रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी को सेट पर आने से भी रोक दिया था, ताकि कोई ये ना कहे कि अपने जमाने के स्टार माँ बेटी की कमतरी को कवर करने के लिए आई हैं।
0: मेरे लिए ऐसा था कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और इसलिए लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, अब मैं ये अपने आप करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मदद मत कीजिएगा, आप सेट पे मत आइएगा प्लीज। तो मैं उनको सेट से दूर रखती थी।
1: माँ श्रीदेवी को सेट से दूर रखकर जाह्नवी धड़क की शूटिंग के दौरान पूरी जान झोंक रही थी, ताकि प्रीमियर में माँ जब बेटी की एक्टिंग देखे तो आह्लाद से ओत प्रोत हो जाए। पर जाह्नवी की उम्मीद की कश्ती जब साहिल के करीब पहुँचने ही वाली थी, उसी वक्त अचानक आए भयानक तूफान ने सतरंगे सपनों की रानाइयों को तहस नहस कर दिया। धड़क फिल्म की रिलीज से करीब 5 महीने पहले 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथ टब में दुर्घटनावश डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई। एक झटके में जाह्नवी की जिंदगी सन्नाटे में चली गई। धड़क फिल्म के प्रमोशन का उत्साह भी नहीं बचा। उस दौरान श्रीदेवी को लेकर जाह्नवी से जब कोई सवाल पूछा जाता तो वो दर्द की कशिश में ऐसे डूब जाती कि एक गहरी खामोशी के सिवा दूसरा कोई जवाब निकल ही नहीं पाता था।
0: उनके बारे में शायद अभी ज्यादा बात करने लगी हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप, आई लाइक टॉकिंग अबाउट, आई फील लाइक आई एम रिमेम्बरिंग हर, यू नो। लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत होता था। आई थिंक जब मैं धड़क प्रमोट कर रही थी, there wasn't a lot of time that had passed. वो बहुत fresh था मेरे दिमाग में सब कुछ, और मैं भाग रही थी मेरे सच्चाई से, और मैं काम को इस्तेमाल कर रही थी, so that was my escape. और जब भी कोई भी professional scenario में वो मुझे remind करते थे कि she is no more, I think मैं बिल्कुल shut, like I just couldn't deal with it.
1: 20 जुलाई 2018 को रिलीज हुई धड़क में पार्थवी सिंह राठौर नाम की मध्यम वर्गीय लड़की के किरदार को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया, लेकिन जाह्नवी अब भी मां की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी। करीब 2 साल तक जाह्नवी पर्दे पर नजर नहीं आई। 12 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में जाह्नवी धड़क की पार्थवी के उलट एक अलग ही मिजाज और अंदाज में दिखी। एयरफोर्स की पायलट गुंजन सक्सेना के वास्तविक जीवन पर बनी फिल्म में जाह्नवी ने उनकी जिंदगी की बारीकियों को इतनी जहनियत के साथ पर्दे पर उकेरा कि दर्शक और समीक्षक दोनों अभिभूत हो गए। दरअसल मां की मौत के सदमे से उबरने की जद्दोजहद में जाह्नवी के दिलो दिमाग में यह

0: एहसास गहरे उतर गया कि जिंदगी खुद में एक कड़ा इम्तहान है और इस इम्तहान से भागना समाधान नहीं है।
1: I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that jitna bhi mushkil ho, ye daur ko bhi guzarna hi hai. Aur jab ye daur guzrega, aap aur bhi aap you'll emerge out of it stronger. Aap aur bhi usse ubhar ke nikloge.
0: इस फलसफे को अपनाने के बाद जानवी ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी। मिली, बवाल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मिस्टर एंड मिसेज माही, देवरा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों के जरिए जानवी ने इंडस्ट्री में अपनी मां की कमी को भरसक पूरी करने की कोशिश की है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने जानवी कपूर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ स्टूडियो।

0: पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
3: और अब आपको खबर दिखाते हैं विराट और करण की। बाल क्रिकेटर विराट कोहली और पंजाबी सिंगर म्यूजिशियन करण औजला की हो रही है, जो दिल्ली में एक मंच पर एक साथ दिखेंगे। आखिर क्या है मौका और क्यों ये दोनों साथ आ रहे हैं, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: दिग्गज भारतीय क्रिकेटर, पूर्व कप्तान और शानदार बल्लेबाज विराट कोहली को आपने अक्सर क्रिकेट के पिच पर रनों की बरसात करते हुए देखा होगा। विराट कोहली को आपने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ऐतिहासिक जीत के बाद डांस फ्लोर पर धमाल मचाते हुए भी देखा होगा। विराट को आपने कई मैचों के दौरान फैंस को उत्साहित करने के लिए मैदान पर थिरकते हुए भी देखा होगा। इतना ही नहीं, विराट को आपने कॉमेडी शो में मस्ती करते हुए और हंसाते हुए भी देखा होगा। यही नहीं, आपको समय समय पर धर्म और अध्यात्म के प्रति विराट कोहली की आस्था की तस्वीरें भी देखने को मिलती रही होंगी। लेकिन अब विराट एक नए अंदाज में सामने आ रहे हैं। आखिर क्या करने वाले हैं विराट, आखिर क्या दिखाने जा रहे हैं विराट अपने फैंस और दर्शकों के सामने? अब क्या लेकर आ रहे हैं विराट? क्या आने वाले समय में विराट किसी म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ सकते हैं? ये सब अभी सस्पेंस ही है। लेकिन विराट ने खुद इसके बारे में जो संकेत दिया है, उससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विराट के फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ गई है। दरअसल विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसको लेकर लोगों के जहन में तमाम सवाल उठने लगे हैं। इन तस्वीरों में विराट मशहूर पंजाबी पॉप स्टार करण ओजला के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में पीठ पर 1 और 8 नंबर छपी काली टी शर्ट पहने दोनों सितारे हजारों बत्तियों से जगमगाते खचाखच भरे हॉल में दर्शकों के सामने खड़े हैं। विराट ने इसके कैप्शन में लिखा है, करण का स्वागत है, मंच हमारा है, 21 जून दिल्ली। यानी ये तो साफ है कि 21 जून को दिल्ली में होने जा रहे एक कार्यक्रम में विराट और करण ओजला एक ही मंच पर साथ साथ होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 जून को दिल्ली में हाई प्रोफाइल क्रॉसओवर होने जा रहा है। इसमें स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और पंजाबी पॉप स्टार करण ओजला एक साथ नजर आएंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस दौरान अपने अपने क्षेत्र के दो बड़े नाम एक ही मंच पर एक साथ होंगे। एक तरफ रन मशीन किंग कोहली होंगे तो दूसरी तरफ गीतों के सरताज करण। दरअसल ये दोनों सितारे अगले रविवार को राजधानी में होने वाले 1-8 इवेंट में एक साथ नजर आएंगे। विराट कोहली इस ब्रांड की पहचान बनाने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। वहीं अब करण ओजला भी इससे जुड़ रहे हैं। 1-8 एक लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका फोकस फिटनेस, फैशन और आधुनिक जीवन शैली से है। करण ओजला और 1-8 ग्लोबल ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 21 जून को 1-8 ग्लोबल प्रीमियर की पुष्टि कर दी है। ऑनलाइन की गई इस जानकारी ने विराट और करण के फैंस के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है, क्योंकि तमाम प्रशंसक क्रिकेट के दिग्गज और पंजाबी हिट मेकर को एक साथ मंच पर देखने के लिए बेताब है। लोगों की दीवानगी इस हद तक जा पहुंची कि इंस्टा पर इस सिलसिले में किए गए एक पोस्ट को कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स मिल गए। अब यशोभूमि में 1-8 इवेंट में करण ओजला और विराट कोहली के क्रॉसओवर को लेकर फैंस को 21 जून का बेसब्री से इंतजार है, ताकि ये पता चले कि कोहली और ओजला दुनिया के सामने क्या नया लेकर आ रहे हैं। मुंबई से सना फरजीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है। पर मुझे तकरीबन 21 साल हो गए, ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: आज बाबा नीब करौड़ी महाराज के कैची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा महाप्रसाद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो रही कमर्शियल फ्लाइट आज लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान, एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे सफर। 180 मेधावी बच्चों का सहारा बने अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, स्कॉलरशिप के जरिए उठाएंगे पढ़ाई का पूरा खर्च, विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की छात्रों की लिस्ट। भारतीय सेना ने ड्रेस रेगुलेशन में किया बड़ा बदलाव, यूनिफॉर्म से हटाए अंग्रेजी दौर के कई निशान, परेड के दौरान तलवार लेकर चलना भी अनिवार्य नहीं। तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने अर्चा इतिहास, ओलंपिक चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा, धीरज कुमकुम ने किया शानदार प्रदर्शन। 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने रचा कीर्तिमान, 15:04.26 का निकाला समय, फ्रांस में पारुल ने तोड़ा अपना ही नेशनल रिकॉर्ड। फ्रांस में पीएम मोदी ने भारत इनोवेट्स 2026 का किया उद्घाटन, बोले पीएम आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप केंद्र, राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत की नवाचार क्षमताओं को सराहा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

सुकोई 30 एमकेआई, मेग 29 फाइटर जेट, एमआई जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर, S-400 जैसा बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम, INS विक्रमादित्य जैसा विशाल एयरक्राफ्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और रूस रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। दुनिया में बहुत उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती कभी भी रुकी नहीं, कभी भी थमी नहीं। आज भी रूस भारत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है।

0: रूस ने भारत को अपना पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट ऑफर किया है। साथ ही रूस ने भारत को ये प्रस्ताव भी दिया है कि वो अपने फाइटर जेट Su-57 की टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा।
1: भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है।
0: रूस की पेशकश सिर्फ विमान बिक्री तक सीमित नहीं है, प्रस्ताव में संवेदनशील सोर्स कोड तक पहुंच, व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की जरूरतों के अनुरूप दो सीटों वाले Su-57D वेरिएंट के विकास की संभावना भी शामिल है। ये भारत को स्वदेशी हथियार, सेंसर और एवेनिक्स को बिना किसी विदेशी मंजूरी के विमान में इंटीग्रेट करने की स्वतंत्रता देता है। रक्षा क्षेत्र में इस रफ्तार का तकनीकी हस्तांतरण बेहद दुर्लभ माना जाता है।

0: देखा जाए तो समय में रशिया के साथ जो बातचीत चल रही है, जहां पर SU-57 का सोर्स कोड TOT यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना, भारत में व्यापक प्रोडक्शन करना और देश की जरूरत के हिसाब से 2-सीटर SU-57 का ऑफर देखे तो कई तरह से अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके द्वारा आज जो भारत के अंदर ही प्रोडक्शन होगा, HAL इसमें समर्थ है कि रशिया के द्वारा ऑफर की हुई टेक्नोलॉजी को हम बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करके बना सकते हैं। दूसरी बात, ये ट्रस्टेड है, टेस्टेड है। तीसरी बात यह है कि ये आज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से और कोड ट्रांसफ़र की वजह से आज हमारा जो अपना है अस्त्र है, रुद्रम है, जो मिसाइल सिस्टम है, सर्विलेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, इसको इसके ऊपर इंटेग्रेट कर सकते हैं।
1: भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ रक्षा खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है। दोनों देश संयुक्त शोध और तकनीकी विकास पर भी साथ काम करते हैं और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

0: हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे।
1: भारत को रूस से Su-57 या S-500 एयर डिफेंस खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि नए भारत ने हमेशा राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। भारत एक संप्रभु देश है, वो उन उत्पादों को चुनने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें वो अपने लिए सबसे आधुनिक और सबसे उपयुक्त मानता है।

दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह यह है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है, और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे।

भारतीय वायुसेना की पांचवी पीढ़ी के विमान की तलाश और AMCA में देरी के बीच Su-57 का प्रस्ताव भारत रूस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दे सकता है।

0: चीन ने पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट दे दिया है और चीन का ये ऑफर अब पुतिन के लिए संभावनाएं खोलता है कि वो जल्दी से जल्दी भारत को भी इसी तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दे। वैसे अभी तक S-400 रूस की तरफ से मिल चुका है और अगर Su-57 को लेकर रूस और भारत के बीच साझेदारी होती है, इस पर काम होता है, तो यकीन मानिए ये दोनों देशों के बीच में एक नया रक्षा समझौता और साथ ही साथ साझेदारी साबित होगी। अगर भारत Su-57 प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इसके कई फायदे होंगे। स्वदेशी उत्पादन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन और तकनीकी ज्ञान में इजाफा होगा, भविष्य में AMCA को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। भारत अपनी स्वदेशी क्षमता को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए हर विदेशी सौदा ऐसा होना चाहिए जो आत्मनिर्भरता को बढ़ाए न कि कम करे।
1: अगर भारत और रूस मिलकर Su-57 प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो देखा जाए तो एक जब बड़ी इंडस्ट्री खुलती है तो इससे एक पूरा सिस्टम ही बदली हो जाता है, एक नेक्स्ट गैप अप हो जाता है। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी भारत को, भारत को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक जनरेशन होगा, इंसिलर इंडस्ट्री खुल जाएंगी, साथ साथ में मैन पावर एक ट्रेन हो जाएगी इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में, सोच बदली हो जाएगी हमारी, ऑपरेशन डॉक्ट्रिन बदली हो जाएगी, एक्सपोर्ट के लिए हमको बेस मिल जाएगा और देश में बनने से एक हम कई टेक्नोलॉजी को अपने एमका के लिए या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर जॉइंट वेंचर होता है तो उसका एक बहुत फायदा होता है क्योंकि कई पश्चिमी देश इसके लिए तैयार नहीं होते।

0: रूस के Su-57 के ऑफर से सवाल उठता है कि क्या भारत आने वाले दशक में चीन के तेजी से बढ़ते एयर पावर का मुकाबला करने के लिए रूस की तरफ लौटेगा या फिर पूरी ताकत अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर लगाएगा।
1: भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान AMC 2035 से पहले तैयार होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चीन G20 के साथ अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, पाकिस्तान लगातार उसका साथ दे रहा है, ऐसे में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की फ्लीट एक तो कम हो रही है और दूसरा चीन के मुकाबले थोड़ी कमजोर साबित होती है।
0: बढ़ती चुनौतियों के बीच वायुसेना को एक ब्रिज गैप फाइटर की जरूरत है जो दुश्मन के स्टेल्थ विमानों, एडवांस एयर डिफेंस और आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सके। Su-57 इसी गैप को भरने का मजबूत विकल्प बन सकता है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका कॉम्बैट रेंज 3500 किलोमीटर है। करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस फाइटर जेट की सीलिंग रेंज यानी कि ऊंचाई पर जाने की क्षमता 65,000 फीट है, जो अपने साथ करीब 10,000 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। बेहतर स्टेल्थ क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस Su-57 हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है।
1: पुतिन का Su-57 का ऑफर केवल एक हथियारों की डील भर सीमित नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक संदेश भी है। पुतिन दरअसल दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि रूस और भारत आज भी रक्षा के क्षेत्र में साझेदार है और दोनों देशों की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या भारत को एक बार फिर से रूस के साथ आना चाहिए, यानी 2018 में जिसे वो पीछे छोड़ चुका है, क्या वापस उसी रास्ते पर चलना चाहिए।
0: भारत कभी Su-57 प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका है। उस समय इसे FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता था। साल 2007 में भारत ने FGFA प्रोजेक्ट शुरू किया जो Su-57 पर आधारित था, लेकिन 2018 में भारत इससे बाहर हो गया क्योंकि स्टेल्थ और कॉस्ट में बात नहीं बन पाई। दरअसल शुरुआत में ही रूस ने सिर्फ 4 प्रोटोटाइप के लिए $6.7 बिलियन की बड़ी रकम मांगी थी। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट गारंटी के पूरे प्रोजेक्ट की लागत $40 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान था।
2: कई बार ये सवाल उठता है कि भारत 2018 में ही क्यों फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से हट गया, पीछे हट गया। तब हम करते तो आप कहीं के कहीं पहुंचे होते, पर देखा जाए तो उस समय में बहुत महंगा पड़ रहा था, रशिया जॉइंट डेवलपमेंट की कीमत मांग रहा था, तब इनका अभी प्रोटोटाइप में था और भारत का DRDO और हमारा जो साइंस कम्युनिटी है वो सोचते थे कि हम देश के अंदर ही डेवलप करें, MCA डेवलप करें। तो कई बातें थी जिसकी वजह से उस समय में इस प्रोजेक्ट को छोड़ा गया।
0: Su-57 के ऑफर के बीच रूस ने एक लंबे इंतजार के बाद भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी बैटरी डिलीवर की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डिलीवरी ऐसे समय में हुई जब रूस खुद यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है और उसे काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा ये समझा जा सकता है कि भारत और रूस में कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है।
2: भारत और रूस की दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि रूस जबकि खुद यूक्रेन के साथ जूझ रहा है और आए दिन उनके ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, एयर अटैक हो रहे हैं और उनकी काफ़ी रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने S-400 की चौथी बैटरी भारत को हैंड ओवर कर रहे हैं, साथ साथ में फिफ्थ बैटरी का भी ऑन शेड्यूल डिलीवरी का उनका प्लान है। तो दो तीन बातें कि क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक तो वो ये भी है कि यूक्रेन युद्ध से इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी तेजी से काम करती जा रही है और एक वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी बना के रखना चाहती है कि अगर वादा किया है तो डिलीवर करते हैं। साथ साथ में भारत के साथ एक बिजनेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक संबंध है, दोस्ताना संबंध है, क्योंकि भारत ने भी रूस के साथ खड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि भारत को रूस की जरूरत है, रूस को भी भारत की उतनी ज़रूरत है, क्योंकि जब भारत ने S-400 की डील की थी तब अमेरिका ने कहा था हम काना संबंध है, क्योंकि भारत ने भी रूस के साथ खड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि भारत को रूस की जरूरत है, रूस को भी भारत की उतनी जरूरत है, क्योंकि जब भारत ने S-400 की डील की थी तब अमेरिका ने कहा था हम काट सा लगा देंगे, पर भारत ने फिर भी S-400 खरीदा और जो देखा कि कितना कामयाब साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में।
0: भारत और रूस के रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं और आंकड़ों के नजरिए से देखें तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में रूस की भूमिका सबसे बड़ी रही है। हालांकि कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा खरीद का डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन आज भी भारतीय सेनाओं के हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का ही है।
1: भारत पारंपरिक रूप से हथियारों के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी तरह रूस पर निर्भर रहा है। भारत की तीनों सेनाएं जल थल नभ तीनों में 60-70% हथियार रूसी निर्मित ही है।
0: भारतीय सेना में वो कौन कौन से हथियार हैं जो रूस से लिए गए हैं ये आपको बताते हैं। वायुसेना के बेड़े में शामिल Su-30MKI और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान और Mi-17V5 हेलीकॉप्टर भी रूस से ही आयात किए गए हैं। एयर डिफेंस के लिए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, वहीं Igla-S को भी सेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य मूल रूप से एक रूसी एडमिरल गोर्शकोव पोत है जिसे रिफर्बिश किया गया था। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म और T-72 अजय रूसी तकनीक पर ही आधारित है। आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो BM-21 ग्रैंड और BM-30 स्मर्श भी रूस से ही लिया गया है। अब भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता का नहीं है बल्कि ये संयुक्त अनुसंधान और सह उत्पादन में बदल चुका है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और AK-203 राइफल्स इसके उदाहरण हैं।
1: दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, दशक तक गुजर गए, दुनिया में बहुत कुछ बदला, बहुत सारी उथल पुथल हुई, कोई दोस्त बना कोई दुश्मन बना, लेकिन एक दोस्ती जो अटूट है, जो कभी नहीं टूटी, वो थी भारत और रूस की दोस्ती। इतने दशकों बाद भी न तो इस दोस्ती को किसी की नजर लगी और न ही इस दोस्ती का भरोसा टूटा, यानी रूस ने भारत पर और भारत ने रूस पर आज भी भरोसा किया है।
0: बीते 7 दशक में भले ही वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या फिर भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के दौर में और मजबूत हुआ। भारत और रूस के बीच हाल ही में एक अहम सैन्य समझौता लागू हुआ जिसे रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट कहा जाता है। ये समझौता फरवरी 2025 में साइन किया गया था और जनवरी 2026 में प्रभावी हो चुका है। रिलॉस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी, यानी रूस के सैन्य बंदरगाहों एयरबेस और सुविधाओं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना कर सकेगी। ये इस्तेमाल सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। रिलॉस समझौते के तहत जंग या किसी अन्य सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि देश एक दूसरे की सेनाओं को जरूरत पड़ने पर ईंधन, सामान, मरम्मत जैसी मदद करेंगे। वहीं पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब है कि शांतिपूर्ण समय में देश की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करेंगी। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है।
2: देखा जाए तो भारत ने रूस के साथ जो रिलॉस साइन किया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके तहत रशिया भारत में और भारत रशिया की बेसिस पर तकरीबन 3,000 सैनिक, 5 युद्ध पोत और 10 एयरक्राफ्ट तक रख सकते हैं, जहाँ पर उनकी रख रखाव और उनको तेल, पानी, राशन, इस तरह की चीज़ें प्रदान की जा सकती हैं जो एक्साइज के लिए, रखी के लिए और आपसी सद्भाव के लिए एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। देखिए दोनों को फ़ायदा है इसमें कि क्योंकि भारत को उत्तरी समुद्री रास्ते, आर्कटिक रीजन, उस इलाकों में पहुंच मिल जाएगी। रशिया को हिंद महासागर और भारत के अरब सागर में बेसिस मिलेंगी, जहां से वो अपना देखभाल कर सकते हैं, उनके शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। मिग 21 से शुरू हुआ ये सफर आज अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे एडवांस हथियारों तक पहुंच चुका है। S-400 को भारत ने साल 2018 में रूस से $5.4 अरब में खरीदा था। इसकी ताकत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नजर रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर तक है। वहीं टारगेट को ट्रैक करने की बात करें तो ये एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। रूस भी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को देने के लिए इच्छुक है। यही नहीं, रूस S-500 की तकनीक को भी भारत के साथ साझा करना चाहता है। इससे S-500 को भारत में बनाकर इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करने का रास्ता आसान बन सकता है। S-500 की तकनीक के ट्रांसफर से भारत आसानी से इसके रडार, इंटरसेप्टर, मिसाइलों और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के तहत बना सकेगा। अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है तो ये S-400 प्रोजेक्ट कुशा, MRSAM आकाश नेक्स्ट जेनरेशन और मौजूदा आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर सकता है। ये नेटवर्क कम ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष तक फैले खतरों को रोकने में सक्षम है। प्रोजेक्ट कुशा पहले ही भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कवच के रूप में विकसित हो रही है। वहीं S-500 का शामिल होना भारत को चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बढ़त दिला सकता है। रण क्षेत्र में मेरी अनी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you non-stop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने हाल ही में उत्तराखंड के पवित्र और आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन किए। खास बात यह है कि उनका यह दौरा पूरी तरह गोपनीय रहा, जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन और आम लोगों को भी नहीं हो सकी। ऋषभ पंत सबसे पहले पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने श्रद्धा भाव के साथ ओम पर्वत के दर्शन किए। दर्शन के बाद ऋषभ पंत व्यास घाटी के नाभी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक होम स्टे में रात गुजारी। यात्रा के दौरान उनकी कार का टायर खराब हो जाने पर गुंजी क्षेत्र में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने उनकी मदद की, जिसके बाद ऋषभ पंत ने जवानों के साथ भी समय बिताया और उनके साथ फोटोज भी क्लिक किए। तो पूरी तरह गोपनीय दौरा रहा और ऋषभ पंत ने यहाँ एक श्रद्धालु की तरह, भक्त की तरह यह दौरा रहा, जिसमें आदि कैलाश के दर्शन करने पहुंचे, वहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और वहां के करीब गांव वालों से भी उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ फोटोज भी क्लिक किए और वहां भोजन का भी यहां पर उन्होंने सेवन किया, लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए। तस्वीरें आप देखिए, देखिए उनकी सहजता का ये अंदाज आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जहां ऋषभ पंत ने आम लोगों से मुलाकात की और उन्हें फोटोग्राफ्स भी दिए। खेल के बाद अब बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत की। पिछले दिनों जानवी कपूर वेंकटेश्वर तिरुमाला मंदिर पहुंची थी, इस दौरान उन्होंने बैंगनी रंग की एक खास साड़ी पहनी हुई थी। मंदिर से उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद अब हर तरफ उस खास साड़ी की चर्चा हो रही है। कभी राजघरानों की शान माने जाने वाली यह साड़ी अब एक बार फिर सुर्खियों में है।

0: मन में श्रद्धा भाव, सादगी भरा अंदाज और बदन पर लिपटी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत। पिछले दिनों जब अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म बेड्डी की रिलीज से पहले भगवान वेंकटेश्वर की दर पर पहुंची, तो उनका ये रूप सोशल मीडिया पर छा गया। इस पावन मौके पर जाह्नवी ने कोटा की पारंपरिक और विश्व प्रसिद्ध सोन चिरैया साड़ी को चुना था। बैगनी रंग की इस अनुपम साड़ी की खूबसूरती हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही है। इस साड़ी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी महीन कारीगरी, जिसमें असली सोने और चांदी की जरी का इस्तेमाल किया गया है। इसके पारंपरिक फूलदार डिजाइन और हस्तकरघे की जीवंत कला का ऐसा अद्भुत संगम जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल ये साड़ी महज एक परिधान नहीं है, बल्कि राजस्थान के कोटा के बुनकरों की पीढ़ियों पुराने कौशल, उनकी मेहनत और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत दस्तावेज है। कविराज घरानों की शान माने जाने वाली कोटा की ये खास साड़ियाँ अब महिलाओं की पहली पसंद बन रही है। राधिका राजे गायकवाड़ से लेकर कंगना रनौत तक सोन चिरैया साड़ी की कदरदान है।
1: बहुत अच्छा लगता है जो हमारी जरी कोटा की जो पहचान है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है।
0: पिछले कुछ सालों में इस विलुप्त कला को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज कोटा की ये बुनाई राष्ट्र सीमाओं को पार कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहचान बना रही है। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
4: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
5: आज बाबा नीब करौड़ी महाराज के कैची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा महाप्रसाद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो रही कमर्शियल फ्लाइट आज लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान। एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे सफर। 180 मेधावी बच्चों का सहारा बने अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, स्कॉलरशिप के जरिए उठाएंगे पढ़ाई का पूरा खर्च। विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की छात्रों की लिस्ट। भारतीय सेना ने ड्रेस रेगुलेशन में किया बड़ा बदलाव, यूनिफॉर्म से हटाए अंग्रेजी दौर के कई निशान, परेड के दौरान तलवार लेकर चलना भी अनिवार्य नहीं। तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने अर्चा इतिहास, ओलंपिक चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा, धीरज कुमकुम ने किया शानदार प्रदर्शन। 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने रचा कीर्तिमान, 15:04.26 का निकाला समय, फ्रांस में पारुल ने तोड़ा अपना ही नेशनल रिकॉर्ड। फ्रांस में पीएम मोदी ने भारत इनोवेट्स 2026 का किया उद्घाटन, बोले पीएम आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप केंद्र, राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत की नवाचार क्षमताओं को सराहा।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अनोखी पहचान बनाई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जानवी कपूर है। जी हाँ, जानवी कपूर। बीते 4 जून को जानवी कपूर की पैदी फिल्म रिलीज हुई तो जानवी के किरदार को लेकर हंगामा मच गया। लोग फिल्म के निर्देशक बुच्ची बाबू की आलोचना करने लगे कि उन्होंने जानवी के फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाई किया है। जानवी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचता रहा लेकिन वो शांत रही। आखिरकार बुच्ची बाबू को फिल्म से उन दृश्यों को हटाना पड़ा।

0: जो महफिल में बड़े बेपरवाह से अंदर से वो गुजरते हैं गहरी किसी राह से। इस जुमले में मौजूदा दौर की दिलकश अदाकारा जाह्नवी कपूर की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान जज्ब है। 4 जून को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई बुची बाबू की पेदी फिल्म ने पहले ही हफ्ते में बेशक 345 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया, लेकिन जबरदस्त कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को भी ट्रिगर कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर बौद्धिक गलियारों तक में चर्चा गर्म हो गई कि पेदी में जाह्नवी कपूर के किरदार को अनावश्यक रूप से सेक्सुअलाइज किया गया है, उनके फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। दरअसल पेदी में जाह्नवी कपूर ने अच्छी अम्मा का किरदार निभाया है। फिल्म के निर्देशक बूची बाबू के मुताबिक अच्छी अम्मा का किरदार खास तौर से फिल्म के हीरो रामचरण के किरदार पेदी के बदलाव को दिखाने के लिए गढ़ा गया है। कह सकते हैं कि इस तर्क की आड़ में बूची बाबू ने जाह्नवी कपूर की एक्टिंग से ज्यादा उनके फिगर को ग्लैमराइज कर दिया। जाहिर है महिला अधिकार संगठनों से लेकर नेटिजन्स तक ने सोशल मीडिया पर फिल्म के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। भारी विरोध को देखते हुए बूची बाबू को आखिरकार ऐसे सेंसुअलाइज दृश्यों को फिल्म से हटाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बूची बाबू ने अपना पक्ष रखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पेदी के कुछ दृश्यों पर मिली प्रतिक्रिया को मैं गंभीरता से लेता हूं। मैं पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगह महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाने का नहीं था। अगर फिल्म का कोई हिस्सा ऐसा लगा है तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, उनकी चिंताओं को समझता हूं और खुले दिल से माफी मांगता हूं। मैंने उन दृश्यों को बदलने का फैसला किया है जो आपत्तिजनक लगे हैं। साउथ की फिल्मों में हीरोइन के फिगर को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड करने का चलन आज का नहीं है, दक्षिण भारत के फिल्मों का ये पुराना ट्रेंड है। फिर भी जया बच्चन से लेकर आशिकी फेम अनु अग्रवाल, करीना कपूर और नेशनल अवार्ड विनर नित्या मेनन तक ने जाह्नवी कपूर को सेक्सुअलाइज करने का किसी न किसी रूप में कड़ा विरोध किया। पर कमाल तो यह है कि जिस अभिनेत्री के किरदार को लेकर इतना ज्यादा बच क्रिएट हुआ, उसने पूरे मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बताया कि इस फिल्म को करने का फैसला उन्होंने क्यों लिया।
1: I think apart from just my character, when I heard the script, I felt very strongly about what the film was saying, how much it meant to our director Butchi sir, and I think the politics, the social commentary, the cultural implications of what a story like this could do, all of these things resonated with me very deeply. So for those reasons alone, I wanted to be a part of this film.
0: Golden Spoon culture mein pali badi star kid ka khud ke bare mein flare up hui itni badi controversy ko lekar itna mature reaction aapko hairani mein dal sakta hai. Darasal Boni Kapoor jaise bade film nirmata और श्रीदेवी जैसी स्टार अदाकारा की दिलकश बेटी जाह्नवी की असल जिंदगी वो नहीं है जिसे पेदी के जरिए देखा और दिखाया गया। 4 जून को सिने प्रेमी सिल्वर स्क्रीन पर जब पेदी फिल्म की अच्छी अम्मा का ग्लैमरस लुक देखकर मदहोश हो रहे थे, उसी समय ये अभिनेत्री नंगे पांव 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा और 3,550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर पहुंच रही थी। अगाध श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश के मंदिर में माथा टेक कर फिल्म की सफलता का आशीर्वाद मांग रही थी।

0: 4 जून को जिस समय सिल्वर स्क्रीन पर अचियम्मा के सेंसुअल लुक्स को देखकर ऑडियंस क्रेजी हो रहे थे, उस वक्त जाह्नवी विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी में पूरी गरिमा के साथ भक्ति और अध्यात्म का कठिन रास्ता तय कर रही थीं। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी में जाह्नवी की अगाध आस्था का एक छोर उनकी माँ श्रीदेवी की बेपनाह यादों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीदेवी न सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके पर बालाजी के दरबार में जाती थी, बल्कि जीवन के बिजी शेड्यूल के दौरान भी जब मौका मिलता तो उनका जाप करती थीं। जाह्नवी तिरुपति बालाजी के प्रति अपनी माँ की श्रद्धा आस्था और समर्पण से वाकिफ थीं। इसीलिए 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी के मृत्यु के बाद माँ के हर जन्मदिन पर 13 अगस्त को वहाँ जाने का फैसला कर लिया।
1: आई थिंक तिरुपति से स्पेसिफिकली एक अलग जुड़ाव है। आई थिंक बचपन से मैं सुनती आई हूँ मम्मा के मुँह से कि उनका भी एक अलग कनेक्शन रहा है बालाजी के साथ। हर बार उनका नाम जापती थी, नारायण नारायण नारायण, और कहती रहती थी कि हर साल उनके बर्थडे पर जब वो काम कर रही थी तो वो तिरुपति चढ़कर जाती थी। और शादी के बाद उन्होंने बंद कर लिया था, तो उनके गुजरने के बाद मैंने ठान लिया था कि हर साल उनके बर्थडे पर मैं जाऊंगी। तो जब पहली बार गई थी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी, और बहुत शांति मिली मन में। तो उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि हर बड़े अवसर के पहले मैं तिरुपति चढ़ूंगी।
0: जाह्नवी और श्रीदेवी का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी के परंपरागत संबंधों तक सीमित नहीं है। श्रीदेवी के गुजर जाने के 8 साल बाद भी उनकी यादें, उनका स्नेह, प्यार सब जाह्नवी की जिंदगी की प्रखर धूप में छायेदार वृक्ष की सुरभित बयार की तरह सुखद एहसास करा जाता है। ये एक ऐसा अलौकिक रिश्ता है जहां एक के जाने के बाद भी दूसरे को उसके आने का इंतजार है।
1: I want to remember the good things. तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज में बात करती हूँ उनके बारे में, और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही है। मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था। आई थिंक इट मेक्स मी फील लाइक मे बी लाइक आई डोंट नो शी इज ट्रैवलिंग समवेयर एंड शी विल कम बैक।
0: कुछ तो अलौकिक है माँ बेटी के रिश्ते में। जाह्नवी के जन्म के बाद श्रीदेवी आनंद की अलौकिक अनुभूति से सराबोर हो उठी थी। उन्हें तब ये नहीं लगा था कि उनकी गोद में कोई नन्ही नई मेहमान आई है, बल्कि ये लगा था मानो सदियों पहले बिछड़ा कोई अपना ही दोबारा से लौटकर दामन से लिपट गया है। श्रीदेवी ने अपनी बेटी का जाह्नवी नाम भी किसी खास एहसास से भर कर दिया था। दरअसल जाह्नवी 1997 में रिलीज हुई जुदाई फिल्म का एक करेक्टर था, इत्तेफाक से जिसे श्रीदेवी ने नहीं बल्कि उर्मिला मातोंडकर ने निभाया था। कमाल देखिए कि जुदाई 28 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी और जाह्नवी का जन्म उसके ठीक 6 दिन बाद 6 मार्च 1997 को हुआ। आपको बता दें कि जाह्नवी गंगा नदी का एक पर्यायवाची शब्द है जो अपनी पवित्रता और निर्मलता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीदेवी अपनी बेटी में गंगाजल जैसी पवित्रता और निर्मलता का भाव रखती थी। 80 और 90 के दशक की मेगा स्टार श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जीवन में जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा, जो परेशानी उन्हें उठानी पड़ी, वो उनकी बेटियों को उठानी पड़े।
1: वो हमेशा कहती थी मुझे कि मैंने जिंदगी भर मेहनत की है 4 साल की उम्र से ताकि आप मेरे दोनों बच्चे आराम की जिंदगी जिए। ये जिंदगी वो मानती थी कि हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम सख्त किस्म के इंसान तो है नहीं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो उनका ये सपना था कि मैंने इतना कुछ किया है ज़िंदगी में, और अगर मैं मेरी बेटियों को आराम की ज़िंदगी नहीं दे पा रही और वो खुद इस चीज़ में कूद रहे, तो मैंने किया ही क्या है लाइफ में। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं मर ही जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लो, कूद जाओ इस कुएं में।
0: साफ है कि जाह्नवी का फिल्मों में करियर बनाने का फैसला माँ को पसंद नहीं था। श्रीदेवी चाहती थी कि जाह्नवी डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों की सेवा करें, लेकिन जाह्नवी ने जब अपनी मंशा साफ कर दी कि एक्टिंग के सिवा वो कुछ और कर ही नहीं सकती, तो श्रीदेवी ने अच्छा एक्टर बनने के लिए बेटी को कुछ टिप्स दिए। श्रीदेवी ने जाह्नवी को जो टिप्स दिए वो अभिनय के पेशे को गरिमा से भर देने वाला है।
1: यू नो शी ऑलवेज यूज टू से कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है. एंड बिकॉज द कैमरा इज वेरी स्मार्ट, आई फील लाइक इफ यू आर नॉट अ गुड पर्सन देन इट शोज, एवरीथिंग फील्स फेक. एंड शी यूज टू से अगर दिल में गंदगी है या अगर यू नो इफ यू आर नॉट एबल टू लिव योर कैरेक्टर्स फीलिंग्स जेन्युइनली देन इट शोज. So that's one thing, and I think that it's ever since I was a kid, mom and dad have like drilled in my head, you need to be dedicated and be focused. So like you said, there's no substitute for hard work.
0: Janvi doctor banne ki maa ki khwahish to puri nahi kar payi, lekin har kasauti par acha insaan banne ki maa ki ichha puri karne ki bharsak koshish aaj bhi karti hain. Film industry mein actor ya actress ke beech एक हेल्दी कंपटीशन तो चलता ही रहता है, लेकिन कई बार तो अनहेल्दी भी बन जाता है. पर जानवी इस अनहेल्दी कंपटीशन से कोसों दूर हैं. उनसे ये पूछिए कि आप किस एक्ट्रेस को अपनी चुनौती मानती हैं, तो वे सह अस्तित्व की बात कह के सबका मुंह बंद कर देती हैं.
1: ये चुनौतीपन क्यों, क्योंकि हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? नहीं, ये शायद दूसरे लोगों के दिमाग में है. मुझे ऐसे लगता है कि हम सब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं, और हम सब एक दूसरे के लिए खुश भी है और हो सकते हैं. और एज लॉन्ग एज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ, मुझे यू नो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, मैं एज एन ऑडियंस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए.
0: दरअसल जानवी से सवाल सारा अली खान और अनन्या पांडे को लेकर पूछा गया था. जानवी की मैच्योरिटी, उनकी तरबियत, मानवीय संवेदना, सोच और संस्कार आज की जेंजी या मिलेनियल्स के लिए अद्भुत प्रेरणा है. एक ऐसी लड़की जो इंडस्ट्री की अत्यंत प्रभावशाली फैमिली का हिस्सा है, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ उसे मिल सकता था, पर श्रीदेवी और बोनी कपूर की इस लखते जिगर ने पारिवारिक साये से निकलकर मेहनत और लगन से अपनी शख्सियत को गढ़ा है.
2: जानवी का अपनी मां श्रीदेवी से रिश्ता अनोखा और अलौकिक है. श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जो कष्ट उन्होंने झेला है वही उनकी बेटियों को भी झेलना पड़े, लेकिन जानवी ने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि वो अपनी शख्सियत को संघर्ष की भट्टी में तपकर गढ़ेंगी. इसलिए उन्होंने अपने को स्थापित करने के लिए दूसरे कलाकारों से कहीं ज्यादा मेहनत की.

0: बेदी फिल्म से अलग तरह से सुर्खियों में आई जाह्नवी कपूर का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मुख्तसर से फिल्मी करियर में उन्होंने ऑडियंस के साथ ही क्रिटिक्स को भी अपने अभिनय के दम पर गहरे प्रभावित किया है। 6 मार्च 1997 को मुंबई में पैदा हुई जाह्नवी को जन्म से ही अभिनय के संस्कार मिलने लगे थे। अभिनय की बारीकियां उन्होंने बेशक अमेरिका के लॉस एंजलिस के द ली स्टारबर्ग थिएटर एंड फिल्म्स इंस्टीट्यूट से सीखा, लेकिन उसका ककहरा उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी और पिता बोनी कपूर से होश संभालने के बाद से ही सीखना शुरू कर दिया था।
1: Actually, in my family, it's the only thing that we discussed. It's the only thing that we knew as kids. Every time we'd, you know, sit at home and have a conversation with one another, it was always about films. Or even when we'd go out to spend time together,

0: करण जौहर निर्देशक शशांक खेतान के साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें उन्हें भारतीयता से भरी हुई एक हसीन और नए चेहरे की तलाश थी। इस दौरान जानवी मनीष मल्होत्रा के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस आने जाने लगी थी। इसी बीच शशांक खेतान की नजर जानवी पर टिक गई और उन्होंने बिना किसी लांग लपेट के फैसला कर लिया कि धड़क के लिए जिस लड़की की तलाश थी उसके लिए जानवी पूरी तरह फिट हैं। उसके बाद जानवी को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया।
1: मैं जाती थी उनके ऑफिस, आई थिंक 3-4 सीन्स दिए उन्होंने मुझे और मैं जाके रट लेती थी और फिर परफॉर्म करती थी उनके लिए।
0: धड़क साइन करने के बाद जानवी को एक अज्ञात डर सताने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि सेट पर लोग यही सोच रहे होंगे कि स्टार किड होने की वजह से ही उन्हें काम मिला है। इस डर की वजह से जानवी इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो गईं। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मुझे जो मिल रहा है दरअसल मैं उसके लायक नहीं हूँ। इसीलिए वो सेट पर दूसरे कलाकारों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करती थी और पूरी यूनिट के साथ काफी हम्बल भी रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी को सेट पर आने से भी रोक दिया था ताकि कोई ये ना कहे कि अपने जमाने के स्टार माँ बेटी की कमतरी को कवर करने के लिए आई हैं।
1: मेरे लिए ऐसा था कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और इसलिए लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, अब मैं ये अपने आप करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मदद मत कीजिएगा, आप सेट पे मत आइएगा प्लीज। तो मैं उनको सेट से दूर रखती थी।
0: माँ श्रीदेवी को सेट से दूर रखकर जानवी धड़क की शूटिंग के दौरान पूरी जान झोंक रही थी ताकि प्रीमियर में माँ जब बेटी की एक्टिंग देखें तो आह्लाद से ओत प्रोत हो जाए। पर जानवी की उम्मीद की कश्ती जब साहिल के करीब पहुँचने ही वाली थी उसी वक्त अचानक आए भयानक तूफान ने सतरंगे सपनों की रानाइयों को तहस नहस कर दिया। धड़क फिल्म की रिलीज से करीब 5 महीने पहले 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथ टब में दुर्घटनावश डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई। एक झटके में जानवी की जिंदगी सन्नाटे में चली गई। धड़क फिल्म के प्रमोशन का उत्साह भी नहीं बचा। उस दौरान श्रीदेवी को लेकर जानवी से जब कोई सवाल पूछा जाता तो वो दर्द की कशिश में ऐसे डूब जाती कि एक गहरी खामोशी के सिवा दूसरा कोई जवाब निकल ही नहीं पाता था।
1: उनके बारे में शायद अभी ज्यादा बात करने लगी हूँ बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप आई लाइक टॉकिंग अबाउट, आई फील लाइक आई एम रिमेम्बरिंग हर, यू नो। लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत होता था। आई थिंक जब मैं धड़क प्रमोट कर रही थी there wasn't a lot of time that had passed. वो बहुत fresh था मेरे दिमाग में सब कुछ और मैं भाग रही थी मेरे सच्चाई से और मैं काम को इस्तेमाल कर रही थी, so that was my escape. और जब भी कोई भी professional scenario में वो मुझे remind करते थे कि she is no more, I think मैं बिल्कुल shut, like I just couldn't deal with it.
0: 20 जुलाई 2018 को रिलीज हुई धड़क में पार्थवी सिंह राठौर नाम की मध्यम वर्गीय लड़की के किरदार को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया, लेकिन जानवी अब भी मां की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी। करीब 2 साल तक जानवी पर्दे पर नजर नहीं आई। 12 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में जानवी धड़क की पार्थवी के उलट एक अलग ही मिजाज और अंदाज में दिखी। एयरफोर्स की पायलट गुंजन सक्सेना के वास्तविक जीवन पर बनी फिल्म में जानवी ने उनकी जिंदगी की बारीकियों को इतनी जहनियत के साथ पर्दे पर उकेरा कि दर्शक और समीक्षक दोनों अभिभूत हो गए। दरअसल मां की मौत के सदमे से उबरने की जद्दोजहद में जानवी के दिलो दिमाग में ये एहसास गहरे उतर गया कि जिंदगी खुद में एक कड़ा इम्तहान है और इस इम्तहान से भागना समाधान नहीं है।
2: I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that jitna bhi mushkil ho, ye daur ko bhi guzarna hi hai. Aur jab ye daur guzrega, aap aur bhi aap you'll emerge out of it stronger. Aap aur bhi usse ubhar ke nikloge.

0: इस फलसफे को अपनाने के बाद जाह्नवी ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी। मिली, बवाल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मिस्टर एंड मिसेज माही, देवरा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों के जरिए जाह्नवी ने इंडस्ट्री में अपनी माँ की कमी को भरसक पूरी करने की कोशिश की है।
1: तो बंदे में है दम में आज आपने जाह्नवी कपूर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ स्टूडियो।

0: पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम, और क्या है इसका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: You hear it once and remember everything.
2: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
1: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, rule the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: और अब आपको खबर दिखाते हैं विराट और करण की। बात क्रिकेटर विराट कोहली और पंजाबी सिंगर म्यूजिशियन करण औजला की हो रही है, जो दिल्ली में एक मंच पर एक साथ दिखेंगे। आखिर क्या है मौका और क्यों ये दोनों साथ आ रहे हैं, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: दिग्गज भारतीय क्रिकेटर, पूर्व कप्तान और शानदार बल्लेबाज विराट कोहली को आपने अक्सर क्रिकेट के पिच पर रनों की बरसात करते हुए देखा होगा। विराट कोहली को आपने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ऐतिहासिक जीत के बाद डांस फ्लोर पर धमाल मचाते हुए भी देखा होगा। विराट को आपने कई मैचों के दौरान फैंस को उत्साहित करने के लिए मैदान पर थिरकते हुए भी देखा होगा। इतना ही नहीं, विराट को आपने कॉमेडी शो में मस्ती करते हुए और हंसाते हुए भी देखा होगा। यही नहीं, आपको समय समय पर धर्म और अध्यात्म के प्रति विराट कोहली की आस्था की तस्वीरें भी देखने को मिलती रही होंगी। लेकिन अब विराट एक नए अंदाज में सामने आ रहे हैं। आखिर क्या करने वाले हैं विराट, आखिर क्या दिखाने जा रहे हैं विराट अपने फैंस और दर्शकों के सामने? अब क्या लेकर आ रहे हैं विराट? क्या आने वाले समय में विराट किसी म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ सकते हैं? ये सब अभी सस्पेंस ही है। लेकिन विराट ने खुद इसके बारे में जो संकेत दिया है, उससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विराट के फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ गई है। दरअसल विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसको लेकर लोगों के जहन में तमाम सवाल उठने लगे हैं। इन तस्वीरों में विराट मशहूर पंजाबी पॉप स्टार करण ओजला के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में पीठ पर 1 और 8 नंबर छपी काली टी शर्ट पहने दोनों सितारे हजारों बत्तियों से जगमगाते खचाखच भरे हॉल में दर्शकों के सामने खड़े हैं। विराट ने इसके कैप्शन में लिखा है, करण का स्वागत है, मंच हमारा है, 21 जून दिल्ली। यानी ये तो साफ है कि 21 जून को दिल्ली में होने जा रहे एक कार्यक्रम में विराट और करण ओजला एक ही मंच पर साथ साथ होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 जून को दिल्ली में हाई प्रोफाइल क्रॉसओवर होने जा रहा है। इसमें स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और पंजाबी पॉप स्टार करण ओजला एक साथ नजर आएंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस दौरान अपने अपने क्षेत्र के दो बड़े नाम एक ही मंच पर एक साथ होंगे। एक तरफ रन मशीन किंग कोहली होंगे तो दूसरी तरफ गीतों के सरताज करण। दरअसल ये दोनों सितारे अगले रविवार को राजधानी में होने वाले 1-8 इवेंट में एक साथ नजर आएंगे। विराट कोहली इस ब्रांड की पहचान बनाने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। वही अब करण ओजला भी इससे जुड़ रहे हैं। 1-8 एक लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका फोकस फिटनेस, फैशन और आधुनिक जीवन शैली से है। करण ओजला और 1-8 ग्लोबल ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 21 जून को 1-8 ग्लोबल प्रीमियर की पुष्टि कर दी है। ऑनलाइन की गई इस जानकारी ने विराट और करण के फैंस के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है, क्योंकि तमाम प्रशंसक क्रिकेट के दिग्गज और पंजाबी हिट मेकर को एक साथ मंच पर देखने के लिए बेताब है। लोगों की दीवानगी इस हद तक जा पहुंची कि इंस्टा पर इस सिलसिले में किए गए एक पोस्ट को कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स मिल गए। अब यशोभूमि में 1-8 इवेंट में करण ओजला और विराट कोहली के क्रॉसओवर को लेकर फैंस को 21 जून का बेसब्री से इंतजार है, ताकि ये पता चले कि कोहली और ओजला दुनिया के सामने क्या नया लेकर आ रहे हैं। मुंबई से सना फरजीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़। और
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
3: I have no idea how this election is going to play out,
2: or want to catch up on your team's live play-by-plays, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम, और क्या है इसका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
5: आज बाबा नीब करौड़ी महाराज के कैची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा महाप्रसाद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो रही कमर्शियल फ्लाइट आज लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान, एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे सफर। 180 मेधावी बच्चों का सहारा बने अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, स्कॉलरशिप के जरिए उठाएंगे पढ़ाई का पूरा खर्च, विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की छात्रों की लिस्ट। भारतीय सेना ने ड्रेस रेगुलेशन में किया बड़ा बदलाव, यूनिफॉर्म से हटाए अंग्रेजी दौर के कई निशान, परेड के दौरान तलवार लेकर चलना भी अनिवार्य नहीं। तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने अर्चा इतिहास, ओलंपिक चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा, धीरज कुमकुम ने किया शानदार प्रदर्शन। 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने रचा कीर्तिमान, 15:04.26 का निकाला समय, फ्रांस में पारुल ने तोड़ा अपना ही नेशनल रिकॉर्ड। फ्रांस में पीएम मोदी ने भारत इनोवेट्स 2026 का किया उद्घाटन, बोले पीएम आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप केंद्र, राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत की नवाचार क्षमताओं को सराहा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

सुकोई 30 एमकेआई, मिग 29 फाइटर जेट, एमआई जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर, S-400 जैसा बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम, INS विक्रमादित्य जैसा विशाल एयरक्राफ्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और रूस रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। दुनिया में बहुत उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती कभी भी रुकी नहीं, कभी भी थमी नहीं। आज भी रूस भारत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है।

0: रूस ने भारत को अपना पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट ऑफर किया है। साथ ही रूस ने भारत को ये प्रस्ताव भी दिया है कि वो अपने फाइटर जेट Su-57 की टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा।
1: भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है।
0: रूस की पेशकश सिर्फ विमान बिक्री तक सीमित नहीं है। प्रस्ताव में संवेदनशील सोर्स कोड तक पहुंच, व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की जरूरतों के अनुरूप दो सीटों वाले Su-57D वेरिएंट के विकास की संभावना भी शामिल है। ये भारत को स्वदेशी हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स को बिना किसी विदेशी मंजूरी के विमान में इंटीग्रेट करने की स्वतंत्रता देता है। रक्षा क्षेत्र में इस रफ्तार का तकनीकी हस्तांतरण बेहद दुर्लभ माना जाता है।

0: देखा जाए तो समय में रशिया के साथ जो बातचीत चल रही है, जहां पर SU-57 का सोर्स कोड TOT यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना, भारत में व्यापक प्रोडक्शन करना और देश की जरूरत के हिसाब से 2-सीटर SU-57 का ऑफर देखे तो कई तरह से अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके द्वारा आज जो भारत के अंदर ही प्रोडक्शन होगा, HAL इसमें समर्थ है कि रशिया के द्वारा ऑफर की हुई टेक्नोलॉजी को हम बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करके बना सकते हैं। दूसरी बात, ये ट्रस्टेड है, टेस्टेड है। तीसरी बात यह है कि ये आज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से और कोड ट्रांसफ़र की वजह से आज हमारा जो अपना है अस्त्र है, रुद्रम है, जो मिसाइल सिस्टम है, सर्विलेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, इसको इसके ऊपर इंटेग्रेट कर सकते हैं।
1: भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ रक्षा खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है। दोनों देश संयुक्त शोध और तकनीकी विकास पर भी साथ काम करते हैं और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

0: हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे।
1: भारत को रूस से Su-57 या S-500 एयर डिफेंस खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि नए भारत ने हमेशा राष्ट्र हितों से प्रेरित होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। भारत एक संप्रभु देश है, वो उन उत्पादों को चुनने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें वो अपने लिए सबसे आधुनिक और सबसे उपयुक्त मानता है।

दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह ये है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है, और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे।

भारतीय वायुसेना की पांचवी पीढ़ी के विमान की तलाश और AMCA में देरी के बीच Su-57 का प्रस्ताव भारत रूस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दे सकता है।

0: चीन ने पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट दे दिया है और चीन का ये ऑफर अब पुतिन के लिए संभावनाएं खोलता है कि वो जल्दी से जल्दी भारत को भी इसी तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दे। वैसे अभी तक S-400 रूस की तरफ से मिल चुका है और अगर Su-57 को लेकर रूस और भारत के बीच साझेदारी होती है, इस पर काम होता है, तो यकीन मानिए ये दोनों देशों के बीच में एक नया रक्षा समझौता और साथ ही साथ साझेदारी साबित होगी। अगर भारत Su-57 प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इसके कई फायदे होंगे। स्वदेशी उत्पादन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन और तकनीकी ज्ञान में इजाफा होगा, भविष्य में AMCA को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। भारत अपनी स्वदेशी क्षमता को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए हर विदेशी सौदा ऐसा होना चाहिए जो आत्मनिर्भरता को बढ़ाए न कि कम करे।
1: अगर भारत और रूस मिलकर Su-57 प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो देखा जाए तो एक जब बड़ी इंडस्ट्री खुलती है तो इससे एक पूरा सिस्टम ही बदली हो जाता है, एक नेक्स्ट गैप अप हो जाता है। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी भारत को, भारत को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक जनरेशन होगा, इंसिलर इंडस्ट्री खुल जाएंगी, साथ साथ में मैन पावर एक ट्रेन हो जाएगी, इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में सोच बदली हो जाएगी, हमारी ऑपरेशन डॉक्ट्रिन बदली हो जाएगी, एक्सपोर्ट के लिए हमको बेस मिल जाएगा और देश में बनने से एक हम कई टेक्नोलॉजी को अपने एमका के लिए या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर जॉइंट वेंचर होता है तो उसका एक बहुत फायदा होता है, क्योंकि कई पश्चिमी देश इसके लिए तैयार नहीं होते।

0: रूस के Su-57 के ऑफर से सवाल उठता है कि क्या भारत आने वाले दशक में चीन के तेजी से बढ़ते एयर पावर का मुकाबला करने के लिए रूस की तरफ लौटेगा या फिर पूरी ताकत अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर लगाएगा।
1: भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान AMC 2035 से पहले तैयार होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चीन G20 के साथ अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, पाकिस्तान लगातार उसका साथ दे रहा है, ऐसे में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत की फ्लीट एक तो कम हो रही है और दूसरा चीन के मुकाबले थोड़ी कमजोर साबित होती है।
0: बढ़ती चुनौतियों के बीच वायुसेना को एक ब्रिज गैप फाइटर की जरूरत है जो दुश्मन के स्टेल्थ विमानों, एडवांस एयर डिफेंस और आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सके। Su-57 इसी गैप को भरने का मजबूत विकल्प बन सकता है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका कॉम्बैक रेंज 3500 किलोमीटर है। करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस फाइटर जेट की सीलिंग रेंज यानी कि ऊंचाई पर जाने की क्षमता 65,000 फीट है, जो अपने साथ करीब 10,000 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। बेहतर स्टेल्थ क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस Su-57 हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है।
1: पुतिन का Su-57 का ऑफर केवल एक हथियारों के डील भर सीमित नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक संदेश भी है। पुतिन दरअसल दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि रूस और भारत आज भी रक्षा के क्षेत्र में साझेदार है और दोनों देशों की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या भारत को एक बार फिर से रूस के साथ आना चाहिए, यानी 2018 में जिसे वो पीछे छोड़ चुका है, क्या वापस उसी रास्ते पर चलना चाहिए।
0: भारत कभी Su-57 प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका है। उस समय इसे FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता था। साल 2007 में भारत ने FGFA प्रोजेक्ट शुरू किया जो Su-57 पर आधारित था, लेकिन 2018 में भारत इससे बाहर हो गया क्योंकि स्टेल्थ और कॉस्ट में बात नहीं बन पाई। दरअसल शुरुआत में ही रूस ने सिर्फ 4 प्रोटोटाइप के लिए $6.7 बिलियन की बड़ी रकम मांगी थी। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट गारंटी के पूरे प्रोजेक्ट की लागत $40 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान था।
2: कई बार ये सवाल उठता है कि भारत 2018 में ही क्यों फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से पीछे हट गया। तब हम करते तो आप कहीं के कहीं पहुंचे होते, पर देखा जाए तो उस समय में बहुत महंगा पड़ रहा था, रशिया जॉइंट डेवलपमेंट की कीमत मांग रहा था, तब इनका अभी प्रोटोटाइप में था और भारत का DRDO और हमारा जो साइंस कम्युनिटी है वो सोचते थे कि हम देश के अंदर ही डेवलप करें, एमका डेवलप करें। तो कई बातें थी जिसकी वजह से उस समय में इस प्रोजेक्ट को छोड़ा गया।
0: Su-57 के ऑफर के बीच रूस ने एक लंबे इंतजार के बाद भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी बैटरी डिलीवर की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डिलीवरी ऐसे समय में हुई जब रूस खुद यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है और उसे काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा ये समझा जा सकता है कि भारत और रूस में कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है।
2: भारत और रूस की दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि रूस जबकि खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में जूझ रहा है और आए दिन उनके ऊपर ड्रोन प्लान है, तो दो तीन बातें कि क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक तो वो ये भी है कि यूक्रेन जो थे इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी तेजी से काम करती जा रही है और एक वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी बना के रखना चाहती है कि अगर वादा किया है तो डिलीवर करते हैं। साथ साथ में भारत के साथ एक बिजनेस के साथ एक स्ट्रैटेजिक संबंध है, दोस्ताना संबंध है, क्योंकि भारत ने भी रूस के साथ खड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि भारत को ही रूस की जरूरत है, रूस को भी भारत की उतनी जरूरत है, क्योंकि जब भारत ने S-400 की डील की थी तब अमेरिका ने कहा था हम काट सा लगा देंगे, पर भारत ने फिर भी S-400 खरीदा और जो देखा कि कितना कामयाब साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में।
0: भारत और रूस की रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं और आंकड़ों के नजरिए से देखें तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में रूस की भूमिका सबसे बड़ी रही है। हालांकि कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा खरीद का डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन आज भी भारतीय सेनाओं के हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का ही है।
1: भारत पारंपरिक रूप से हथियारों के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी तरह रूस पर निर्भर रहा है। भारत की तीनों सेनाएं जल थल नभ, तीनों में 60-70% हथियार रूसी निर्मित ही है।
0: भारतीय सेना में वो कौन कौन से हथियार हैं जो रूस से लिए गए हैं ये आपको बताते हैं। वायुसेना के बेड़े में शामिल Su-30 MKI और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी रूस से ही आयात किए गए हैं। एयर डिफेंस के लिए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, वहीं Igla-S को भी सेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य मूल रूप से एक रूसी एडमिरल गोर्शकोव पोत है जिसे रिफर्बिश किया गया था। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक चैन T-90 भीष्म और T-72 अजय रूसी तकनीक पर ही आधारित है। आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो BM-21 ग्रैंड और BM-30 स्मर्श भी रूस से ही लिया गया है। अब भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता का नहीं है बल्कि ये संयुक्त अनुसंधान और सह उत्पादन में बदल चुका है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और AK-203 राइफल्स इसके उदाहरण हैं।
1: दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, दशक तक गुजर गए, दुनिया में बहुत कुछ बदला, बहुत सारी उथल पुथल हुई, कोई दोस्त बना कोई दुश्मन बना, लेकिन एक दोस्ती जो अटूट है, जो कभी नहीं टूटी, वो थी भारत और रूस की दोस्ती। इतने दशकों बाद भी न तो इस दोस्ती को किसी की नजर लगी और न ही इस दोस्ती का भरोसा टूटा, यानी रूस ने भारत पर और भारत ने रूस पर आज भी भरोसा किया है।
0: बीते 7 दशक में भले ही वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या फिर भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के दौर में और मजबूत हुआ। भारत और रूस के बीच हाल ही में एक अहम सैन्य समझौता लागू हुआ जिसे रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट कहा जाता है। ये समझौता फरवरी 2025 में साइन किया गया था और जनवरी 2026 में प्रभावी हो चुका है। रिलॉस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी, यानी रूस के सैन्य बंदरगाहों, एयरबेस और सुविधाओं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना कर सकेगी। ये इस्तेमाल सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। रिलॉस समझौते के तहत जंग या किसी अन्य सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि देश एक दूसरे की सेनाओं को जरूरत पड़ने पर ईंधन, सामान, मरम्मत जैसी मदद करेंगे। वहीं पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब है कि शांतिपूर्ण समय में देश की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करेंगी। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है।
2: देखा जाए तो भारत ने रूस के साथ जो रिलॉस साइन किया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके तहत रशिया भारत में और भारत रशिया की बेसिस पर तकरीबन 3,000 सैनिक, 5 युद्ध पोत और 10 एयरक्राफ्ट तक रख सकते हैं, जहां पर उनकी रख रखाव और उनको तेल, पानी, राशन, इस तरह की चीज़ें प्रदान की जा सकती हैं जो एक्सरसाइज के लिए, रखी के लिए और आपसी सद्भाव के लिए एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। देखिए, दोनों को फ़ायदा है इसमें कि क्योंकि भारत को उत्तरी समुद्री रास्ते, आर्कटिक रीजन, उस इलाकों में पहुँच मिल जाएगी, रशिया को हिंद महासागर और भारत के अरब सागर में बेसिस मिलेंगी जहाँ से वो अपना देखभाल कर सकते हैं, उनके शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। मिग 21 से शुरू हुआ ये सफर आज अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोमोस मिसाइल जैसे एडवांस हथियारों तक पहुंच चुका है। S-400 को भारत ने साल 2018 में रूस से $5.4 अरब में खरीदा था। इसकी ताकत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नजर रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर तक है। वहीं टारगेट को ट्रैक करने की बात करें तो ये एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। रूस भी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को देने के लिए इच्छुक है। यही नहीं, रूस S-500 की तकनीक को भी भारत के साथ साझा करना चाहता है। इससे S-500 को भारत में बनाकर इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करने का रास्ता आसान बन सकता है। S-500 की तकनीक के ट्रांसफर से भारत आसानी से इसके रडार, इंटरसेप्टर, मिसाइलों और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के तहत बना सकेगा। अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है तो ये S-400 प्रोजेक्ट कुशा, MRSAM आकाश नेक्स्ट जेनरेशन और मौजूदा आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर सकता है। ये नेटवर्क कम ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष तक फैले खतरों को रोकने में सक्षम है। प्रोजेक्ट कुशा पहले ही भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कवच के रूप में विकसित हो रही है। वहीं S-500 का शामिल होना भारत को चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बढ़त दिला सकता है। रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: I feel like I'm getting robbed when I bet the Stanley Cup on a sports book.
6: Dude, delete that app. You need to be using Polymarket.
5: Polymarket?
6: Polymarket is a prediction market, not a sports book. You trade against other fans, not the house. That means more money for you and less for greedy sports books.
5: Even during the Stanley Cup?
6: Especially during the Stanley Cup. Polymarket is an official prediction market of the NHL.
5: No way. What's the catch?
6: No catch. And it's available in all 50 states. Polymarket is so confident you'll never go back, they're giving you $50 free on your first trade.
5: I'm deleting my sportsbook app. How do I get started?
7: Download Polymarket now and use promo code GRIT for $50 free for your first trade. Stop letting sportsbooks steal from you. Download Polymarket and use promo code GRIT for $50 free on your first trade. Use promo code GRIT.
8: Trading not available in all jurisdictions. Check local regulations before trading. Restrictions and eligibility requirements apply.
0: खबरों का
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
9: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने हाल ही में उत्तराखंड के पवित्र और आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन किए। खास बात यह है कि उनका यह दौरा पूरी तरह गोपनीय रहा, जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन और आम लोगों को भी नहीं हो सकी। ऋषभ पंत सबसे पहले पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने श्रद्धा भाव के साथ ओम पर्वत के दर्शन किए। दर्शन के बाद ऋषभ पंत व्यास घाटी के नाभि गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक होमस्टे में रात गुजारी। यात्रा के दौरान उनकी कार का टायर खराब हो जाने पर गुंजी क्षेत्र में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने उनकी मदद की, जिसके बाद ऋषभ पंत ने जवानों के साथ भी समय बिताया और उनके साथ फोटोज भी क्लिक किए। तो पूरी तरह गोपनीय दौरा रहा और ऋषभ पंत ने यहाँ एक श्रद्धालु की तरह, भक्त की तरह यह दौरा रहा, जिसमें आदि कैलाश के दर्शन करने पहुंचे, वहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और वहां के करीब गांव वालों से भी उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ फोटोज भी क्लिक किए और वहां भोजन का भी यहां पर उन्होंने सेवन किया, लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए। तस्वीरें आप देखिए उनकी सहजता का यह अंदाज आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जहां ऋषभ पंत ने आम लोगों से मुलाकात की और उन्हें फोटोग्राफ्स भी दिए। खेल के बाद अब बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत की। पिछले दिनों जानवी कपूर वेंकटेश्वर तिरुमाला मंदिर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने बैंगनी रंग की एक खास साड़ी पहनी हुई थी। मंदिर से उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद अब हर तरफ उस खास साड़ी की चर्चा हो रही है। कभी राजघरानों की शान माने जाने वाली यह साड़ी अब एक बार फिर सुर्खियों में है।

0: मन में श्रद्धा भाव, सादगी भरा अंदाज और बदन पर लिपटी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत। पिछले दिनों जब अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म बेड्डी की रिलीज से पहले भगवान वेंकटेश्वर की दर पर पहुंची, तो उनका ये रूप सोशल मीडिया पर छा गया। इस पावन मौके पर जाह्नवी ने कोटा की पारंपरिक और विश्व प्रसिद्ध सोन चिरैया साड़ी को चुना था। बैगनी रंग की इस अनुपम साड़ी की खूबसूरती हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही है। इस साड़ी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी महीन कारीगरी, जिसमें असली सोने और चांदी की जरी का इस्तेमाल किया गया है। इसके पारंपरिक फूलदार डिजाइन और हस्तकरघे की जीवंत कला का ऐसा अद्भुत संगम जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल ये साड़ी महज एक परिधान नहीं है, बल्कि राजस्थान की कोटा के बुनकरों की पीढ़ियों पुराने कौशल, उनकी मेहनत और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत दस्तावेज है। कबीराज घरानों की शान माने जाने वाली कोटा की ये खास साड़ियाँ अब महिलाओं की पहली पसंद बन रही है। राधिका राजे गायकवाड़ से लेकर कंगना रनौत तक सोन चिरैया साड़ी की कदरदान है।
1: बहुत अच्छा लगता है जब हमारी जरी कोटा की जो पहचान है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है।
0: पिछले कुछ सालों में इस विलुप्त कला को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज कोटा की ये बुनाई राष्ट्र सीमाओं को पार कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहचान बना रही है। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: आज बाबा नीब करौड़ी महाराज के कैची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा महाप्रसाद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो रही कमर्शियल फ्लाइट आज लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान, एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे सफर। 180 मेधावी बच्चों का सहारा बने अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, स्कॉलरशिप के जरिए उठाएंगे पढ़ाई का पूरा खर्च, विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की छात्रों की लिस्ट। भारतीय सेना ने ड्रेस रेगुलेशन में किया बड़ा बदलाव, यूनिफॉर्म से हटाए अंग्रेजी दौर के कई निशान, परेड के दौरान तलवार लेकर चलना भी अनिवार्य नहीं। तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने अर्चा इतिहास, ओलंपिक चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा, धीरज कुमकुम ने किया शानदार प्रदर्शन। 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने अर्चा कीर्तिमान, 15:04.26 का निकाला समय, फ्रांस में पारुल ने तोड़ा अपना ही नेशनल रिकॉर्ड। फ्रांस में पीएम मोदी ने भारत इनोवेट्स 2026 का किया उद्घाटन, बोले पीएम आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप केंद्र, राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत की नवाचार क्षमताओं को सराहा।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अनोखी पहचान बनाई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जानवी कपूर है। जी हाँ, जानवी कपूर। बीते 4 जून को जानवी कपूर की पेद्दी फिल्म रिलीज हुई तो जानवी के किरदार को लेकर हंगामा मच गया। लोग फिल्म के निर्देशक बुच्ची बाबू की आलोचना करने लगे कि उन्होंने जानवी के फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाई किया है। जानवी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचता रहा लेकिन वो शांत रही। आखिरकार बुच्ची बाबू को फिल्म से उन दृश्यों को हटाना पड़ा।

0: है जो महफिल में बड़े बेपरवाह से अंदर से वो गुजरते हैं गहरी किसी राह से। इस जुमले में मौजूदा दौर की दिलकश अदाकारा जाह्नवी कपूर की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान जज है। 4 जून को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई बुची बाबू की पेदी फिल्म ने पहले ही हफ्ते में बेशक 345 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया, लेकिन जबरदस्त कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को भी ट्रिगर कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर बौद्धिक गलियारों तक में चर्चा गर्म हो गई कि पेदी में जाह्नवी कपूर के किरदार को अनावश्यक रूप से सेक्सुअलाइज किया गया है, उनके फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। दरअसल पेदी में जाह्नवी कपूर ने अच्छी अम्मा का किरदार निभाया है। फिल्म के निर्देशक बूची बाबू के मुताबिक अच्छी अम्मा का किरदार खास तौर से फिल्म के हीरो रामचरण के किरदार पेदी के बदलाव को दिखाने के लिए गढ़ा गया है। कह सकते हैं कि इस तर्क की आड़ में बूची बाबू ने जाह्नवी कपूर की एक्टिंग से ज्यादा उनके फिगर को ग्लैमराइज कर दिया। जाहिर है महिला अधिकार संगठनों से लेकर नेटिजन्स तक ने सोशल मीडिया पर फिल्म के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। भारी विरोध को देखते हुए बूची बाबू को आखिरकार ऐसे सेंसुअलाइज दृश्यों को फिल्म से हटाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बूची बाबू ने अपना पक्ष रखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पेदी के कुछ दृश्यों पर मिली प्रतिक्रिया को मैं गंभीरता से लेता हूं। मैं पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगह महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाने का नहीं था। अगर फिल्म का कोई हिस्सा ऐसा लगा है तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, उनकी चिंताओं को समझता हूं और खुले दिल से माफी मांगता हूं। मैंने उन दृश्यों को बदलने का फैसला किया है जो आपत्तिजनक लगे हैं। साउथ की फिल्मों में हीरोइन के फिगर को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड करने का चलन आज का नहीं है। दक्षिण भारत के फिल्मों का ये पुराना ट्रेंड है। फिर भी जया बच्चन से लेकर आशिकी फेम अनु अग्रवाल, करीना कपूर और नेशनल अवार्ड विनर नित्या मेनन तक ने जाह्नवी कपूर को सेक्सुअलाइज करने का किसी न किसी रूप में कड़ा विरोध किया। पर कमाल तो ये है कि जिस अभिनेत्री के किरदार को लेकर इतना ज्यादा बच क्रिएट हुआ, उसने पूरे मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बताया कि इस फिल्म को करने का फैसला उन्होंने क्यों लिया।
1: आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जस्ट माई कैरेक्टर, व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट आई फेल्ट वेरी स्ट्रॉन्गली अबाउट व्हाट द फिल्म वाज सेइंग, हाउ मच इट मेंट टू आवर डायरेक्टर बुच्ची सर, एंड आई थिंक द politics, the social commentary, the cultural implications of what a story like this could do, all of these things resonated with me very deeply. So for those reasons alone, I wanted to be a part of this film.
0: Golden Spoon culture mein pali badi star kid ka khud ke bare mein flare up hui itni badi controversy ko lekar itna mature reaction aapko hairani mein dal sakta hai. Darasal Boni Kapoor jaise bade film nirmata और श्रीदेवी जैसी स्टार अदाकारा की दिलकश बेटी जाह्नवी की असल जिंदगी वो नहीं है जिसे पेदी के जरिए देखा और दिखाया गया। 4 जून को सिने प्रेमी सिल्वर स्क्रीन पर जब पेदी फिल्म की अच्छी अम्मा का ग्लैमरस लुक देखकर मदहोश हो रहे थे, उसी समय ये अभिनेत्री नंगे पांव 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा और 3,550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर पहुंच रही थी। अगाध श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश के मंदिर में माथा टेक कर फिल्म की सफलता का आशीर्वाद मांग रही थी।

0: 4 जून को जिस समय सिल्वर स्क्रीन पर अचियम्मा के सेंसुअल लुक्स को देखकर ऑडियंस क्रेजी हो रहे थे, उस वक्त जाह्नवी विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी में पूरी गरिमा के साथ भक्ति और अध्यात्म का कठिन रास्ता तय कर रही थी। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी में जाह्नवी की अगाध आस्था का एक छोर उनकी माँ श्रीदेवी की बेपनाह यादों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीदेवी न सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके पर बालाजी के दरबार में जाती थी, बल्कि जीवन के बिजी शेड्यूल के दौरान भी जब मौका मिलता तो उनका जाप करती थी। जाह्नवी तिरुपति बालाजी के प्रति अपनी माँ की श्रद्धा आस्था और समर्पण से वाकिफ थी, इसीलिए 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी के मृत्यु के बाद माँ के हर जन्मदिन पर 13 अगस्त को वहाँ जाने का फैसला कर लिया।
1: आई थिंक तिरुपति से स्पेसिफिकली एक अलग जुड़ाव है। आई थिंक बचपन से मैं सुनती आई हूँ मम्मा के मुँह से के उनका भी एक अलग कनेक्शन रहा है बालाजी के साथ। हर बार उनका नाम जापती थी, नारायण नारायण नारायण, और कहती रहती थी कि हर साल उनके बर्थडे पर जब वो काम कर रही थी तो वो तिरुपति चढ़कर जाती थी, और शादी के बाद उन्होंने बंद कर लिया था, तो उनके गुजरने के बाद मैंने ठान लिया था कि हर साल उनके बर्थडे पर मैं जाऊंगी। तो जब पहली बार गई थी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी और बहुत शांति मिली मन में, तो उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि हर बड़े अवसर के पहले मैं तिरुपति चढ़ूंगी।
0: जाह्नवी और श्रीदेवी का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी के परंपरागत संबंधों तक सीमित नहीं है। श्रीदेवी के गुजर जाने के 8 साल बाद भी उनकी यादें, उनका स्नेह, प्यार सब जाह्नवी की जिंदगी की प्रखर धूप में छायेदार वृक्ष की सुरभित बयार की तरह सुखद एहसास करा जाता है। ये एक ऐसा अलौकिक रिश्ता है जहां एक के जाने के बाद भी दूसरे को उसके आने का इंतजार है।
1: I want to remember the good things. तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज में बात करती हूँ उनके बारे में और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही है। मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था। आई थिंक इट मेक्स मी फील लाइक मे बी लाइक आई डोंट नो शी इज ट्रैवलिंग समवेयर एंड शी विल कम बैक।
0: कुछ तो अलौकिक है माँ बेटी के रिश्ते में। जाह्नवी के जन्म के बाद श्रीदेवी आनंद की अलौकिक अनुभूति से सराबोर हो उठी थी। उन्हें तब ये नहीं लगा था कि उनकी गोद में कोई नन्ही नई मेहमान आई है, बल्कि ये लगा था मानो सदियों पहले बिछड़ा कोई अपना ही दोबारा से लौट कर दामन से लिपट गया है। श्रीदेवी ने अपनी बेटी का जाह्नवी नाम भी किसी खास एहसास से भर कर दिया था। दरअसल जाह्नवी 1997 में रिलीज हुई जुदाई फिल्म का एक करेक्टर था, इत्तेफाक से जिसे श्रीदेवी ने नहीं बल्कि उर्मिला मातोंडकर ने निभाया था। कमाल देखिए कि जुदाई 28 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी और जाह्नवी का जन्म उसके ठीक 6 दिन बाद 6 मार्च 1997 को हुआ। आपको बता दें कि जाह्नवी गंगा नदी का एक पर्यायवाची शब्द है जो अपनी पवित्रता और निर्मलता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीदेवी अपनी बेटी में गंगाजल जैसी पवित्रता और निर्मलता का भाव रखती थी। 80 और 90 के दशक की मेगा स्टार श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जीवन में जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा, जो परेशानी उन्हें उठानी पड़ी, वो उनकी बेटियों को उठानी पड़े।
1: वो हमेशा कहती थी मुझे कि मैंने जिंदगी भर मेहनत की है 4 साल की उम्र से ताकि आप मेरे दोनों बच्चे आराम की जिंदगी जिए। ये जिंदगी वो मानती थी कि हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम सख्त किस्म के इंसान तो है नहीं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो उनका ये सपना था कि मैंने इतना कुछ किया है ज़िंदगी में और अगर मैं मेरी बेटियों को आराम की ज़िंदगी नहीं दे पा रही और वो खुद इस चीज़ में कूद रहे हैं तो मैंने किया है क्या है लाइफ में। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं मरी जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लो, कूद जाओ इस कुएं में।
0: साफ है कि जाह्नवी का फिल्मों में करियर बनाने का फैसला माँ को पसंद नहीं था। श्रीदेवी चाहती थी कि जाह्नवी डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों की सेवा करें, लेकिन जाह्नवी ने जब अपनी मंशा साफ कर दी कि एक्टिंग के सिवा वो कुछ और कर ही नहीं सकती, तो श्रीदेवी ने अच्छा एक्टर बनने के लिए बेटी को कुछ टिप्स दिए। श्रीदेवी ने जाह्नवी को जो टिप्स दिए वो अभिनय के पेशे को गरिमा से भर देने वाला है।
1: You know, she always

0: यूज्ड टू से कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है. एंड बिकॉज द कैमरा इज वेरी स्मार्ट, आई फील लाइक इफ़ यू आर नॉट अ गुड पर्सन देन इट शोज, एवरीथिंग फील्स फेक. एंड शी यूज्ड टू से अगर दिल में गंदगी है या अगर यू नो इफ़ यू आर नॉट एबल टू लिव योर कैरेक्टर्स फीलिंग्स जेन्युइनली देन इट शोज. So that's one thing, and I think that it's ever since I was a kid, mom and dad have like drilled in my head, you need to be dedicated and be focused. So like you said, there's no substitute for hard work.
1: Janvi doctor banne ki maa ki khwahish to puri nahi kar payi, lekin har kasauti par acha insaan banne ki maa ki ichha puri karne ki bharsak koshish aaj bhi karti hain. Film industry mein actor ya actress ke beech एक हेल्दी कंपटीशन तो चलता ही रहता है, लेकिन कई बार तो अनहेल्दी भी बन जाता है. पर जानवी इस अनहेल्दी कंपटीशन से कोसों दूर हैं. उनसे ये पूछिए कि आप किस एक्ट्रेस को अपनी चुनौती मानती हैं, तो वे सह अस्तित्व की बात कह के सबका मुंह बंद कर देती हैं.
0: ये चुनौतीपन क्यों, क्योंकि हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? नहीं, ये शायद दूसरे लोगों के दिमाग में है. मुझे ऐसे लगता है कि हम सब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं, और हम सब एक दूसरे के लिए खुश भी है और हो सकते हैं. और एज लॉन्ग एज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ, मुझे यू नो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, मैं एज एन ऑडियंस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए.
1: दरअसल जानवी से सवाल सारा अली खान और अनन्या पांडे को लेकर पूछा गया था. जानवी की मैच्योरिटी, उनकी तरबियत, मानवीय संवेदना, सोच और संस्कार आज की जेंजी या मिलेनियल्स के लिए अद्भुत प्रेरणा है. एक ऐसी लड़की जो इंडस्ट्री की अत्यंत प्रभावशाली फैमिली का हिस्सा है, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ उसे मिल सकता था, पर श्रीदेवी और बोनी कपूर की इस लखते जिगर ने पारिवारिक साये से निकलकर मेहनत और लगन से अपनी शख्सियत को गढ़ा है.
2: जानवी का अपनी मां श्रीदेवी से रिश्ता अनोखा और अलौकिक है. श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जो कष्ट उन्होंने झेला है वही उनकी बेटियों को भी झेलना पड़े, लेकिन जानवी ने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि वो अपनी शख्सियत को संघर्ष की भट्टी में तपकर गढ़ेंगी. इसलिए उन्होंने अपने को स्थापित करने के लिए दूसरे कलाकारों से कहीं ज्यादा मेहनत की.

0: बेदी फिल्म से अलग तरह से सुर्खियों में आई जाह्नवी कपूर का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मुख्तसर से फिल्मी करियर में उन्होंने ऑडियंस के साथ ही क्रिटिक्स को भी अपने अभिनय के दम पर गहरे प्रभावित किया है। 6 मार्च 1997 को मुंबई में पैदा हुई जाह्नवी को जन्म से ही अभिनय के संस्कार मिलने लगे थे। अभिनय की बारीकियां उन्होंने बेशक अमेरिका के लॉस एंजलिस के द ली स्टारबर्ग थिएटर एंड फिल्म्स इंस्टीट्यूट से सीखा, लेकिन उसका कगहरा उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी और पिता बोनी कपूर से होश संभालने के बाद से ही सीखना शुरू कर दिया था।
1: Actually, in my family, it's the only thing that we discussed. It's the only thing that we knew as kids. Every time we'd, you know, sit at home and have a conversation with one another, it was always about films. Or even when we'd go out to spend time together, we'd go out to watch a movie, and you know, it was always a conversation at home. Holidays were always either dad's shooting schedules or mom's shooting schedules. So it was, we've grown up in that environment.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीदेवी और बोनी कपूर जैसी इंडस्ट्री की नामवर हस्तियों की बेटी होने की वजह से जाह्नवी को सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक पाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मनीष मल्होत्रा कपूर परिवार के फैमिली फ्रेंड थे, जो इत्तेफाक से करण जौहर जैसे इंडस्ट्री के स्टालवार्ट के भी करीबी थे। मनीष जाह्नवी को बचपन से जानते थे, लिहाजा उनके भीतर के पोटेंशियल को लेकर वो अक्सर करण से चर्चा करते रहते थे। करण जौहर निर्देशक शशांक खेतान के साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें उन्हें भारतीयता से भरी हुई एक हसीन और नए चेहरे की तलाश थी। इस दौरान जाह्नवी मनीष मल्होत्रा के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस आने जाने लगी थी। इसी बीच शशांक खेतान की नजर जाह्नवी पर टिक गई और उन्होंने बिना किसी लांग लपेट के फैसला कर लिया कि धड़क के लिए जिस लड़की की तलाश थी उसके लिए जाह्नवी पूरी तरह फिट हैं। उसके बाद जाह्नवी को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया।
1: मैं जाती थी उनके ऑफिस, आई थिंक 3-4 सीन्स दिए उन्होंने।

0: मुझे, और मैं जाके रट लेती थी और फिर परफॉर्म करती थी उनके लिए।
1: धड़क साइन करने के बाद जाह्नवी को एक अज्ञात डर सताने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि सेट पर लोग यही सोच रहे होंगे कि स्टार की ढोने की वजह से ही उन्हें काम मिला है। इस डर की वजह से जाह्नवी इम्पोस्टर सिंड्रोम की शिकार हो गईं। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगा

0: से ही उन्हें काम मिला है। इस डर की वजह से जानवी इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो गई। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मुझे जो मिल रहा है दरअसल मैं उसके लायक नहीं हूँ। इसीलिए वो सेट पर दूसरे कलाकारों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करती थी और पूरी यूनिट के साथ काफी हम्बल भी रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी को सेट पर आने से भी रोक दिया था ताकि कोई ये ना कहे कि अपने जमाने के स्टार माँ बेटी की कमतरी को कवर करने के लिए आई हैं।
1: मेरे लिए ऐसा था कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और इसलिए लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, अब मैं ये अपने आप करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मदद मत कीजिएगा, आप सेट पे मत आइएगा प्लीज। तो मैं उनको सेट से दूर रखती थी।
0: माँ श्रीदेवी को सेट से दूर रखकर जानवी धड़क की शूटिंग के दौरान पूरी जान झोंक रही थी ताकि प्रीमियर में माँ जब बेटी की एक्टिंग देखें तो आह्लाद से ओत प्रोत हो जाए। पर जानवी की उम्मीद की कश्ती जब साहिल के करीब पहुंचने ही वाली थी उसी वक्त अचानक आए भयानक तूफान ने सतरंगे सपनों की रानाइयों को तहस नहस कर दिया। धड़क फिल्म की रिलीज से करीब 5 महीने पहले 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथ टब में दुर्घटनावश डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई। एक झटके में जानवी की जिंदगी सन्नाटे में चली गई। धड़क फिल्म के प्रमोशन का उत्साह भी नहीं बचा। उस दौरान श्रीदेवी को लेकर जानवी से जब कोई सवाल पूछा जाता तो वो दर्द की कशिश में ऐसे डूब जाती कि एक गहरी खामोशी के सिवा दूसरा कोई जवाब निकल ही नहीं पाता था।
1: उनके बारे में शायद अभी ज्यादा बात करने लगी हूँ बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप आई लाइक टॉकिंग अबाउट, आई फील लाइक आई एम रिमेम्बरिंग हर, यू नो। लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत होता था। आई थिंक जब मैं धड़क प्रमोट कर रही थी there wasn't a lot of time that had passed. वो बहुत fresh था मेरे दिमाग में सब कुछ और मैं भाग रही थी मेरे सच्चाई से और मैं काम को इस्तेमाल कर रही थी, so that was my escape. और जब भी कोई भी professional scenario में वो मुझे remind करते थे कि she is no more, I think मैं बिल्कुल shut, like I just couldn't deal with it.
0: 20 जुलाई 2018 को रिलीज हुई धड़क में पार्थवी सिंह राठौर नाम की मध्यम वर्गीय लड़की के किरदार को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया। लेकिन जानवी अब भी मां की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी। करीब 2 साल तक जानवी पर्दे पर नजर नहीं आई। 12 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में जानवी धड़क की पार्थवी के उलट एक अलग ही मिजाज और अंदाज में दिखी। एयरफोर्स की पायलट गुंजन सक्सेना के वास्तविक जीवन पर बनी फिल्म में जानवी ने उनकी जिंदगी की बारीकियों को इतनी जहनियत के साथ पर्दे पर उकेरा कि दर्शक और समीक्षक दोनों अभिभूत हो गए। दरअसल मां की मौत के सदमे से उबरने की जद्दोजहद में जानवी के दिलो दिमाग में ये एहसास गहरे उतर गया कि जिंदगी खुद में एक कड़ा इम्तहान है और इस इम्तहान से भागना समाधान नहीं है।
2: I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that jitna bhi mushkil ho, ye daur ko bhi guzarna hi hai. Aur jab ye daur guzrega, aap aur bhi aap you'll emerge out of it stronger. Aap aur bhi usse ubhar ke nikloge.
0: इस फलसफे को अपनाने के बाद जानवी ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी। मिली, बवाल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मिस्टर एंड मिसेज माही, देवरा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों के जरिए जानवी ने इंडस्ट्री में अपनी मां की कमी को भरसक पूरी करने की कोशिश की है।
3: तो बंदे में आज आपने जानवी कपूर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ स्टूडियो।

0: लगता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: और अब आपको खबर दिखाते हैं विराट और करण की। बाल क्रिकेटर विराट कोहली और पंजाबी सिंगर म्यूजिशियन करण औजला की हो रही है, जो दिल्ली में एक मंच पर एक साथ दिखेंगे। आखिर क्या है मौका और क्यों ये दोनों साथ आ रहे हैं, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: दिग्गज भारतीय क्रिकेटर, पूर्व कप्तान और शानदार बल्लेबाज विराट कोहली को आपने अक्सर क्रिकेट के पिच पर रनों की बरसात करते हुए देखा होगा। विराट कोहली को आपने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ऐतिहासिक जीत के बाद डांस फ्लोर पर धमाल मचाते हुए भी देखा होगा। विराट को आपने कई मैचों के दौरान फैंस को उत्साहित करने के लिए मैदान पर थिरकते हुए भी देखा होगा। इतना ही नहीं, विराट को आपने कॉमेडी शो में मस्ती करते हुए और हंसाते हुए भी देखा होगा। यही नहीं, आपको समय समय पर धर्म और अध्यात्म के प्रति विराट कोहली की आस्था की तस्वीरें भी देखने को मिलती रही होंगी। लेकिन अब विराट एक नए अंदाज में सामने आ रहे हैं। आखिर क्या करने वाले हैं विराट, आखिर क्या दिखाने जा रहे हैं विराट अपने फैंस और दर्शकों के सामने? अब क्या लेकर आ रहे हैं विराट? क्या आने वाले समय में विराट किसी म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ सकते हैं? ये सब अति सस्पेंस ही है। लेकिन विराट ने खुद इसके बारे में जो संकेत दिया है, उससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विराट के फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ गई है। दरअसल विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसको लेकर लोगों के जहन में तमाम सवाल उठने लगे हैं। इन तस्वीरों में विराट मशहूर पंजाबी पॉप स्टार करण ओजला के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में पीठ पर 1 और 8 नंबर छपी काली टी शर्ट पहने दोनों सितारे हजारों बत्तियों से जगमगाते खचाखच भरे हॉल में दर्शकों के सामने खड़े हैं। विराट ने इसके कैप्शन में लिखा है, करण का स्वागत है, मंच हमारा है, 21 जून दिल्ली। यानी ये तो साफ है कि 21 जून को दिल्ली में होने जा रहे एक कार्यक्रम में विराट और करण ओजला एक ही मंच पर साथ साथ होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 जून को दिल्ली में हाई प्रोफाइल क्रॉसओवर होने जा रहा है। इसमें स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और पंजाबी पॉप स्टार करण ओजला एक साथ नजर आएंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस दौरान अपने अपने क्षेत्र के दो बड़े नाम एक ही मंच पर एक साथ होंगे। एक तरफ रन मशीन किंग कोहली होंगे तो दूसरी तरफ गीतों के सरताज करण। दरअसल ये दोनों सितारे अगले रविवार को राजधानी में होने वाले 1-8 इवेंट में एक साथ नजर आएंगे। विराट कोहली इस ब्रांड की पहचान बनाने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। वहीं अब करण ओजला भी इससे जुड़ रहे हैं। 1-8 एक लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका फोकस फिटनेस, फैशन और आधुनिक जीवन शैली से है। करण ओजला और 1-8 ग्लोबल ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 21 जून को 1-8 ग्लोबल प्रीमियर की पुष्टि कर दी है। ऑनलाइन की गई इस जानकारी ने विराट और करण के फैंस के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है, क्योंकि तमाम प्रशंसक क्रिकेट के दिग्गज और पंजाबी हिट मेकर को एक साथ मंच पर देखने के लिए बेताब है। लोगों की दीवानगी इस हद तक जा पहुंची कि इंस्टा पर इस सिलसिले में किए गए एक पोस्ट को कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स मिल गए। अब यशोभूमि में 1-8 इवेंट में करण ओजला और विराट कोहली के क्रॉसओवर को लेकर फैंस को 21 जून का बेसब्री से इंतजार है, ताकि ये पता चले कि कोहली और ओजला दुनिया के सामने क्या नया लेकर आ रहे हैं। मुंबई से सना फरजीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
3: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: आज बाबा नीब करौली महाराज के कैची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा महाप्रसाद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो रही कमर्शियल फ्लाइट आज लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान। एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे सफर। 180 मेधावी बच्चों का सहारा बने अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, स्कॉलरशिप के जरिए उठाएंगे पढ़ाई का पूरा खर्च। विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की छात्रों की लिस्ट। भारतीय सेना ने ड्रेस रेगुलेशन में किया बड़ा बदलाव, यूनिफॉर्म से हटाए अंग्रेजी दौर के कई निशान, परेड के दौरान तलवार लेकर चलना भी अनिवार्य नहीं। तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने अर्चा इतिहास, ओलंपिक चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा, धीरज कुमकुम ने किया शानदार प्रदर्शन। 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने अर्चा कीर्तिमान, 15 मिनट और 4.26 सेकंड का निकाला समय। फ्रांस में पारुल ने तोड़ा अपना ही नेशनल रिकॉर्ड। फ्रांस में पीएम मोदी ने भारत इनोवेट्स 2026 का किया उद्घाटन, बोले पीएम आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप केंद्र। राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत की नवाचार क्षमताओं को सराहा।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

सुकोई 30 MKI, मैग 29 फाइटर जेट, MI जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर, S-400 जैसा बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम, INS विक्रमादित्य जैसा विशाल एयरक्राफ्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और रूस रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। दुनिया में बहुत उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती कभी भी रुकी नहीं, कभी भी थमी नहीं। आज भी रूस भारत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है।

0: रूस ने भारत को अपना पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट ऑफर किया है। साथ ही रूस ने भारत को ये प्रस्ताव भी दिया है कि वो अपने फाइटर जेट Su-57 की टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा।
1: भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है।
0: रूस की पेशकश सिर्फ विमान बिक्री तक सीमित नहीं है। प्रस्ताव में संवेदनशील सोर्स कोड तक पहुंच, व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की जरूरतों के अनुरूप दो सीटों वाले Su-57D वेरिएंट के विकास की संभावना भी शामिल है। ये भारत को स्वदेशी हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स को बिना किसी विदेशी मंजूरी के विमान में इंटीग्रेट करने की स्वतंत्रता देता है। रक्षा क्षेत्र में इस रफ्तार का तकनीकी हस्तांतरण बेहद दुर्लभ माना जाता है।

0: देखा जाए तो समय में रशिया के साथ जो बातचीत चल रही है, जहां पर SU-57 का सोर्स कोड TOT यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना, भारत में व्यापक प्रोडक्शन करना और देश की जरूरत के हिसाब से 2-सीटर SU-57 का ऑफर देखें तो कई तरह से अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके द्वारा आज जो भारत के अंदर ही प्रोडक्शन होगा, HAL इसमें समर्थ है कि रशिया के द्वारा ऑफर की हुई टेक्नोलॉजी को हम बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करके बना सकते हैं। दूसरी बात ये ट्रस्टेड है, टेस्टेड है। तीसरी बात यह है कि ये आज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से और कोड ट्रांसफ़र की वजह से आज हमारा जो अपना है अस्त्र है, रुद्रम है, जो मिसाइल सिस्टम्स है, सर्विलेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, इसको इसके ऊपर इंटेग्रेट कर सकते हैं।
1: भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ रक्षा खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है। दोनों देश संयुक्त शोध और तकनीकी विकास पर भी साथ काम करते हैं और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

0: हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे।
1: भारत को रूस से Su-57 या S-500 एयर डिफेंस खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि नए भारत ने हमेशा राष्ट्र हितों से प्रेरित होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। भारत एक संप्रभु देश है, वो उन उत्पादों को चुनने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें वो अपने लिए सबसे आधुनिक और सबसे उपयुक्त मानता है।

दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह यह है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है, और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे।

भारतीय वायुसेना की पांचवी पीढ़ी के विमान की तलाश और एएमसीए में देरी के बीच Su-57 का प्रस्ताव भारत रूस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दे सकता है।

0: चीन ने पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट दे दिया है और चीन का ये ऑफर अब पुतिन के लिए संभावनाएं खोलता है कि वो जल्दी से जल्दी भारत को भी इसी तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दे। वैसे अभी तक S-400 रूस की तरफ से मिल चुका है और अगर Su-57 को लेकर रूस और भारत के बीच साझेदारी होती है, इस पर काम होता है, तो यकीन मानिए ये दोनों देशों के बीच में एक नया रक्षा समझौता और साथ ही साथ साझेदारी साबित होगी। अगर भारत Su-57 प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इसके कई फायदे होंगे। स्वदेशी उत्पादन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन और तकनीकी ज्ञान में इजाफा होगा, भविष्य में AMCA को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। भारत अपनी स्वदेशी क्षमता को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए हर विदेशी सौदा ऐसा होना चाहिए जो आत्मनिर्भरता को बढ़ाए न कि कम करे।
1: अगर भारत और रूस मिलकर Su-57 प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो देखा जाए तो एक जब बड़ी इंडस्ट्री खुलती है तो इससे एक पूरा सिस्टम ही बदली हो जाता है, एक नेक्स्ट गैप अप हो जाता है। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी भारत को, भारत को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक जनरेशन होगा, इंसिलर इंडस्ट्री खुल जाएंगी, साथ साथ में मैन पावर एक ट्रेन हो जाएगी, इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में सोच बदली हो जाएगी, हमारी ऑपरेशन डॉक्ट्रिन बदली हो जाएगी, एक्सपोर्ट के लिए हमको बेस मिल जाएगा और देश में बनने से एक हम कई टेक्नोलॉजी को अपने एमका के लिए या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर जॉइंट वेंचर होता है तो उसका एक बहुत फायदा होता है, क्योंकि कई पश्चिमी देश इसके लिए तैयार नहीं होते।

0: रूस के Su-57 के ऑफर से सवाल उठता है कि क्या भारत आने वाले दशक में चीन के तेजी से बढ़ते एयर पावर का मुकाबला करने के लिए रूस की तरफ लौटेगा या फिर पूरी ताकत अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर लगाएगा।
1: भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान AMC 2035 से पहले तैयार होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चीन G20 के साथ अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, पाकिस्तान लगातार उसका साथ दे रहा है, ऐसे में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की फ्लीट एक तो कम हो रही है और दूसरा चीन के मुकाबले थोड़ी कमजोर साबित होती है।
0: बढ़ती चुनौतियों के बीच वायुसेना को एक ब्रिज गैप फाइटर की जरूरत है जो दुश्मन के स्टेल्थ विमानों, एडवांस एयर डिफेंस और आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सके। Su-57 इसी गैप को भरने का मजबूत विकल्प बन सकता है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका कॉम्बैट रेंज 3500 किलोमीटर है। करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस फाइटर जेट की सीलिंग रेंज यानी कि ऊंचाई पर जाने की क्षमता 65,000 फीट है, जो अपने साथ करीब 10,000 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। बेहतर स्टेल्थ क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस Su-57 हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है।
1: पुतिन का Su-57 का ऑफर केवल एक हथियारों की डील भर सीमित नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक संदेश भी है। पुतिन दरअसल दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि रूस और भारत आज भी रक्षा के क्षेत्र में साझेदार है और दोनों देशों की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या भारत को एक बार फिर से रूस के साथ आना चाहिए, यानी 2018 में जिसे वो पीछे छोड़ चुका है, क्या वापस उसी रास्ते पर चलना चाहिए।
0: भारत कभी Su-57 प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका है। उस समय इसे FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता था। साल 2007 में भारत ने FGFA प्रोजेक्ट शुरू किया जो Su-57 पर आधारित था, लेकिन 2018 में भारत इससे बाहर हो गया क्योंकि स्टेल्थ और कॉस्ट में बात नहीं बन पाई। दरअसल शुरुआत में ही रूस ने सिर्फ 4 प्रोटोटाइप के लिए $6.7 बिलियन की बड़ी रकम मांगी थी। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट गारंटी के पूरे प्रोजेक्ट की लागत $40 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान था।
2: कई बार ये सवाल उठता है कि भारत 2018 में ही क्यों फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से हट गया, पीछे हट गया। तब हम करते तो आप कहीं के कहीं पहुंचे होते, पर देखा जाए तो उस समय में बहुत महंगा पड़ रहा था, रशिया जॉइंट डेवलपमेंट की कीमत मांग रहा था, तब इनका अभी प्रोटोटाइप में था और भारत का DRDO और हमारा जो साइंस कम्युनिटी है वो सोचते थे कि हम देश के अंदर ही डेवलप करें, एमका डेवलप करें। तो कई बातें थी जिसकी वजह से उस समय में इस प्रोजेक्ट को छोड़ा गया।
0: Su-57 के ऑफर के बीच रूस ने एक लंबे इंतजार के बाद भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी बैटरी डिलीवर की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डिलीवरी ऐसे समय में हुई जब रूस खुद यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है और उसे काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा ये समझा जा सकता है कि भारत और रूस में कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है।
2: भारत और रूस की दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि रूस जबकि खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में जूझ रहा है और आए दिन उनके ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, एयर अटैक हो रहे हैं और उनकी काफ़ी रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने S-400 की चौथी बैटरी भारत को हैंड ओवर कर रहे हैं। साथ साथ में फिफ्थ बैटरी का भी ऑन शेड्यूल डिलीवरी का उनका प्लान है। तो दो तीन बातें कि क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक तो वो ये भी है कि यूक्रेन युद्ध से इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी तेजी से काम करती जा रही है और एक वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी बना के रखना चाहती है कि अगर वादा किया है तो डिलीवर करते हैं। साथ साथ में भारत के साथ एक बिजनेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक संबंध है, दोस्ताना संबंध है, क्योंकि भारत ने भी रूस के साथ खड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि भारत को ही रूस की जरूरत है, रूस को भी भारत की उतनी ज़रूरत है, क्योंकि जब भारत ने S-400 की डील की थी तब अमेरिका ने कहा था हम काटसा लगा देंगे, पर भारत ने फिर भी S-400 खरीदा और जो देखा कि कितना कामयाब साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में।
0: भारत और रूस के रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं और आंकड़ों के नजरिए से देखें तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में रूस की भूमिका सबसे बड़ी रही है। हालांकि कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा खरीद का डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन आज भी भारतीय सेनाओं के हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का ही है।
1: भारत पारंपरिक रूप से हथियारों के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी तरह रूस पर निर्भर रहा है। भारत की तीनों सेनाएं जल थल नभ, तीनों में 60-70% हथियार रूसी निर्मित ही है।
0: भारतीय सेना में वो कौन कौन से हथियार हैं जो रूस से लिए गए हैं ये आपको बताते हैं। वायुसेना के बेड़े में शामिल Su-30 MKI और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी रूस से ही आयात किए गए हैं। एयर डिफेंस के लिए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, वहीं Igla-S को भी सेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य मूल रूप से एक रूसी एडमिरल गोर्शकोव पोत है जिसे रिफर्बिश किया गया था। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म और T-72 अजय रूसी तकनीक पर ही आधारित है। आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो BM-21 ग्रैंड और BM-30 स्मर्श भी रूस से ही लिया गया है। अब भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता का नहीं है बल्कि ये संयुक्त अनुसंधान और सह उत्पादन में बदल चुका है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और AK-203 राइफल्स इसके उदाहरण हैं।
1: दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, दशक तक गुजर गए, दुनिया में बहुत कुछ बदला, बहुत सारी उथल पुथल हुई, कोई दोस्त बना कोई दुश्मन बना, लेकिन एक दोस्ती जो अटूट है, जो कभी नहीं टूटी, वो थी भारत और रूस की दोस्ती। इतने दशकों बाद भी न तो इस दोस्ती को किसी की नजर लगी और न ही इस दोस्ती का भरोसा टूटा, यानी रूस ने भारत पर और भारत ने रूस पर आज भी भरोसा किया है।
0: बीते 7 दशक में भले ही वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या फिर भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के दौर में और मजबूत हुआ। भारत और रूस के बीच हाल ही में एक अहम सैन्य समझौता लागू हुआ जिसे रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट कहा जाता है। ये समझौता फरवरी 2025 में साइन किया गया था और जनवरी 2026 में प्रभावी हो चुका है। रिलॉस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी, यानी रूस के सैन्य बंदरगाहों, एयरबेस और सुविधाओं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना कर सकेगी। ये इस्तेमाल सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। रिलॉस समझौते के तहत जंग या किसी अन्य सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि देश एक दूसरे की सेनाओं को जरूरत पड़ने पर ईंधन, सामान, मरम्मत जैसी मदद करेंगे। वहीं पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब है कि शांतिपूर्ण समय में देश की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करेंगी। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है।
2: देखा जाए तो भारत ने रूस के साथ जो रिलॉस साइन किया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके तहत रशिया भारत में और भारत रशिया की बेसिस पर तकरीबन 3,000 सैनिक, 5 युद्ध पोत और 10 एयरक्राफ्ट तक रख सकते हैं, जहाँ पर उनकी रख रखाव और उनको तेल, पानी, राशन, इस तरह की चीज़ें प्रदान की जा सकती हैं जो एक्सरसाइज के लिए, रखी के लिए और आपसी सद्भाव के लिए एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। देखिए, दोनों को फ़ायदा है इसमें कि क्योंकि भारत को उत्तरी समुद्री रास्ते, आर्कटिक रीजन, उस इलाकों में पहुँच मिल जाएगी, रशिया को हिंद महासागर और भारत के अरब सागर में बेसिस मिलेंगी जहाँ से वो अपना देखभाल कर सकते हैं, उनके शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। मिग 21 से शुरू हुआ ये सफर आज अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे एडवांस हथियारों तक पहुंच चुका है। S-400 को भारत ने साल 2018 में रूस से $5.4 अरब में खरीदा था। इसकी ताकत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नजर रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर तक है। वहीं टारगेट को ट्रैक करने की बात करें तो ये एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। रूस भी
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने हाल ही में उत्तराखंड के पवित्र और आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन किए। खास बात यह है कि उनका यह दौरा पूरी तरह गोपनीय रहा, जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन और आम लोगों को भी नहीं हो सकी। ऋषभ पंत सबसे पहले पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने श्रद्धा भाव के साथ ओम पर्वत के दर्शन किए। दर्शन के बाद ऋषभ पंत व्यास घाटी के नाबी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक होमस्टे में रात गुजारी। यात्रा के दौरान उनकी कार का टायर खराब हो जाने पर गुंजी क्षेत्र में तैनात ITBP के जवानों ने उनकी मदद की, जिसके बाद ऋषभ पंत ने जवानों के साथ भी समय बिताया और उनके साथ फोटोज भी क्लिक किए। तो पूरी तरह गोपनीय दौरा रहा और ऋषभ पंत ने यहाँ एक श्रद्धालु की तरह, भक्त की तरह यह दौरा रहा, जिसमें आदि कैलाश के दर्शन करने पहुंचे, वहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और वहां के करीब गांव वालों से भी उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ फोटोज भी क्लिक किए और वहां भोजन का भी यहां पर उन्होंने सेवन किया, लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए। तस्वीरें आप देखिए उनकी सहजता का यह अंदाज आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जहां ऋषभ पंत ने आम लोगों से मुलाकात की और उन्हें फोटोग्राफ भी दिए। खेल के बाद अब बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत की। पिछले दिनों जानवी कपूर वेंकटेश्वर तिरुमाला मंदिर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने बैंगनी रंग की एक खास साड़ी पहनी हुई थी। मंदिर से उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद अब हर तरफ उस खास साड़ी की चर्चा हो रही है। कभी राजघरानों की शान माने जाने वाली यह साड़ी अब एक बार फिर सुर्खियों में है।

0: मन में श्रद्धा भाव, सादगी भरा अंदाज और बदन पर लिपटी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत। पिछले दिनों जब अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म बेड्डी की रिलीज से पहले भगवान वेंकटेश्वर की दर पर पहुंची, तो उनका ये रूप सोशल मीडिया पर छा गया। इस पावन मौके पर जाह्नवी ने कोटा की पारंपरिक और विश्व प्रसिद्ध सोन चिरैया साड़ी को चुना था। बैगनी रंग की इस अनुपम साड़ी की खूबसूरती हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही है। इस साड़ी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी महीन कारीगरी, जिसमें असली सोने और चांदी की जरी का इस्तेमाल किया गया है। इसके पारंपरिक फूलदार डिजाइन और हस्तकरघे की जीवंत कला का ऐसा अद्भुत संगम, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल ये साड़ी महज एक परिधान नहीं है, बल्कि राजस्थान के कोटा के बुनकरों की पीढ़ियों पुराने कौशल, उनकी मेहनत और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत दस्तावेज है। कविराज घरानों की शान माने जाने वाली कोटा की ये खास साड़ियाँ अब महिलाओं की पहली पसंद बन रही हैं। राधिका राजे गायकवाड़ से लेकर कंगना रनौत तक सोन चिरैया साड़ी की कदरदान है।
1: बहुत अच्छा लगता है जो हमारी जरी कोटा की जो पहचान है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है।
0: पिछले कुछ सालों में इस विलुप्त कला को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज कोटा की ये बुनाई राष्ट्र सीमाओं को पार कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहचान बना रही है। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
5: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: आज बाबा नीब करौड़ी महाराज के कैची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा महाप्रसाद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो रही कमर्शियल फ्लाइट आज लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान, एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे सफर। 180 मेधावी बच्चों का सहारा बने अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, स्कॉलरशिप के जरिए उठाएंगे पढ़ाई का पूरा खर्च, विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की छात्रों की लिस्ट। भारतीय सेना ने ड्रेस रेगुलेशन में किया बड़ा बदलाव, यूनिफॉर्म से हटाए अंग्रेजी दौर के कई निशान, परेड के दौरान तलवार लेकर चलना भी अनिवार्य नहीं। तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने अर्चा इतिहास, ओलंपिक चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा, धीरज कुमकुम ने किया शानदार प्रदर्शन। 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने रचा कीर्तिमान, 15:04.26 का निकाला समय, फ्रांस में पारुल ने तोड़ा अपना ही नेशनल रिकॉर्ड। फ्रांस में पीएम मोदी ने भारत इनोवेट्स 2026 का किया उद्घाटन, बोले पीएम आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप केंद्र, राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत की नवाचार क्षमताओं को सराहा।

का सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अनोखी पहचान बनाई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जानवी कपूर है। जी हाँ, जानवी कपूर। बीते 4 जून को जानवी कपूर की पैदी फिल्म रिलीज हुई तो जानवी के किरदार को लेकर हंगामा मच गया। लोग फिल्म के निर्देशक बुच्ची बाबू की आलोचना करने लगे कि उन्होंने जानवी के फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाई किया है। जानवी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचता रहा लेकिन वो शांत रही। आखिरकार बुच्ची बाबू को फिल्म से उन दृश्यों को हटाना पड़ा।

हैं जो महफिल में बड़े बेपरवाह से अंदर से वो गुजरते हैं गहरी किसी राह से। इस जुमले में मौजूदा दौर की दिलकश अदाकारा जाह्नवी कपूर की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान जज है। 4 जून को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई बुची बाबू की पेदी फिल्म ने पहले ही हफ्ते में बेशक 345 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया, लेकिन जबरदस्त कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को भी ट्रिगर कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर बौद्धिक गलियारों तक में चर्चा गर्म हो गई कि पेदी में जाह्नवी कपूर के किरदार को अनावश्यक रूप से सेक्सुअलाइज किया गया है, उनके फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। दरअसल पेदी में जाह्नवी कपूर ने अच्छी अम्मा का किरदार निभाया है। फिल्म के निर्देशक बूची बाबू के मुताबिक अच्छी अम्मा का किरदार खास तौर से फिल्म के हीरो रामचरण के किरदार पेदी के बदलाव को दिखाने के लिए गढ़ा गया है। कह सकते हैं कि इस तर्क की आड़ में बूची बाबू ने जाह्नवी कपूर की एक्टिंग से ज्यादा उनके फिगर को ग्लैमराइज कर दिया। जाहिर है महिला अधिकार संगठनों से लेकर नेटिजन्स तक ने सोशल मीडिया पर फिल्म के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। भारी विरोध को देखते हुए बूची बाबू को आखिरकार ऐसे सेंसुअलाइज दृश्यों को फिल्म से हटाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बूची बाबू ने अपना पक्ष रखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पेदी के कुछ दृश्यों पर मिली प्रतिक्रिया को मैं गंभीरता से लेता हूं। मैं पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगह महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाने का नहीं था। अगर फिल्म का कोई हिस्सा ऐसा लगा है तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, उनकी चिंताओं को समझता